नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 अगस्त 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि विविध भारती के कार्यक्रम आपके रेडियो सेट के अलावा इंटरनेट स्ट्रीमिंग, डीटीएच और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा करेंगे। ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। उन्होंने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया।
1: हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया।
1: प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की स्वीकृति दी। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। अमरीका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां तथा भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहते हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमरीका

0: अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहे अत्याचार और सीमा पार आतंकवाद के लिए इसका इस्तेमाल किए जाने पर चिंता व्यक्त करनी चाहिए। एक प्रश्न के उत्तर में श्री जायसवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में भारत ने अफगानिस्तान के साथ कई बैठकें की हैं। अफगानिस्तान के कई मंत्री भारत के दौरे पर आए हैं, जिनसे विकास, सहयोग, व्यापार और संपर्क जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत हुई है। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों को मुआवजा या पुनर्वास न मिलने के आरोप गलत और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अधिकांश पात्र परिवारों को पूरा मुआवजा और पुनर्वास लाभ मिल चुका है और कुछ मामलों में केवल प्रकृत्यात्मक औपचारिकताएं शेष हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना उद्योग की अपेक्षाओं और नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के कौशल के बीच की दूरी कम करने में मदद के लिए तैयार की गई है। 18 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के लोग प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के पात्र हैं और उन्हें इंटर्नशिप करने पर प्रतिमाह न्यूनतम 9,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है। दिल्ली की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को आगे की जांच करने की अनुमति दे दी है। ब्यूरो ने इस मामले में 13 आरोपियों के अलावा अन्य साजिशकर्ताओं की जांच जारी रखने की अनुमति मांग की थी, जिनके विरुद्ध पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

यीशु ने चिंतन। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है, हम आजादी तभी पाते हैं जब अपने जीवित रहने के अधिकार का पूरा मूल्य चुका देते हैं। भक्ति संगीत।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। झरोखा सुनिए विविध भारती से आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद सुबह 6:35 पर श्री रामचरितमानस गान सुनवाया जाएगा, आज भाग 281। सुबह और शाम 6:45 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में श्रृंखला वर्षा चौमासा, कलाकार है गायिका शुभा मुद्गल। आज इस श्रृंखला की 15वीं कड़ी सुनवाई जाएगी, प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत की है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सीधा प्रसारण सुबह 7 बजे से किया जाएगा। 8:15 पर त्रिवेणी होगी। 2 बार आप दिन में 2 बजे सुन सकते हैं। 8:30 पर चित्रलोक, सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम होगा, जो स्वतंत्रता दिवस पर हमारी विशेष पेशकश है। आपको बता दें ये कार्यक्रम रात 9:30 पर 2 बार सुना जा सकता है। सुबह 10 बजे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी, कहानी अब गम नहीं, इसे लिखा है अलका अग्रवाल सिगतिया ने और प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी की है। दिन में 11 बजे स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला का विशेष भाग प्रसारित किया जाएगा। संकलन संपादन जयंत पात्रीकर, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। सुबह 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर। दिन में 2:15 पर समाचार प्रसारित किए जाएंगे विविध भारती पर। दिन भर में जो समाचार प्रसारित किए जाते हैं उनके बारे में आपको बता दें, सुबह 8 बजे समाचार प्रभात, दिन में 12 बजे हिंदी समाचार, शाम 6 बजे हिंदी समाचार और उसके बाद रात 8:45 पर समाचार संध्या। नाट्य तरंग के अंतर्गत आज नाटक सुनवाया जाएगा लगन, रोमी शिराज ने इसे लिखा है, निर्देशक मुद्रा राक्षस। दिन में 2:30 पर सदाबहार नक में कार्यक्रम, 3 बजे मंचा है गीत। 4 बजे पिटारा में बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का दूसरा भाग, प्रस्तुति जुबैर खान की है। 5:30 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम होगा। संध्या रंजन 6:35 पर। 7 बजे विशेष जयमाला कार्यक्रम होगा। आज का ये विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी ने, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा कार्यक्रम आप सुनेंगे यूनुस खान के साथ। इस कार्यक्रम में आज है तिरंगे की कहानी। हवा महल में सुनो कहानी श्रृंखला में पंच परमेश्वर कहानी का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। कहानी मुंशी प्रेमचंद की है, वाचक अमरकांत दुबे, प्रस्तुति विजय दीपक छिब्बर। 8:15 पर चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए। 10 बजे सुनिएगा छाया गी। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे आप सुनेंगे वंदे मातरम विशेष एपिसोड। आज दिन भर के कार्यक्रमों का ब्यौरा अभी आपने सुना, चरोखा में सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली।

रात्रि की निस्तब्धता में रावण के महलों में सीता की खोज करते हुए हनुमान उन्हें तो कहीं नहीं पाते, किंतु एक स्थान पर पूजा के लिए निर्मित हरि मंदिर तथा तुलसी के पौधों का समूह देखकर उन्हें परम आश्चर्य होता है। जगे हुए विभीषण के मुख से प्रभु नाम का उच्चारण सुनकर उनका आश्चर्य और भी बढ़ जाता है। ब्राह्मण वेशधारी को अपने सम्मुख पाकर आदर सत्कार के बाद विभीषण का प्रश्न है, क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं या स्वयं श्री राम हैं जो मुझे अपना दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? राक्षसों की नगरी में एक संत और राम भक्त? पवनसुत चकित होकर विभीषण की कथा सुनते हैं।

0: अब सुन रहे थे श्री रामचरितमानस कांड।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: संगीत सरिता के श्रोता मित्रों, वर्षा चौमासा श्रृंखला की आज की कड़ी में हम पुनः उपस्थित हैं। शुभा जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: ये लोक संगीत में, लोक शैली में लोक गायक भी झूला गाते रहे हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: और शायद वो लोक गायकों की ओर से मंदिरों की तरफ गया है या वहां से यहाँ आया है,
1: ये कहना तो संभव नहीं होगा क्योंकि ऐसा कुछ इतिहास पता नहीं चलता। मंदिर गांव में भी होते हैं, शहर में भी होते हैं, तो किसने किससे क्या लिया ये कहना मुश्किल होता। और अब तो ये भी होता है कि जो पहले मंदिरों में सेवा करते थे उन्हीं से सुन के या उन्हीं उसी परंपरा से शास्त्रीय कलाकार भी गाते हैं या लोक संगीत से प्रेरित होके, प्रेरणा लेके भी कुछ परिवर्तन करके भी शास्त्रीय संगीत गाने वाले जो गुणीजन है वो प्रस्तुति करते हैं।
0: लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ मिले हुए, एक दूसरे का रंग लिए हुए
1: जी, और ये कहना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी परंपरा पहले आई, किससे किसने क्या लिया, ये कहना जरा कठिन हो जाता है।
0: इसको राग का कुछ बंधन होता है, ये भी लोक धुनें होती हैं या
1: लोक धुनें होती हैं और कई बार पीलू नुमा ऐसे कुछ चीजें मिलती हैं जो कि पीलू का कुछ की कुछ कुछ स्वर संगतियां रखती हैं या कुछ याद आती है पीलू की, लेकिन फिर अलग भी हो जाती हैं। एक रचना मुझे याद आ रही है जो मुझे श्रीमती नैना देवी जी से मिली थी, लेकिन वो आपको लोक संगीत के संग्रहों में भी मिलेगी
0: जी।
1: मैंने मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है जो जिसमें लोक संगीत का एक संग्रह है, ऊंची अटरिया रंग भरी। उसमें कई प्रकार के लोकगीत आपको मिलेंगे और स्वरलिपि के साथ मिलते हैं, उसमें भी ये चीज मिलती है। और नैना जी से तो मैंने, जैसे ठुमरी के अंदाज में गाते हैं वो, मैंने ये चीज सीखी थी। और आमतौर पे कृष्ण कन्हैया से संबंधित बहुत सारा साहित्य मिलता है, लेकिन इसमें कहा गया है धीरे धीरे झुलाओ सुकुमारी सिया हो, तो सीता जी का वर्णन है इसमें
0: जी।
1: और झूले सरजू के तीर, पहिरे रेशम के चीर, नागिन बेनिया डुलावे, मतलब जो उनकी वेणी है जो वो बिल्कुल नागिन समान है।
0: हाँ।
1: तो जब झूले पे वो झूठा लेती हैं तो वो नागिन की तरह झूलती भी है उनकी वेणी। झूले अवध बिहारी संग सिया सुकुमारी, झोंका धीरे लगाओ सुकुमारी सिया हो, क्योंकि सुकुमारी है वो, तो ये नहीं कि जोरदार आपने पेंग बढ़ा दी। बहुत संभल के धीरे झोंका लगा के सुकुमारी सिया को झुला रहे हैं
0: जी।

0: शुभा जी, ये जो झूला होता है या झूले गाए जाते हैं, ये वर्षा काल में ही गाए जाते हैं, या जैसा आपने कहा कि कजरी के दंगल होते थे,
1: जी
0: वैसे तो झूले कहाँ और किस समय गाए जाते हैं?
1: ज्यादातर वर्षा ऋतु में तीज के आसपास पड़ते हैं झूले और उस समय गाए जाते हैं झूले।
0: और
1: जी।
0: इसके लिए जरूरी नहीं है कि इसके जो गीत हैं उसमें

0: वर्षा ऋतु का ही वर्णन हो, अलग अलग, जैसे अभी सिया सुकुमारी को झूलना है हिंडोले पे, पींग भरनी है, तो कोई और झूला जो ठेठ लोक शैली का?
1: जी, एक झूला मुझे याद आ रहा है, सखियां झूलन चली फूल बगियन घेराई कारी बदरियाना, और फिर उसमें कैसे श्रृंगार करके जाती हैं, क्योंकि महिलाएं झुंड में जाती हैं, सब लोग इकट्ठे होके झूलने के लिए इकट्ठे साज श्रृंगार करके निकलती हैं। बहुत सरल सी धुन है लेकिन बहुत खूबसूरत, वो आपको सुनाते हैं
0: जी।

0: बहुत आनंद आया शुभा जी। आज की कड़ी में हम श्रोताओं के साथ यहीं रुकते हैं।
1: जी
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगीतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक।

पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्र लेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर आयोजित ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सीधा प्रसारण। ये प्रसारण हम

0: This is Delhi. Please stand by for our next program. This is Akashvani. On the occasion of India's 80th Independence Day, we now take you over to Red Fort for the live broadcast of the flag hoisting ceremony and address to the nation by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. Our commentators are Shri Kaushik Roy.
1: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को संबोधन का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे. विवरण दे रहे हैं श्री जैनेंद्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी.
2: हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण ले, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी. जागो ग्राहक जागो. उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.
3: चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी. जागो ग्राहक जागो. उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.
2: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें. MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें. जागो ग्राहक जागो. उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.
4: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है.
5: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रतिवर्ष प्रति परिवार. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी.
6: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है. अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1-4-5-5-5.
5: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी.

0: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में न हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
1: ओवर टू रेड फोर्ट।
2: Vande Mataram and Namaskar. On the occasion of India's 80th Independence Day, I, Anoop Kaur, with my fellow commentators Kaushik Roy and Munish Jolly, extend a joyous greetings to all Indians who are tuned into this very special broadcast.
3: नमन ऐसे लाखों ज्ञात अज्ञात सेनानियों को, नमन राष्ट्रनायकों और राष्ट्र निर्माताओं को जिनके दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज भारत दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका है और पूरे विश्व में भारत की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। ऐसे राष्ट्रनायकों को भी नमन है आज के इस अवसर पर। गौरव के इन पलों में श्रोताओं, आप सभी को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। दिल्ली स्थित लाल किले के प्राचीर से मैं जैनेन्द्र अपने साथी कमेंटेटर्स नीलम मलकानिया, देवेंद्र त्रिपाठी और आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ आप सभी का इस विशेष प्रसारण में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं।
4: वंदे मातरम। लाल किले की इस ऐतिहासिक प्राचीर से आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 2026 की ये सुनहरी सुबह भारत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ने जा रही है। लोकतंत्र की जननी भारत भूमि आज पूरे गर्व और उल्लास के साथ अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रही है। कोटि कोटि कंठ आज वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय का उद्गार कर रहे हैं। देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और उत्साह के रंग में रंगे हुए भारतीय और भारतवंशी देश विदेश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि मुख्य आयोजन यहां लाल किले पर हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वयं राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए प्राचीर पर बने ध्वज स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। आकाशवाणी की तकनीकी और कार्यक्रम टीम यहां से आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए तैयार है। आज तो किले की छटा ही निराली है, जैसे ये स्वयं पर इठलाता हो कि यहीं से हर वर्ष हमारे इस राष्ट्रीय पर्व ने देश दुनिया को एक नई राह दिखलाई है। चहुं ओर भक्ति भाव और उत्साह का भाव परिलक्षित हो रहा है। किले की विशाल और शक्तिशाली दीवारें रंग बिरंगे पुष्पों और पताकाओं से सजाई गई हैं। स्वतंत्रता दिवस की बधाई वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर हैं, पोस्टर्स लगे हैं तो सुरुचिपूर्ण पुष्प सज्जा भी की गई है। इस बार के आयोजन की थीम है वंदे मातरम। हमारे इस राष्ट्रीय गीत के 150 गौरवशाली वर्षों को याद करते हुए आज वंदे मातरम की गूंज यहां बार बार सुनाई दे रही है। ज्ञान पथ के सामने किले की विशाल दीवार पर ताजे पुष्पों से वंदे मातरम लिखा गया है। प्रेरणादायी संवर्धन ये है कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गूंजेगा। किले की बाहरी दीवार पर लगे कटआउट्स परमाणु और अंतरिक्ष तकनीक में भारत की प्रगति को दर्शा रहे हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, मातृभूमि का वंदन करते हुए, नमन करते हुए, मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर अनेक प्रतीक चिन्ह हैं। हम आपको बताएं कि लाल किले की भव्य प्राचीर पर दोनों ओर दो बड़े बुर्ज हैं, इन्हीं से सटा हुआ हमारा कमेंट्री बूथ है। प्राचीर के ठीक बीच में कुछ ऊंचाई पर ध्वज स्थल है जो हमारे दाहिनी ओर है और इस समय ताजे फूलों से सजा हुआ है। ध्वज दंड को भी फूलों की लड़ियों से सजाया गया है। खुशनुमा मौसम में सुबह की मध्यम बहती मंद बयार के साथ ताजे फूलों की गंध हमारी उत्सव धर्मिता में शामिल हो रही है। आज वैसे भी तीज है, आप सभी को तीज पर्व की भी शुभकामनाएं। और तीज को माना जाता है बहुत ही शुभ अवसर, क्योंकि त्योहारों की शुरुआत इससे होती है। ऐसे में तीज के अवसर पर जब हमारा राष्ट्रीय पर्व है तो हमारे राष्ट्रीय पर्व ने अनेक पर्वों की गरिमा साथ ही बढ़ा दी है। ध्वज स्थल के दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है। लाल रंग की कुर्सियां करीने से सजी हुई हैं और उन पर आमंत्रित अतिथि गणों के नाम भी लिखे हैं। दाहिनी ओर की दर्शक दीर्घा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं तथा पद्म पुरस्कार विजेता अन्य अतिथि हैं। और बाईं ओर की जो दर्शक दीर्घा है उसमें केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति है। हम आपको बताएं कि यहां से हम देख सकते हैं उपस्थिति है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की, श्री पीयूष गोयल हैं, श्री नितिन नवीन यहां से हम देख सकते हैं, श्री हरदीप सिंह जी की उपस्थिति है, श्री मनसुख मांडविया जी हैं, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, डॉक्टर जयशंकर उपस्थित हैं, श्री गिरिराज सिंह जी हैं, श्री नितिन गडकरी जी हैं, श्री अश्वनी वैष्णव जी हैं, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधु जी की भी गरिमा में उपस्थिति यहां पर है। वर्दी पहने सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति है तो आकर्षक परिधानों में उल्लासित बच्चे भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं यहां से।
3: माननीय प्रधानमंत्री महोदय कुछ ही देर में यहां लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और जब वे प्राचीर के ऊपर बने ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले राष्ट्रगीत, पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब स्वतंत्रता दिवस के समारोह में राष्ट्रीय गीत की धुन और स्वर यहां पर गूंजेगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रगान होगा, राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। यहां आने से पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय राजघाट पहुंचकर वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद यहाँ के लिए वो प्रस्थान करेंगे। लाल किले के ये प्राचीर और ये पूरा परिदृश्य अद्भुत है। इस समय ईश्वर की कृपा भी है क्योंकि मौसम बहुत खुशनुमा है, आसमान घने बादलों से ढका हुआ है, इसलिए धूप की रश्मियां जो है वो धरती तक नहीं पहुंच पा रही है और लोग बहुत ही सुखद वातावरण में यहां बैठे हुए हैं। लगभग 27 डिग्री का यहां तापमान हम समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लगभग इतना ही यहां पर तापमान है। और पक्षियों के कलरों के साथ हल्की हल्की बयार के साथ जो पताकाएं लगी हैं वो लहरा रही हैं हवा के साथ, हमारे राष्ट्रीय ध्वज जहां जहां तक हमारी दृष्टि जाती है वहां तक लगे हुए हैं, वो भी लहराते हुए एक नई ऊर्जा का संचार हम सबके भीतर कर रहे हैं। वैसे भोर तो हर सुबह हर रोज होती है लेकिन आज की भोर सामान्य दिनों से बिल्कुल हटकर है क्योंकि भारतवासियों के लिए बहुत विशेष है। हो भी क्यों ना, आज ही के दिन तो 15 अगस्त को सन 1947 में दुनिया के मानचित्र पर स्वतंत्र देश के रूप में भारत का उदय हुआ था, वही भारत जिसके बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुदस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूभाग है उसे भारत कहते हैं और हम स्वयं को भारतीय कहते हैं। मंच की सज्जा को आपने जाना, अनुभव किया होगा, अपने अपने कल्पना में उसे सजीव भी किया होगा आपने। मंच के ठीक सामने जो ज्ञानपथ का क्षेत्र है वहां सबसे पहले हमारी दृष्टि जहां जाती है वो है राष्ट्रीय सलामी गारद जो वहां पर उपस्थित है ठीक सामने। इसमें सेना के तीनों अंगों और दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां शामिल हैं, प्रत्येक टुकड़ी में 32 सैनिक हैं और एक अधिकारी उसमें शामिल है। राष्ट्रीय सलामी गारद का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर लोकेंद्र सिंह, सेना की अपनी यूनिफॉर्म में वर्दी में सजे धजे गर्व से सीना तरा हुआ। सेना की टुकड़ी की कमान मेजर विकास यादव के हाथों में है जबकि लेफ्टिनेंट कमांडर अभिलाष नौसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं अपने सफेद यूनिफॉर्म में और पीकैप के साथ। वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर उमेश जी और एडिशनल डीसीपी विकास मीणा दिल्ली की टुकड़ी, दिल्ली पुलिस की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारे ठीक सामने उस राष्ट्रीय सलामी गारद के दाहिने हिस्से में वहां पर बैंड दल उपस्थित है जो राष्ट्रीय सलामी के समय राष्ट्रीय धुन बजाएगा और उसके पहले राष्ट्रगीत यहां पर बजाएगा। लेकिन उनके पीछे भी एक ऊर्जा का अनुभव, अद्भुत दृश्य हम देख पा रहे हैं श्रोताओं, क्योंकि ये इस बार का आयोजन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से प्रदर्शित कर रहा है जिसको हम यहाँ के कणकण में, यहाँ के पूरे वायुमंडल में हम उसको महसूस कर सकते हैं, यहाँ के वातावरण में महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जहां वंदे मातरम की गूंज यहाँ पर हम सबको उत्कंठा से प्रतीक्षा है, उस क्षण की जब पहली बार यहाँ से उसे बजाया जाएगा और गाया जाएगा, उसके साथ साथ बड़ी संख्या में युवा शक्ति यहाँ पर एक नई ऊर्जा का प्रतिबिंब लेकर उपस्थित है। और इसमें सामने जो दृश्य हम देख पा रहे हैं ज्ञानपथ पर, वहां लगभग 2500 की संख्या ऐसे विद्यार्थियों की है जो एनसीसी से संबंधित रखते हैं, एनसीसी के तीनों विंग से संबंधित रखते हैं और उसके साथ साथ हमारे माय भारत वॉलंटियर स्वयंसेवक भी इसमें शामिल हैं। और इन्होंने जो अधिसंख्य हैं, बहुसंख्यक हैं, उसमें उन्होंने सफेद रंग की वेशभूषा पहन रखी है ज्यादातर जिनकी संख्या है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा रंग है जो हमारे केसरिया रंग यानी हमारे बलिदान का भी प्रतीक है और उसी रंग के साथ, केसरिया रंगों की वेशभूषा के साथ उन्होंने यहां रचा है वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम इस बार, इस पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में गूंजेगा।
4: जी, उत्तर से लेके दक्षिणी लकीर तक, पूर्वा से लेके पश्चिमी समीर तक, सागरों से लेके नदियों के तीर तक, पर्वतों से लेके घाटियों के तीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम देश की संचयी शक्ति जो देश का इतिहास अपने आप में समेटे है एक अभिवादन भी है सम्मान भी है हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पहचान भी है ये दो शब्द जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में देशवासियों को एकजुट किया और आजाद भारत को भी सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है हम आपको बताएं साथियों वंदे मातरम जो यहां से हम देख रहे हैं एनसीसी कैडेट्स ने जो मानव संरचना में लिखा है बेहद प्रेरक बेहद खूबसूरत यहां से जान पड़ रहा है और साथ ही जो अन्य यहां पर बच्चे हैं वो उत्सुकता से एकटक इन बच्चों को निहार रहे हैं आज के आयोजन के लिए राजधानी में परिवहन व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं वैकल्पिक मार्गों के बारे में काफी पहले से ही जानकारी साझा की गई है कई दिन पहले से ही सभी प्रमुख चौक चौराहों पर महत्वपूर्ण भवनों पर रंग बिरंगी प्रकाश सज्जा की गई है साथ ही जन समुदाय की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है राजधानी को गति देने वाली मेट्रो भी हमारे इस राष्ट्रीय पर्व का आज हिस्सा है अपनी सेवा देते हुए आज सुबह 4 बजे से सरपट दौड़ रही है यहाँ आयोजन स्थल के आसपास क्लॉक रूम व्हीलचेयर और पेयजल की व्यवस्था की गई है लगभग 23,000 आगंतुकों को इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है अपनी सजीली सैन्य वर्दी पहने अधिकारी हैं आकर्षक परिधानों में यहाँ पर सामान्य जन हैं एनसीसी कैडेट्स हैं माई भारत स्वयं सेवकों ने जो संरचना बनाई है हमने आपको बताया कि बेहद यहाँ पर बनाई है हमने आपको बताया कि बेहद यहाँ पर आकर्षक है सीढ़ीदार व्यवस्था में इनके दोनों ओर दर्शक दीर्घा बनाई गई है एक ओर विद्यालय के छात्र छात्राएं अपने शिक्षकों के साथ बैठे हैं अन्य आगंतुक हैं तो दूसरी ओर भी सीढ़ीदार व्यवस्था में कुर्सियां करीने से लगाई गई हैं हल्के जामुनी रंग की दरी पर हरे रंग की कुर्सियों पर आगंतुक आज के अवसर के लिए विशेष तौर से हमारे तिरंगे के जो तीन प्रधान रंग है उनके परिधान पहने हुए हैं आज का ये आयोजन अलग अलग क्षेत्रों में हमारे युवाओं की उपलब्धि

0: को भी उजागर कर रहा है। इंटरनेशनल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ओलंपियाड में मेडल विजेता युवाओं को भी आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। नेशनल इनोवेशन कार्यक्रम से जुड़े युवा हैं, पीएम इंटर्नशिप योजना के छात्र हैं। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित बेहतरीन स्टार्टअप के तहत चुने गए श्रेष्ठ प्रतिभागी हैं, माई भारत के स्वयंसेवक हैं। दिल्ली के विभिन्न विद्यालयों में हुई परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थी भी इस समय यहाँ बैठे हैं। इस अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दिल्ली में रहने वाले 1500 से ज्यादा ऐसे लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो इस समय अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बैठे हैं और लघु भारत का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक खास बात यह है कि हमारी जल शक्ति का सम्मान रखते हुए इस बार जो प्रांगण घेरे हैं, एनक्लोजर्स हैं, इनके नाम प्रमुख झीलों के नाम पर रखे गए हैं। भीमताल, चंद्रताल, दूध सागर, रोबिंद्र सरोवर, रुद्र सागर, चिलिका, हाफलोंग नाम रखे गए हैं। हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो भारत जो समृद्ध है, जो संपन्न है, साथ ही जो संकल्पित है आगे बढ़ने के लिए और साथ ही विकसित भारत 2047 का लक्ष्य लिए, जिसमें हर उम्र का देशवासी अपनी ओर से योगदान करने के लिए तैयार है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये स्वतंत्रता जिसने पराधीन भारत में जब देशवासियों को पुकारा तो अपनी जान की परवाह न करते हुए देशवासी जुट गए कि भारत माँ को हमें परतंत्रता की बेड़ियों से आज़ाद करवाना है। और अब यही स्वतंत्रता हमें ये प्रेरणा देती है कि लगातार आगे बढ़ते हुए हम जहाँ हैं, जो कर सकते हैं, देश प्रेम मन में रखे हुए, संजोए हुए, देश को विकसित करने की ओर लगातार बढ़े, अपना योगदान करें।
1: निश्चित रूप से, और इसीलिए भारत के भविष्य को लेकर जो संकल्पना है, विजन है, विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस गति से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2047 तक यानी 100 वर्षों के स्वतंत्र भारत की यात्रा को पूरा करते हुए एक विकसित भारत के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, उसका भी यहाँ दृश्य हमें साफ नजर आता है। यहाँ लाहौरी गेट पर प्रधानमंत्री महोदय का आगमन कुछ ही पलों में होने जा रहा है। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और साथ ही रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह वहां पर उपस्थित हैं। साथ ही दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग भी वहां पर उपस्थित हैं, जो वहां प्रधानमंत्री महोदय की अगवानी करेंगे और वहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय को सलामी दी जाएगी। और उसके बाद सलामी गारद का वो निरीक्षण करने के बाद लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और आगे का जो कार्यक्रम है वो यहां आरंभ होगा। इस रूप में बिगुल वादन के साथ इस बात का संकेत मिल चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के वाहनों का काफिला यहां प्रवेश कर रहा है। आइए आपको आगे के विवरण के लिए सीधे लिए चलते हैं देवेंद्र के पास, जो लाहौरी गेट पर उपस्थित हैं।
2: धन्यवाद जैनेन्द्र, मैं देवेंद्र त्रिपाठी आप सभी श्रोताओं का लाल किले के ऐतिहासिक प्रांगण में लाहौरी गेट से स्वागत करता हूं। इस द्वार के समक्ष होने वाली सभी गतिविधियों की जानकारी आपसे साझा करूंगा, जहां माननीय प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस की संयुक्त सलामी दी जाएगी। प्रधानमंत्री सम्मान गारद का निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ऐतिहासिक 13वीं बार ध्वज फहराएंगे और देश और दुनिया को संबोधित करेंगे। आजादी का ये दिन 15 अगस्त भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित, ना जाने कितने रक्तों से रंजित। ये स्वाधीनता का ही उत्सव नहीं, ये अवसर है मां भारती के वीर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी, उन्हें ये विश्वास दिलाने का कि आपके बलिदानों का ऋण हम मां भारती की सेवा करके चुकाएंगे। ये वीर शहीदों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है, जिनके त्याग और बलिदान से ये प्रतिफल आज हमें मिला। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला प्रांगण में प्रवेश कर रहा है और यहाँ का पूरा परिदृश्य नई ऊर्जा से ओतप्रोत। माँ भारती का वंदन और वीर बलिदानियों का अभिनंदन करने के इस पावन आयोजन में उत्साह, उल्लास और श्रद्धा का भाव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन लाहौरी गेट के समक्ष सलामी मंच पर हो रहा है, जहां उनकी अगवानी के लिए उपस्थित हैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, माननीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। श्रोताओं, सलामी मंच के सामने तीनों सेनाएं और दिल्ली पुलिस तथा नौसेना बैंड वादकों का दस्ता, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सलामी देने के लिए सभी मुस्तैद। दस्तों के पृष्ठभाग में लगा है तीन रंगों में बैनर, जिस पर झलक है विकसित भारत और विविध भारत की। अंतर सेना सम्मान गारद का जिम्मा इस बार थल सेना को दिया गया है, कमान है लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों और सलामी मंच के दोनों ओर खड़े हैं कैप्टन विकी मेहता और प्रथम नेगी। प्रधानमंत्री के वाहनों का काफिला पहुंचा है सलामी मंच के पास और माननीय प्रधानमंत्री अपने वाहन से उतरते हुए लाल रंग का साफा और ब्राउन यानी भूरे रंग की सदरी, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा माननीय प्रधानमंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा सचिव का अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव जीओसी दिल्ली एरिया राजेश सेठी से परिचय कराते हुए अब माननीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं सलामी मंच की ओर, जहां उन्हें अंतर सेना पुलिस सम्मान गारद सलामी देगी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के हाथों में। संयुक्त कमांडर के नेतृत्व में टुकड़ों की सलामी। भारतीय सैन्य बलों के पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन लाल किले की इस प्रांगण में। अब संयुक्त कमांडर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री जी से सम्मान गर्व टुकड़ियों का निरीक्षण करने के लिए आग्रहपूर्ण अनुमति लेंगे। सदैव वे कदमों से हाथों में तलवार लिए और जोश भारतीय सैन्य बलों का जो झलक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सहमति दी और सलामी मंच से नीचे उतरते हुए मंच के बाईं ओर से बिछा है रेड कार्पेट, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री के स्वागत में अपनी लालिमा से इस स्थल को और गौरव प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री के दाईं ओर दो कदम पीछे हाथों में तलवार और भारतीय सैन्य बलों का शौर्य लिए चल रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं नौसेना बैंड दस्ते के पास। बैंड मास्टर डी सलवन के नेतृत्व में नौसेना का ये बैंड आनंद लोके की धुन बजाएगा, जिसे तैयार किया बैंड मास्टर जे रोड्रिक्स ने, और बच्चों की आवाजें आप सुन पा रहे हैं। यहाँ मौजूद उपस्थित बच्चे माननीय प्रधानमंत्री का अपनी आवाज के साथ स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री के अब का आगमन हुआ है थल सेना की टुकड़ी के पास। 25 जवान नेतृत्व मेजर आदित्य शर्मा के हाथों में। प्रधानमंत्री के समक्ष पूरी नम्रता लेकिन अभिमान का आभामंडल देश के वीर सैनिकों के मुख पर। विश्वास दिलाते हुए मां भारती की रक्षा में सदैव तत्पर। नौसेना की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर अरुण कलमाड़ी के हाथों में। तीनों सेनाएं देशवासियों को विश्वास दिलाती हुई, हम है भारत के प्रहरी, हम है मां भारती के सेवक और रक्षक। और अब प्रधानमंत्री वायुसेना के दस्ते के समक्ष 24 जवानों की टुकड़ी भारतीय वायुसेना का प्रतिनिधित्व 80वें स्वतंत्रता दिवस पर करती हुई कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार के हाथों में। दिल्ली पुलिस का नेतृत्व एडिशनल डीसीपी विनीत कुमार कर रहे हैं। सभी ने अपने भावों से माननीय प्रधानमंत्री को विश्वास दिलाया मां भारती के रक्षक सदैव तत्पर। और अब लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह परेड कमांडर माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद प्रकट करते हुए। और अब लाहौरी गेट से माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं समारोह स्थल लाल किले की प्राचीर की ओर, जो 1947 से हर वर्ष केंद्र बना है भारत के स्वाधीनता उत्सव का। प्रधानमंत्री के साथ हैं जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी। लाहौरी गेट, लाल किले की प्राचीर और दोनों गुंबद साक्षी हैं भारत के स्वाधीन होने, विकासशील से विकसित बनने के अमृतकाल के। स्वाधीन 79 वर्षों में भारत ने अपने विकास की लंबी यात्रा तय की है श्रोताओं। 2026 का भारत विश्व पटल पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। भारत के विचार दुनिया के लिए मायने रखते हैं, जो समाधानों के लिए आज भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि भारत की नीतियों के मूल में है वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श और भारत का उत्कर्ष। विकास भी और विरासत भी भारत की विचारधारा, और भारत हमारा प्यारा भारत बढ़ रहा आगे। एक तरफ अपने हृदय में संजो रहा अपने पूर्वजों के बलिदानों को, तो दूसरी ओर माथे पर चंदन की तरह बिठा रहा युवाओं को, जो भविष्य के भारत की गाथा लिखने को तत्पर। एक ओर इंडियन नॉलेज सिस्टम का सम्मान, दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्घोष भी। 80वां स्वाधीनता दिवस अवसर है अपने पूर्वजों को प्रणाम करने का, उनके प्रति श्रद्धावनत होने का, जिन्होंने तन मन और धन से मां भारती की सेवा की। 21वीं सदी का सबल भारत वीर बलिदानियों का ऋणी है, जिनके समर्पण और बलिदान से हमें आज का यह सौभाग्य मिला। और श्रोताओं, मुख्य समारोह स्थल की ओर चलते हैं लाल किले की प्राचीर पर, जहां 150 वर्ष गौरवशाली 150 वर्ष वंदे मातरम के पूर्ण होने के अवसर पर इस बार पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की धुन आप सुनेंगे। उसके बाद ध्वज फहराया जाएगा और फिर राष्ट्रगान होगा और प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। और विवरण के लिए हम लाल किले की प्राचीर कमेंट्री बूथ पर लिए चलते हैं अपने साथी कमेंटेटर नीलम और जैनेन्द्र के पास।
0: धन्यवाद देवेंद्र। साथियों, कुछ ही देर में ये पावन और ऐतिहासिक क्षण आएगा जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर ध्वज फहराने के लिए लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल की ओर आएंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ध्वज स्थल पर पहुंचेंगे तब भारतीय सेना का बैंड वंदे मातरम की धुन बजाएगा। अपने राष्ट्रगीत के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होंगे। प्रधानमंत्री जी भारत माँ की अस्मिता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को जब

0: दोनों के सम्मान में हम सावधान मुद्रा में खड़े होते हैं। इस तरह से अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को, राष्ट्र को प्रेरणा देने वाले इन गीतों को हम सम्मान देते हैं। मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, भगत सिंह की फांसी, मैं बापू की अंगड़ाई हूँ, हूँ जलियांवाला बाग भी मैं, पानीपत का पानी हूँ, ऊधम की पिस्तौल भी मैं, झांसी वाली रानी हूँ, रंग दे बसंती चोला मैं, गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हूँ, चेतक की हुंकार में ही मैं, राणा प्रताप की शान हूँ, मैं छुपा बोस किनारों में, मैं जंग लगी तलवारों में, मैं इनकलाब की बोली हूँ, आजाद की आखिरी गोली हूँ, मैं भारत का हर भाव चंगा हूँ, मैं सबका पूज्य तिरंगा हूँ। इसी तिरंगे के सम्मान में पूरा आयोजन यहाँ का हो रहा है और यहाँ पर जो सलामी गारद है वो भी जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा उस समय राष्ट्रीय सलामी देगी
1: निश्चित रूप से, और सभी को उस पल की प्रतीक्षा है। श्रोताओं, लाल किले के प्राचीर से जब हमारी दृष्टि सामने इस पूरे क्षेत्र की तरफ जाती है, चांदनी चौक की तरफ जाती है, तो अनायास ही बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने अपने आप सजीव होने लगते हैं जो हमारे पूरे राष्ट्र के लिए, देश के लिए संघर्ष का एक बहुत कठिन दौर रहा है जिससे देश गुजरा है। धर्मांधता और बलपूर्वक धर्मांतरण की वो विभत्स और क्रूर घटनाएं दृश्य आंखों के सामने सजीव होने लगते हैं। आपको मालूम ही है लाल किले के प्राचीर के सामने चांदनी चौक में ही स्थित है गुरुद्वारा सीसगंज। सन 1675 में 24 नवंबर की वो तारीख थी जब यहीं हमारे नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। गुरु साहब ने बलिदान से पहले, गुरु साहब के बलिदान से पहले उनके शिष्य भाई मतीदास, भाई दयाला और भाई सतीदास के ऊपर भी बर्बरता भला कौन भूल सकता है। देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में भी ये दिल्ली स्थित चांदनी चौक एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक केंद्र रहा है। 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए ब्रिटिश सेना ने यहाँ की मुख्य सड़कों और कोतवाली के आसपास के क्षेत्रों में अपना दमन चक्र चलाया। क्रांतिकारियों को खुलेआम फांसी दी गई। 1857 में आपको याद होगा ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाले जिन्हें दिल्ली का आयरन वॉल कहा जाता था, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 में 32 साल की मात्र उनकी उम्र थी तब उनको इसी चांदनी चौक में फांसी पर लटकाया गया था खुले में। 23 दिसंबर 1912 को जब ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली को राजधानी बनाने के उपलक्ष्य में इसी चांदनी चौक से होकर शाही जुलूस निकाल रहा था तब यहाँ घंटाघर के पास क्रांतिकारियों ने उस पर बम फेंका और उस हमले की योजना राजबिहारी बोस ने बनाई थी। उसमें मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद जी और बसंत कुमार विश्वास जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। बाद में बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी जबकि राजबिहारी बोस वेश बदलकर देश से बाहर निकल गए और जापान पहुंचकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की और उसके आगे का इतिहास आप सबको विदित है। सन 1915 से 1934 के बीच महात्मा गांधी ने चांदनी चौक में कई ऐतिहासिक बैठने की थी। यहाँ की मारवाड़ी पब्लिक लाइब्रेरी हो, गांधी मैदान हो, ये सब क्रांतिकारियों और देशभक्तों की बैठकों का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अंग्रेजों के दमनकारी कानून रॉलट एक्ट के को लेकर जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तब 1919 में ही स्वामी श्रद्धानंद जी ने चांदनी चौक के घंटाघर पर पुलिस की संगीनों के सामने खड़े होकर निडरता से रॉलट एक्ट का विरोध किया था। कोतवाली के सामने का जो क्षेत्र है इसी चांदनी चौक की एक गली में क्रांतिवीर स्वतंत्रता संग्राम के पर्चे और बुलेटिन चुपके चुपके छापा करते थे और पूरे शहर में बांटकर स्वतंत्रता की अलख जगाया करते थे। यहाँ चाहे वो कटरा नील हो, खारी बावली हो, दरीबा कला हो, इन सभी क्षेत्रों के व्यापारी और आम नागरिक भी इस लड़ाई में शामिल थे। और इस समय जबकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ जब शुरू होगा यहाँ का मुख्य आयोजन और वंदे मातरम के स्वर गूंजेंगे उसकी उत्कंठा में और उल्लास में बहुत बड़ी संख्या में जो यहाँ उपस्थित जनसमुदाय है, विशेष रूप से बच्चे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं, प्राचीर की तरफ देख कर उनके उत्साह और उमंग की अभिव्यक्ति उनके चेहरे पर साफ नजर आती है और जो पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं उनके स्वर, उनकी पहचान और उनकी आभा जो व्यक्तित्व की है वो भी बहुत आकर्षित कर रही है।
0: बिल्कुल जानेंद्र जी, और मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो बार बार टुकुर टुकुर निहार रहे हैं यहाँ ध्वज स्थल की ओर, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पर पूरे विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय और सम्मानित प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। साथियों, आज का दिन हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए भी विशेष तौर पर मनाते हैं। विशेष तौर पर आज का दिन हमें ये अवसर देता है

क्योंकि हम जानते हैं तुम न समझो देश को स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। स्वतंत्रता संग्राम के चिर परिचित सेनानियों के साथ ही गुमनाम नायकों के प्रति आज कृतज्ञता का भाव है, तो आजाद भारत के उन वीरों का गुणगान भी है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में देश का नाम रोशन किया है। मंगल पांडे की पहली चिंगारी से लेकर रानी लक्ष्मीबाई का दम में साहस, सब कुछ हमें प्रेरित करता है। और हम देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है इस समय ध्वज स्थल पर।

0: माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं।
1: राष्ट्रीय ध्वज।

0: और इस समय आकाश आकाश में जो स्वर हमें सुनाई दे रहे ध्वनि सुनाई दे रही है वो उन हेलीकॉप्टर्स की है जो पुष्प वर्षा करते हुए लाल किले के प्राचीर के ऊपर से गुजर रहे हैं और लोगों की निगाह उसी आसमान की तरफ है। एक हेलीकॉप्टर ये मी 17 हेलीकॉप्टर से भारतीय वायुसेना के जिसमें एक हेलीकॉप्टर में राष्ट्रीय ध्वज उसमें दिखाई दे रहा है हवा के साथ अटखेलियां करता हुआ और दूसरे हेलीकॉप्टर में नीचे लिखा है वंदे मातरम और पुष्प वर्षा करते हुए ये सभी यहाँ से हमारी बाई तरफ से दाहिनी तरफ आसमान में आगे बढ़ते हुए बच्चों के बीच खासतौर पर उल्लास और फूलों की पंखुड़ियां यहाँ चारों तरफ बिखरी दिखाई देती है। खासतौर पर जो सफेद वेशभूषा में बच्चे बैठे हुए हैं वहाँ ठीक सामने उनके कपड़ों पर सफेद रंग पर जो पुष्प है पंखुड़ियां है पीले रंग की वो बहुत ही खूबसूरत बहुत ही आनंदित करने वाली लग रही है।
1: जी और जनेंद्र किस तरह से बच्चे उल्लासित होकर प्रधानमंत्री जी को भी निहार रहे हैं और उनकी कोशिश है कि एक दो पंखुड़ी को वो कैच कर पाए और ये पंखुड़ियां इस समय हमारे बूथ की ओर भी आई। बेहद रमणीय दृश्य है ये।
0: जी और राष्ट्रीय सलामी गारद अब राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद और राष्ट्रीय सलामी देने के बाद यहाँ से प्रस्थान करती हुई सेना कमांड कुमायूं रेजिमेंट सेंटर जो इसमें शामिल थे जिसने आज पहली बार ये इतिहास रचा गया स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में पहली बार यहाँ राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन बजी लेकिन सस्वर यहाँ उपस्थित हजारों लोगों ने उस गीत को अपने मुखारबिंदु से गाया है चाहे वो प्राचीर के ऊपर बैठे हुए हमारे सभी अतिथियों दर्शक दीर्घाओं में या ठीक सामने हमारे बाईं और दाहिनी तरफ बड़ी संख्या में जो दर्शक दीर्घा में हजारों की संख्या में देश भर से पधारे हमारे दर्शक हैं विशेष मेहमान हैं दिल्ली वासी हैं अलग अलग प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों के वासी हैं उन सबने अपने वेशभूषा में जिसमें बहुत सारे लोग हैं पारंपरिक वेशभूषा में खड़े होकर बड़े गर्व के साथ इस बार पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया। इस समय परेड कमांडर मेजर लोकेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलामी गारद जो है हमारी दाहिनी तरफ जो उनका स्थल है इकट्ठे होने का वहां आगे की तरफ लाल किले के प्राचीर से ज्ञानपथ से होते हुए यहां से प्रस्थान करते हुए और आतुरता से यहां उपस्थित हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमुदाय देश के 145 करोड़ जनता और दुनिया भर के लोग आतुरता से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाल किले की ये प्राचीर जिसने पिछले 12 वर्षों में विकास के नए नए प्रतिमानों का बीजारोपण जहां से हुआ है लाल किले के प्राचीर से और इस प्राचीर से विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचने और जन जन की प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर मिला है। राष्ट्र को जब प्रधानमंत्री महोदय संबोधित करते हैं तो उसे सभी सुनते हैं सभी प्रेरणा लेते हैं सभी उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि आज राष्ट्र की प्रति सोच राष्ट्र के प्रति हमारी संवेदनाएं अपनी गहनता के शिखर पर हैं क्योंकि हमें आगे बढ़ना है विकसित भारत बनना है। श्रोताओं
2: मेरे प्यारे देशवासियों आज हम सब 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हर दिलों की धड़कन वंदे मातरम के नाद से गूंज रही है। आज हर घर तिरंगा है हर मन तिरंगा है और देश उत्साह और उमंग के साथ नए संकल्पों को लेकर के आज आगे बढ़ रहा है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग बलिदान की पराकाष्ठा की। अपने तप त्याग और बलिदान से आजादी के एकमात्र लक्ष्य को लेकर के अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। पूज्य बापू समेत सभी स्वातंत्र सेनानियों को बलिदान की महान परंपरा जगाने वाले महान क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज जो इस समारोह में उपस्थित है उन सब के लिए आज एक ऐतिहासिक पल भी है। आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं तो इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ का प्रकोप रहा, भूस्खलन का प्रकोप रहा, अनेक परिवार प्रभावित हुए। उनके दुख दर्द को हम भली भांति अनुभव करते हैं। पीड़ित परिवारों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम और पूरा देश उनके साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है तब अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है जब अपने सपनों अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। मेरे देशवासियों, अब छोटे सपनों से चलने वाला नहीं है, हमें बड़े सपने, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को भी विस्तार देते हैं, हमारी सोच की क्षितिज को विस्तृत करते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे संकल्प भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा है, दृढ़ संकल्प के साथ देखा है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए देखा है। और वो सपना है, जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे, 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं, और उसी का परिणाम है कि इतने कम समय में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले हैं। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल फॉल में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। साथियों, देश आजाद हुआ, बहुत सारे सपने लेकर के आजाद हुआ, लेकिन हम गति नहीं पकड़ पाए, रफ्तार नहीं पकड़ पाए। होती है, चलती है, अरे हो जाएगा, देखा जाएगा, उसी में खोए रहे। 2014 तक आते आते तो पूरे विश्व ने हमें फ्रेजाइल फाइव के उस में डंप कर दिया था। ऐसे समय पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। अरे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना हुआ, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी, डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी, डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 गुना बढ़े, सामान्य मानवीय की सुविधाओं की तरफ भी हमने उतना ही गंभीरता से काम किया। हर साल औसतन 15 गुना ज्यादा तेजी से हमने नल से जल कनेक्शन दिए, हर साल औसतन 6 गुनी ज्यादा रफ्तार से लोगों को गैस कनेक्शन दिए, हर साल 4 गुनी रफ्तार से गरीबों के लिए टॉयलेट बनाने का काम किया, हर साल 3 गुना ज्यादा तेजी से गरीबों को घर देने का काम किया। देश ने गवर्नेंस में भी बहुत बदलाव लाया, हजारों की संख्या में कंप्लायंसेस खत्म किए, सैकड़ों की तादाद में पुराने कानून खत्म किए। पिछली शताब्दी के कानूनों से 21वीं शताब्दी की मार्च नहीं हो सकती है। हमने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेट्रो का विस्तार किया, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकत दी, जिस स्पीड से काम, जिस स्केल पर काम किया, ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले 1 दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। और इसलिए बीते वर्षों में हमारा कन्विक्शन रहा है कि भारत को हमें अब दूसरे देशों पर निर्भर रह करके नहीं जीना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। दुनिया में बहुत कुछ मिलता है, सस्ता मिलता है, जल्दी मिल सकता है, लेकिन उससे हमारा सामर्थ्य तैयार नहीं होता, न हमारे सामर्थ्य की कसौटी होती है। और इसलिए हमें भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, अपने हितों की सुरक्षा हमें खुद को करनी है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बहुत दृढ़ता के साथ हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, इन सारे क्षेत्रों में आज हर भारतीय का मन जुड़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सेमीकंडक्टर का। देश आजाद होने के बाद विश्व में तो सेमीकंडक्टर की चर्चा हो चुकी थी, हमारे यहां भी बातें होती थी, लेकिन सेमीकंडक्टर का कोई बड़ा प्लान हम आगे नहीं बढ़ा पाए। और आज स्थिति क्या है? आज की डिजिटल दुनिया में, आज की टेक्नोलॉजी में चिप का महत्व हम समझते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है। और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लान, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लान, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वह एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, वैसे ही ये चर्चा क्रिटिकल मिनरल की हो रही है। पूरी टेक्नोलॉजी क्रिटिकल मिनरल पर निर्भर है। भारत इसमें भी अपने आप को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है। कि क्रिटिकल मिनरल का लक्ष्य साझा किया जाए, नेशनल क्रिटिकल मिनरल ये हमने लॉन्च किया। बजट में क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर की हमने घोषणा की है। कई देशों के साथ एग्रीमेंट हो रहे हैं, विश्व के कई देश अब इस क्रिटिकल मिनरल के विषय में भारत के पर भरोसा करने लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे सेमीकंडक्टर की बात हो, क्रिटिकल मिनरल की बात हो, वैसे ही जिस टेक्नोलॉजी की दिशा में हम जा रहे हैं, दुनिया जा रही है, उसमें एनर्जी का महत्व और बढ़ता चला जा रहा है। अब एनर्जी के बिना भी नई दुनिया को चलाना मुश्किल है और इसलिए हमें चीप हो, एआई हो, डेटा सेंटर हो, हमें बहुत बड़ी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तरफ जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इसी एक दशक में हम 5 नए न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। इस वर्ष भारत ने फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करके एक अहम पड़ाव पार किया है और इसके कारण परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमें एक बहुत बड़ा सफलता का कदम हमने रखा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार संसाधनों की कमी के कारण देश रुकता नहीं है, लेकिन रुकने का कारण सोच की सीमाएं होती है। जब सोच बंद जाती है, सीमाओं में सड़ने लग जाती है, तब हम अपने सामर्थ्य को भी पहचान नहीं पाते हैं। देश को आज कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ रहा है और हमारी गलत सोच के कारण है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमने समुद्री तट पे 99% हमारा समुद्री तट का पूरा हिस्सा ऐसी सोच के कारण नो गो एरिया घोषित करके रखा। हमने ही समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था, हमें फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा की थी और पिछले दिनों हमने 85,000 करोड़ रुपए इस काम के लिए आवंटित करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, एनर्जी सिक्योरिटी, इसका मैंने कहा कि हमें अल्टरनेट स्रोतों की तरफ भी पूरी शक्ति लगाना बहुत जरूरी है और इसलिए ऊर्जा का सही इस्तेमाल बढ़ाते हुए भारत इसी दिशा में आज तेजी से काम कर रहा है। 2014 से पहले, मतलब आज से 12 साल पहले, हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था, आज 2.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। 12 वर्ष पहले देश में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी सिर्फ 2 गीगावाट थी, 2 गीगावाट, आज 160 गीगावाट हमने प्राप्त किया है लक्ष्य। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक और जानकारी देता हूं, हमने इसका लाभ देश के मध्यम वर्ग को, सामान्य परिवार को मिले इस तरफ भी उतना ही ध्यान केंद्रित किया। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना चालू की और आज मुझे संतोष है कि इतने कम समय में 50 लाख घरों का सोलर एनर्जी का काम हम आंकड़ा पार कर चुके हैं, तेजी से चल रहा है और इसके कारण हजारों घरों का बिजली बिल जीरो हो गया है, हजारों घर अपनी बिजली का उपयोग करने से अतिरिक्त बिजली आज बेच करके कमाई कर रहे हैं। हर परिवार को हम इस काम के लिए 80,000 रुपया सरकार की तरफ से एक एक परिवार को मदद दी जा रही है, तब जाकर के हम इस काम को पूरा कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको जानकर के हैरानी होगी, ये जो हमारी रेलवे है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हमारे देश में 1925 में शुरू हुआ था। 1925 में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन 90 साल में, 1925 से लेकर के 90 साल में सिर्फ 30% रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था, यानी 90 साल में 30%। हमारी रफ्तार देखिए, लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए, हमें इन एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण डीजल जो हमें बाहर से लाना पड़ता है उसकी बचत हुई, बिजली से हमारी ट्रेनें चली, पर्यावरण को फायदा होने लगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम यहां तो नहीं रुके हैं, हम दुनिया के अंदर पीछे रहना नहीं चाहते। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी, भारत ने ईंधन का एक नया क्षेत्र को भी छू लिया है, देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है। और मुझे खुशी है, ये सबसे लंबी ट्रेन है और सबसे ताकतवर ट्रेन है, और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है। प्यारे देशवासियों, पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। पिछले 10-12 वर्ष में कितने संकटों का सामना करना पड़ा, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया, सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी। कोरोना से बाहर निकले, युद्ध की विभीषा की खबरें आने लगी, कहीं यूक्रेन, पश्चिम एशिया, हर जगह पर तनाव का माहौल, और पता नहीं भविष्यवेत्ताओं ने तो न जाने क्या क्या घोषणाएं कर दी थी। देश को डराना, देश को भयभीत रखना, देश को चिंतित रखना, इसी में कुछ लोगों को आनंद आता है। वैक्सीन नहीं मिलेगी, कोविड में लोग बचेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, ईस्ट एशिया का क्राइसिस आया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा, सारी दुनिया भर के अफवाहें फैला करके भारत के लोगों को भयभीत करने का, डराने का, चिंता के अंदर डुबो देने का कुछ लोगों को आनंद आ रहा था। लेकिन देश ने देख लिया कि पिछले 10-12 साल की सुविचारित योजनाएं रंग ला रही है और हम इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था, सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट के समय में ये सारी चीजें काम आ गई और आज देश में गैस भी है, पेट्रोल भी है, यूरिया भी है। हम अपनी ताकत के ऊपर खड़े हो रहे, चल रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, दुनिया के इन संकटों का प्रभाव हर किसी पर हुआ, हम भी अछूते नहीं। यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपये पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपये में यूरिया का बोरा हमें मिलता है, वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, एक समय था जब मैं आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था तो कुछ लोग एयर कंडीशन चैम्बर में बैठ करके सोचने वाले लोग हमें बता रहे थे ग्लोबलाइजेशन का क्या होगा, लेकिन दुनिया देख रही है कि पिछले एक दशक में ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन बोलना ही बंद कर दिया है। जहां से ग्लोबलाइजेशन की आवाज आती थी वो बंद सुनाई नहीं देती है। दुनिया का हर देश अपनी अपनी संभालों के मिजाज की तरफ गया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस संकट के कालखंड में कुछ लोगों ने अपना रुतबा दिखाने के लिए संसाधनों को वेपनाइज करने का खेल खेला है। दुनिया अपने पास जो कुछ भी है उसको वेपनाइज करने में लगी है, संसाधनों का वेपनाइज, रिसोर्स का वेपनाइज, पेट्रोल, डीजल, फर्टिलाइजर्स, दवाइयां, टेक्नोलॉजी की चिप्स। इतना ही नहीं, भूभाग को भी वेपनाइज किया जा रहा है। ऐसे समय अगर हम आत्मनिर्भर के मंत्र को लेकर 10 साल सही दिशा में न चले होते तो हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला कैसे करते। और हमारी तैयारियां निरंतर बढ़ती जा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, दूसरी तरफ आज भारत का प्रोफाइल पूरी तरफ बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के लिए एक स्वीकृत और सम्मानीय देश के रूप में बन रहा है। भारत के पास स्थिर पॉलिटिकल मैंडेट है, स्थिर सरकार है, भारत का वाइब्रेंट लोकतंत्र है, भारत का मजबूत न्याय तंत्र है और हम सबको दिशा देने वाला भारत का संविधान है। और अब दुनिया हमारे इन सामर्थ्य को पहचानने लगी है और इसलिए 2014 के बाद दुनिया करीब करीब 40 देशों के साथ हमारा एफटीए एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखिए कितना बड़ा अवसर आया है। लेकिन मैं ये जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं ये एक बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए खास करके मैं मेरे एमएसएमईस को कहना चाहूंगा कि हमें इस मौके को छोड़ना नहीं है। दुनिया में हमें पहुंचना है, भारत के उत्पाद की हर चीज विश्व के बाजार में पहुंचे। और हमारा टेक्सटाइल हो, हमारी मशीनरी हो, हमने दवाइयां हो, हमने मौका छोड़ना नहीं है। लेकिन वैश्विक जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर को हमें पार करना होगा। हमें दुनिया से जो मिलता है उसे अच्छा देना पड़ेगा, दुनिया में जो मिलता है उसे सस्ता देना पड़ेगा।

और पंजाब के लुधियाना से लेकर के तमिलनाडु के तिरुपुर तक हमारा टेक्सटाइल सेक्टर दुनिया में पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, केरलम से लेकर के गुजरात और तमिलनाडु से लेकर के बंगाल, ये हमारा समुद्र तट, हमारे मछुआरे भाई बहन आज इस एफटीए के कारण हमारे श्रीप यानी झींगा उसके एक्सपोर्ट की बहुत संभावना बनी है। हमारे सी फूड की दुनिया में पहुंच बनने की संभावना पड़ी हुई है। और इसे मैं चाहूंगा हमें इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए हम आगे चलते हुए हम इन कामों को पार करने के लिए प्रयास करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने जो भूमिका आपके सामने रखी है उसके पीछे 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है और अगला एक चौथाई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम रुक नहीं सकते हैं, हमारी गति नहीं रुक सकती है, हमारी दिशा तय हो चुकी है, हमें प्राप्त करके रहना है। और इसके लिए हमें अपना वर्क कैपिटल बदलना होगा, हमारे वर्क कल्चर को बदलते हुए हमें हमारी सोच को भी बदलना होगा, हमें हमारे काम की गति को भी बदलना होगा। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। और इसलिए हमें रिफॉर्म की गति को भी आगे बढ़ाना है। और जब मैं रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, रिफॉर्म नहीं हमारे लिए कोई कंपल्शन है, नहीं रिफॉर्म ये हमारे के लिए कोई बजबर है, हमारे लिए रिफॉर्म ये कन्विक्शन है। आउट ऑफ कन्विक्शन हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं और हम आने वाले दिनों में भी नेक्स्ट लेवल रिफॉर्म की ओर बढ़ने वाले हैं। और इसलिए सरकार, समाज, उद्योग, उत्पादक, किसान, हर किसी ने अपनी ट्रेडिशनल व्यवस्थाओं में रिफॉर्म करना पड़ेगा, सोच में रिफॉर्म करना होगा, अपने लक्ष्यों को रिफॉर्म करना होगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमें एक निश्चित दिशा में को लेकर के चलना होगा। मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा, उनकी शक्ति जोड़ी जाएगी। आने वाले दिनों में जब मैं सप्त धारा की बात करता हूं, सप्त धारा की पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा और प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ हमें छोटे छोटे ऊर्जे भी बनाने हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट भी बनाने हैं। पूरा वैल्यू चेन हमारा होना चाहिए और उसे लेकर के चाहें हमें कंपोनेंट भी चाहिए और हमें कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी चाहिए, कंप्लीट प्रोडक्ट भी चाहिए।

डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसामंद केंद्र बनना होगा। इसके लिए मैं तीन चीजों पर विशेष जोर देना चाहता हूं। मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो मेरे भाई बहन हैं, ये समय का ये अवसर है, इस अवसर को जाने मत दें। और इसके लिए हमें कॉस्ट, क्वालिटी और स्केल, इसके विषय में वैश्विक मानदंडों से खरा उतरना पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रीज कॉम्पिटिटिव हो, हमारे प्रोडक्ट्स यूजर फ्रेंडली हो, हमारा पैकेजिंग दुनिया के लोगों को लुभावने वाला हो, आकर्षित करने वाला हो, हमारा जीरो डिफेक्ट प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारी पहचान बनना चाहिए। हर मैन्युफैक्चरर, हर एंटरप्रेनर, हर एमएसएमई से मैं कहना चाहता हूं, ग्लोबल मार्केट में हमारी पहचान विश्वसनीयता और गुणवत्ता के आधार पर होनी चाहिए। क्वालिटी के संबंध में नो कॉम्प्रोमाइज, और इसलिए हमारा मंत्र क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी होना चाहिए। यही हमारा ग्लोबल ब्रांड वैल्यू बनेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमारे किसानों ने, अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं, एफपी के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है, हमें उस जगह को हाथ लगाना है, हमें खेत से लेकर हमें एक्सपोर्ट मार्केट की ओर जाना होगा। हमारे पारंपरिक खान पान हो, हमारे मिलेट्स हो, हमारे मसाला हो, हमारे फल हो, फूल हो, क्या कुछ नहीं है हमारे पास, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनने चाहिए। हमारे किसान केमिकल फ्री खेती को बल देंगे, दुनिया में इनकी मांग और बढ़ने वाली है। और जो ग्लोबल पैरामीटर्स के अंदर हर प्रकार से सिद्ध होने वाले हमारे एग्रो प्रोडक्ट होंगे, तो दुनिया में हम आसानी से पहुंच पाएंगे। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है, पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है, और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। हमने यूपीआई और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लोहा मनवा लिया है, हमारी ताकत का परिचय करवा दिया है। अब भारत को डिजिटल पब्लिक टेक्नोलॉजी, उसको भी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। भारत को नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लीड करना है। मेड इन इंडिया 6G हर कोने में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और हमें उस पर तेजी करनी चाहिए, और इसके लिए हमारा प्रयास कम नहीं होना चाहिए। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गतिशक्ति। ये गतिशक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। शहरों को हाई स्पीड रेल से हमें जोड़ना होगा। मॉडर्न हाईवे चाहिए, इनलैंड वाटरवेज चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक की व्यवस्था चाहिए। हमें पोर्ट्स को सिर्फ सामान उतारना चढ़ाने की जगह नहीं, दुनिया के शिप्स आकर के लंगर हो जाए इतना नहीं, हमें हमारे पोर्ट्स को पोर्ट लेड डेवलपमेंट ग्रोथ की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। अरे, रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। मेरे प्यारे देशवासियों, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है, इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है, तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा। नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करके हमें ग्लोबल सप्लायर बनने की दिशा में हमें लक्ष्य लेकर के चलना है। हमें ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम को विकसित करना होगा।

हाइपरसोनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज, उस पर हमें लीडरशिप लेनी होगी। साथियों, साइबर सुरक्षा भी आज हर घर के लिए एक समस्या बन रही है। वो भी एक रक्षा का क्षेत्र है जिसमें हमारे युवाओं की जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य का उपयोग हम देश के और दुनिया के लिए कर सकते हैं। हमारी सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। हमें दुनिया में, दुनिया जब ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करती रहती है, हम रास्ते खोजते रहते हैं, हम समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, और भारत एक ग्रीन मूवमेंट का बहुत बड़ा सामर्थ्य लेकर के चलिए। भारत के पास ब्लू इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा लंबा हमारा कोस्ट लाइन है। ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े अवसर है, फिशरीज है, कोस्टल टूरिज्म है, ओशन टेक्नोलॉजी है, ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत सप्तधारा की जब बात करके लेकर चला है, तो हमारी सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है, और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। आज योग ने पूरी दुनिया को भारत के साथ जोड़ के रखा हुआ है। योग दुनिया के लिए एक ऊर्जा बनता जा रहा है, भारत के लिए विश्वास का बड़ा कारण बनता जा रहा है। जिस भारत के पास आस्था के केंद्र हो, जिस भारत के पास आयुर्वेद हो, जिस प्रकार से भारत के पास होलिस्टिक हेल्थ केयर की व्यवस्था हो, हील इन इंडिया का मूवमेंट हो, हम दुनिया के अंदर हमारे सामर्थ्य को लेकर के जा सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट हो, संस्कृति हो, हमारी फिल्में हो, हमारा क्रिएटिव वर्ल्ड हो, वीएफएक्स हो, हमारा एनिमेशन हो, हमारे गेमिंग हो, डिजिटल कंटेंट हो, क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर भारत अपना रुतबा दिखा सकता है। हमने उसको वैश्विक सामर्थ्य के रूप में विकसित करना होगा। आज भारत ने वेव समिट को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। दुनिया धीरे धीरे भारत का ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट है, उसकी राह देखता रहता है, और वो भारत के सॉफ्ट पावर को, भारत के क्रिएटिव दुनिया को परिचित करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के पास विशाल वन्य संपदा है। हमारे पास 100 से ज्यादा नेशनल पार्क है। क्षमता बहुत है, लेकिन विदेशी टूरिस्टों को आकर्षित करने में हम कम पड़े हैं। हमें मौका है हमारे सॉफ्ट पावर के माध्यम से दुनिया के टूरिस्टों को भारत के लिए आकर्षित करने का। हमारा सामर्थ्य हमें दुनिया को दिखाना है। हम ये काम आरा से करें और हम जल्द से जल्द हम इन लोगों, आज दुनिया में स्पोर्ट्स की जो है वो भी एक बहुत बड़ा भारत के प्रति आकर्षण का केंद्र, दुनिया के स्पोर्ट्स इवेंट भारत में क्यों ना हो। कॉन्सेंट इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, देश के नौजवानों का आकर्षण है। विश्व का हर कोई कलाकार चाहता है कभी न कभी भारत की धरती पर अपना कॉन्सेंट करे। ये बहुत बड़ा अवसर है, हमें इसको मोबिलाइज करने के लिए व्यवस्थाएं खड़ी करनी होगी। साथियों, सप्तधारा की सप्त शक्तियां उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ चीजें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं इससे भी आगे सोचता हूं। मैं जरा देश को झकझोरना चाहता हूं, मैं देश की शक्ति को भी झकझोरना चाहता हूं। देश यानी सिर्फ सरकार नहीं होती है, देश यानी हर नागरिक जुड़ता है। क्या हम सोच नहीं सकते कि फॉर्च्यून 500 की चर्चा तो बहुत सुनते हैं, आने वाले एक दशक में इन फॉर्च्यून 500 में 50 कंपनियां भारत की क्यों न हो, ये लक्ष्य हमारा क्यों न होना चाहिए। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है। दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो, भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 में

टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए। भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। और इसके लिए मैं राज्य सरकारों को कहना चाहता हूं, मैं स्थानीय स्वराज की संस्थाओं को कहना चाहता हूं, भारत सरकार का भी यह दायित्व है कि हमें हमारे रिफॉर्म की गति बढ़ानी होगी। हमें 2047 के लक्ष्य के अनुरूप हमारी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा। हमें बीते हुए काल के नीति नियमों से नहीं चल सकते, हमें आने वाले सपनों के हिसाब से नीति नियमों को गढ़ना होगा। और इसको अगर हम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, इसी रास्ते मेहनत में कोई कमी न करते हुए हम विकसित भारत का सपना पार करके रहेंगे। हमें सबको मिलकर के चलना है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इंडस्ट्री हो, हम सब ने मिलकर के आगे बढ़ना है। हमें रिफॉर्म्स करते रहना है, रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते रहना है। और मैंने पहले भी कहा था, हम रिफॉर्म कंपल्शन से नहीं, कन्विक्शन से कर रहे हैं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं विकसित भारत की बात कर रहा हूं, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, उसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा साधक कौन है? अगर साधक है तो मेरे देश का युवा है, मेरे देश की युवा शक्ति है। विकसित भारत की यात्रा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। इतना ही नहीं, विकसित भारत का सबसे बड़ा लाभार्थी भी मेरे देश का युवा है। और इसलिए हमें विकसित भारत के लक्ष्य को युवाओं के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है। युवाओं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। साथियों, पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। स्टार्टअप इंडिया अभियान, आज पूरे देश में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप बन गए। देश के नौजवान खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया इनोवेशन फंड भारत सरकार ने घोषित किया है। मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। 1 लाख करोड़ रुपया आपके दिल दिमाग को सामर्थ्य देने का एक व्यवस्था हमने कर दी है। रिसर्च के नए अवसर मिले, डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डेटा युवाओं को सशक्त किया। दुनिया में सस्ता डेटा कहीं है तो भारत की धरती पर है। और देश के नौजवानों ने नौजवानों को उसे नवी ताकत दी है। स्किल इंडिया हमने नेशनल प्रोग्राम बनाया है, स्पेस सेक्टर को हमने ओपन कर दिया, नेशनल ड्रोन पॉलिसी हमने बनाई है, खेलो इंडिया पॉलिसी बनाई है, 35 वर्षों तक एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं। और इसका फायदा मिडिल क्लास के परिवारों को हुआ है। साथियों, 2004 से 14 आंकड़े मुझे देना चाहिए आपको, 2004 से 14 हमारे देश में 350 से भी कम यूनिवर्सिटी थी और आज 10-12 साल के भीतर भीतर करीब 650 नई यूनिवर्सिटी जुड़ चुकी है। करीब 1000 का आंकड़ा हम पहुंच रहे हैं। 2014 के पहले मेडिकल की सिर्फ 400 सीटें हुआ करती थी, आज करीब करीब 850 सीटें मेडिकल की हो रही है। इतना ही नहीं, अब विदेशी यूनिवर्सिटी भी भारत की धरती पर आ रही है। भारत के अंदर विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मेरे नौजवान को मिले, इसका प्रबंध भी हो चुका है। हमारे देश के युवा मन बचपन से ही टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और इसलिए हमने करीब 10,000 से अधिक अटल टिंकर की लैब छोटे छोटे बच्चों के हवाले कर दी है, ताकि उनका इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के अंदर उनका मन बने। 12 वर्ष युवा, हमने अनेक रास्ते खोले, हम स्टार्टअप ओपन कर दिया। आपने देखा होगा भारत के प्राइवेट स्टार्टअप 28 साल के एवरेज उम्र के बच्चों ने, नौजवानों ने दुनिया में पहला

ही ट्रायल में अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और रॉकेट लॉन्च कर दिया उन्होंने। बहुत बड़ा काम कर दिया साथियों। आज करीब 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप है। हमने पिछले दिनों AI इंपैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे, ताकि हमारा देश का नौजवान AI की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है। मेरे साथियों, बायो इकोनॉमी एक नया क्षेत्र है। एक समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके दे। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का, बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, दो हजार 9-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस 25-26 में 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके। मेरे प्यारे देशवासियों, एविएशन सेक्टर भी मेरे नौजवानों के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। नए एयरपोर्ट, नए रूट, नए नए रोजगार के अवसर बना रहे हैं। मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसके भी कारण देश में बहुत बड़ी मात्रा में स्किल मैन पावर को काम मिल रहा है। मेड इन इंडिया हवाई जहाज बनाने की दिशा में हमने सफलता पाई है। मेड इन इंडिया डिफेंस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 ऑलरेडी अपनी उड़ान भर चुका है, सफल उड़ान भर चुका है। ये देश के नौजवानों के लिए। मेरे साथियों, ड्रोन ने भी बहुत बड़ा काम किया है। स्वामित्व योजना, गांव में ड्रोन से स्वामित्व योजना सफल हो रही है। करीब 3.25 करोड़ परिवारों को स्वामित्व योजना का लाभ मिला है और इसके कारण 140 लाख करोड़ रुपए जैसी संपत्ति अनलॉक हुई है, जिसके कारण बैंक से लोन मिल सकता है, लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे मध्यम वर्ग के परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए, 1,000 करोड़ रुपए का उनका खर्च है, वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए, और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले। जब मैं खेले वो खिले की बात कर रहा हूं, तब मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। अब खेल के पोडियम में भारत का राष्ट्रगीत सुनाई देता है, भारत का राजगान सुनाई देता है, भारत का तिरंगा झंडा लहराता दिखाई नजर आ रहा है। टॉप्स योजना ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। खेलो इंडिया गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स, विंटर गेम्स, बीच गेम्स, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग,
स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन, इन सारे विषयों में भारत अब महारत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नौजवानों के लिए पूरा नया क्षेत्र, खिलाड़ी न बन सके तो उसकी सपोर्ट सिस्टम में भी बहुत बड़ा क्षेत्र खुल रहा है। स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का को भारत होस्ट करने वाला है। और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं, करीब 40 प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350-350 स्पर्धाएं होती है ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत दो तिहाई खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, जिन स्पर्धाओं में भारत ने छोड़ के रखा है, 3/4 हिस्सा हमारे इंतजार कर रहा है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। हमें अगर 2036 के लिए खिलाड़ी चाहिए तो आज जो 5 साल 10 साल 15 साल की उम्र के नौजवान हैं, बेटे हैं, उनके तरफ ध्यान देना होगा, उन बेटियों पर ध्यान देना होगा। और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव, शहर शहर, स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे। मेरे प्यारे युवा, देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने नशा एक बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। नशा मुक्त भारत, ये हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारी युवा पीढ़ी मजबूत हो, हमारा युवा सामर्थ्य हमारे देश के लिए काम आए, इसलिए नशा मुक्त भारत। पिछले दिनों माय भारत के वॉलेंटियर्स ने, देश के एनजीओ ने, देश के सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों ने, देश के आध्यात्मिक पुरुषों ने मिलकर के नशा मुक्त भारत का 100 सप्ताह का एक कार्यक्रम तय किया है। 100 सप्ताह तक एक अभियान चलने वाला है। मैं हर परिवार को कहना चाहता हूं कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, आप इसके साथ जुड़िए और देश के नशा मुक्त भारत के सपने को पूरा करने के लिए आप आगे आइए। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, अनेक माताओं के दूधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया, हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4-4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था, बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था, संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारे पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहू लुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस विषाद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है।
पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में, जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना, इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे, सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना हम सबका दायित्व है। चुनौती सीमा के भीतर हो या सरहद से बाहर, भारत हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आज युद्ध का नेचर बदल रहा है, अब युद्ध सीमा पर ही होता है गारंटी नहीं है, युद्ध सीमा के अंदर कहीं रिफाइनरी पे जाकर के, कहीं बैंकिंग सेक्टर को जाकर के, कहीं डेटा सेंटर को जाकर के, एक प्रकार से लड़ाई का नया रूप, इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े जा रहे हैं, फैक्ट्रियां तोड़ी जा रही है। हमने मिशन सुदर्शन चक्र की पिछले सालों घोषणा की, बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है। आज डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा करीब 50 गुना बढ़ा है, करीब 100 देशों में हमारे अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं, वैश्विक पटल पर भारत की प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ रही है। बदलते हुए समय में अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा। पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है, और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंट्री फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, राष्ट्र के निर्माण में आज हमारी बहनों बेटियों का योगदान हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का कारण बना हुआ है। फाइटर जेट हो या सिविल एविएशन, हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई दे रही है। खेलकूद का मैदान हो, हमारी बेटियां आगे दिखाई दे रही है। स्टेम एजुकेशन में भर्ती होने की प्रक्रिया हो, सबसे ज्यादा हमारी बेटियां आगे दिख रही है। आज सेना में भी एनडीए से जो बेटियां निकली हैं वो बड़े रौब के साथ देश की सेना का नेतृत्व करने का सामर्थ्य दिखाने लगी। मेरी बेटियों की ताकत कैसी है, मैं पिछले दिनों सारण में एक सेमीकंडक्टर प्लांट में गया, वहां आदिवासी बेटियां, देश के अलग अलग कोने से आई हुई बेटियां काम कर रही, वो उस गांव से आई थी जिन्होंने पासपोर्ट क्या होता है पता तक नहीं था, वो बेटियां विदेशों में गई ट्रेनिंग लेकर के आई और आज चिप निर्माण का काम कर रही है, और बड़े कॉन्फिडेंस, मैं जो उनका कॉन्फिडेंस देखा मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ था। आज तीन करोड़ बहनों को हम
हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीति के अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले। ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। 2014 से पहले सिर्फ 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी का कवर था, सिर्फ 25 करोड़ का। साथियों, पिछले 5-7 दशक में सिर्फ 25 करोड़, हमने एक दशक के भीतर भीतर 100 करोड़ देशवासियों को सोशल सिक्योरिटी का कवच दिया है। आयुष्मान भारत योजना से 70 साल की उम्र के बुजुर्गों से भी आज 5 लाख रुपए तक मुफ्त दवाई की व्यवस्था हो रही है। करोड़ों करोड़ों परिवारों को इसके कारण बहुत बड़ी सुविधा मिली है। और इस आयुष्मान कार्ड के कारण 2 लाख करोड़ रुपया जो दवाई और ऑपरेशन के पीछे खर्च होना था, वो मेरे परिवारों के बच्चे हैं, वो गरीब परिवार है, वो मध्यम वर्ग के परिवार है, उनको इतनी बड़ी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मुझे एक काम के लिए आपकी मदद चाहिए। मैं आप सबसे एक मदद मांग रहा हूं। सभी नौजवानों से मैं चाहता हूं कि आप इसका नेतृत्व करिए। आपका 1 या 2 घंटे देश को बहुत बड़ी शक्ति देने वाले। आपको लगेगा 1-2 घंटे में मैं देश की क्या शक्ति, मैं बताता हूं, आप बहुत बड़ी शक्ति बनने वाले। और इसलिए हर घर में वातावरण बने। इन दिनों देश में जनगणना का काम हो रहा है, सेंसस का काम हो रहा है, गिनती चल रही है। और गिनती सिर्फ आंकड़ों से बात बनती नहीं है, उसकी बारीकियों से नीतियां बनती हैं, योजनाएं बनती हैं, देश आगे बढ़ने की अपनी रूपरेखा तैयार करता है। और इसलिए सटीक जानकारियां होना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आते हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं, कभी स्पेलिंग एक लिख देते हैं, कभी अलग लिख देते हैं, और इसके कारण अल्टीमेट परिणाम हमें सही मिलने में दिक्कतें आती हैं। अब जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इस बार निर्णय किया है, आप स्वयं भी जनगणना में अपनी जानकारियां अपने मोबाइल फोन से भर करके दे सकते हैं। बाद में कोई बाबू आएंगे, कोई प्रतिनिधि आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आप परिवार के सब बैठ करके अगर डिजिटली अपना रजिस्ट्री करवा दे, सारी बारीकियां, स्पेलिंग में भी गलती ना हो, कोई भी जानकारियों में गलती ना हो, आप जितनी परफेक्ट जानकारी देंगे देश को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसलिए
मैं देश के नौजवानों कहता हूं

कि आप अपने परिवार के लोगों को बिठा करके पूरे फॉर्म को समझिए, पहले कागज पे फॉर्म को भर दीजिए, कोई गलती है तो करेक्ट कर लीजिए और फिर टेक्नोलॉजिकली उसको डिजिटली इसको अपलोड कर दीजिए। आप देखिए इतना बड़ा काम देश कर लेगा और देश का समय और शक्ति सही काम के लिए उपयोग आएगा। और इसलिए मेरे देश के नौजवानों को जनगणना के इस काम में सक्रियता से जुड़ने के लिए मैं आग्रह करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने लाल किले से पंच प्राण की बात कही थी। इस पंच प्राण ने देश को अपने आत्मगौरव की ओर लेकर के आगे बढ़ने का, लक्ष्यों को पार करने के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संबल दिया है। हमें गुलामी की मानसिकता हर पल मिटाते ही रहना है। जिस भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था, सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने देखा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने देखा था, ज्योतिबा फुले ने देखा था, उन सबसे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़े। इस संकल्प को हम दोहराए, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो, स्वयं से ऊपर राष्ट्र का हित हो और कर्तव्य ही हमारी पहचान हो। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे, एक दीप से जले दीप हजारों। आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी लाल किले की प्राचीर पर बने ध्वज स्थल से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रेरणादायी वक्तव्य आपके जो लंबे समय तक सभी को प्रेरित करते रहेंगे, और इस समय हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया है, शान से वो लहराता हुआ, और हमारे दाहिनी ओर से तीन रंगों के गुब्बारे इस समय गगन को चूमने के लिए तैयार ऊपर उठते हुए सभी की निगाहें इन गुब्बारों को देखती हुई माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय अपने केंद्रीय मंत्रियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और ध्वज स्थल से ही हाथ हिलाकर जो विशाल जन समुदाय यहाँ पर उपस्थित है उनका अभिवादन, उनका स्नेह भी स्वीकार कर रहे हैं। साथ ही जो एनसीसी कैडेट्स बैठे हैं, माई भारत के स्वयंसेवक इस समय बैठे हैं अपने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए और बीच में नारंगी रंग से वंदे मातरम जिन्होंने लिखा है, वो करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति सम्मान और स्नेह प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का इस समय लाल किले की प्राचीर से उसके प्रांगण में प्रस्थान हो रहा है, और सभी केंद्रीय मंत्री अपने अपने स्थान पर खड़े होकर हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए शान से हमारा तिरंगा यहाँ पर लहराता हुआ सभी की निगाहें कभी प्राचीर की ओर, कभी आसमान में उड़ते तीन रंगों के गुब्बारों की ओर, और कभी दाहिनी ओर जाती है, क्योंकि सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला उस ओर से आएगा कुछ ही देर में, और सभी इस उत्कंठा से भरे हुए कि अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने स्वयं को प्रधान सेवक कहा है, उन्हें नजर भर देख लें, और अगर ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सर पर हाथ रख दें, तो जीवन भर के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक ऐसी याद रहेगी जो इन युवाओं को तो प्रेरित करेगी ही, साथ ही इनके पूरे परिवार को और विद्यालयों को भी प्रेरित करेगी। हम आपको बताएं कि हर घर तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो ये अभियान शुरू हुआ है 9 अगस्त से इस बार 17 अगस्त तक चलेगा। इस बार नया ये है कि सूर्य पथ तिरंगा भी हमारे पास है, जिसने कि भूखंड और कालखंड की सीमाओं को छोटा कर दिया है। यही है वसुधैव कुटुंबकम का वास्तविक भाव। अलग अलग देशों में जहां जहां सूर्य रश्मियां पहुंचेंगी, यानी सूर्योदय के साथ ही भव्य उदय होगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी, हमारे प्रिय तिरंगे का भी। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावास और मिशन के परस्पर संयोजन से तिरंगा फहराया जाएगा, अनेक माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा, वैश्विक स्तर पर तकनीक का परंपरा के साथ समागम होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और साथ ही इस मंच से आपने बात की शक्ति की, सप्त धारा की, यहीं से पंचप्रण का उल्लेख हुआ, स्वच्छ भारत यहीं से हमने अपनाया और फिर उसे दुनिया को भी दिखाया कि भारतीय जब एकजुट हो जाएं एक लक्ष्य के प्रति तो क्या कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सराहना इसी मंच से हुई। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने विनिर्माण क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों को हासिल करने की प्रेरणा दी है, इनोवेशन का हब भारत को बनाने की बात कही है, भारत की सॉफ्ट पावर किस तरह दुनिया में अपना स्थान बना रही है इसका उल्लेख किया, तो साथ ही खेल क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र का भी उल्लेख किया है।
1: और माननीय
0: प्रधानमंत्री जी के वाहनों का काफिला हम देख रहे हैं कि इस समय बढ़ चला है ज्ञान पथ की ओर, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो उत्सुकता से अपने अपने स्थान पर खड़े होने को आतुर हैं। जैनेन्द्र,
1: निश्चित रूप से उनके लिए ये बहुत विशेष अवसर होता है जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय या लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के बाद जब वे यहाँ से प्रस्थान कर रहे होते हैं, उस समय इन सभी उपस्थित बच्चों को उनका स्नेह मिलता है। यहाँ पर दर्शक कार्यक्रम के समाप्ति के बाद भी बड़ी उत्कंठा से यहाँ उपस्थित होते हैं इस बात के लिए, और उस काफिले के राह के किनारे कहीं खड़े होकर एक झलक पाने को आतुर होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का युवाओं के साथ जो जुड़ाव है, जो कनेक्ट है, वो बहुत अद्भुत है, और इसीलिए वो देश, चूंकि ये युवाओं का देश है, और इस देश के भविष्य में 1 करोड़ ऐसे युवाओं को जो कि कर्तव्य को अपनी पहचान बनाए, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखे, ऐसे 1 करोड़ युवा अपने आप को कौशल के साथ जोड़ते हुए राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई, इस बात का बहुत विशेष उल्लेख किया उन्होंने। इसके पहले भी उन्होंने अनेक बार युवाओं को केंद्र में रखते हुए अपनी विजन, अपने विजन को, अपनी सोच को यहां से इस मंच से साझा किया है। शक्ति की सप्तधारा का बहुत विशेष उन्होंने आज एक नई सोच दी है इस देश को और देश के प्रगति को, विकास को, और इसमें जो सात अलग अलग क्षेत्रों की उन्होंने बात की, दरअसल इसके पीछे चूंकि कार्य तो हर क्षेत्र में हो ही रहा है लेकिन इसको गति देने की बात है, इसको शक्ति देने की बात है। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपने वाहन से उतरकर बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, इसलिए करतल ध्वनि के जो गूंज है वो आप तक पहुंच रही होगी। प्रधानमंत्री जी ने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए उन बच्चों को अपना आशीष दिया है और जो सात बच्चे वहां निकट हैं उनके, उन बच्चों के साथ वो हाथ मिलाकर उन्हें अपना स्नेह दे रहे हैं। इस समय बच्चों के लिए ये विशेष अवसर होता है क्योंकि एक बार का दृश्य मुझे याद है, पहले का बच्चे जब खड़े होते हैं तो सभी सब निकट आने की कोशिश करते हैं और ऐसे में थोड़ी सी अफरा तफरी भी होती है, लेकिन चूंकि अनुशासन और संयम का एक दृश्य इस समय एनसीसी के विद्यार्थी यहां पर दिखा रहे हैं तो वो दृश्य हम यहां पर देख पा रहे हैं। सभी अपने अपने स्थान पर बैठे हुए युवा साथी अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी का और उनका स्नेह प्राप्त कर रहे हैं
0: जी। और जिन बालिकाओं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ मिलाया है उनके लिए तो ये एक ऐसा पल है जो वो लंबे समय तक याद करेंगी और जब एक लक्ष्य चुनेंगी, अपने जीवन को एक दिशा देंगी, उस समय भी ये पल उन्हें अभिभूत करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय एनसीसी कैडेट्स के बीच से दोनों ओर हाथ हिलाते हुए जैसे एक साथ सभी को अपना स्नेह, अपना आशीष देना चाहते हों, और ये कैडेट्स जो हैं बहुत ही मुश्किल से संयम दिखा रहे हैं, इस समय अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं निर्देशों का पालन करते हुए, लेकिन अपना स्नेह लगातार प्रकट कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। हवा में दोनों हाथ हिला हुए नमस्कार भी कर रहे हैं और साथ ही भारत माता की जय के नारे यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष लगा रहे हैं। मैं भारत के उज्जवल भविष्य का प्रमाण हूं, राष्ट्रहित में होने वाला सारा उत्थान हूं, स्वामी विवेकानंद के विचारों का चितवान हूं, मैं युवा हूं, मैं भारत का प्राण हूं।
1: प्रधानमंत्री जी ने एक जो उनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व से एक बात, एक संदेश जो साफ झलकती है वो है नई सोच नागरिक देवो भव का। नागरिक को केंद्र में रखते हुए अपने पूरे सुशासन के तंत्र को, व्यवस्था को उस ढंग से रूप देना, आकार देना। बच्चों के बीच से होते हुए प्रधानमंत्री महोदय अब दर्शक दीर्घा की तरफ जा रहे हैं। हमारी बाईं तरफ जो दर्शक दीर्घाएं बनी है उसके रेलिंग के साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग बड़े उत्साह उमंग से अपने अपने मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए, वे कोई सेल्फी लेना चाहता है, कोई फोटो खींचना चाहता है, कोई हाथ हवा में लहराते हुए प्रधानमंत्री जी का अभिवादन और अभिनंदन कर रहे हैं। देश का ये वो नेतृत्व है जो दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय है, जो विकसित भारत की सोच और विजन को इस देश को जिन्होंने दिया है, इस देश के करोड़ों युवाओं को नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और आत्मगौरव का भाव जिन्होंने भरा है, और हर व्यक्ति आज, हर भारतवासी इस विश्वास के साथ कि भारत विकसित होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत अपने स्वदेशी सोच और अपने पुरातन चिंतन के साथ, धर्म और आध्यात्म के साथ विश्व में अपनी पहचान बनाएगा, भारत विकसित भी होगा, अपनी विरासत के साथ विकसित होगा। इस समय दर्शक दीर्घा में काफी आगे तक प्रधानमंत्री जी बढ़ चुके हैं और उनकी इच्छा होती है कि

0: कोई भी दूर दूर तक जहां तक भी दर्शक आए हुए हैं और बल्कि ये देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, इसमें ऐसी बड़ी संख्या में हमारे दर्शक हैं जो अलग अलग जो सरकार की नीतियां रही हैं, उनकी योजनाएं रही हैं, उसका लाभ लेते हुए जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उन सबको विशेष रूप से इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है, आकर्षण की चीज ये लगती है कि वो सभी अपने अपने प्रदेश की अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पर आए हुए हैं। अधिकांशता उसमें से वहां प्रधानमंत्री महोदय के निकट अपने आप को पाकर वो निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे।
1: जी बिल्कुल जैनेन्द्र, और यहाँ पर भारत में जो अन्य देशों के दूतावास हैं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी है। इस समय वे भी बेहद आह्लादित महसूस कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की यही शैली जो अपने देशवासियों से जुड़ने की शैली है, इससे दुनिया के बहुत सारे नेता प्रेरित हुए हैं और यही वजह है कि खाड़ी और मध्य पूर्व के देशों या हमारे पड़ोसी और एशियाई देशों या फिर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया है, अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान दिए हैं, सैन्य सम्मान दिए हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यवहार से अन्य देशों को भी दिखाया है कि किस प्रकार से अपने देशवासियों से जुड़ना है, उनके आकांक्षाओं को कैसे समझना है और किस प्रकार से उनके लिए जनहित की नीतियां बनाकर जन जन को राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए प्रेरित करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने प्रिय ये जो जनता है इनसे भेंट करने के बाद, शासन भेंट करने के बाद अब पुनः जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन लगातार हाथ हिलाते हुए, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा कर्मी हैं उनके लिए ये थोड़ी सी कठिन घड़ी है क्योंकि लगातार पैनी दृष्टि हर ओर उन्होंने बना रखी है, लेकिन वो भी समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं सबके स्नेह का, इसलिए उचित दूरी उन्होंने बनाए रखी है, लेकिन पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर स्नेहिल मुस्कान है अपने देशवासियों को देखकर और साथ ही जो बच्चे हैं यहाँ पर उन्हें देखते हुए, और ये जो देशवासी है इस समय आभार प्रकट कर रहे हैं एक तरह से उन नीतियों के लिए जिन्होंने इनके जीवन में बड़ा बदलाव किया है, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, जीएसटी हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, प्रधानमंत्री जी की कही ये उक्ति हो, हरित ऊर्जा हो, अंतरिक्ष अनुसंधान हो, जन धन से जन जन तक होता वित्तीय समावेशन हो, उन सभी के प्रति एक तरह से आभार प्रकट करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद कहते हुए अपने जो ये संकेत है उनसे, और अब माननीय प्रधानमंत्री जी के बेहद नजदीक पहुंच गए कुछ एनसीसी कैडेट और सुरक्षा कर्मी, उन्हें स्नेहिल भाव से थोड़ा हटाते हुए वहाँ थोड़ा अनुशासन बनाते हुए स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना, डिजिटल भारत जिसकी धूम अब दुनिया भर में है, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये कहते रहे हैं हमारे उत्पाद जो हैं वो वैश्विक गुणवत्ता के हो, हमारे बाजार दुनिया भर के लिए खुले रहें, और जब भी कोई विदेशी मेहमान हमारे यहां आता है तो जो भोजन परोसा जाता है उसमें हमारे हर प्रांत का कोई एक व्यंजन उसमें होता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, और साथ ही जो हमारे बुनकर हैं उनके द्वारा बुनी हुई जो वस्तुएं हैं वो भेंट स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री जी देश दुनिया के बड़े नेताओं को देते हैं, और बहुत सारी इस तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लगातार हमारे देशवासियों को मिलता रहा है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो मंच है, गरिमामय मंच है, यहां से भी देश दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है, नए प्रयास किए हैं, देशवासियों को लगातार प्रेरित किया है आगे बढ़ने के लिए, और अब नया लक्ष्य हमारे सामने विकसित भारत का जिसमें हम सभी को लगातार योगदान देना है।
0: आज प्रधानमंत्री जी ने इस लाल किले के प्राचीर से जहां संकल्पों की बात की, संकल्प से सामर्थ्य के निर्माण की बात की, और सामर्थ्य से सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए देश को समृद्धि के राह पर विकसित भारत बनाने का एक संकल्प उन्होंने दिया है। बीते 12 वर्षों में सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जो तमाम प्रयास किए गए हैं उनके बारे में इस बात की परिकल्पना शायद पहले भी किसी ने नहीं की होगी कि उनका इतना बड़ा परिणाम और फल इस देश को मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जनधन योजना की ही, तो जब जनधन योजना की शुरुआत हुई आज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैंकिंग सेवा देश के कोने कोने तक पहुंची है, हर गांव तक पहुंची है, 99.92% गांवों तक इस सेवा की पहुंच बनी है, ये निश्चित रूप से शत प्रतिशत आप इसको कह सकते हैं। और किसी भी गांव में 6 लाख से अधिक गांव में देश में मात्र 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर भीतर बैंकिंग सेवाएं प्राप्त होती हैं। प्रधानमंत्री महोदय बच्चों के बीच से निकलते हुए और एक बार फिर से प्राचीर की तरफ उन्होंने हाथ हिलाकर यहां के अतिथियों का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए अब अपने वाहन में वो सवार हो चुके हैं। और अब समय है जब 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अंतिम चरण में माननीय प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्र को संबोधित करने के बाद और यहाँ उपस्थित जनसमुदाय और विशेष रूप से युवा शक्ति के साथ संवाद और निकटता का एक भाव प्रेषित संप्रेषित करने के बाद अपने वाहन में सवार होकर यहाँ से अब प्रस्थान करने जा रहे हैं। आप सबके लिए उनकी तरफ से जो प्रेरणा मिली है इस राष्ट्र को निश्चित रूप से आगे लेकर जाएगी।
1: जी बिल्कुल। और माननीय प्रधानमंत्री जी अब अपने वाहन में सवार हो चुके हैं। वाहनों का काफिला मंथर गति से बूथ जो है हमारा उसकी बाईं ओर बढ़ता हुआ धीरे धीरे, और जो एनसीसी कैडेट्स हैं वो अब पुनः अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। जो आगंतुक है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के वाहनों की भी तस्वीर इस समय ले रहे हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री जी अपने वाहन के भीतर से भी हाथ हिलाकर लगातार सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। नया देश है, नया भारत है, बदलती तस्वीर है जिसमें बेटियों को भी बराबरी मिल रही है, और इसी वजह से शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एनसीसी कैडेट्स के बीच पहुंचे तो सबसे पहले एक बेटी के सर पर हाथ रखा। सैन्य क्षेत्र, शिक्षा, विज्ञान, कृषि, फैशन, खेल और उद्योग क्षेत्र में भारत माँ की बेटियां भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर रही हैं। फाइटर कॉम्बैट लीडर बनना हो या ड्रोन दीदी, या फिर अपनी मेहनत से सफलता के नए अध्याय रचती लखपति दीदी हो, माँ भारती का नाम रोशन कर रही हैं देश की बेटियां। कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे मेहनती खिलाड़ियों ने 13 स्वर्ण पदक जीते जिनमें 8 स्वर्ण पदक बेटियों ने जीते हैं। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। लगभग 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इस दिशा में नए लक्ष्य हासिल किए जा रहे हैं और ऐसे ही लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी हमें दिए हैं। मत पूछो मुझसे देश क्या है, ये कागज पर खींची रेखा नहीं, ये उन वीरों की आखिरी सांस है जिन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उनके प्रति आभार प्रकट करने का दिन आज, लेकिन साथ ही जो राष्ट्र निर्माण में लगातार सहयोग करते रहे हैं उनके प्रति भी। निष्ठावान विद्यार्थी और शिक्षक, विकास के लिए तत्पर वैज्ञानिक और इंजीनियर, स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, मेहनती श्रमिक और अन्नदाता किसान, प्रतिभावान खिलाड़ी, शिल्पकार और कलाकार, जनहित में सेवारत जनप्रतिनिधि, न्याय व्यवस्था से जुड़े न्यायकर्मी, कार्यनिष्ठ सिविल सेवक, अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले छोटे बड़े सभी निवेशक, निस्वार्थ समाज सेवी और स्वच्छता अभियान के अग्रणी कार्यकर्ता, हमारे सैनिक और सशस्त्र बल अपनी कर्तव्य निष्ठा से हम सभी को विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाना है, इसमें अपना दायित्व निभाते हैं प्रवासी भारतीय भी। सभी के ऊपर ये दायित्व के 2047 तक हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। और आपको फिर से एक बार आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मैं तकनीकी टीम प्रमुख श्री जितेंद्र पुरुथी, तकनीकी टीम के सदस्य शांतनु घोष, शक्तिधर ध्यानी, अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह, सुमित कटियार, नागेंद्र पटेल, नीरज तिर्की, बाबूलाल मीणा, राजकमल शर्मा, नरेंद्र नाथ, किरण पाल सिंह, विष्णु आनंद तिवारी, अतुल कुमार, हेमराज मीणा, विशाल कुमार, अभिषेक कुमार, कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती मनीषा जैन, कार्यक्रम टीम के सदस्य विवेक कुमार तोमर, तुषार पाराशर, शाहनवाज खान, भगवती चरण बौखंडी, जगमोहन सिंह, कार्यक्रम संयोजक श्री प्रमोद कुमार वत्स के साथ मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर जैनेन्द्र सिंह और देवेंद्र त्रिपाठी के साथ पुनः 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लेकर चलती हूँ। जय हिंद।
2: अभी आप भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से ध्वजारोहण समारोह और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को किए गए संबोधन का सजीव विवरण सुन रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को किए गए संबोधन का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे श्री जैनेन्द्र सिंह, सुश्री नीलम मलकानिया और श्री देवेंद्र त्रिपाठी।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
4: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 14555।
3: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
5: किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: जब भी हेलमेट खरीदें या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पात्र परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रति वर्ष प्रति परिवार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने दी है 60 करोड़ से अधिक भारतीयों को इलाज की चिंता से आजादी।
4: अब तक 12 करोड़ से अधिक मुफ्त इलाज हो चुके हैं, जिससे चिकित्सा खर्च में गरीब परिवारों की लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 14555।
3: आयुष्मान भारत, अब इलाज की चिंता से आजादी।
5: MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान ना करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।

0: नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। आकाशवाणी समाचार कक्ष की ओर से हमारे सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया, 2047 तक हम विकसित भारत बनकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा। समुद्र में नए अवसर तलाश करने के लिए नो गो एरिया के स्थान पर गो अहेड एरिया योजना की शुरुआत। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा, हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। उन्होंने कहा, सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। और अब समाचार विस्तार से। देश आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया। राष्ट्र को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गूंज रही है।
2: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपनी कार्य संस्कृति, अपनी सोच और काम की गति को बदलना होगा।
2: जब सपने ऊंचे होते हैं, संकल्प ऊंचे होते हैं, तो हमारे सामर्थ्य की ऊंचाई भी बढ़ती है, हमारे प्रयासों की ऊंचाई भी बढ़ती है और तब जाकर के हम सपनों को साकार कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सुधार यानी रिफॉर्म एक्सप्रेस पर आगे बढ़ चला है और अब नेक्स्ट लेवल यानी अगले स्तर के सुधार पर भी हम आगे बढ़ेंगे। श्री मोदी ने विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित व्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्तधारा की घोषणा की। उन्होंने गति शक्ति को सप्तधारा की चौथी शक्ति बताते हुए कहा कि निर्बाध और तेज कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा।
2: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने में संसाधनों की बाधा नहीं होती, बल्कि सोच की सीमाएं बाधा होती हैं। उन्होंने कहा कि आज देश को कच्चे तेल पर निर्भर होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 99% समुद्र तट को, नो गो एरिया को तेल भंडार की खोज के लिए गो अहेड घोर एरिया घोषित किया जाएगा।
2: हमने समुद्र तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र्य था। हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया में हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।
2: देश ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू कर दी है और मुझे खुशी है ये सबसे लंबी ट्रेन है और दुनिया में हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में भी भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद देश में सेमीकंडक्टर को लेकर कोई बड़ी योजना नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज की डिजिटल दुनिया में हम चिप के महत्व को समझते हैं।
2: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि नक्सलवाद ने 4 दशक तक भारत की आबादी को दबोच कर रखा था। नक्सलवाद से निपटने में 3,500 से ज्यादा जवानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। श्री मोदी ने देश को नक्सलवाद से मुक्त बनाने का आह्वान किया।
2: ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड जैसी वैश्विक महामारी से पूरी व्यवस्था चरमरा गई थी, लेकिन सभी के प्रयासों से देश को उस संकट से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है।
2: इतने बड़े संकट के बावजूद भी नागरिक देवो भव के मंत्र को लेकर के जीते हुए भारत ने जो तैयारियां की थी, एक के बाद एक कदम उठाया था, सोचा नहीं था यह संकट आएगा, लेकिन इस संकट

0: भारत बनाकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों के पुरुषार्थ से ही संभव है।
1: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में आए संकट का हर किसी पर प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा कि हमने किसानों पर यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों में बड़ी कीमतों का असर नहीं आने दिया।
1: यूरिया के दाम दुनिया में 3000 रुपया पहुंच गए एक बोरी का। आज भी हम मेरे देश के किसानों को वो बोझ सहने के लिए मजबूर नहीं कर रहे, सरकार अपने कंधों पर वो बोझ उठा रहा है। और दुनिया से जो 3000 रुपया में यूरिया का बोरा हमें मिलता है वो हमारे किसानों को हम सिर्फ 300 रुपये में दे पाते हैं। इतना ही नहीं, डीएपी आज दुनिया में बाजार 5000 पहुंच चुका है, लेकिन मेरे देश के किसानों को दिक्कत ना हो इसलिए 1350 रुपए में आज भी डीएपी देने का काम हम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नशा मुक्त भारत के 100 सप्ताह के अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने देश के युवाओं से जनगणना में सटीकता के लिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ा है। ऐसी परिस्थितियों में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने भावी पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायु सेना मेडल शामिल हैं। सरकार ने टेलीविजन चैनल्स के लिए विज्ञापन की 12 मिनट की समय सीमा को हटाने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में आए बदलाव को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े नियमों पर फिर से विचार करने की जरूरत महसूस की गई। भारत में पे चैनल या फ्री टू एयर सभी बहुत हद तक विज्ञापनों पर ही निर्भर हैं। भारत और श्रीलंका के बीच 2 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज श्रीलंका के गाले स्टेडियम में खेला जाएगा। यह श्रृंखला 2025-27 के ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल और श्रीलंका टीम के कप्तान धनंजय डी सिल्वा हैं। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ आज तिरंगे की छठा बिखेर रहे हैं। कुछ अखबारों ने देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया है तो कुछ ने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले सैनिकों और रक्षा कर्मियों की गाथाएं सचित्र प्रकाशित की हैं। इसके अतिरिक्त जनगणना प्रक्रिया में पूछे जाने वाले सवालों की सूची को भी अखबारों ने सुर्खियों में जगह दी है। अधिकांश समाचार पत्रों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश को भी मुख्य पृष्ठों पर सुर्खियों में प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों का उल्लेख इस संबोधन में किए जाने को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। परीक्षा प्रणाली सुधारने में जुटी सरकार। हिंदुस्तान ने हाल में शौर्य का नया इतिहास रचने

0: वाले रक्षा कर्मियों की वीरता की कहानियां प्रकाशित की हैं। शीर्षक दिया है, तिरंगे को दिल दिया, देश के लिए जान। नवभारत टाइम्स ने स्वतंत्रता दिवस के आसपास रिलीज हुई फिल्मों का विश्लेषण प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं राजस्थान पत्रिका, जनसत्ता और दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने जनगणना में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उल्लेख अपने मुख पृष्ठ पर किया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, अभिव्यक्ति का हक। पत्र का कहना है कि इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि कुछ विद्यार्थियों के सिर्फ असहमति जताने या विरोध जाहिर करने की वजह से उनके समूचे समूह की पढ़ाई के आगे के रास्ते को बंद करने का फरमान जारी कर दिया जाए। पत्र ने नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के दीक्षांत समारोह में भारत के प्रधान न्यायाधीश को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने पर कुछ विद्यार्थियों के विरोध पर दंडात्मक कार्रवाई का हवाला देते हुए ये भी कहा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सजग नागरिकों सहित खुद प्रधान न्यायाधीश की ओर से जैसी प्रतिक्रिया आई वो उम्मीद जगाने वाली है। दैनिक जागरण ने विभिन्न क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विश्लेषण प्रकाशित किया है और शीर्षक दिया है, गरीबी से गर्व करने की ओर भारत। जबकि लोकसत्ते ने स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को देखते हुए दिल्ली पुलिस द्वारा जारी यातायात परामर्श को विस्तार से प्रकाशित किया है।
1: अमेरिका के सीनेटरों और नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा है कि दोनों देशों की भागीदारी मजबूत है और भारत की उपलब्धियां और भारत के लोग विश्व को प्रेरित करते रहे हैं। न्यूयॉर्क से लेकर सिएटल तक अमेरिका के राज्यों के गवर्नर और सीनेटरों ने कहा है कि उनके यहां 15 अगस्त का दिन भारत दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराया, 2047 तक हम विकसित भारत बनाकर रहेंगे। विकसित भारत के लिए उत्पादन, कृषि, तकनीक, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्र मंथन को मिलाकर सप्त धारा की घोषणा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में समुद्र में तेल भंडार की खोज के लिए नो गो एरिया को गो अहड एरिया घोषित किया गया। ऊर्जा सामर्थ्य के बारे में उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन चलाकर भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा की दिशा में झंडा गाड़ दिया है। सुरक्षित भारत के लिए हमें दिमागी नक्सलियों से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने जनगणना में सटीकता के लिए युवाओं से डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। राष्ट्रपति ने रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को अपनी स्वीकृति दी और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, उद्योगों को मिलकर आगे बढ़ना होगा और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच आज से श्रीलंका के गाले में खेला जाएगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की अनगिनत बधाइयां। आज के फनकार कार्यक्रम में आज उन फिल्मों की बातें जिनमें युद्ध दिखाया गया है या जिनमें हीरो का ताल्लुक फौज से है।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम।

हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के होके रह गए। उन्हें हमारी धरती मां ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, मां ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं था। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।

हमलावर इस दीवार से टकरा कर वापस जाते थे, जो 1962 में हुआ, वही सन 65 और वही 71। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है, यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते तो मोहब्बत करने वाले मोहब्बत का दामन क्यों छोड़ते।

आजादी के बाद बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी जिन्होंने अपने समाज और समय से प्रेरणा ली। जब भारत आजाद हुआ उसके बाद भारत को पड़ोसियों की चालों का और उनके हमलों का सामना करना पड़ा, कुछ युद्धों का सामना करना पड़ा और इसीलिए सिनेमा ने भी इसे अपनी कहानियों का विषय बनाया। सन 1961 फिल्म हम दोनों, देव आनंद इस फिल्म में एक फौजी होते हैं और जिंदगी का साथ निभाते चले जाने की बात करते हैं।

0: लेकिन भारत की पहली बड़ी युद्ध फिल्म मानी जाती है चेतन आनंद की फिल्म हकीकत, जो सन 1964 में आई। ये सन 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के अंतर्गत हुई रिजान ला की लड़ाई पर आधारित थी। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र, बलराज साहनी, संजय खान और विजय आनंद वगैरह। एक बाकायदा युद्ध फिल्म हकीकत आज भी सिनेमा के इतिहास की एक महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है।
1: कर चले हम पिता जानू।

0: साथियों।
1: सन 1973 में चेतन आनंद लेकर आए हिंदुस्तान की कसम। ये फिल्म भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुए ऑपरेशन कैक्टस लिली पर आधारित थी और इस फिल्म के हीरो थे राजकुमार जिन्हें

जाहिर है कि फौज और युद्ध को भारतीय सिनेमा ने अपना विषय लगातार बनाया। सन 1975 में आई फिल्म आक्रमण, जिसके मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार, अशोक कुमार और राजेश खन्ना। फिल्म की पृष्ठभूमि में युद्ध तो है, लेकिन इस फिल्म की कहानी रोमानियत के इर्द गिर्द बुनी गई है।

0: कसकर पूरे जोर से फिर मैंने सलूट जो मारा, सबकी छुट्टी हो गई। फिर मैंने बूट से बूट जो मारा, फौजी गया जब गाँव में, फौजी गया जब गाँव में।
1: गणतंत्र दिवस एक ऐसा मौका है जब हम शान से अपने देश के शौर्य और उसकी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। लाल किले की प्राचीर से जब निकलती हैं फौजी टुकड़ियां तो देश गर्व से भर उठता है। यही परिदृश्य दिखाया गया है हमारी फिल्मों में। सन 1970 में देव आनंद लेकर आए अपनी फिल्म प्रेम पुजारी।

सन 1972, निर्देशक रामानंद सागर ने अपनी फिल्म बनाई ललकार। मुख्य सितारे थे राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र और माला सिन्हा। ये फिल्म भारत और जापान के बीच युद्ध की एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है, जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो सन 1967 में मनोज कुमार लेकर आए अपनी फिल्म

सन 1982 में निर्माता शशि कपूर और निर्देशक गोविंद निहलानी फौज पर आधारित अपनी फिल्म लेकर आए विजेता। मुख्य कलाकार थे शशि कपूर, रेखा, अमरीश पुरी, कुणाल और सुप्रिया पाठक। इस फिल्म में संगीत अजीत वर्मन का था और आशा भोसले का गाया ये गाना आज भी हमारे मन को आनंद से भर देता है।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज ऐसी फिल्मों की बातें जिनमें आपको नजर आए हैं फौजी या युद्ध। गणतंत्र दिवस के मौके पर यह हमारी विशेष पेशकश है। सन 1991 नाना पाटेकर ने बनाई फिल्म प्रहार। इस फिल्म का हीरो एक फौजी है जो अपनी निजी जिंदगी में भी जंग लड़ता है।

सन 1995 अशोक कौल लेकर आए अपनी देशभक्ति फिल्म परमवीर चक्र। ये फिल्म भी फौज और उसके संघर्ष पर आधारित थी। साल 1997 में निर्माता निर्देशक जेपी दत्ता लेकर आए अपनी फिल्म बॉर्डर। इसके सितारे थे सनी देओल, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, सुदेश बेरी, पुनीत इस्सर, कुलभूषण खरबंदा, तब्बू, पूजा बत्रा और श्रावणी वगैरह। ये फिल्म सन 1971 में हुई लुंगेवाला की लड़ाई पर आधारित थी। चूंकि बात जेपी दत्ता की चली है तो आइए उनकी एक और फिल्म की बात करते हैं। साल 2003 में कारगिल युद्ध पर वो लेकर आए अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म

जेपी दत्ता ने एक के बाद एक कई ऐसी फिल्में बनाई जिनकी पृष्ठभूमि युद्ध है। साल 2018 में उन्होंने बनाई फिल्म पलटन। ये 1962 के हमले के बाद सन 1967 में हुई नाथूला और चूला की लड़ाइयों पर आधारित फिल्म थी। साल 2004 निर्देशक फरहान अख्तर ने बनाई फिल्म लक्ष्य। ये फिल्म कारगिल की लड़ाई के परिदृश्य पर आधारित थी और इस फिल्म में संगीत था शंकर एहसान और लॉय का। जावेद अख्तर का लिखा ये गीत हमारी शिराओं में जोश भर देता है।

साल 2007 में अमृत सागर ने युद्धबंदी फौजियों की कहानी पर बनाई अपनी फिल्म 1971। इस फिल्म के हीरो थे मनोज बाजपेयी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है।

साल 2004 में युद्धबंदियों के परिदृश्य पर ही मिलन लुथरिया लेकर आए अपनी फिल्म दीवार। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे अमिताभ बच्चन।

साल 2004 में निर्देशक अनिल शर्मा ने बनाई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मुख्य कलाकार थे अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और बॉबी देओल।

साल 2005 में आई फिल्म टेंगो चार्ली। ये फिल्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के संघर्ष पर आधारित है जो उत्तर पूर्वी भारत में चल रही आतंकवादी गतिविधियों और हिंसा के खिलाफ लड़ाई छेड़ देती है। इस फिल्म के मुख्य सितारे थे अजय देवगन, बॉबी देओल, संजय दत्त और सुनील शेट्टी वगैरह।

0: आज के फनकार।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज थी युद्ध पर आधारित फिल्मों की बातें। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति तेजश्री कांबले।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती,
2: गीतों भरी कहानी। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए अलका अग्रवाल सिकतिया की कहानी उन्हीं के स्वर में। शीर्षक है अब गम नहीं।
3: जिंदगी एक कहानी ही तो है। हम आसपास जो देखते हैं हमारी कलम से शब्द बनकर वर्कों पर बिखर जाता है। कहानियां जीवन में न जाने कितने रंग लेकर आती हैं, है ना? कैसे हैं आप सब दोस्तों? आपके चेहरे पर मुस्कान है? नहीं है तो चलिए ना सजा देते हैं आपके चेहरे पर मुस्कान। जानती हूं मैं कि जीवन की आपाधापी में बहुत कुछ छूट जाता है। ऐसा बहुत कुछ होता है जिसे हम मिस करते रहते हैं, जैसे बचपन में सुनी हुई कहानियां जो हमने दादा दादी से सुनी होती हैं, नाना नानी से सुनी।

सुनी होती हैं। हमने ना जाने कितनी कहानियां पढ़ी हैं, जातक कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां, और ये सब कहानियां सुनकर पढ़कर हम सब उनमें डूबने उतराने लगते हैं ना। जी हाँ, देशभक्ति से जुड़ी भी ना जाने कितनी कहानियां हैं। अब 15 अगस्त आ गया है तो सोच रही हूँ क्यों ना इस अवसर पर आपके साथ वीरों की बातें हों, उनके परिवारों की बातें हों, उनकी वीरता की बातें हों, उनके आंसुओं की बातें हों, उनके मुस्कान की बातें हों। तो आज मेरी मानस पार्टनर कथा आपको कहानी सुनाएगी। करें कहानी शुरू। दोस्तों, मेरा नाम कथा है। मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि किसी आर्मी वाले से शादी करूं। किसी फौजी की फोटो देखते ही एक जोश भर जाता था। ऐसा लगता था बस अब जो कुछ करना है फौज में जाकर ही करना है, फौज के साथ ही करना है। मुझे लगता है ऐसा सिर्फ मेरे साथ तो नहीं होता ना। सेना और शौर्य की बातें सुनकर आप सब भी गर्व से भर जाते हैं ना। एक अलग सा जज्बा, एक जोश, एक ओज हमारे भीतर आ जाता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी को जब देशभक्ति के गीत सुनते हैं, अनहद आनंद मिलता है। बहुत से गाने हैं ना, जैसे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, मेरा रंग दे बसंती चोला, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ वतन, ऐ वतन। तो चलिए ना, क्यों ना आज इस मौके पर फिर से हम उस देशभक्ति के रंग में रंग जाएं और सुने इस सुंदर से गाने को।

दोस्तों, जब वीर गति पाने के बाद शहीद का शव तिरंगे में लिपट कर आता है तो क्या केवल उसके परिवार वाले रोते हैं? ये देखते हुए क्या आप दुखी नहीं होते? आप गमगीन नहीं होते? आपके भी आंसू बहते हैं ना? कितना खराब लगता है जब हम ये देखते हैं कि कुछ वीर शादी के बाद नई नवेली दुल्हन को छोड़कर, कोई छोटे से बच्चे को छोड़कर, तो कोई बूढ़े माँ बाप को रोता छोड़कर शहीद हो जाता है। उनका बलिदान कितना कुछ कहता है। हमेशा हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। उस माहौल में बहुत कुछ ऐसा होता है जो जुबां के हद से रिहा होकर हमारी आंखों से अता हो जाता है ना? बहते हैं ना हमारी आंखों से आंसू? क्या रिश्ता होता है उनका हमसे? क्यों वे हमारी सुरक्षा के लिए अपनी खुशी, चैन, सुकून सब कुछ बलिदान कर देते हैं? और न जाने क्यों तिरंगे में लिपटे उन वीरों को देखकर हमारी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। कुछ रिश्ते भगवान बनाकर भेजता है तो कुछ रिश्ते यहाँ बन जाते हैं। ऐसा ही रिश्ता है एक देशवासी का अपने फौजी से। कितना दुख होता है ना जब समझ में आता है जाते जाते भी शायद वे हमसे ऐसा कह रहे थे।

0: साथियों।
1: दोस्तों, आर्मी वाले से शादी करने का मेरा सपना तो पूरा नहीं हुआ, तो सोचा चलो क्यों ना पत्रकारिता के जरिए उनसे जुड़ जाऊं, उनके लिए कुछ इस माध्यम से कर पाऊं। और अपने इस प्रोफेशन के जरिए अक्सर मैं उनके बीच जाती रहती हूँ, कहीं से आंसू तो कहीं से गम बटोर कर अपनी झोली में भरती हूँ। बहुत सी कहानियां हैं उन वीरों की, उनमें से बहुत सी कहानियां मेरे दिल के पास हैं, क्योंकि मैं उनके परिवारों में उनके साथ रही हूँ, उनके पास जाकर उनसे बातें की है। आज आपको उन कहानियों में से दो कहानियों से आपको मिलवाती हूँ। जी हाँ, मेजर अर्शदीप चोपड़ा और कर्नल दीक्षित के परिवार से आज आपको मिलवाना चाहूंगी, और मिलवाऊंगी मैं आपको हमारी मन्नू से। मन्नू, मनु, मानविका, मानू, बहुत सारे नाम है उसके, बड़ी प्यारी है वो। हाँ हाँ बताऊंगी आपको उसके बारे में, लेकिन पहले मैं आपको मिला देती हूँ मेजर अर्शदीप चोपड़ा से। एक बार मैं रिपोर्टिंग के लिए कहीं गई थी, वहां मेरा मिलना मेजर चोपड़ा से हुआ। 6 फीट हाइट, गोरे चिट्टे, जिंदा दिल, आकर्षक व्यक्तित्व। उनसे मैं बातें करने लगी, वो भी मुझसे बहुत सी बातें करने लगे। तब मैंने उन्हें कहा, सर बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि बड़ी होकर आर्मी से जुड़ूं, आर्मी ऑफिसर से शादी करूं। सच बहुत प्रभावित होती हूं आप सबके जज्बे से। मैं बातें करती जा रही थी, उनकी तरफ देखा नहीं थी, अचानक जैसे ही मैं पलटी, मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे लगा शायद मेरी किसी बात से उनको दुख पहुंचा है। मैंने कहा, सॉरी सर, अगर मैंने कुछ गलत कहकर आपको दुखी कर दिया है तो। नहीं नहीं कथा, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन हाँ आज तुमने ये बात छेड़कर बहुत अच्छा किया। आज तक मैं किसी से नहीं कह पाया, न जाने क्यों तुम मुझे अपनी अपनी सी लग रही हो। मेरी कोई बहन नहीं है, बनोगी मेरी बहन? सर ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। इस बात पर उन्होंने प्यार से मेरा माथा चूमा, उनकी आंखों के आंसू मेरे माथे पर टपक गए। न जाने क्या था कि मेरी आंखों से भी आंसू गिर पड़े। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें रुला दिया कथा? नहीं, भाई की आंखें रोएंगी तो बहन की आंखों तक तो आंसू पहुंचेंगे ना सर। कथा, भाई का है तो सर क्यों कह रही हो? अब उनके चेहरे की मुस्कान फिर लौटने लगी थी। तो इस बहन को नहीं बताएंगे ये उदासी किस लिए? शायद मैं किसी काम आ सकूं? अच्छा चलो बताऊंगा तुम्हें सब कुछ। वो देवदार का पेड़ है ना, मुझे बहुत सुकून देता है, वहां चलकर बैठकर बातें करें। जी भैया जरूर। अच्छा मेरे थर्मस में कॉफी है, निकाल लेती हूँ। पसंद है आपको कॉफी? हाँ बहुत पसंद है। कॉफी का मग हाथ में लेकर भी बोले, पता है रूनू को भी मेरे जैसे कॉफी बहुत पसंद है। कहकर वे चुप हो गए, जैसे किसी सोच में डूब गए। लेकिन ये कहते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान और उदासी दोनों एक दूसरे में गड्ढमड्ढ हो गए थे। सर नहीं नहीं भैया, रूनू कौन है? रूनू? कथा, रूनू मेरी बेटी है, मेरी और शुभा की बेटी, जो अब 13 साल की हो गई है। मैंने हमेशा चाहा था कि हमारे घर में ना एक प्यारी सी परी सी बेटी आए। वो आई, बहुत खुश थे हम दोनों। मैं उसकी नेपी सेंध करता था, उसे लोरियां गाकर सुनाता था, नन्ही परी सोने चली, ना जाने कितनी लोरियां। उसके उसके लिए मैं एप्पल मैश करता था, क्या क्या नहीं करता था, सब कुछ कितना अच्छा लगता था मुझे। मैं और शुभा साथ में उसका हर काम करते थे, बिल्कुल एंजल सी लगती थी मेरी परी। उसके पास से मुझे हटने का दिल ही नहीं होता था, उसे मैं देखता ही रहता था और इंतजार था कि कब अपनी तोतली जुबान से वो मुझे पापा कहेगी। पर क्या भैया? कथा, आज तक उसने मुझे पापा नहीं कहा। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके समझदार होने पर मैं उसके साथ कभी नहीं रह सका। मेरी पोस्टिंग होती रहती थी, कभी यहाँ कभी वहां, और एक बार मैं सरप्राइज देने के लिए उन लोग के सामने यूनिफॉर्म में चला गया। बहुत छोटी सी थी वो, मुझे यूनिफॉर्म में देखकर वो अपनी मम्मा के पीछे दुबक गई। पता नहीं ऐसा उसने क्या देख लिया था, क्या समझ लिया था कि यूनिफॉर्म से डरने लगी थी मेरी परी, मुझे देखकर डर गई थी। डरती है मेरी परी मुझसे, अभी तक मेरा ये सपना पूरा नहीं हुआ। काश कभी तो वो मुझे पापा कहे। ये कहते कहते अचानक एक कॉल भी आ गया था।

उन्हें उठकर अचानक जाना पड़ा था और आंसुओं के बीच इससे ज्यादा शायद अब वे और कुछ कह भी नहीं पाते। मैं समझ गई थी, उनके भीतर एक ऐसा गम है जिन्हें अंदर ही अंदर दुखी कर रहा है। मैंने एक निर्णय ले लिया था, इसके बाद मैं एक बार उनके कमरे में गई। मेजर चोपड़ा वहां नहीं थे क्योंकि उन्हें फ्रंट पर जाना था। टेबल पर एक डायरी रखी थी जिसमें लिखा था, अधूरी कहानियों की डायरी जो तूने कभी नहीं पढ़ी मेरी रुनू। ये देखकर मेरी आंखों से आंसू टपक गए थे। भाई, इन अधूरी कहानियों को अब मैं मुकम्मल करूंगी, एक बहन का वादा है फौजी भाई से। इस घटना के 3 महीने बाद मेजर चोपड़ा फ्रंट से अभी अभी बंकर में आए थे। गहरे घाव थे, दर्द था। अचानक उन्हें एक वीडियो कॉल आया। उस वीडियो कॉल में ऐसा क्या था कि उनका सारा डर चला गया? जी हाँ, उनकी रूनू कह रही थी, पापा पापा, आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। मेजर चोपड़ा को लगा ये तो सपना है, लेकिन दोस्तों वो सपना नहीं, सच था। उनकी बेटी रूनू आज उनसे कह रही थी वो जो मेजर चोपड़ा सुनना चाहते थे, जो पापा सुनना चाहते थे अपनी एक बेटी से। पापा पापा, इस बार मैंने एनुअल डे पर आप रहेंगे ना हमारे साथ? मेरी मैम ने भी कहा है, दुश्मनों को याद दिला दी तुम्हारे पापा ने। मुझे बहुत अच्छा लगा पापा, सचमुच आप कितने अच्छे हैं पापा। मैं आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट बनाऊंगी, और ना पापा, मुझे एक स्टोरी भी लिखनी है पापा के ऊपर। मुझे पूरा विश्वास है पापा, मेरी स्टोरी फर्स्ट आएगी, क्योंकि मेरे पापा जैसा कोई नहीं है ना। जब मेरी बाकी फ्रेंड्स कहती थी ना अपने पापा के बारे में, पापा ऐसे करते हैं, पापा वैसे करते हैं, तो मुझे लगता था कि मैं अपने पापा के बारे में क्या कहूंगी, लेकिन अब मैं बताऊंगी, मेरे पापा जैसा कोई नहीं, उनके पापा मेरे पापा जैसे नहीं।

मेरी परी, इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है मेरे लिए? आपके मुंह से पापा सुन रहा हूँ। फिर बोलो पापा, बोलो मेरी बच्ची, पापा कहो, कहो मुझे पापा। रूनू ने कई बार कहा, पापा पापा पापा, मेरे पापा, मेरे पापा, आई लव यू पापा। उनकी पत्नी शुभा के चेहरे पर भी खुशी थी, मेजर चोपड़ा की आंखों में खुशी के आंसू थे, और एक प्रश्न भी था, आखिर ये हुआ कैसे? ये देखकर शुभा ने और रूनू ने कैमरे को कथा के चेहरे पर किया। मेजर सब समझ गए। रूनू ने कहा, पापा वैसे बड़ी अच्छी बुआ ढूंढी है आपने, बहुत क्यूट है कथा बुआ। कथा बुआ ने मुझे आपके बहुत सारे वीडियोस दिखाए, तब मुझे सब कुछ समझ आ गया। कितना दुख दिया ना मैंने आपको, आई एम रियली सॉरी पापा। नहीं नहीं बच्चे, नो सॉरी मेरा बच्चा, अब तो खाली खुश रहने की बातें कर, मैं जल्दी आऊंगा अपनी परी के पास। अरे कथा, तेरी आंखों में आंसू क्यों बहना? भैया ये आंसू भी ना मौका नहीं देखते, दुख में भी बहते हैं और खुशी में भी, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूं। मैं कैसे कुछ कहूं कथा, तुझे क्या कहूं, तूने क्या कर दिखाया मेरी बहन। सच अब कोई गम नहीं, मैं क्या कर पाऊंगा तेरे लिए, कुछ कर सकता हूं? भैया रक्षाबंधन पर हिसाब बराबर कर लूंगी बहुत सा प्यार लेकर। सोचता हूँ अब अपनी बहन के लिए आर्मी ऑफिसर ढूंढ ही दूं, क्यों? नहीं भैया, आप लेट हो गए, अब मैंने एक जर्नलिस्ट को ही पसंद कर लिया है। तो दोस्तों, ये कहानी थी मेजर चोपड़ा की, लेकिन बहुत ही खुशनुमा मंजर था उस दिन। हम सब बहुत खुश थे, मन में गाना जैसे बज रहा था, खुशियां ही खुशियां हो आंगन में।

दोस्तों, इस कहानी के बाद आपको एक और फौजी परिवार में लेकर चलती हूँ। वहां भी हैं कुछ आंसू, कुछ मुस्कान। आइए, भावनाओं के सागर में डूबते हैं। ये कहानी है कर्नल दीक्षित, उनके प्रिंसिपल पत्नी जानवी और प्यारी सी बेटी मानविका की। मैं उसको आपकी कहानी बताऊं, उससे बेहतर क्या ये नहीं होगा कि मानू, मानविका, मन्नू, जी हाँ, वो खुद आपको अपनी कहानी कहे, आपसे सीधी बातें करें। लेकिन हाँ, उसके पहले मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि मानविका मुझे मिली कहाँ और कैसे मिली। बात तब की है जब मैं चैनल की ओर से एक इवेंट कवर करने के लिए नैनीताल जा रही थी। काठ गोदाम से बस में नैनीताल की ओर हम जा रहे थे। मैं मेरी सीट पर अकेली बैठी हुई थी, बहुत कम लोग थे उस बस में, और वो मेरी बगल वाली सीट पर अकेले बैठी हुई थी, हौले हौले मुस्कुरा रही थी। कितनी प्यारी लग रही थी वो, न जाने क्या था उसमें जो मैं उसे देखने लगी। उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें कुछ लिखने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आज के किशोर जब फोन की रील्स बनाने में व्यस्त होते हैं, ये लड़की प्रकृति की खूबसूरती को देखते हुए कितनी खुश हो रही है, कुछ लिख रही है। कितनी सुंदर लग रही है वो प्रकृति को वर्कों में उतारते हुए। उसके सलोने चेहरे पर सपने संजे हुए दो बड़ी बड़ी आंखें थी, गालों में डिंपल पड़ रहे थे। न जाने क्यों मेरा मन उससे बहुत सी बातें करने को होने लगा। अचानक वो उसने मेरी ओर देखा, देखकर मुस्कुराई, मैं भी मुस्कुरा दी। उसे देखकर मेरे मन में न जाने क्यों ये शब्द उतरने लगे।

आगे जब बस रुकी, हम नीचे उतरे, उसने जूस लिया और मैंने चाय। पैसे देने के समय उसे पता चला कि उसका वॉलेट किसी ने निकाल लिया है। वो बहुत परेशान

हो गई। मैंने कहा परेशान मत हो, मैंने उसके रुपए भी दे दिए। फिर हम दोस्त बन गए, हम एक सीट पर साथ में बैठ गए। बातें करते हुए नैनीताल पहुंचे। न जाने कितनी बातें, पहली बार मिले थे पर हमारे बीच इतनी सारी बातें आ कहाँ से रही थी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। हम उम्र ना होकर भी हम बहुत करीब आ गए, इस बात से शायद और ज्यादा कि वो भी आर्मी बैकग्राउंड से है। जी हाँ, हमारी मानू भी आर्मी बैकग्राउंड से है। कुछ समय पहले तक जो दो अनजाने थे कितने अपने से हो गए, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज हम पहली बार मिले हैं। हमें पता चला कि हम तो एक ही शहर में रहते हैं, हमारे घर भी बहुत पास पास में हैं। उसके बाद कई मौकों पर हम मिलने लगे। मानू को मेरी मम्मी के हाथ की खीर बहुत पसंद आती थी, तो जब भी मेरे घर खीर बनती, मम्मी कहती मानू के घर खीर जरूर जाएगी। और मानू के घर जब भरवा बैंगन बनते तो आंटी यानी मानू की मम्मा मुझे जरूर बुलाती। मैं मानविका से उम्र में कुछ साल बड़ी हूँ, पर वो अपनी सारी बातें मुझसे साझा करने लगी। मैं उसके लिए दोस्त, बहन, न जाने क्या क्या बन गई। वो कहती, कथा दी, मेरा कोई सिबलिंग नहीं था ना, इसलिए भगवान ने आपसे मिलाया। इसके बाद अक्सर वो कई बार मेरे स्टूडियो आ जाती, कई बार मैं उसे अपने साथ आउटडोर पर ले जाती, कभी कभी मैं भी उसके पापा के साथ आर्मी के किसी प्रोग्राम में चली जाती। जब वो ये कहती ना कि भगवान जी ने मुझे आपसे मिलाया, बड़ी प्यारी लगती। उसकी इस मासूमियत पर मैं उसका माथा चूम लेती। आप उसके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं? तो जानिए भाई, हक है आपका। तो क्यों ना मानू यानी मानविका से ही सुन लें आप कहानी, उसी की जुबानी। मैंने आपको पहले बताया था ना कि डायरी लिखती है मानू, तो अब आगे की कहानी हमारी मानविका और उसकी डायरी के पेज ही आपको बताएंगे। मानविका डायरी में लिख रही है, मेरी प्यारी डायरी, तुम्हारे पन्नों पर मेरे सभी जज्बात दर्ज हैं। जब मुझे ठीक से लिखना भी नहीं आता था, कुछ भी उल्टा सुल्टा लिखती थी, तो तुम्हारे पन्नों पर तब भी तो मैं लिखती थी, कभी कुछ ड्रॉ कर देती थी। आज तुम्हारे साथ अपने पापा को एक लेटर लिख रही हूँ। पापा, आज आपकी बहुत याद आ रही है। आज मेरा मन कर रहा है मैं आपको उसी लेटर पैड पर लेटर लिखूं जो आपने मुझे मेरे सेकंड बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। पिंक बैकग्राउंड, गोल्डन पिंक फेडीज वाला, जिसमें चिड़िया और परियां बनी हुई हैं। आपको याद है ना, मुझे हर चीज पिंक चाहिए होती थी। आइसक्रीम पिंक, ड्रेस पिंक, स्लीपर पिंक, शूज पिंक, हेयर बैंड पिंक। पापा मेरे भाई नहीं है ना, तो आपको ही तो मैं राखी बांधती हूँ ना। पिछले रक्षाबंधन पर मैं आपसे गुस्सा हो गई थी, आपसे और मम्मा से, पता है ना क्यों? आप लोगों ने मुझे व्हाइट आइसक्रीम जो दे दी थी। लेकिन आप दोनों भी कम नहीं है, कुछ प्लान कर लिया था और आइसक्रीम में पिंक कलर डालकर उसे पिंक कर दिया था और मुझे खुश कर दिया। लेकिन मैं जानकर गुस्सा रहने का नाटक कर रही थी, क्योंकि मुझे आप लोगों का और ज्यादा प्यार मिलता। और तब आप दोनों मुझे प्यार करते हुए इस गाने पर मेरे साथ नाचने लगे थे।

के पेरेंट्स आते हैं ना, आप नहीं होते। और पापा, हर संडे ना मेरी दोस्त ना अपने अपने पापा के साथ घूमने जाते हैं, मैं नहीं जाती क्योंकि आप हमारे साथ नहीं रह पाते ना। पापा, जब आप आएंगे ना तब हम गार्डन में झूला झूलेंगे, आपके साथ मैं बाइक पर घूमूंगी। मैंने पूरी लिस्ट बनाई है आपके साथ क्या क्या करना है, जल्दी आओ ना, आपकी बहुत याद आ रही है। पापा, आप जहाँ रहते वहां गुड़िया मिलती है ना, मेरे लिए लाएंगे आप आंख मटकाने वाली गुड़िया? याद है बचपन में हम गाना गाते थे, सात समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से। अच्छा ठीक है ठीक है। पापा, मेरा 9th बर्थडे आने वाला है, आपने मुझसे वादा किया था ना आप मेरे बर्थडे पर आएंगे, क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरे बर्थडे को केवल कुछ ही दिन तो बाकी हैं। आप तो अपने मन्नू को कभी दुखी नहीं देख पाते ना, याद है ना? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं पापा, आप दुखी मत हो, डोंट बी सैड। हाँ मैं नहीं रोऊंगी क्योंकि ना अब मुझे समझ में आ गया है कि आप जल्दी जल्दी क्यों नहीं आते हमारे पास। मम्मा ने मुझे बताया कि मेरे जैसे बहुत से मन्नू हैं, अगर मेरे यानी मन्नू के पापा फ्रंट पर नहीं लड़ेंगे तो उन सब मन्नू के पापा उनके पास नहीं रह पाएंगे। कोई बात नहीं पापा, मैं आपको चिट्ठी लिख रही हूँ ना, वो मैं आपको भेजूंगी, वो आप पढ़ लेना। हाँ, और मम्मा ने ना मुझे वो गाना दिखाया था जिसमें चिट्ठी पढ़कर ना सारे सोल्जर्स ये गाना गाते हैं।

पापा, अब जो मुझे समझ में आया ना कि आप मेरे बर्थडे पर हमारे साथ क्यों नहीं होंगे, तो कहना चाहती हूँ आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। कोई बात नहीं है, मेरा बर्थडे मैं आपको वीडियो कॉल करके मना लूंगी, ठीक है? अच्छा पापा, आपको पता है आपके मन्नू ने क्लास में टॉप किया है और कथक डांस में भी ना मैंने लेवल 1 कर लिया है। पापा, मैं भी आपके जैसे सोल्जर बनूंगी। और कल हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, आप तो जानते हैं ना आपकी मन्नू हर प्रोग्राम का हिस्सा होती है। आप सोचेंगे कि मैं क्या करने वाली हूँ। पापा, मैं सोल्जर बन के परफॉर्म करने वाली हूँ अपने इस फेवरेट गाने पर, नन्हा मुन्ना राई हूँ देश का सिपाही हूँ। अरे पापा, आपको ये भी तो बताना है कि मम्मा ने मेरे ऊपर एक और कविता लिखी है, और जब भी मुझे याद आती है ना आपकी, मैं उदास होती हूँ ना, मम्मा मुझे गले लगाकर बहुत सा प्यार करती है, फिर एक नई कविता सुनाती है और फिर मुझे खुश कर देती है। आपको पता है आपके

0: मन्नू भी ना मम्मा जी से थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करने लगी है। आप आएंगे ना तब मैं आपको सुनाऊंगी मैंने क्या लिखा है। लगता है मम्मा कॉलेज से आ गई हैं। मुझे मम्मा से बहुत सारी बातें करनी, वो भी बहुत सी बातें बताएंगी। और मैंने जो कविता लिखी है ना मम्मा को पहले सुना देती हूँ, आप आएंगे तब आपको सुनाऊंगी। सॉरी पापा, चिट्ठी बीच में छोड़कर गई, लेकिन मम्मा को कविता सुनानी थी, मम्मा थक कर आई थी, उन्हें पानी देना था, ग्रीन टी बनानी थी। मैं ना धीरे धीरे किचन का काम सीख रही हूँ, जब आप आएंगे ना आपको कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाऊंगी। ओके, पता है पापा मेरी कविता सुनकर मम्मा बहुत खुश हुई और मुझे बहुत सा प्यार किया, मुझे कहा जूही की कली, चांद की किरण, पता नहीं क्या क्या, बहुत अच्छा लगा मुझे। पापा आज मेरा 9th बर्थडे है, बहुत मिस कर रही हूँ आपको। कोई बात नहीं, मम्मा मुझे आज गर्ल्स ऑर्फनेज लेकर जाने वाली हैं, हम ना गर्ल्स के साथ में वहाँ अपना बर्थडे मनाएंगे। पता है आज मैंने पहली बार नमकीन बिस्किट का स्नैक्स बनाया उन बच्चियों के लिए, और मम्मा ने केक घर पर बनाई है। उन्हें पता है ना मुझे मलाई वाली केक बहुत पसंद है, आपको भी अच्छी लगती है ना। दो केक बनाई है, एक हम ऑर्फिनेज में काटेंगे और एक हम घर आकर वीडियो कॉल करेंगे आपको, तब काटेंगे। ओके पापा, अभी फिलहाल इतना, फिर बाद में बात करती हूँ, बाय। आज 1 महीने बाद आपको चिट्ठी लिखने का फिर से मन कर रहा है पापा। उस ऑर्फिनेज की बच्चियों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा था, उन लोगों ने मेरे लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया, एक प्रेयर भी की थी, हमने उनके साथ बैठकर खाना खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं घर आई मैं बहुत खुश थी, क्योंकि आपके साथ वीडियो कॉल पर बात करनी थी तो वो एक्साइटमेंट भी था। लेकिन जब हम घर पहुंचे तो घर का दरवाजा खुला हुआ था, अंदर से म्यूजिक की आवाज आ रही थी, हमारा ड्राइंग रूम भी सजा हुआ था, हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बजने लगा था अचानक। अरे मम्मा तो मेरे साथ गई थी, ये सब पीछे से किया किसने? और तभी सरप्राइजिंगली आप बाहर निकले थे, आपके साथ बहुत सारे आर्मी वाले अंकल भी आए थे। पापा अपना वो बर्थडे मैं कभी नहीं भूल सकती, मम्मा भी मेरा बहुत ध्यान रखती, लेकिन आपके आने से ना मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, एक अधूरापन खत्म हो जाता है। आप सबने कितना सुंदर डांस किया था, हम सब कितनी मस्ती कर रहे थे ना, कितना अच्छा लगा था हमें उस दिन।
1: हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई लाता गुड़िया मोटर रेस, तो कोई लाता फिरकी लट्टू, कोई चाबी का टट्टू।

0: अड़ जाते जैसे अड़ियल टट्टू
1: और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू।
2: सच्ची पापा, आई एम द लकीस्ट डॉटर। आप दोनों मुझे कितना प्यार करते हैं ना। एक दिन की छुट्टी मिली थी, आप मेरे लिए घर आ गए थे। कितना प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए, और आप लोगों ने मेरी गलती के लिए मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। याद है एक बार दादी हुई थी, उस दिन बैंगन की सब्जी बनी थी, मैं मुंह फुलाकर बैठ गई थी, और तब आपने मजेदार एक्टिंग करते हुए गाना सुनाया था, आलू कुचालू कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। मैं खिलखिलाकर हंस दी थी, लेकिन भेल खाने की जिद पकड़ ली। दादी ने कहा, विश्वा बड़ा सिर चढ़ा लिया तुमने बिटिया को, इसे दूसरे घर जाना, इतने नखरे ना चलने वाले। और तब आपने कहा था, आसमान में उड़ेगी, आसमान की परी है हमारी बिट्टू, शादी करेगी तो करेगी, ना मन होगा तो ना करेगी। अरे अम्मा गुस्सा छोड़ो, चलो मोटर में बैठ के चौपाटी जाएंगे, भेलपूरी खाएंगे। हम चौपाटी से भेल खाकर आ गए थे, बहुत मस्ती की थी, लेकिन न जाने क्यों मेरा मन बहुत उदास हो गया था। मैं 13 साल की हो चुकी थी। दादी की इस बात ने मुझे बुआ की बात याद दिला दी जो कुछ दिन पहले उन्होंने कही थी। भैया भाभी, आपके तो बस एक बेटी है, कैसे वंश चलेगा आप लोगों का। तब आपने कहा था, जिज्जी यही हमारी बेटी है, यही हमारा बेटा है, आप देख लेना जिज्जी, मेरे जैसे देश की सेवा करेगी मेरी बेटी, नाम रोशन करेगी मेरा। इसका नाम मानविका है, लेकिन हम मन्नु कहते हैं, लक्ष्मीबाई का नाम मनु था ना। हमारी मन्नु हमारी राजकुमारी है, हमारा राजकुमार भी। मैंने उदास होते हुए पूछा, पापा मैं आप लोग का बेटा बन के पैदा क्यों नहीं हुई। बुआ कह रही थी ना, बेटे से वंश का नाम चलता है। तब आप दोनों ने मुझे प्यार से गले लगाकर नैनी वाली काकी के बेटे के बारे में बताया था। कितनी मन्नत के बाद उनके घर 4 बेटियों के बाद बेटा हुआ था, लाड़ प्यार में ऐसा बिगड़ा कि उसने घर ही बिकवा दिया। पापा आपने मुझे आर्मी में जा रही लड़कियों के बारे में बताया, तो मम्मा ने मुझे वो न्यूज़पेपर दिखाया जिसमें लड़कियों ने लड़कों को एजुकेशन में पीछे छोड़ दिया था। माँ ने अपनी एक कविता की लाइन के साथ मुझे गले लगाकर कहा था, बेटी मेरी मुझे तो तू खुद सुबह सी लगती है। अपने आगोश में समाते हुए आपने मुझे कहा था, मेरा अभिमान है मेरी बेटी। कितना प्यार किया था।

मैंने आपको सल्यूट करते हुए कहा था, पापा आपकी तरह मैं भी देश की सेवा करूंगी। अगले हफ्ते आपको फ्रंट पर जाना था, 3 साल बाद आप घर आने वाले थे। जब आप आए, एनडीए का ब्रोशर लेकर आए थे, उसे देखकर मैं खुश नहीं हुई थी। बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई। आपने एक बार कहा था ना, मन होगा तो शादी करेगी, ना होगा तो ना करेगी। लेकिन अब मैं एक बात कन्फेस करना चाहती हूँ, साथ में पढ़ने वाला एक लड़का मुझे अच्छा लगने लगा है। पढ़ाई में पहले की जैसे मन नहीं लगता, प्यार के गीत सुनने में अच्छा लगता है। अक्सर ये गाना मेरे दिल में बसता रहता है।

आप पहले आते थे ना, तो मैं आपके आसपास मंडराती रहती थी, लेकिन न जाने अब बहुत कुछ बदल सा गया मेरे भीतर। आप 3 साल बाद आए और मैं कमरा बंद करके बैठ गई, डायरी में रखा हुआ निशीत का कार्ड निकाल कर देखने लगी, उसकी बातों को याद करने लग गई, भूल गई कि आप घर आए हैं। निशीत को फोन लगाकर बात करने लगी। मम्मा ने 2 बार आवाज दी। मैंने निशीत से कहा बाद में बात करेंगे, दरवाजा खोला और चेंज करने के लिए ड्रेसिंग रूम में चली गई। जल्दबाजी में मैंने डायरी में कार्ड वैसे ही छोड़ दिया। मम्मा कमरे में आई, मैं जब ड्रेसिंग से निकली मैंने देखा वो मेरी टेबल के पास से जा रही हैं, शायद उन्होंने वो कार्ड देख लिया था। मम्मा को चुप देखकर मैंने आवाज दी, मम्मा। उनके हाथ में कुछ पेपर्स भी थे, लेकिन उन्हें वो वैसे ही लेकर चली गई। केवल इतना कहा, पापा खाने पर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। कुछ देर में जब मैं खाने की टेबल पर पहुंची, आप दोनों हमेशा की तरह नॉर्मल नहीं लग रहे थे। मुझे लगा था अब आप लोग एनडीए की बात करेंगे, या ऐसे ही किसी प्रश्न का इंतजार कर रही थी कि आपने कहा था मानविका। आप आगे कुछ कहते उसके पहले ही मैंने कहा था, पापा आपकी मन्नू अब मानविका हो गई। हाँ बेटे, हमारी मन्नू बड़ी हो गई है, हम उसे बच्चा ही समझते थे, लेकिन अब मानविका बन गई है भाई वो। तुम पे कोई प्रेशर नहीं, तुम जो चाहो करियर चुनो। मैं कहना चाहती थी कि मैं बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहती हूँ, पर कह नहीं सकी। एक उदासी सी पसर गई थी घर में। रात को जब मैं अकेली हुई, मुझे लगा मम्मा कितनी दुखी हुई होंगी, पापा कितने दुखी हुए होंगे मेरे फोकस को हटे हुए देखकर, और वो भी टीनेजर बेटी के फोकस को हटे हुए देखकर। मैं आप लोगों के कमरे में आ गई थी, फिर से वही छोटी सी मन्नू बनकर आपकी गोद में सर रख कर रोने लगी थी, पापा आई एम अ बैड गर्ल। क्यों बेटे, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? मैंने आप लोग को दुखी किया है ना, लेकिन अब वही करूंगी जो आप लोग कहेंगे, मम्मा ने लाड़ से कहा। अले मेरा बच्चा बड़ा सयाना हो गया। बच्चू तू हमें दुखी नहीं करना चाहती, पर हम ही गलत थे शायद, तुझे बेटी की तरह देखना ही बंद कर दिया था हमने, बेटा समझने लग गए थे। तेरी अपनी भावनाएं और इमोशंस है बेटी, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने तेरी डायरी पढ़ ली थी, कार्ड देख लिया था। तुझे भी तो हक है अपने जीवन में सपने देखने का, अपने राजकुमार के सपने देखने का। कब मिलवाएगी अपने राजकुमार से? ये बातें करते हुए हम कितने भावुक हो गए थे।

मैं आप लोग के साथ वहीं सो गई थी। सुबह जब मैं सोकर उठी 10 बज गए थे, रविवार था। मम्मा ने बैटरी देते हुए कहा, कथा का 2 बार फोन आ चुका है। चाय पीकर मैं अपने कमरे में गई। बालकनी में जाकर मैंने कथा दीदी को फोन लगाया, उन्हें सारी बातें बताई। कथा दीदी ने कहा, मानू मैं तो यही कहूंगी, तू प्रेम वेम के चक्कर में पड़ने के लिए भी बहुत छोटी है, इनफैटुएशन भी तो हो सकता है ना ये, और तेरे आर्मी में जाने के सपने का क्या जो तूने बचपन से पाल के रखा था। निशित अच्छा दोस्त है, उससे बात कर। कथा दी की इस बात ने मुझे सोच में डाल दिया। पापा अचानक आपको ज्वाइन करने जाना पड़ा था, मैं आपसे कुछ और बात करती उसके पहले ही, मेरे कॉलेज से लौटने के पहले आप चले गए थे। मैंने जब निशित से कहा, उसने कहा था, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ हूँ। आपका लाया हुआ एनडीए का फॉर्म हाथ मिले मैं कुछ सोच ही रही थी कि अचानक मम्मा की चीख सुनी, उनके हाथ से फोन लिया। ज्ञानी अंकल कह रहे थे, भाभी तुरंत आप लोग पहुंचे। मन में बहुत सारी शंकाएं लेकर हम हॉस्पिटल पहुंचे, पर बहुत सुकून मिला था जब आपको पूरे होश में बात करते देखा। बाद में पता चला आतंकी हमले में आपका दायां हाथ घायल होकर बेकार हो चुका है। मैं लगातार रोती गई थी, आपने मुझे खुश करने की कोशिश में कहा, निशित कैसा है? जवाब में मैंने एनडीए का फॉर्म आगे कर दिया, पापा मेरा सपना तो ये है अब, मेरी मनु कहकर आप अपने कटे हुए हाथ का गम भूल गए थे। इस बात को 6 महीने बीत गए। अगर मैं कभी उस आतंकी घटना का जिक्र करती, दुखी होती, तो आप कहते, क्या हुआ, फ्रंट पर नहीं लड़ सकता, ट्रेनिंग तो दे सकता हूँ ना? और आपने सीना चौड़ा करते हुए कहा था, बेटा सैनिक की जिंदगी में तो ये सब चलता रहता है, मैं कम से कम तुम लोग के साथ तो हूँ, और पुरानी बातों को लेकर दुखी नहीं होते, याद है ना वो गाना।

हाँ पापा, जो बुरा है उसे याद नहीं रखना, जो अच्छा है उसे जीना है। आप लोगों ने कहा ना, मेरा सपना है आसमान में उड़ना। जी हाँ, अब मैं जूंगी अपने सपने को। समय कैसे पंख लगाकर उड़ गया, पता ही न चला मेरा सिलेक्शन एनडीए में हो गया। जिस दिन मेरा सिलेक्शन एनडीए में हुआ, आप कितने खुश थे, मम्मा कितनी खुश थी। मम्मा ने नारियल की बर्फी बनाई थी, वो एल्बम निकाले थे जिसमें मैं पंछी बनी हूँ, परियों जैसे उड़ रही हूँ। मैं बचपन में कहती थी ना, मुझे भी चिड़ियों जैसे उड़ना है, परियों जैसे उड़ना है। उसके बाद मैं देवलाली ट्रेनिंग पर गई थी। पापा, मैंने आपको बताया था ना, देवलाली ट्रेनिंग से लौटते वक्त मैं ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी रिमझिम बारिश को देख रही थी, कसारा घाट को देख रही थी, नीचे ट्रैक पर काम करते लोगों को देख रही थी, दरवाजे पर खड़ी सांप के जैसे मुड़ती हुई ट्रेन को देख रही थी, कैमरे में उस खूबसूरती को कैद कर रही थी। तभी अचानक अंदर से तेज आवाजें आने लगी थी। अंदर कुछ गुंडे पैसेंजर्स को परेशान कर रहे थे, सब डर कर चुप बैठे थे। मुझे अचानक लगने लगा, ये वही आतंकवादी जिनके कारण आपको अपना हाथ गंवाना पड़ा था। मेरे अंदर की झांसी की रानी ने कहा, अगर आज मैं चुप रह गई तो आपका विश्वास टूट जाएगा और मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला सकूंगी। आपकी झांसी की रानी मन्नू ने तब सचमुच में झांसी की रानी बन करके वो लड़ाई लड़ी थी। उन गुंडों को मैंने छठी का दूध याद दिला दिया था। 1 महीने आप सबके साथ रहने के बाद मुझे ज्वाइन करने जाना था। प्लेन उड़ाते हुए मैं आपके सपने को जी रही थी, अपने सपने को जी रही थी, सोच रही थी, अगर मैंने इस सपने को छोड़ दिया होता तो कितना कुछ मिस करती मैं, कितना अधूरा सब कुछ रह जाता है ना। अब तो बस इंतजार है कि देश सेवा का बड़ा मौका मुझे मिले। मुझे और उड़ने जाना है तो मेरे साथ मेरी डायरी भी जाएगी, इसलिए मैं अब उड़ने जा रही हूँ। कथा दीदी से आगे आप कहानी सुने। जय हिंद।

दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी सभी मानविकाओं पर हमें गर्व है, उनके परिवारों पर गर्व है। उन सभी के परिवारों को एक गाना समर्पित करते हुए आपसे विदा लेती हूँ।

अब गम नहीं। ये थी अलका अग्रवाल सिकतिया की कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग सौरव घारू का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब आज का गीतों भरी कहानी कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर प्रस्तुत है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: प्राचीन काल से हिंदुस्तान में भाषा, धर्म, आहार विहार और भौगोलिक परिस्थिति में विविधता पाई जाती है। ब्रिटिश काल में भी राजकाज की सहूलियत को देखते हुए प्रांत रचना सीमित संख्या में थी। फिर भी सार्वजनिक रूप से आम जीवन में बोली जाने वाली 15 से अधिक ऐसी भाषाएं तो थीं जिनकी अपनी अधिकृत लिपि थी।
1: वंदे मातरम इस रचना की और उसके रचयिता की बात करें तो मातृभाषा बांग्ला और अंग्रेजी के ज्ञाता तो वे थे ही। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय गीरवाण भाषा संस्कृत के भी अध्येता थे। संस्कृत साहित्य का प्रभाव उनके साहित्य पर था। वंदे मातरम गीत का निर्माण एक सहज उमंग से हुआ था, इसलिए उसे भाषा के बंधन स्वयं बंकिम चंद्र भी नहीं लगा सके। यह गीत बांग्ला और संस्कृत भाषा का मिश्रण है, पर इसमें हर वाक्य में एक शब्द बांग्ला और एक शब्द संस्कृत ऐसा नहीं है, बल्कि इसमें कुछ वाक्य पूरे पूरे बांग्ला हैं। ऐसा होने पर भी इसकी प्रभावकारिता कहीं भी खंडित नहीं होती। वंदे मातरम का पहला अनुवाद बंकिम चंद्र जी के जीवन काल में ही हुआ और यह अनुवाद संस्कृत में किया गया था। विजयलाल दत्त द्वारा रचित जागो माँ आमार इस कविता में शुरुआत की कुछ पंक्तियों को जोड़कर वंदे मातरम का संस्कृत अनुवाद लेकर और फिर अंत में उन्होंने वंदे मातरम के महत्व को बताने वाली पंक्तियां जोड़ी। मूल गीत में जो पंक्तियां या शब्द बांग्ला के हैं केवल उन्हीं पंक्तियों को संस्कृत में बदला गया था। उदाहरण के लिए के बोले माँ तुमी अबले इसकी जगह कोह भिदंते मातर बले, उसी प्रकार बाहुते तुमी मां शक्ति के स्थान पर भुजयो स्तबमसी शक्ति चेतसी त्वमसी भक्ति ही सृजामिते प्रतिमूर्ति ही मंदिरे मंदिरे ऐसी पंक्तियां आई हैं। ऋषि बंकिम चंद्र द्वारा लिखे गए वंदे मातरम गीत में अधिकांश शब्द रचना संस्कृत में ही है, इसलिए इस अनुवाद में सभी पंक्तियां संस्कृत भाषा में रूपांतरित हो गई हैं और इसीलिए इसे पूरी तरह से स्वतंत्र पहला अनुवाद नहीं माना जा सकता।
2: ১৮৭৫ में ऋषि बंकिम चंद्र जी ने बंगाली मिश्रित संस्कृत में वंदे मातरम की रचना की, लेकिन उसमें निहित आशय के कारण मात्र बंगाल तक सीमित न रहकर वो काव्य पूरे देश का गीत बन गया। मूल गीत तो लोकप्रिय हुआ ही, परंतु अनेक भाषाओं के कवियों ने ये महसूस किया कि ये गीत उनकी अपनी प्रांतीय भाषा बोलने वाले सामान्य जनों तक पहुंचना चाहिए। अतएव उन कवियों ने अपनी अपनी भाषा में इसका अनुवाद भी किया।
0: गुजराती, तेलुगु और उर्दू जैसी भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में भी 9 से अधिक अनुवाद हुए। हर भाषा की अपनी विशेषता, अपना निरालापन होने पर भी बंकिम बाबू के मूल गीत की मधुरता बनाए रखने का प्रयास सभी ने किया।
3: आश्चर्य की बात यह है कि वंदे मातरम का पहला अनुवाद 1888 में यानी बंकिम चंद्र जी के जीवन काल में ही श्री अरविंद के दादा राज नारायण बसु ने अंग्रेजी में किया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसी अनुवाद के कारण वंदे मातरम के भाव पर शंका जताई गई। अंग्रेजों ने वंदे मातरम का संज्ञान इसी अंग्रेजी अनुवाद के कारण लिया। बाद में लगभग 17-18 साल बाद राज नारायण बसु के ही नाती क्रांतिकारी अरविंद घोष ने वंदे मातरम के 2 अंग्रेजी अनुवाद किए।
4: मदर, आई बाउ टू दी।
5: उसके बाद 6 और अनुवाद प्रकाशित हुए। उनमें से एक अनुवाद बंगाल के विभाजन की पृष्ठभूमि में 11 दिसंबर 1905 के इंडियन मिरर के अंक में प्रकाशित हुआ। उस पर कवि का नाम नहीं था। एक और अंग्रेजी अनुवाद द स्टेट्समैन के 1905 के अंक में प्रकाशित हुआ और उस पर ट्रांसलेटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल काउंसिल इन अमेरिका ऐसा छपा था।
4: Dark fields, babe, mother of might, mother free, glory of midnight dreams.
3: इन अंग्रेजी अनुवादों की एक विशेष बात ये है कि इनमें से एक अनुवाद ब्रिटिश अधिकारी W.H.L. लेफ्ट ने किया था, जिसमें विंध्य, दुर्गा, लक्ष्मी और वाणी इन शुद्ध हिंदी शब्दों का प्रयोग उल्लेखनीय है।
1: My motherland, I sing. Her splendid streams, her glorious trees, they zephyr from the far-off Vindhya Heights. Her fields of waving corn, the rapturous radiance of her moonlit nights, the trees and flowers that flame afar, the smiling days that sweetly vocal are, the happy blessed motherland, her will by 70 million arms upheld, her strength no man's scorn, thou art my head, thou art my heart, my life and soul art thou, my song, my worship and my art. Before thy feet I bow, as Durga, scourge of all thy foes, as Lakshmi, bowered in flower that in the water grows, as Vani, wisdom and power, the source of all our might, our every temple doth thy form uphold, unequaled, tender, happy, pure, of splendid streams, of glorious trees, my motherland, I sing. The stainless charm that shall endure, and verdant banks and wholesome breeze, that with her praises sing, my motherland.

0: सबसे अधिक अनुवाद अंग्रेजी में हुए। हिंदी साहित्यकारों पर भी वंदे मातरम का प्रभाव पड़ा। प्रसिद्ध हिंदी कवि मदनलाल वर्मा कांत और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत सुंदर अनुवाद किए हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी वंदे मातरम के कोटि कोटि कंठ वाले छंद का अनुवाद सुंदर हिंदी में करते हैं।
1: 30 कोटि लोगों की कलकल सुनी जहां पर जाती है, उसकी दुगुन खड्ग धारा की द्युति विकास जहां पाती है, तिस पर भी तू अबला है, ये बात व्यथा उपजाती है। हे तारिणी, हे बहुबल धारिणी, रिपु तू काट गिराती है, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
2: उर्दू भाषा में भी वंदे मातरम के 3 अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। उनमें से पहला काजी अब्दुल गफ्फार द्वारा किया गया अनुवाद दैनिक पयाम के उर्दू अंक में 7 अक्टूबर 1937 को प्रकाशित हुआ। प्रसिद्ध उर्दू शायर सीमाब अकबराबादी तथा कवि भानु ने भी उर्दू में अनुवाद किए हैं। उनमें से भानु द्वारा किया गया अनुवाद ये रहा।

तमिल भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। विख्यात कवि सुब्रमण्यम भारती ने दक्षिण में वंदे मातरम शब्दों का प्रचार अपने काव्य और कार्य से किया। भारत रत्न एम एस सुब्बलक्ष्मी ने भारती द्वारा किए गए अनुवाद को अपने मधुर स्वरों से सजाया था।

संध्या दीक्षित के कन्नड़ अनुवाद में मूल वंदे मातरम की नाद मेहता बहुत सुंदर ढंग से प्रकट हुई है। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म का अनुवाद करते हुए वे लिखती हैं, नी विद्ये नी ने धर्म, नम्म हृदय दी नी ने मर्म।

बड़ौदा के सावरकर अध्येता और युवा लेखक चिरायु पंडित ने मूल वंदे मातरम के समवृत्त में ही गुजराती अनुवाद अभी हाल ही में किया है। गायक जयदीप बेहरे, संगीतकार निखिल पालकर।

0: अंग्रेजी अनुवाद के बाद सबसे अधिक यानी 5 अनुवाद मराठी भाषा में हुए हैं। विष्णु रंगाजी शेरडेकर, जो गोवा के प्रसिद्ध कवि थे, उनके द्वारा किया गया अनुवाद संभवतः 1910 से पहले का है। वहीं पर वंदे मातरम के 125वें वर्ष के अवसर पर डॉक्टर प्रदीप आगाशे ने मुक्त छंद में वंदे मातरम का अनुवाद किया।
1: वंदितो माते तुलामी मातृभूमि आमुची, वर्णिता शब्द ही सुसेना ही अवस्था आमुची, पाणी आणि धान्य विपुल ही देसी सततची तू आम्हा, वायु लहरी शीतल अशा मलय शिखरा वरुणी ज्या, विपुल शेती शीतलहरी यामुळे श्यामल अशी, वंदितो माते तुलामी मातृभूमी आमुची।

मराठी के सुप्रसिद्ध कवि प्रवीण दवणे द्वारा हाल ही में समवृत्त में किया गया वंदे मातरम का अनुवाद विशेष चर्चित रहा है।

वंदे मातरम के इन अनुवादों के अलावा वंदे मातरम से प्रेरणा लेकर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, कविवर बेनी माधव, क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, स्वामी श्रद्धानंद के पुत्र कवि इंद्र, सरला देवी चौधरानी, मराठी में ग दी माडगुलकर, गुजराती कवि नानालाल और महाकवि वल्लतोल नारायण मेनन ने भी वंदे मातरम से प्रेरित होकर मातृ वंदना करने वाले गीत लिखे हैं। उनमें से मलयाली कवि महाकवि वल्लतोल का ये गीत

और अब वंदे मातरम का वो हिंदी अनुवाद संवित स्वरों में प्रस्तुत है जो रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष के इस विशेष संस्करण के लिए रचा गया है। अनुवादक कवि जयंत पात्रिकर, संगीतकार अजय पराड़।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वंदे मातरम के विषय में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा है,
1: वंदे मातरम, वंदे मातरम, एक गान नथी आशान बान अने आन आपणी, आजादीना महायज्ञनी आहुति आ, राष्ट्रभक्तिनी आहले का, गणतंत्रना उरतंत्रनो महामंत्र आ, विकासनी आ सतत धबकती अननम ओळख रहे आपणी, 1857 नो प्रकाश पुंज आ, सत्य काजे रक्तनो अभिषेक अविरत, वंदे मातरम ए शब्द नहीं आ मंत्र आपणो, आजादीनी ऊर्जानो धबकार आपणो, विकासनो आ राजमार्ग छे, संकल्पित आ राष्ट्र जीवननो महामार्ग छे, प्रजा जीवननी प्रत्येक प्रत्येक प्रभातनी प्रत्येक प्रबुद्ध चेतनानो स्वर आछे, वंदे मातरम। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

आप सुन रहे थे स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर, ममता सिंह, मंदाकिनी जोशी और यूनुस खान। अंग्रेजी, उर्दू और तमिल अनुवादों के रिकॉर्डिंग स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित जन गर्जय इस एल्बम से साभार। हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ अनुवादों के संगीतकार अजय पराड़, हिंदी अनुवाद के गायक भाग्यश्री अभ्यंकर, मानसी दीक्षित, ऋषिकेश केलकर और धनंजय पवार, तेलुगु अनुवाद गायिका अपर्णा केलकर, कन्नड़ अनुवाद गायिका अनुष्का आपटे, तकनीकी सहयोग किरण बंग, भावना सिंदल और समृद्धि नाइक, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी शक्ति दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है और ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। 80वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की जनता से अधिक विकसित, समृद्ध और उज्जवल पश्चिम बंगाल के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। श्री अधिकारी ने स्वतंत्रता दिवस पर राज्य की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। इनमें 13 ऐसे वीर शामिल हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हमलों में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेबनान और इसराइल में इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिणी लेबनान के इसराइली सैनिकों को लौट जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री अरबिंदो की जयंती पर स्मरण किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अरबिंदो को एक महान दार्शनिक, राष्ट्रवादी कवि और विचारक बताया। प्रधानमंत्री ने पारसी नववर्ष नवरोज के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि पारसी समुदाय के लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान ने देश को अनगिनत तरीकों से समृद्ध किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। गाल में श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 101 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। अपने सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। विविध भारती परिवार की ओर से हमारे सभी सुनने वालों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।

0: शंकर जय किशन की तर्ज थी शैलेंद्र का लिखा गीत, आपने सुना मुकेश की आवाज में। फिल्म थी जिस देश में गंगा बहती है।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक

0: प्रेम पुजारी फिल्म का ये देशभक्ति गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। नीरज की रचना थी, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
1: बैठ जा, खड़ी हो जा,
2: खड़ी हो गई।
3: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
4: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
3: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदार राज्याध्यक्ष आ रही हैं।
4: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
3: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सेहतनामा।

उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान फूटी जो कहर की नजर उस

आप सुन रहे थे शहीद फिल्म का ये गीत, मोहम्मद रफी और साथियों का गाया, प्रेम धवन की रचना थी और संगीत भी था प्रेम धवन का ही। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो हे, हम सारे हैं भारतवासी, सब हैं भारत।

0: जागृति फिल्म का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज में प्रदीप की रचना थी, श्रद्धा और हेमंत कुमार की तर्ज थी ये।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: गंगा की सौगंध फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आरती मुखर्जी, मोहम्मद रफी, अमित कुमार और साथियों की आवाजों में। अनजान के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी का संगीत था। श्रोताओं, यादों की महफिल कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां।
0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा सुरीला सफर। यह कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

विविध भारती से लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। इस कार्यक्रम में हम अपने सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोता, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को विविध भारती परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देश सलाम कर रहा है श्रोताओं, उन सभी वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने देश को सर्वोपरि रखते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। मां भारती को परतंत्रता की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए जाने कितनी ही यातनाएं सही, उन्हीं वीरों का गुणगान कर रही है आज चारों दिशाएं। ये स्वर्णिम दिवस हमारे शहीदों और स्वतंत्रता के दीवानों की याद से आज जगमगा रहा है। केसरिया बाने से सजे तिरंगे की शान चौकट को हम निहार रहे हैं और सलाम कर रहे हैं माँ भारती के उन होनहारों को, उन फौजी साथियों को जो आज सरहद पर डटे हैं, और साथ ही हम सलाम करते हैं उन कवियों को जिन्होंने ऐसे गीत लिखे, ऐसी कविताएं लिखी जो स्वतंत्रता सेनानियों में देशभक्ति और वीरता का जज्बा जगा देती थी, एक ओज भर देती थी कह सकते हैं। ये आजादी के रंग का गुलाल है साथियों, जो आज सबके मुख पर है। यकीन न हो तो देख लीजिए, इसी गुलाल में सराबोर सुरीला सफर के गीत आ गए हैं आपके रेडियो सेट पर। तो आज की इबारत जो इस खास दिन को लेकर हमने लिखी है, आपकी नजर करते हैं। आज मातृभूमि के श्वेत बादलों में केसरिया बाना पहने विजयी विश्व तिरंगा अपनी पूरी आन बान और शान के साथ लहरा रहा है। सलाम इस जानशीन तिरंगे को, आज हवाओं में बसंती बयार है। ओढ़ कर धानी चुनर सजा कर आजादी की मेहंदी, जैसे दुल्हन चली गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु का शंखनाद, ऋषियों के कमंडल जल से सिंचित आर्यावर्त हमारा प्यारा वतन हम सबकी शान है। वंदे मातरम की गूंज से आह्लादित चारों दिशाएं वंदन करती हैं उन वीर सपूतों का जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ये लहू आज गुलाल बनकर आसमां पे छाया है, क्योंकि वीर कभी मरते नहीं, वो खुश हैं हमारी मुस्कुराहटों में, जैसे पैगाम देते हों कि आजादी तूफान में कश्ती का सफर है। याद रहे जान तन रहे न रहे, हाथ से तिरंगा न छूटे याद रहे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर हमारे सभी श्रोताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

हंसराज बहल की तर्ज थी राजेंद्र कृष्ण की ये रचना। आपने सुनी सिकंदर आजम फिल्म से मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। श्रोताओ, इस गीत में आपने देखा होगा कि दो कलाकार नजर आते हैं रथ पर। ये कौन से कलाकार हैं आपको बताना है। स्वतंत्रता दिवस की हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी हैं, देश को भी, हमें भी, और हम भी यहां से तमाम शुभकामनाएं आपको प्रेषित करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की यादों की अगर बात करें श्रोताओं, तो जिनसे दिल कभी खाली नहीं होता ऐसा कह सकते हैं, आज मौका है, कह दीजिए अपने दिल की बात। तिरंगे की यादों, स्वतंत्रता दिवस की यादों में आपके दिलों में क्या क्या खजाना आज छुपा है ये आप बता दीजिए, और बचपन की बातें भी, स्कूल की बातें भी जरूर बताइएगा, और साथ ही आजादी के जो मायने हैं वो आपके लिए क्या हैं ये आपको बताना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, 15 अगस्त वो दिन है जब सदियों की गुलामी के बाद हमारे शहीदों के बलिदान से तिरंगा आजादी की सांस ले पाया था। आज हम खुली हवा में जी रहे हैं, वो किसी की आंखों का सपना और किसी माँ के बेटे की कुर्बानी। आजादी सिर्फ छुट्टी नहीं, एक जिम्मेदारी है देश को ईमानदारी, एकता और मेहनत से आगे बढ़ाने की। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर झंडे को हम सलाम करते हैं और साथ ही साथ मान रखते हैं उन सभी शहीदों का और हर कर्म में जिन्हें हमें जिंदा रखना है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज हमारी हवाओं में जो स्वतंत्रता है वो हमारे वीरों के बलिदान की सुगंध है। जब चारों ओर दिशाओं से वंदे मातरम की गूंज उठती है तो ऐसा लगता है मानो साक्षात प्रकृति उन वीर सपूतों की आरती उतार रही है। वंदे मातरम की तान लिए चारों दिशाएं डोल रही हैं, वीर सपूतों के शौर्य की गाथाएं खुद बोल रही हैं। मातृभूमि की रक्षा जिन्होंने शीश अपने कटाए, आज झुककर शीश वतन उनके वंदन को आए हैं।

0: मान।
1: बंकिम चंद्र की ये रचना आपने सुनी हेमंत कुमार की तर्ज थी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, आनंद मठ फिल्म का ये गीत था। हमारे श्रोताओं ने पिछले सवाल के जवाब में लिखा है कि प्रेमनाथ और प्रेम चोपड़ा नजर आते हैं रथ पर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक आपने बताया है। और इस गीत को किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया, जो अभी हमने आपको आनंद मठ फिल्म का सुनवाया। और आनंद मठ जो है श्रोताओं, ये एक रचना है, इस बारे में अगर आप हमें बताएं तो क्या ही बात है कि किसने लिखी। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि स्वतंत्रता, एकता और गौरव के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तिरंगा हमारी शान है, भारत हमारी पहचान है, वीरों के बलिदानों से मिली आजादी हम सब के लिए अनमोल वरदान है। एक और श्रोता ने लिखा है सुमधुर सुरीले गीतों और जो आज संदेश हैं वो पढ़े जाएंगे। और एक और श्रोता ने एक कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि दुल्हन चली पहन चली और जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। तो ये सारे गीत ये लिखा है इन्होंने। एक और श्रोता ने लिखा है कि देश की आजादी के लिए वीर शहीदों ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, उनके बलिदान को हम शत शत नमन करते हैं। हमारा भी कर्तव्य है देश के हित के लिए कार्य और ईमानदारी से हमें करना चाहिए। आपसी भाईचारा प्रेम सौहार्दपूर्ण व्यवहार से ही हम शांति पूर्वक जी सकेंगे। और कुछ गीत भी इन्होंने बताए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि रेगिस्तान की सरहदों पर मुस्तैदी से तैनात चौकस दृष्टि लिए हुए हमारे वीर जवान चट्टान की तरह अडिग रहते हैं। उन्हीं के कारण हम सभी भारतवासी सुरक्षित अपने घरों में चैन की नींद ले पाते हैं। आजादी के लिए हमारे कई जवानों ने देश की खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, ऐसे वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन। विजयी विश्व, तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे, हमारा इस गीत को इन्होंने याद किया है। और आपको श्रोताओं, जो बचपन की यादें हैं वो हमसे आज साझा करनी है। और

हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है, शहीद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी मन्ना डे और राजेंद्र भाटिया की आवाजें थी, यानी तीन स्वर थे श्रोताओं और तीन कलाकार भी थे इस फिल्म में जो आपको बताने हैं। अगर आपने फिल्म देखी है तो आप जरूर बताएं। और एक श्रोता लिखते हैं कि आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा देश मेरा है, मेरा स्वाभिमान सम्मान है, आज भी सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगा। देश के सम्मान को आंच लगे ऐसा होने न दें, मान सम्मान मिला है उसे टिकाना है। देश भक्ति गीत बहुत हैं, लेकिन सुंदर हमारा वंदे मातरम है, हमारी धरोहर है भारत माता का, हमें रक्षण करना है, माँ है तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे, जय हो, ऐसा ये लिखते हैं। और हमारे कुछ श्रोता जरूर ऐसे होंगे जिन्होंने देश प्रेम में कुछ न कुछ इबारत या कविता जरूर लिखी होगी, तो कुछ पंक्तियों में जो कविता आपने लिखी है वो आप हमें जरूर भेज सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज हम सुबह से ही देशभक्ति गीत सुन रहे हैं और कुछ ऐसे गाने जो हमारे भीतर साहस जज्बा हौसला मजबूती के साथ जो है इरादे हमारे उत्पन्न करते हैं। और अपने देश भारत के गायक गायिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने लगन और भाव से इन गानों को गाया है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पता नहीं लिखते हैं कि आज तमाम सारे शब्द जो हैं वो इबारत में है, बसंती दुल्हन विजयी विश्व तिरंगा ब्रह्मा वतन पैगाम तूफान जानो तन और तमाम शब्द के बारे में शब्दों के बारे में इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि भारत भूमि के वीर सपूतों के बलिदान को शत

शत नमन, हजारों बरस आपको सच्ची आंखों देखी कहानियों में गाथाएं आने वाली पीढ़ी को सुनाई जाएंगी। सरहद के जांबाज सैनिकों को नमन जो देश की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहते हैं। और सब देशभक्ति गीत मुझे पसंद है, मेरा रंग दे बसंती चोला, इंसान का इंसान से हो भाईचारा और किसी की मुस्कुराहटों पर, तमाम गीतों के बारे में इन्होंने लिखा है। आप ये गीत सुनिए श्रोताओं और बताइए जो हमने आपसे पूछा है कविता के बारे में, अपने स्कूल के समय के बारे में, आज आपने किस खास अंदाज में स्वतंत्रता दिवस को मनाया या मना रहे हैं, और क्या कभी आपका सपना रहा भारतीय फौज में जाने का।

न्यास आनंद मठ केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि भारतीय स्वाभिमान, मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम और त्याग की वो पावन ज्योति है जिसने गुलाम भारत के प्राणों में स्वतंत्रता की अद्भुत और अमिट अलख जगाई थी। ऐसा हमारे ये श्रोता लिखते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि रक्त प्रवाह तप्त और तीव्र हो जाती है ये गाना सुनकर, बहुत हुवीरसपूर्ण गीत है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि न जाने कितने ही वीर शहीद हुए, तब जाकर हम आजाद हुए, हंसते हंसते जान लुटा दी, भारत माँ को खुश कर दिया, तिरंगा लहराए हर घर में, गूंजे जय हिंद, और अपनी तमाम बातें इन्होंने लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आनंद मठ बंकिम चंद चट्टोपाध्याय की रचना है, वंदे मातरम उसी उपन्यास से लिया गया है। जी हाँ, ये सवाल हमने आपसे पूछा था। एक और सवाल हमने आपसे पूछा था श्रोताओं, क्या कभी भारतीय फौज में जाने का सपना आपका रहा, तो आप जरूर हमें बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस बचपन में स्कूल में मनाते थे, वो राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रध्वज को सलामी देना, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने का मजा, और पूरे गांव में रैली में निकालना, और फिर खाने को मिश्री चीनी मिलती थी, बहुत ही मजा आता था। आज तो बस मोबाइल पर ही मना लेते हैं, ऐसा नहीं है, आप बाहर निकलकर देखेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, देश वही और राष्ट्र वही, हमारा तिरंगा वही गुरूर से फैल रहा है। और आपको ये बताना है श्रोताओं कि जब हम स्कूल जाया करते थे तो वहाँ बहुत सारे कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के खास अवसर पर जो थे वो मनाए जाते थे और बच्चे उसमें भाग लेते थे, तो क्या आपने भी कभी भाग लिया है, ये आप बताएं। और एक सवाल जो हमने आपसे पूछा है, भारतीय फौज में जाने का आपका सपना, ये आपको जरूर बताना है। और स्कूल में क्या क्या मिठाइयाँ मिलती थी, बहुत सारे स्कूल में तो चॉकलेट्स भी मिलती थी, तो आपके यहाँ क्या मिलता था, क्योंकि लड्डू तो बहुत मिलते थे। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज देशभक्ति के गीतों से सराबोर रहेगा और जिन वीरों ने इस देश के लिए बलिदान दिया उनको सादर नमन, और अब हमारी जवाबदारी है कि इसको सहेज कर रखना। एक और श्रोता लिखते हैं कि अभी स्कूल से लौटा हूं, देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस बच्चों के बीच मनाया, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी दी, कितना गौरवशाली दिन है आज, दिलों में जोश है, चारों ओर हवा में नई ऊर्जा, नए प्राण की अनुभूति हो रही है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि दुल्हन चली, पहन चली, तीन रंग की चोली और क्रांति फिल्म के गीत को इन्होंने याद किया है, तो देखते हैं कि आज कौन कौन से गीत शामिल हैं कार्यक्रम में। वो कौन से कलाकार हैं श्रोताओं जिन्हें भारत कुमार के नाम से जाना जाता है।

भारत कुमार किन अभिनेता को कहते हैं? हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। जी हाँ, मनोज कुमार, बिल्कुल ठीक आपने बताया है श्रोताओं। और फौज का जो सवाल हमने आपसे पूछा था, सपना क्या आपने सजाया था, तो हमें जरूर बताएं। और फौजियों का एक खास ड्रेस कोड होता है श्रोताओं, यानी वर्दी जो उनकी होती है वो आपको कितना प्रोत्साहित करती है देश सेवा के लिए, ये आपको बताना है। एक हमारी श्रोता ने कविता की तरह से

0: लिखा है कि नमन करूं वंदन कर लूं मैं, ये माटी है वीर वीरांगनाओं की, इसे माथे से लगाकर चंदन कर लूं मैं, सदा सर्वदा अटल रहे मेरे भारत की प्रतिष्ठा, केसरिया श्वेत हरित वर्ण से सुशोभित ये तिरंगा प्यारा, गौरवान्वित इन क्षणों में इस ध्वजा को लहराकर अभिनंदन कर लूं मैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। और बड़ी ही सुंदर एक कविता की तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने बनाया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि ये गीत मनोज कुमार पर फिल्माया गया, उपकार फिल्म का बड़ा ही प्रसिद्ध गीत है, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आजादी का मतलब केवल राजनीतिक रूप से देश को अंग्रेजी या किसी बाहरी शासन के से मुक्त कराना नहीं, इसका वास्तविक अर्थ बहुत ही व्यापक है, जिसमें वैचारिकता, स्वतंत्रता, मानसिक मुक्ति और संविधान द्वारा दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है, ताकि हर नागरिक बिना डर के सम्मान से जी सके। जी हाँ, और संविधान का हम सभी को भी जो है बहुत बहुत सम्मान रहे। और एक और श्रोता लिखती हैं कि जब भी इन देशभक्ति गानों को सुनते हैं तो बचपन में वो स्कूल का नेशनल त्यौहार और स्कूल में दिखाई जाने वाली फिल्मों की याद आ जाती है। जी हाँ, स्कूल में तो बहुत सारी फिल्में दिखाई जाती थी श्रोताओं, और स्वतंत्रता को लेकर जो फिल्में बनी हैं हमारे देश में, उनमें सबसे ज्यादा पसंदीदा आपकी कौन सी फिल्म है, ये आप बता सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि अब की बार हमें मौका मिला, भारत भूमि का ताज श्रीनगर कश्मीर के ऐतिहासिक लाल चौक और बलिदान स्तंभ पर मेरी धर्मपत्नी और मैंने स्वयं तिरंगा को सलामी दी, तिरंगा वहां फहराया, वंदे मातरम गीत गाया, वहां तैनात सुरक्षा फौजी जवानों को जय हिंद और जय बाबा अमरनाथ कहा, और वीडियोज भी और फोटोज भी हैं इसके। एक और श्रोता ने लिखा है कि स्कूल के समय मूल राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने का सौभाग्य सदैव मुझे प्राप्त रहा, आज भी सुबह पुणे में अपनी सोसाइटी में ध्वजारोहण भाषण में व्यस्त रहा और दिन भर रहेंगे। इस गीत को आप पहचानिए श्रोताओ।
1: करता नहीं क्यों दूसरा कुछ

ये रचना किस फिल्म से है और किन की है ये आपको बताना है श्रोताओं। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन के उत्साह का तो कहना ही क्या, उस दिन स्कूल की तरफ जाने वाला रास्ता कुछ अलग ही लगता था, सब कुछ नया धुला धुला और फिर उस दिन मिलने वाले लड्डुओं का अनोखा स्वाद, क्या फिर कभी जीवन में दुकान से खरीदने पर फिर मिला वो स्वाद। आज के दिन उन वीरों को नमन करने का दिन है जिन्होंने अपनी शहादत से देश की रक्षा में अपने को तज दिया, उन वीर सैनिकों को सलाम जो कड़ी गर्मी, ठिठुरती ठंड और बारिश में सीमा पर प्रहरी बनकर खड़े रहते हैं, सबको मेरा नमन, ऐसा ही लिखती हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आजादी के जश्न में सबसे अधिक कोई इठलाता है तो वो है गोल गोल जो जलेबियां हैं वो, और तनो जलेबी जो है वो जगह जगह, यानी बिहार के बारे में खास इन्होंने लिखा है कि बिकी होगी, ऐसा होता होगा वहां, और सोसाइटी की तरफ से केसरिया रंग वाली घी की जलेबी ही आई। जय भारती, इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के दिन भोर की बेला में बचपन में एक अलग ही उमंग लेकर आती थी, सुबह सुबह जल्दी जागना, साफ सुथरे स्कूल ड्रेस को पहनना, सीने पर तिरंगे का बैच लगाना और प्रभात फेरी में गूंजते वंदे मातरम के नारे अपने स्कूल के दोस्तों के साथ लगाते, और आज भी मन को पुरानी यादों से भर देती हैं ये सभी बातें। और बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं कि स्कूल के सहपाठियों के साथ हाथ में राष्ट्रीय झंडा लेकर पूरे जोश और जुनून के साथ देशभक्ति के का नारा लगाना। एक और श्रोता ने लिखा है कि नमस्कार के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, 2.5 महीने अमेरिका में बिताने के बाद आज इस पावन पर्व पर ही घर वापसी हुई है, तो बहुत बहुत आपको भी बधाई। और हमारे तमाम श्रोताओं ने बहुत सारी बधाइयां दी हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था देशभक्ति कविताएं सुनाता था, मैं 15 अगस्त के पर्व पर स्कूल के हर प्रोग्राम में भाग लेता था, ये मैं कभी भूल नहीं सकता। एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में 15 अगस्त का दिन किसी त्योहार से कम नहीं होता था, सुबह सुबह स्त्री की हुई स्कूल ड्रेस पहनकर हम हाथ में तिरंगा लिए बेहद उत्साह से स्कूल पहुंचते, प्रभात फेरी में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाने का मजा ही अलग था, ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान के समय गर्व से सीना चौड़ा हो जाता था, देशभक्ति गीत, पीटी परेड और अंत में मिलने वाले जो समोसे थे वो बूंदी के लड्डू उस खुशी को दुगना कर देते थे। तो आज आप बताइए कि आज ये जो मिठाइयां हैं वो किस तरह से आप खा रहे हैं और क्या यादें हैं आज खास, क्या आज वापस बूंदी के लड्डू और जलेबियां मिली।

लीडर फिल्म का ये गीत किस कलाकार पर फिल्माया गया है श्रोताओ, ये आपको बताना है, और किन्हीं तीन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आप बताएं, और उनका नाम तो अवश्य बताएं जो 1857 में शहीद हुई और जिन्होंने झांसी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो ये नाम आपको बताने हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज स्वतंत्रता दिवस पर बस इतनी सी इच्छा है कि हमारा देश यूं ही प्यारा, भाईचारे और खुशियों से भरा रहे, और छोटे छोटे काम हम अपने देश के लिए करते रहें, थोड़ा और सुंदर इसे बनाएं और कोशिश करते रहें, और सिर्फ सलाम नहीं करना है बल्कि हर दिन अपने हिस्से का प्यार और जिम्मेदारी निभाना है, और देश के लिए अच्छे अच्छे काम करें, कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक आध कमेंट्स की और गुंजाइश बाकी है। तो ये हमारे श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने लिखा है स्वतंत्रता दिवस की हमारे जितने भी साथी हैं उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और मनोज कुमार वाली फिल्म शहीद मुझे स्कूल में दिखाई गई थी जब मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था, और फिल्म का एक दृश्य आज भी मेरे दिल में बसा हुआ है। जागृति फिल्म के बारे में हमारे कुछ एक श्रोताओं ने जो है वो कमेंट किया है कि बहुत अच्छी फिल्म थी।

हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उपकार फिल्म बचपन में सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से रोड पर सफेद पर्दा लगाकर दिखाई जाती थी, जिसे सड़क पर बैठकर घर से ही देखा जा सकता था। आज वह सब याद आ रहा है।

साथियों। एक श्रोता ने प्यारा सा कमेंट लिखा है कि मैं एनसीसी में थी और बचपन से ही देशभक्ति का जज्बा है, मेरा सपना था मेरे घर के बच्चे फौज में जाएं और मैं अपने पापा के साथ झंडा फहराने जाया करती थी।

शुभता से भरा स्वतंत्रता दिवस का ये खूबसूरत दिन आप सबको मुबारक हो। श्रोताओं, तिरंगे को हम एक बार फिर सलाम करते हैं।

मोहम्मद रफी के गाय फिल्म हकीकत के इस गीत के साथ ही सुरीला सफर कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, आप सभी को एक बार फिर विविध भारती परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।

आज त्रिवेणी की धाराएं मिल रही हैं स्वाधीनता दिवस पर। स्वाधीनता दिवस की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हम अपने देश के लिए कुछ बेहतर करें, अपने नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। आज़ादी केवल अधिकारों का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारियों को समझने और निभाने का संकल्प भी है। आइए हम अपने आसपास स्वच्छता, सद्भाव, समानता और भाईचारे को बढ़ावा दें, अपने कर्मों से देश को मजबूत बनाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर, सुरक्षित और संवेदनशील भारत का निर्माण करें। देश के प्रति सम्मान केवल एक दिन नहीं बल्कि हर दिन हमारे व्यवहार और कर्मों में दिखाई देना चाहिए। यही सच्चे अर्थों में आज़ादी का उत्सव है।

न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, बहने बाएं खम्भ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भारत एक विश्वसनीय वैश्विक साझेदार के रूप में उभर रहा है। कई देशों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कुछ देशों द्वारा संसाधनों का दुरुपयोग कर अपना वर्चस्व दिखाने के प्रयासों पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, भारत आत्मनिर्भरता की भावना से इस चुनौती का सामना कर रहा है। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इंडोनेशिया के पूर्वी तट पर आए 7.7 तीव्रता के भूकंप में 20 लोगों की मौत और गाले में श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट में भारत ने 1 विकेट पर 106 रन बनाए। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि AI शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों AI इंपैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
1: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की बदौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है।
1: इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे, 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार देश केवल संसाधन की कमी के कारण नहीं बल्कि सीमित सोच के कारण भी पिछड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत को कच्चे तेल पर निर्भर रहना पड़ा है और ये भी सीमित सोच का परिणाम था। श्री मोदी ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है।
1: हमने समुद्र तट पे समंदर के अंदर जाकर के एक्सप्लोरेशन न करने का निर्णय कर लिया था। ये सोच का दारिद्र था, हमने फैसला किया ये नहीं चल सकता। हमने उस 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया। हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 7-8 वर्ष में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर का निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है।
1: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे इस चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा हो जाए और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं।
0: स्वाधीनता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद अंतर सेवा और दिल्ली पुलिस के संयुक्त गार्ड ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं पहली बार लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किया गया। ध्वजारोहण के बाद भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर फूलों की बारिश की। इनमें से एक हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज था और दूसरे पर वंदे मातरम लिखा हुआ ध्वज था। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद NCC कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने वंदे मातरम का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। सेना, नौसेना और वायुसेना के कुल 2,500 कैडेट्स और मेरा भारत के स्वयंसेवकों ने समारोह में हिस्सा लिया। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5,000 विशेष अतिथियों ने लाल किले पर आयोजित समारोह में भाग लिया। इनमें PM विश्वकर्मा योजना के कारीगर, PM मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, PM स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले, भारत टैक्सी के चालक, स्वच्छ भारत मिशन के सफाई कर्मचारी और राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम से जुड़े युवा शामिल थे। लाल किले पर आयोजित समारोह का समापन आसमान में तिरंगे गुब्बारे छोड़ने के साथ हुआ। अनुपम और आनंद के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के कार्यों और उनके दृष्टिकोण से सदैव प्रेरणा लेती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक की प्रगति के लिए काम करती रहेगी, इससे देश प्रगतिशील और समृद्ध बनेगा। नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने राष्ट्र ध्वज फहराया और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा यह दिन उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता से राष्ट्र के विकास में योगदान देने और राष्ट्र को कमजोर करने वाली शक्तियों से दूर रहने की अपील की है। पश्चिम बंगाल में मातृभूमि के प्रति गहरे श्रद्धा के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है।
3: कोलकाता में मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित बंगाल विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकता है। रेड रोड परेड में राज्य सरकार की कई झांकियां प्रदर्शित की गयी जिनमें PM सूर्य घर योजना और विकसित भारत जी राम जी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया। राज्यपाल RN रवि ने बैरकपुर के गांधी घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कोलकाता से आकाशवाणी समाचार के लिए कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ मैं कुमार राधारमण।
0: जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्य समारोह श्रीनगर के प्रसिद्ध बख्शी स्टेडियम में आयोजित किया गया।
4: स्वतंत्रता दिवस के हवाले से सबसे बड़ा समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में हुआ, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आजकल के हालात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि आजादी के 80 साल बाद जम्मू कश्मीर का भारत का हिस्सा बनने का फैसला सही साबित हुआ है। इधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी श्रीनगर के लोक भवन में तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को बधाई दी। इस बीच जम्मू कश्मीर के सभी जिला मुख्यालयों में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित किए गए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: छत्तीसगढ़ में 80वां स्वाधीनता दिवस उत्साह, उल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली।
5: रायपुर में आयोजित स्वाधीनता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से नक्सलवाद के विरुद्ध ऐतिहासिक सफलता मिली है। माओवाद से मुक्त बस्तर में आज तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता का उत्सव मनाया जा रहा है। जो क्षेत्र कभी हिंसा और भय से प्रभावित थे, वहाँ आज शांति, विश्वास और विकास की नई सुबह हुई है। उन्होंने कहा कि बस्तर की सर्वांगीण प्रगति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। कभी माओवाद से प्रभावित रहे और अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुके राज्य के बस्तर संभाग के करीब 90 गांव ऐसे हैं जहाँ आजादी के बाद आज पहली बार स्वाधीनता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: केरलम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रध्वज फहराया। इसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की।
6: तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने परेड की सलामी ली। विभिन्न सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के साथ माउंटेड पुलिस, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड्स तथा स्टूडेंट पुलिस कैडेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस संदेश देने के बाद पुलिस, अग्निशमन और बचाव सेवा तथा कारागार विभाग के कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किए। कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान समारोह में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने परेड की सलामी ली। समारोह के दौरान नौसेना के जहाजों को झंडों से सजाया गया। इडुक्की में बांधों और नौका केंद्रों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए, जिनमें पर्यटकों ने भी भाग लिया। कोवलम बीच के निकट एक निर्जन द्वीप पर तटरक्षक बल ने भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया। स्मिथी एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: वैश्विक नेताओं ने भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों का उल्लेख किया है। इसराइल के राजदूत रूवेन अजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसीना, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कुलोन, नेपाल दूतावास, फ्रांस दूतावास, ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायुक्त ने भी भारत की विरासत, विविधता, आर्थिक क्षमता और बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देते हुए शुभकामनाएं दी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद स्वाले और मालदीव नेशनल पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद नाजिम ने भारत के विकास और मालदीव के साथ घनिष्ठ साझेदारी की प्रशंसा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इंडोनेशिया के फ्लोरेंस क्षेत्र के पास आज सवेरे आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से 20 लोगों की मौत हो गई। भूकंप से कई इमारतें ढह गईं। भूकंप के कारण 6 लोग घायल हुए हैं और 2 लापता हैं। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। लेबनान में आज सवेरे इसराइल के हवाई हमले में 7 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। मलबे में दबे लोगों को बचाने के प्रयास जारी हैं। लेबनान और इसराइल के बीच इस वर्ष 26 जून को बनी सहमति के अनुसार दक्षिण लेबनान से इजरायली सैनिकों को वापस जाना था। इसके बदले ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्ला गुट को हथियारों से मुक्त करने की पहल की जानी थी। गाले में श्रीलंका के साथ 2 मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 118 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। लाल किला पर पहली बार वंदे मातरम का गायन। प्रधानमंत्री ने गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI कौशल का प्रशिक्षण देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा

गंगा की सौगंध फिल्म का ये गीत था अनजान का, लिखा कल्याण जी, आनंद जी की तर्ज थी, आरती मुखर्जी और मोहम्मद रफी की आवाजें थीं।

0: दत्ता की तर्ज राजा मेहदी अली खां के बोल आशा भोसले और साथियों की आवाजें। फिल्म थी भाई बहन, इसी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा हुजूर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
4: पगड़ी

0: माल तेरा लुट गया माल पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल पगड़ी।
1: गीत और संगीत था प्रेम धवन का, मोहम्मद रफी की आवाज में शहीद फिल्म का गीत आपने सुना।

दीदी फिल्म का ये दो गाना आपने सुना, आशा भोसले मोहम्मद रफी का गाया, साहिर लुधियानवी के बोलों को सुरों में ढाला एन दत्ता ने। फिल्म सीमा का ये गीत है मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की तर्ज।

0: मोहब्बत जिंदगी है, सुनकर गीत आपने सुना। महेंद्र कपूर, आशा भोसले का गाया, सच बिहारी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था। श्रोताओं, यही थी आज के कार्यक्रम सदाबहार नगमे की आखिरी पेशकश।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी, यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कि हम तुम चोरी से बंधे।

आप हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग। विविध भारती से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम मन चाहे गीत।

लीजिए आ चुका है आपके रेडियो सेट पर विविध भारती का कार्यक्रम मन चाहे गीत। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हवाओं में खास रवानी है, आज दिलों में खुशियों का रंग है और आपके भेजे पत्रों में भी मन चाहे गीत का कुछ ऐसा ही इंद्रधनुषी रंग नजर आ रहा है। ये गीत आपकी पसंद के यकीन मानिए श्रोताओ रंग भरते हैं हमारे मन चाहे गीत कार्यक्रम में। तो देखते हैं आज हमारे किन श्रोताओं की पसंद मन चाहे गीत कार्यक्रम में झलकती है। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का ये दो गाना था लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। और फरमाइश भेजने वाले हमारे ये श्रोता हैं जिला अमरावती से, प्रवीण नगर से चंदू हातोले और सीमा हातोले की ये फरमाइश है। हमारे ये श्रोता हैं एम फारूख, पप्पू शेख और अल कुमार अफसानो महजमी मिर्जा, इनकी फरमाइश आई है गणेशपुर गंज डुंडवारा से। और सुब्रत चौधरी बेबी अनीशा मनीषा चौधरी ने कोलकाता से इस गीत को सुनना चाहा था। महावीर जैन, रूपाली, प्रीति, निधि और परी और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश आई है जैन गली कसूना से, और इस गीत को सुनना चाहते हैं। पुरानी सुनना चाहते थे पुरानी बस्ती ब्राह्मण पारा से चिंतामणि शुक्ला।

शंकर जयकिशन की बनाई तर्ज पर इसे गाया लता मंगेशकर ने। आप सुन रहे थे झुक गया आसमान फिल्म का गीत, शैलेंद्र का लिखा, श्रीनगर से सहारनपुर से ये पत्र है श्रोताओं, उत्तर प्रदेश से सुरेश नारंग, आशु नारंग, प्रतीक और सोनाली ने ये पत्र भेजा है। और धमनी मनोरा से हमारे श्रोता हैं तुलसीराम, संदेश, किरण, मायावती, आदेश और प्रज्वल डेरे की फरमाइश है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने पत्र लिखा है। वरोरा चंद्रपुर से हमारे श्रोता हैं लवकुश खाडिलकर, उमा देवी खाडिलकर, रोहित और प्रणीत खाडिलकर और चंद्रकांत सिंह साहू, सूर्यकांत, राकेश, शुभम और सावित्री की ये फरमाइश आई है धमतरी छत्तीसगढ़ से। और शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा ने इसी गीत को सुनना चाह रहा। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं श्रोताओं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

प्रेम धवन की रचना आप सुन रहे थे। मन्ना डे की आवाज में फिल्म काबुलीवाला के इस गीत को सुनना चाह था बुलंदशहर से मोहम्मद सईद, निखत परवीन, शहनवाज फरदीन और अफान अब्बासी की फरमाइश थी। बर्गीनगर जबलपुर से रविंद्र सुभाष, दिगंबर राजेश और शुभांग की फरमाइश ये है। श्यामनगर दुर्ग से प्रदीप खांडेलवाल और नीता खांडेलवाल इस गीत को सुनना चाहते थे। सुलेमान भाई, खलील इकबाल और महबूब ये हमारे श्रोता हैं चलाला कठियावाड़ के, और इसी गीत को सुनना चाहा गुरप्रीत सिंह तंगोरी जसवीर कौर ने, ये हमारे श्रोता हैं तंगोरी, अच्छा ये जगह का नाम है तंगोरी मोहाली पंजाब से हमारे ये श्रोता हैं गुरप्रीत सिंह और जसवीर कौर। और ये एक और इस गीत की फरमाइश है कटोल जिला नागपुर से सुरेश मलमकर और श्रीमती रजनी मलमकर की फरमाइश।

ये गीत आप सुन रहे थे सत्यम शिवम सुंदरम इस फिल्म से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, मुकेश की आवाज थी। संबलपुर कांकेर से फागुन राम और ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और ईशिका यादव ने इस गीत को सुनना चाहा था। अलीवाड़ा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से देवीराम इनवाती और दामिनी इनवाती की फरमाइश आप सुन रहे थे। जमशेदपुर से चिन्मयी महतो, रेखा महतो ने इस गीत को सुनना चाहा। और ये हमारे श्रोता हैं लोहारा बालोद के अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तमूरिया, राधिका प्रभा देवी और ये हमारा हमारे श्रोता हैं हिच्छा महासमुंद से, अदालत दास मानसी, शांति ऋचा गायत्री।

खानदान फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर का गाया, नक्शलालपुरी के बोल थे, खयाम का संगीत था, जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, अभिषेक नायडू की फरमाइश आई, इस्लामपुर जिला बुल्ढाणा से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर ने इस गीत के लिए पत्र लिखा। लोहेड़ी महोबा के हमारे श्रोता हैं उत्तर प्रदेश से, जयपाल यादव, इंद्रपाल, अरविंद, राघवेंद्र, रिया, रेणु, देव्यांशी, रोनिका और रागिनी यादव ने इस गीत को सुनना चाहा। शीतला नगर दुर्ग के हमारे श्रोता हैं शिवचंद्राकर भगवान और पार्वती राधा चंद्राकर भी यहीं से, और इस गीत के लिए एक और पत्र भेजा अवधेश गुप्ता, भोलू नीलू, शालराज और वंशराज ने। ये हमारे श्रोता हैं गर्ल्स स्कूल रोड बनिहारी से।

चिराग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी का गाया, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। रिधोरा से बाबूलाल बुराकड़े, गोकुला बुराकड़े, मंगेश की फरमाइश थी। अकोले महाराष्ट्र से श्याम संतानी, आशा नैन्सी, सुमित की फरमाइश थी। लचनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति और अनल साहू की फरमाइश ये थी। और हमारे डब्वाली हरियाणा के श्रोता हैं जेके बकोलिया, सुनीता बकोलिया, मीनू बकोलिया और जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, ज्योति शुभम और भावना, ये हमारे श्रोता हैं मोटक्का मूर्ति जिला खंडवा के। और इन्हीं गीतों के साथ संपन्न होता है आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम। भेजते रहिए अपने पत्र श्रोताओं, क्योंकि आपके पत्रों का रहता है हमें इंतजार। स्वतंत्रता दिवस की एक बार फिर बहुत सारे शुभकामनाओं के साथ लेते हैं इजाजत इस कार्यक्रम से। आप सभी को संगीता श्रीवास्तव का

0: भाई भाई शेखर, ये सर्दी तो लगता है फिर से पलट गई है। इतनी ठंड तो दिसंबर में भी नहीं थी।
1: कल रात से रुक रुक कर पानी बरस रहा है, बाहर निकलने की तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। मिस्टर निगम, आप एक कॉफी और लेना पसंद करेंगे?
0: क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। लेकिन सुनिए, बस दूध की कंजूसी मत कीजिएगा। आई लाइक कॉफी विद लॉट ऑफ मिल्क, कॉफी और ले।
1: मतलब?
0: मतलब कॉफी विद मिल्क, आई सेड इट इन फ्रेंच।
1: फ्रेंच। अच्छा एक बात बताइए, ये फ्रेंच पढ़ना छोड़ क्यों दिया आपने?
0: जब मेरी जगह उस थुल थुल बनर्जी को फ्रांस भेजा गया तो फ्रेंच पढ़ना तो छोड़ना ही था।
1: ये लीजिए गर्मा गर्म अपनी कॉफी और ले।
0: थैंक यू वेरी मच। भाई लगता है कि मौसम इस बात से बहुत नाराज है कि आखिर हम इस ठंड को चुपचाप सहने की बजाय कॉफी के प्याले को हथियार बनाने पर क्यों तुले।
1: निगम साहब, प्रकृति ने जब चाहा बेरहमी से कुचला ही है हमें।
0: नो मिस्टर शेखर, हियर यू आर रॉन्ग। कितनी बेरहमी आदमी ने प्रकृति पर दिखाई है तो क्या कम है? जस्ट फॉर सम पक्स वी हैव वर्चुअली रेप्ड द एनवायरनमेंट। पहाड़ों पर पूरे के पूरे जंगल काट डाले, पूरे के पूरे जंगल। बरसात का पानी है कि रुकता ही नहीं। बाढ़ आने का एक बड़ा कारण है ये, और उधर जंगलों में पूरा का पूरा मैदान साफ कर दिया। तुम्हें याद है ना वो क्या नाम था उसका, वो सिन्हा के लड़के प्रदीप का केस?
1: हाँ, वो फॉरेस्ट ऑफिसर
0: जी, वो इस सब के खिलाफ था, रोकना चाहता था ये सब। मगर जब एक बार उसने अवैध लट्ठों से भरे हुए ट्रक को पकड़ा तो जानते हो क्या हुआ? न जाने लट्ठों को बांधने वाली रस्सी कैसे खुल गई और लट्ठे भारी आवाज के साथ उसे रौंदते हुए आगे तक फिसलते चले गए। इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, यू नो, ही वॉज किल्ड।
1: पुअर चैप। निगम, ये जो डेजर्ट है ना अफ्रीका का, सहारा, इसके बारे में भी कहते हैं कि यहां पर पहले मीठे पानी का सोता था, हरा भरा जंगल था।
0: ये सब बातें सुनकर के तो ऐसा लगता है शेखर, मानो हम सब मेज कुर्सी पर नहीं, हड्डियों को छील कर बनाए गए ढांचे पर बैठे हो।
1: एक बात कहूं, प्रदीप की बीबी सोनाली के साथ बहुत बहुत बुरा व्यवहार किया सिन्हा ने।
0: अरे भाई, सास ससुर थे नवे, और प्रदीप का मरना तो मानो सोनाली की मर्जी से हुआ।
1: अब तो सोनाली ने शादी कर ली।
0: उसका हस्बैंड एक्सपोर्टर है, अच्छा काम है उसका दिल्ली में, और भाई वो भी बहुत खुश है। लेकिन एक बात बताऊं शेखर, वो प्रदीप को भूल नहीं पाई।
1: प्रदीप ऐसा था ही नहीं जिसे भूला जा सके। अरे कौन है बाहर?
2: कौन है बाहर? ए कौन है बाहर? अरे कौन है बाहर?

0: पहले पूछा कौन है भाई, बोलता क्यों नहीं है?
1: अरे हम है बाबूजी, बरसात से बचे के खाते।
0: अरे हद होती है, बरसात से बचना है तो कहीं और जाओ भाई, और साथ में कौन है तुम्हारे?
1: चलो हजूर, हमारे घर के ही बच्चे हैं।
0: अरे भाग जाओ तुम लोग, चलो भागो यहाँ से।
1: हजूर तेरी बरसात खत्म हो जाए।
0: मैं कहता हूँ अभी बाहर जाओ, इडियट्स, निकलो बाहर।
2: अरे अरे भाई शेखर, जरा बरसात तक।
0: अरे नहीं यार,
3: तुम समझते नहीं हो, बरामदे में तमाम तरह के गुलाब लगा रखे हैं मैंने, एक नहीं बचेगा, सब तोड़ ले जाएंगे ये लोग। अरे देखो तो, इनकी हिम्मत तो देखो, गेट खोलकर अंदर आ गए।
2: अरे भाई दरअसल ठंड इतनी ज्यादा है बाहर की।
3: करते हो निगम, तुम भी ठंड है तो कहीं और जाएं।
0: अरे सुना नहीं तुम लोगों ने, कुत्ता है घर में, छोड़ो क्या?
1: जाते हैं बाबू जी, जाते हैं, चलो कहीं और।
0: बताओ भला, गेट खोलकर अंदर घुस आए थे? कम से कम 8 तो बच्चे होंगे साथ में, वो क्या पता बच्चे चुराने वाला ही हो। लो अब इन चक्करों में आग ही बुझने लगी है, 1-2 लकड़ियां और डालनी पड़ेंगी। निगम ये क्या बजाने लगे तुम?
2: क्यों, उस खांसने वाले आदमी की तरह ये भी तुम्हें नापसंद है क्या?
3: अरे नहीं नहीं, क्या बात करते हो, वाकई ये तो बड़ा खूबसूरत म्यूजिक है।
2: शेखर मैं जब मध्य प्रदेश में था तो वहाँ के आदिवासियों का लोक संगीत टेप किया था मैंने।
3: हाँ हाँ, वो एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के
2: डॉक्टर मूले।
3: ओह यस
2: एक्जेक्टली, माय गॉड, देयर म्यूजिक इज

0: खाना बजाना इन आदिवासियों के जीवन का सबसे चटक और पक्का रंग है।
1: निगम, इन लोगों को देखकर हमेशा हमेशा मुझे ऐसा लगा मानो आज भी इस देश का एक टुकड़ा आदिम युग में जी रहा हो।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं शेखर, ऐसा नहीं है। हर जगह एक वर्ग जरूर अपनी सोच और मानसिकता की वजह से आदिम युग में ही है। अब सोनाली के साथ ससुर सिन्हा को क्या कहोगे तुम? बोलो, विल यू कॉल देम मॉडर्न?
1: नो, कम से कम मैं तो नहीं कहूंगा।
0: अरे ये क्या हुआ?
1: लगता है इस तूफान की वजह से कोई पेड़ गिरा है।
0: हाँ, ऐसा तो नहीं कि कोई ट्रक या बस खड्डे में गिर गई हो?
1: वैसे आवाज तो बहुत भीषण थी, अब इतनी बारिश और तूफान में जाकर देखना भी असंभव। अब छोड़ो यार, सुबह पता चल जाएगा।
0: मामला तो कुछ सीरियस लगता है यार।
1: वो कोयला खदान में तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गई?
0: नहीं नहीं, फॉर गॉड से ऐसा नहीं हो तो अच्छा है। अरे भाई, इंजीनियर मैं हूं, मुझे ही धरा जाएगा।
1: शोर तो बढ़ता ही जा रहा है।
0: वैसे खदान में अगर कुछ होता तो
2: शाम, शाम, शाम,
0: मर गए।
2: शाम, क्या बात है बहादुर? शाम,
0: हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ बहादुर?
2: शाम,
0: क्या हुआ, क्या बहादुर?
2: शाम,
0: अरे भाई बहादुर, इतने घबराए हुए क्यों हो? कुछ बोलो भी।
2: शाम, शाम, शाम, वो
0: क्या, शाम, क्या, वहाँ वहाँ कहाँ?
2: शाम, शाम, शाम, शाम, वहाँ।
0: अरे भाई रो क्यों रहे हो, हुआ क्या? अरे कुछ बोलोगे भी?
2: शाम, शाम, वहाँ
0: कहाँ बहादुर?
2: अरे शाम, शाम, वहाँ कोयला खान, कोयला खान में शाम।
0: कोयला खान में क्या हुआ? कोयला खान में
2: शाम, कोयला खान, कोयला खान में अंदर की दीवार से पानी आ गया साहब।
0: पानी आ गया,
2: मजदूर लोग वहां अंदर फंस गया है साहब।
0: कितने होंगे
2: साहब? बहुत साहब, मर गया होगा साहब।
0: अरे मरेंगे तो अब हम
2: क्या बोले साहब?
0: नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा सुनो, तुम चलो, मैं भी आता हूँ।
2: चलो जल्दी आ साहब,
0: चलो वहां लोगों से कहो मैं भी फौरन ही पहुंच रहा
2: हूं। जल्दी आ साहब, जल्दी आ साहब।
0: गॉड, जो सोचा था वही हुआ।
1: मेरे ख्याल से बरसात की वजह से कोई खान ढह गई है।
0: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है, हो सकता है अंडरग्राउंड वाटर किसी दीवार को फाड़कर खान में घुस आया हो। मेरे ख्याल से तो हम शायद ही बचा पाए किसी को। रेनकोट भी नहीं है यहाँ पर।
1: ये लो छाता, मैं भी साथ आऊं?
0: नहीं नहीं, रहने दो, मैं चलता हूं। लेकिन, लेकिन इस आधी तूफान में बाहर निकलना, जिसका डर था वही। हजार बार मना किया था कि इस खान में काम बंद कर दो, बंद कर दो, पानी भरने का खतरा है। लेकिन जब तक कोई भरे नहीं, किसी के कानों में जूं तक नहीं देखती। और अब सब मुझे ही नोच डालेंगे। खैर, जाना तो पड़ेगा ही। अरे साहब आ गए। अरे मनोहर, अरे भाई मनोहर, कैसे हुआ ये सब?
3: अरे क्या बताएं साहब, खान नंबर 3 में पानी भर गया है, बगल की दीवार ढह गई, वहीं से जमा पानी अंदर आ गया साहब। अच्छा? हम तो पहले ही कहते थे साहब, दीवार से पानी रिश्ता दिख रहा है, खतरा है।
0: अच्छा ये बताओ, कुल कितने लोग फंसे?
3: अरे साहब होंगे करीब 35।
0: 35?
3: साहब कुछ कीजिए। हाँ साहब कुछ कीजिए, नहीं तो एक नहीं बचेगा अंदर।
0: अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। ये बताओ चीफ साहब को खबर की कि नहीं?
3: हाँ जी साहब, वो शंकर गया है।
4: अरे निगम साहब, कहाँ गए आपके सेफ्टी मेजर? खदान में पानी भर चुका है, कैसे निकालेंगे उन्हें बाहर?
0: देखिए देखिए देखिए, मैं
4: आपसे कह चुका हूँ कि इस खदान के बगल में पानी भरा है, यहाँ पर काम बंद करवाइए। सुना
0: भाई, देखिए वो मेरी भी कुछ मजबूरी है।
4: हमारा एक भी आदमी मरा तो हम दिखाएंगे आपको कि मजदूर की ताकत क्या है।
0: अरे भाई देखिए देखिए, काम बंद करना है न करना चीफ साहब के ऊपर था।
4: अरे तो आप किस लिए हैं? कभी नजर आते हैं?
0: भाई देखिए देखिए, मेरी एक बात
4: सुनिए। देखिए क्या देखे, एक तो रहे 35 लोग फंसे पड़े, उनको निकालने का कोई साधन किया है आपने?
3: कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ।
4: मनोहर हम लोग खुद कर लेंगे।
5: मनोहर जी साहब, भाई लिफ्ट का क्या हाल है? चालू हालत में है कि नहीं?
3: साहब लिफ्ट है तो चालू हालत में, मगर मुसीबत यह है कि मस्जिद काफी अंदर फंसे हैं साहब, और आगे की सुरंग काफी नीची है, वहाँ पानी छत तक भर गया है। ऐसे में साहब लिफ्ट तक उन लोगों को कैसे लाएंगे?
5: क्या पानी अभी भी अंदर आ रहा है?
3: जी इस तरफ का पानी तो खान में उतर चुका है, पर लगातार बरसात से अगर मिट्टी पोली पड़ गई तो बगल के ताल का पानी भी अंदर आने लगेगा। साहब तब किसी को भी बचा पाना बहुत मुश्किल होगा।
5: क्या करूँ? अच्छा सुनो, कितनी गहराई पर होंगे ये लोग?
3: होंगे यही करीब करीब 450 फीट पर। ये शंकर आ गया साहब।
6: नमस्ते सर।
5: नमस्ते शंकर, वो तुमने चीफ साहब से बात की कि नहीं?
6: जी चीफ साहब ने कहा है कि आप उनसे बात कर लें।
5: मैं बात कर लूं?
6: जी।
5: अच्छा ठीक है, वो आने के लिए कुछ नहीं कहा उन्होंने? मतलब आ रहे हैं या नहीं?
6: जी नहीं, अभी तो घर ही पर है।
5: अच्छा मनोहर, तुम जाओ और 4 जनरेटर और पानी निकलवाने के लिए पंप और पाइप गोदाम से निकलवाओ जल्दी। और सुनो शंकर, तुम भी मनोहर के साथ जाओ, मैं चीफ साहब से फोन पर बात करता हूँ। कमाल है, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और चीफ यहाँ तुरंत आने की बजाय कह रहे हैं बात करो। पता नहीं बात क्या करनी है।
7: लीजिए साहब, चीफ साहब से बात कीजिए।
8: हेलो हेलो सर, सर मैं निगम, मैं यहाँ पर सर खदान नंबर 3 में 3 से बोल रहा हूँ। सर खदान में पानी भर गया है, करीब 35 लोग अंदर फंस गए हैं।
9: कब हुआ ये सर?
8: सर करीब आधा घंटा पहले।
5: सर यहाँ पर लोग बुरी तरह से एजिटेटेड हैं, मुझे तो लगता है कि ऑफिशियल्स का घेराव करने वाले हैं।
9: अंदर फंसे सब जिंदा हैं या मर गए?
5: मर गए सर? मतलब
9: निगम मरने से बेकार का पकड़ा खड़ा होगा।
5: सर वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन आप यहाँ सर तुरंत पहुँच जाइए प्लीज।
9: निगम डोंट टेल मी व्हाट टू डू, आई डोंट थिंक आई नीड एडवाइस फ्रॉम यू।
5: आई एम सॉरी सर, वेरी सॉरी सर, पर सर मेरा मतलब था इतनी बड़ी दुर्घटना सर, अगर अगर आप होते सर तो
9: निगम ये सब हुआ ही करता है, कोई नई बात नहीं है। उनको निकालने का कोई इंतजाम वगैरह करो, बस कोई मरे नहीं। यू गॉट दैट? आई वोंट बियर एनी कैजुअलिटी निगम।
5: बट सर सर सर, हेलो हेलो हेलो हेलो, नो फोन भी रख दिया। आई वोंट बियर एनी कैजुअलिटी, नॉनसेंस, जैसे जैसे मरना जीना भी मेरे हाथ में है। गॉड, इन लोगों के परिवार वाले भी पहुंच गए लगते हैं। अब तो लगता है पुलिस बुलवानी ही पड़ेगी। सर चीफ साहब आ रहे हैं ना?
7: आने की सोच रहे हैं अभी।
5: सर जनरेटर वगैरह मिला?
10: सर सर वहाँ गोदाम में ताला पड़ा है।
5: What?
10: जी चौकीदार के पास चाबी है, 2 लोगों को भेजा है चौकीदार को बुलाने।
7: ओ, अब ये चौकीदार कहाँ गायब हो गया इस समय?
10: अरे सर बरसात की वजह से शायद अपने क्वार्टर में हो, मनोहर भी गया है उसे लेने।
5: देखो देखो यहाँ तो भीड़ बहुत बढ़ने लगी है, अब तो मुझे लग रहा है कि इन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा।
10: सर सर मैंने मैंने पुलिस हेडक्वार्टर को फोन कर दिया है, पुलिस आती ही होगी।
5: पुलिस?
10: जी।
5: अच्छा ठीक है, अच्छा चलो हम लोग चलते हैं।
10: चलिए।
11: अरे
12: अरे अरे बचा लो मेरे बच्चे को, कोई बचा लो रे, कोई निकालो उसे, मेरे बच्चे को कोई निकालो, मेरे बच्चे को कोई निकालो रे।
5: देखिए देखिए आप लोग शांत रहिए भाई, आप लोग शांत रहिए, देखिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हंगामा शुरू हो गया आखिर, और ये चौकीदार भी चाबी लेकर पता नहीं कहां मर गया है। आने दो, सस्पेंड कर दूंगा बदमाश को। बदमाश अब तक तो काम शुरू भी हो गया होता। इधर ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है।
10: वो देखिए साहब मनोहर वगैरह आ गए।
5: अरे भाई मनोहर, वो क्या हुआ, चाबी अभी मिली?
3: अरे साहब वो चौकीदारी का पता नहीं चल पा रहा है। उसके दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ है, वो शायद किसी रिश्तेदार के यहाँ रुक गया था।
8: माय गॉड, लेकिन भाई जनरेटर वगैरह तो निकालना ही पड़ेगा ना मनोहर, तुम ऐसा करो जाकर के गोदाम का ताला तोड़ दो।
3: ताला तोड़ दे?
8: हाँ हाँ भाई तोड़ दो उसे।
3: अरे मदर साहब, गोदाम की बाकी माल की गारंटी?
8: साहब अगर आप साथ चले तो ठीक रहेगा। देखिए साहब, हम तो मामूली कर्मचारी हैं साहब। आप
1: भाई, अब मैं यहाँ देखूँ या वहाँ चलूँ?
8: साहब चले चलिए।
1: अच्छा ठीक है, हाँ चलो चलता हूँ मैं।
3: इन लोगों को तो शोर शराबे के अलावा और कोई काम ही नहीं है।
1: सुनो
3: जी,
1: हथौड़ा वगैरह तो है ना पास में?
10: हाँ साहब है।
3: साहब ये जो आदमी आपसे बहस कर रहा था ना, लक्ष्मण है, एक नंबर का बदमाश है। दो तीन बार तो साहब इसे कोयला चुराते मैंने खुद पकड़ा।
1: हाँ साहब। अच्छा तो मुझे बताया क्यों नहीं?
3: अरे क्या बताएं साहब, रोने गिड़गिड़ाने लगता है और फिर इसके साथ साथ बच्चे, और इसकी जोरू बहुत भली है साहब।
1: क्या सात बच्चे?
3: जी सात बच्चे। वो जो जूट मिले ना साहब भवानीपुर वाली, वहीं पहले वॉचमैन था, वहीं से निकाला गया है। चुराया होगा कुछ वहां भी। लो शंकर, चलो ऊपर से हथौड़ा निकालो तो भाई।
10: अच्छा
3: आइए साहब। अरे ये तो काफी मोटा ताला है। कमबख्त ये पाजी चपरासी इसी वक्त गायब होना था इसे। शंकर यार लगाओ तो चोट फिर।
10: हाँ
1: लीजिए साहब, टूट गया।
10: अच्छा चलो जल्दी सर फाटक तो खोलो।
1: हाँ सर।
10: अरे यहाँ तो बत्ती भी नहीं आ रही, यहाँ तो कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा।
3: हाँ कुछ।
10: अरे मनोहर, हाँ टॉर्च है तुम्हारे पास?
3: टॉर्च मेरे पास तो नहीं है, देखें शायद इस अलमारी में।
10: हाँ ढूंढो। मिल गई, मिल गई, टॉर्च मिल गई।
3: अच्छा साहब टॉर्च मिल गई।
10: देखो वो रहा जनरेटर। शंकर तुम पाइप उठाओ।
1: जी अच्छा।
10: अगर दो चार लोग और होते तो सहूलियत रहती। शंकर
8: जी
10: अभी देखो, अगर दो तीन लोग और अगर मिल जाए तो जरा सा बुला दो उन्हें।
8: जी अच्छा जी अच्छा।
11: अरे ओ बाबू
10: हर्षो, जरा जनरेटर और मोटर बाहर निकलवाने में हमारी मदद तो कर दो।
8: अब बैठो भैया,
11: लगाओ। आप रहने दें, हम निकाल लेंगे।
10: नहीं नहीं कोई बात नहीं। बाबू बाबू तुम पाइप ले चलो, लगाओ तो।
1: ये तो घूमता ही नहीं है।
10: शंकर
8: हाँ?
10: अरे भाई देखो ये पहिए के नीचे पत्थर तो हटाओ। मैं भी कहूँ कि जनरेटर आगे खिसक क्यों नहीं रहा। हाँ लगाओ जोर, चलो शाबाश।
1: अरे अब ये नारे क्यों लगने लगे साहब? लगता है चीफ साहब आ गए। अरे साहब लोग तो बेकाबू होते जा रहे हैं, अगर कोई मर गया तब तो लोग मरने माने पुतार हो जाएंगे। अरे मनोहर जल्दी जल्दी पाई बिछाओ। चीफ तो आए नहीं लगते। हाँ सर वो तो नहीं आए, तो क्या सर चीफ साहब के आने तक इंतजार करें?
10: नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है, मनोहर तुम मिलकर पाइप नीचे उतारो।
1: जी अच्छा।
10: शंकर चलो जल्दी खींचो पाइप।
1: जी समझो
10: मनोहर जल्दी करो, पाइप नीचे लटकाओ। और सुनो कम से कम चार पाइप का इंतजाम और करना होगा।
3: ठीक है सर, मैं और बाबू जाकर इसका इंतजाम करते हैं।
10: शंकर पाइप नीचे लटकाना शुरू करो।
1: ये लीजिए साहब, पाइप छोटा ना पड़ जाए।
10: सुनो कितने फीट नीचे होगा पानी?
11: अरे साहब करीब 400 फुट तो होगा ही।
1: 400 फुट?
11: पाइप 600 फुट लंबा है।
1: अच्छा
11: छोटा नहीं पड़े साहब। अरे बाबू जल्दी जल्दी हाथ चलाओ।
13: अरे निगम साहब जब लोगों की जान चली जाएगी।
8: अरे भाई अब क्यों शोर कर रहे हैं आप लोग? देखिए पानी निकलते ही लिफ्ट चालू कर दी जाएगी।
10: शाबाश शाबाश मनोहर, और तेजी से नीचे पहुंचाओ।
3: जी साहब जी साहब। सर लगता है पाइप पहुंच गया नीचे तक।
10: वेरी गुड वेरी गुड, चलो और थोड़ी सी मेहनत और करो।
8: अरे अरे अरे अरे भाई अरे अरे अरे ये पत्थर कौन देख रहा? अरे भाई पत्थर क्यों चला रहे हैं आप लोग? अरे पागल हो गए क्या? अरे देखिए बस आधे घंटे की बात है, पानी निकलते ही लिफ्ट चालू कर दी जाएगी।
3: अरे पागल हो गए आप क्या? जाने कौन भड़का रहा है साहब? मुझे लगता है ये लोग बढ़ते जाएंगे। आइए इधर आइए।
8: वो तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं पुलिस ने हल्का सा भी लाठी चार्ज कर दिया तो ये लोग तो और भड़क जाएंगे। सुनो तुम लोग पानी निकालते रहो, मैं जाकर के समझाता हूँ।
3: नहीं साहब, नहीं साहब, अरे आप मत जाइए साहब।

0: अरे कितना मना किया था साहब को,
1: भीड़ तो जैसे बेकाबू हो गई थी।
0: डॉक्टर कह रहा था खून बहुत निकल गया है।
1: उनके बेहोश होकर गिरने के बाद भी लोग उन्हें पांव से ठोकर मारते रहे। बच जाएं बस, और क्या चाहिए।
0: हम उन्हें चाहकर भी भीड़ से नहीं निकाल पाए।
2: डॉक्टर क्या कह रहा था?
1: सीरियस बता रहा था, सिर पर गहरी चोट है। अरे डॉक्टर साहब कमरे से बाहर आ रहे हैं।
3: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
4: ये मनोहर और शंकर कौन है?
0: हम हैं डॉक्टर साहब।
4: आप मनोहर हैं?
0: जी हाँ डॉक्टर साहब, और ये है शंकर
4: जी। देखिए उन्हें होश आ रहा है, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं।
0: अच्छा, होश आ गया।
4: मगर ध्यान रहे
0: जी,
4: ज्यादा बात मत कीजिएगा।
0: जी जी जी,
4: आइए।
0: चलिए जी, आइए आइए।
4: निगम, मिस्टर निगम, देखिए आपसे मिलने कौन आया है।
0: साहब, साहब, नमस्ते साहब।
3: नमस्ते साहब।
0: तबीयत कैसी है साहब?
3: मैं शंकर साहब। शंकर? हाँ साहब।
5: शंकर?
3: हाँ साहब।
5: शंकर
3: जी।
5: मनोहर?
3: हाँ साहब।
5: कौन?
3: यहाँ पर सब ठीक हो गया साहब।
0: हाँ साहब, सब ठीक हो गया।
3: पानी निकाल दिया गया साहब। सब सब आपकी तारीफ कर रहे हैं साहब। वो जिन्होंने आप पर हाथ उठाया था ना साहब, वो भी शर्मिंदा है
0: जी। बहुत शर्मिंदा है साहब।
5: कोई कोई कोई
3: नहीं साहब, नहीं साहब, कोई नहीं मरा, सभी को बचा लिया गया।
2: हाँ निगम, निगम, ये क्या हो गया है तुम्हें? हाँ निगम, निगम, तुमने तो हद कर दी उन लोगों के लिए अपनी जान।
5: शेखर, तुम समझते नहीं हो। शेखर, शेखर, शेखर, तुम समझते नहीं हो। शेखर, बरामदे में तरह तरह के गुलाब लगा रखे हैं मैंने, एक नहीं बचेगा, सब तोड़ ले जाएंगे ना, सब तोड़ ले जाएंगे।
2: निगम, I am sorry यार, मैंने तो यूं ही कह दिया था। Really? I'm very sorry.
5: ठंड है तो कहीं और जाए ना।
2: निगम,
5: कहीं
4: अब आप लोग इन्हें आराम करने दें, इनकी हालत अच्छी नहीं। Oh God! Nurse, hiya! Injection!
3: डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। मेरे साहब को बचा लीजिए।

अभी आप सुन रहे थे नाटक लगन। इसके लेखक थे रुमी सिराज, निर्देशन किया मुद्रा राक्षस ने। आकाशवाणी लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी कोरियोग्राफर जिनके कोरियोग्राफ किए गए गानों ने आपको जमकर थिरकाया है। उनके कई गाने ऐसे हैं जिनको सुनते ही आपके पैर मचल उठते हैं नाचने के लिए। आज के जमाने की महत्वपूर्ण कोरियोग्राफर्स में उनकी गिनती होती है।
2: प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, मत मिलन की लायो, प्रेम रतन।
1: आज बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान। इनसे बातचीत कर रही हैं विधि जैन। ये है इस बातचीत का दूसरा भाग।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने सुना कुछ ऐसी बातों को जो बातें बड़ी खूबसूरत थी। हम सुन रहे थे कैसे नृत्य करते हैं हमारे बड़े बड़े कलाकार और कैसे होती है शूटिंग और उसकी ढेर सारी बातें। जी, हम आज फिर से बात करने वाले हैं अपनी कला के साथ एक फिल्म को बड़े सुंदर से मोड़ तक लाने वाली एक बेहतरीन कोरियोग्राफर शबीना खान जी। स्वागत है आपका एक बार फिर से।
4: थैंक यू। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे याद किया, बुलाया, बिकॉज ये सबके दिलों की धड़कन है, तो मेरे दिल की बहुत बड़ी धड़कन है।
3: जी, विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
4: विविध भारती देश की सुरीली धड़कन।
3: जी, तो ये जो सुरीली धड़कन है, आज एक बहुत सुरीली देश की बेटी से बात करने वाली है, जिस बेटी ने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारा काम किया और बहुत सुंदर तरीके से पर्दे पर खुद नहीं उतरी, दूसरों से उतरवाया। तो हमारे बीच में शबीना जी आप हैं और आप एक बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और उसके साथ एक बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। तो इस सब में आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारी एक्ट्रेस के लिए काम किया है, इवन एक्ट्रेस को भी डांस करवाया है, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम हमने पढ़ा था, नाम था अमिताभ बच्चन।
4: बिल्कुल।
3: और उनके साथ कुछ तो बहुत अच्छे डांसर्स हैं जो अच्छा करते हैं, उनके नाम हमने पढ़े थे, पर उन नामों में कुछ नाम ऐसे भी थे जिन्हें डांस करते हुए शायद हम देखते भी हैं तो उतना समझ में भी नहीं आता है। उनसे भी आपने डांस करवाया, सनी देओल हैं, संजय दत्त हैं या और भी बहुत सारे, अनुपम खेर को भी आपने डांस करवाया है। ये बहुत सारे नाम है, इमरान हाशमी को आपने डांस करवाया है,
4: बोमन ईरानी
3: को,
4: डैनी डांसोंगपा।
3: जी, डैनी को कैसे, मतलब वो तो बड़े,
4: हमारी फिल्म थी ऊंचाई सूरज बड़जात्या जी की,
3: बहुत प्यारी फिल्म,
4: बहुत प्यारी फिल्म। नेशनल अवार्ड मिला है उनको एज ए डायरेक्टर उस फिल्म पे, एज ए कोरियोग्राफर मेरा नाम भी गया था जो मुझे नहीं मिला, बट कोई बात नहीं, मुझे रिवॉर्ड मिल गया।
3: नहीं, वो फिल्म ही इतनी खूबसूरत है,
4: खूबसूरत फिल्म बनाई थी, जो सोच थी उस फिल्म के पीछे,
3: वो उस उम्र के लोगों को एक प्रेरणा स्रोत है।
4: बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें ये था सवाल कि इनका एक गाना है, ये इतनी उम्र में पहुंच चुके हैं और उस उम्र में ये गाना अपने दोस्त को बर्थडे सेलिब्रेशन में ये गाना कर रहे हैं, जिसका नाम है केटिको केटिको सॉन्ग। हाँ। केटिको का मतलब होता है लड़की।
3: अच्छा।
4: हाँ, नेपाली
3: शब्द
4: लड़की
3: जी, जी।
4: तो फिर वो गाना की और पता चला कि ओ, डैनी सर को करना है, डैनी सर को डांस करवाना है, अनुपम जी को डांस।
3: जी, वही।
4: अच्छा, अब इनका सबका जो लेन देन था अमिताभ बच्चन के साथ था, जो इतने ग्रेसफुल डांसर साबित कर चुके अपने आप को, बोमन ईरानी, अनुपम खेर, डैनी जी, तीनों कह रहे हम कैसे करेंगे।
3: जी।
4: फिर उनको रिहर्सल करवाया। मैं एक चीज और करती हूँ, एक अपने असिस्टेंट्स को वो कैरेक्टर बना देती हूँ, उनको कहती हूँ आपको उनकी तरह जीना है।
3: अच्छा।
4: रिहर्सल हॉल में हम ये प्रैक्टिस करते हैं।
3: हाँ।
4: मेरा एक असिस्टेंट अमिताभ बच्चन बन गया, एक डैनी बन गया, एक अनुपम खेर बन गया।
3: हाँ, इम्प्रोवाइजेशन।
4: अब आप अपने कैरेक्टर के साथ जब हम एक्टर को करके दिखाएंगे, उनको अपना आप दिखना चाहिए उनके अंदर। फिर ये कहानी शुरू हुई और फिर हमने ये गाना किया और बहुत लोगों ने सराहा और शूटिंग के दौरान भी बहुत मजा आया इन दिग्गज कलाकारों को।
3: हम वो मजा जो है ना वो सुनना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए आपकी पसंद का दे दें, और तो इस गीत के बाद हम बताएंगे कि मजा क्या आया।
4: तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी तरफ से एक मेरा फेमस गाना जो मुझे बहुत पसंद है, अमिताभ बच्चन, डैनी डांसोंगपा, बोमन ईरानी साहब के साथ, अनुपम खेर जी, केटिको
3: केटी को। तो ये गाना हम सुनते हैं, लेकिन इसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि मजा क्या आया। हमें भी उस मजे को, उस मजे वाली जिंदगी को जीना है।
4: बिल्कुल बताऊंगी, हर एक कैरेक्टर के साथ आपको थोड़ा एक उस सफर पे ले जाऊंगी।
3: जी जी, चलिए तो सुनते हैं ये प्यारा गाना केटी को। और केटी को का मतलब होता है लड़की,
4: बिल्कुल पहाड़ी लड़की।
3: बहुत बढ़िया, चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: गाना तो सुन लिया, बहुत मजा आया। लेकिन इस गाने की जो बात आप हमारे यहाँ कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो उस वचन को पूरा
1: बिल्कुल
0: कीजिए और बताइए कि मजा क्या आया था।
1: तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन जी से शुरू करते हैं। अमित
0: बिल्कुल
1: जी के साथ मैंने एज एन असिस्टेंट काम किया हुआ है।
0: हाँ
1: मुझे गुड्डी बुलाते थे सेट पर,
0: अच्छा
1: उन्हें लगता था मैं जया बहादुर जैसी थोड़ी लगती हूँ, तो बोलते थे ए गुड्डी इधर आओ। मेजर साहब फिल्म का एक गाना था
0: जी
1: जो हम मैंने असिस्टेंट में किया था या नहीं, तो जब वो इस सेट पे आए
0: जी
1: तो उन्होंने कहा हम तो काम कर चुके हैं साथ में, तुम बहुत छोटी सी होती थी बड़ी हो गई।
0: गुड्डी बड़ी हो गई
1: तो मैंने कहा याद दिलाया कि सर मैंने इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफी शुरू की तो आपके साथ भी एक गाना किया है, वो राम गोपाल वर्मा का एक गाना था कम्मो कम्मो,
0: हाँ एक गाना सुना हुआ है जी जी
1: अमिताभ
0: जी
1: बच्चन और
0: जी
1: संजय दत्त वगैरह। तो हाँ अरे अरे हाँ तुम्हारे साथ तो काम किया है, बताओ बताओ क्या करना है। मास्टर जी, अब वो मुझे मास्टर जी बुलाने लगे सेट
0: गुड्डी
1: पे।
0: से मास्टर जी
1: वो अपनी दो कुर्सी लेकर बैठ जाते थे पैर पे पैर चढ़ाकर, अमिताभ बच्चन जब आपके सामने बैठा हो और आपने उनको करके दिखाना है, आप दिखाओगे मास्टर जी? ऐसे जी सर मैं करके दिखाऊंगी। तो मैं क्या लड़कों का डांस भी कर लेती हूँ, लड़कियों का भी कर लेती हूँ,
0: क्या
1: जब मैं
0: बात है,
1: लड़कों का करती हूँ तो उसी अंदाज में करती हूँ,
0: पूरा लड़का बन
1: पूरा
0: जाती
1: लड़का
0: हो।
1: बन जाती हूँ। मैं उनको कर कर दिखाई और वो खड़े हो गए, बोले इस साला, अपने कमर पे हाथ रख दिया और मुझसे कहे हम। तो मैंने कहा मुझे लगा कुछ गलती हो गई, मैं भागती भी गई, सर क्या हुआ, कुछ स्टेप चेंज करना है, कुछ भी आप बताइए जो करना है। मैं नहीं नहीं फिर वो चलकर आए मेरे साथ सेंटर ऑफ द स्टेज और कहने लगे सर प्लीज बताइए क्या किया मैंने, कुछ गया, तुमने इतना बढ़िया किया मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा।
0: जी
1: सोचिए उन्होंने मेरे कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट किया। ये है लेजेंड अमिताभ बच्चन,
0: ये
1: कि
0: बड़प्पन
1: अब
0: है।
1: आप सिखाओ मुझे। और फिर उन्होंने मुझसे सीखा। अब बोले डैनी और अनुपम तुम सब आ जाओ, देखा तुमने? हाँ सर हम तो रिहर्सल कर रहे 3 दिन से। तो ही सेड हाँ मैंने भी कल रात घर पे रिहर्सल किया था, उन्होंने एक दिन रिहर्सल किया था घर पे। सोचो इस उम्र में उन्होंने घर बुला के हमें रिहर्सल किया
0: जी
1: और सेट पे आके वो एकदम ऐसे हो गए और मेरा एनर्जी बूस्ट कर दी उन्होंने। कि जब अमिताभ बच्चन आपको ये कहता है, क्योंकि वो उनका तरीका है अपने मास्टर्स को डील करने का, उसी
0: नहीं वो
1: दिन
0: परंपरा है
1: हाँ
0: गुरु को गुरु बनाने
1: हाँ
0: की
1: और वो
0: जी
1: मुझे मास्टर जी कहते थे। तो सेट पे सब ऐसे परेशान, क्योंकि मास्टर जी आजकल कोई नहीं कहता
0: हाँ
1: कोरियोग्राफर्स को, बहुत कम लोग कहते हैं जो जानते हैं कि मास्टर क्यों कहते हैं
0: हाँ
1: मास्टर को। फिर उन्होंने एक अपना व्लॉग लिखते हैं वो, उन्होंने अपने व्लॉग में मेरे बारे में लिखा
0: अच्छा
1: और उस वक्त लिखा कि एक नन्ही सी बच्ची थी जो मुझे सिखाती थी और आज वो मेरी मास्टर बन गई, और आज वो एक फीमेल जो पूरे सेट को चला रही है, 1000 लोगों के सेट को, और वो मुझे भी ऑर्डर दे रही है। मुझे बहुत पसंद आता है जब ऐसे हमारी हमारी बेटियां यहाँ तक पहुंच जाती है।
0: क्या बात,
1: तब वो मेरे एक असिस्टेंट ने कहा कि सर ने लिखा, और मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो गई, मैं बहुत रो पड़ी, क्योंकि यही अचीवमेंट
0: वो
1: होती है।
0: चीज
1: मैं
0: आपकी
1: ये
0: आंखों में अभी भी दिख रही
1: हाँ
0: है
1: कि
0: जी
1: मैं बहुत खुश हो गई। ये थे अमिताभ बच्चन और फिर आते अनुपम खेर जी।
0: हाँ, उनका तो जानना है
1: उनका जो कॉमिक टाइमिंग है उसको कोई बीट नहीं कर सकता, वो इतने
0: बिल्कुल
1: कमाल के एक्टर है
0: जी
1: और उसके वो रुला भी देते हैं, वो हंसा भी देते हैं एक ही
0: पल
1: फ्रेम में,
0: में हाँ
1: पल में वो है। अब उनके लिए जो असिस्टेंट करके दिखा रहा था वो उस दिन आया नहीं, और मेरी एक लड़की असिस्टेंट थी एकता, और मैं अपनी लड़कियों को तैयार करती हूँ कि तुम्हें ये करना है, जब मैं कर सकती हूँ तो तुम भी करोगी, और उसने वो कर लिया। वो आई सेट पे, सर मैं अमित जी का करूँ तो उनका कर, और उस लड़की ने जब अनुपम खेर बन के दिखाया पूरा सेट, ताली बजाया, अनुपम जी सिटी बजाने लगे, बहुत खुश हुए, बोले बस कमाल अब मैंने ये करना है। और वो उछल उछल के सेट पे अपने स्टेप करते थे और पूरा सेट, उस गाने में ऐसा होता था कि एक भी जूनियर और एक भी डांसर, जैसे शॉट खत्म होता है ना तो हम लोग बाहर निकल जाते हैं, डांसर निकल जाते हैं,
0: जी
1: हाँ सेट में आ
0: जी
1: जाएंगे,
0: जी
1: जूनियर निकल, जूनियर्स बाहर ही नहीं जाते थे,
0: सब वहीं रहते
1: वहीं
0: थे
1: रहते थे, मतलब कि 500 लोग
0: मजा
1: वहीं खड़े हैं,
0: आता
1: 100 150 डांसर वहीं खड़े हैं
0: जी
1: और एक्टरों की रिहर्सल चल रही है, और हर बात पे वो हंस भी रहे हैं, वो
0: हाँ
1: ताली भी बजा रहे हैं।
0: हाँ
1: और बूढ़े डांसर्स थे हमारे पास, हमारे पास 60 70 के
0: हाँ
1: डांसर्स भी
0: हाँ
1: थे, और
0: हाँ
1: वो आगे आते थे और इनके साथ नाचने लग जाते थे। तो
0: जी
1: एक अलग माहौल था उस सेट पे।
0: जी जी
1: और उसके बाद डैनी सर
0: हाँ उनका भी जानना है, वो तो इस बड़े अलग टाइप का किरदार
1: वो
0: है,
1: सीधा
0: वो
1: बोल
0: कैसे
1: देते थे
0: करें।
1: आके कि देखो बेटा मैं भूल जाऊंगा, मुझे नहीं पता तुमने करना है मेरे साथ।
0: हाँ
1: तो कैमरा के पास हम लोग उनके लिए डांस करते
0: करते थे
1: रहते थे।
0: और वो कॉपी करते
1: और
0: थे
1: बोमन ईरानी भी, इतने बड़े कलाकार हैं, उनका भी एक अलग कॉमिक टाइमिंग चल रहा होता था, और वो बोलते थे उनका एक पोर्शन था जिसमें उन्हें लड़की बनना था, तो मैं जो बोलते थे तुम करके दिखाओ मुझे मैं तुम्हें कॉपी करूंगा। और फिर उनको केटी को ये दोनों इनको बोलते हैं
0: हाँ
1: और ये लड़की की तरह अदायगी
0: हाँ
1: दिखाते और
0: इधर
1: फिर मैं
0: आते
1: उनको
0: हैं
1: करके
0: जी
1: दिखाती। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस हम लेते हैं ना ऐसे लोगों के साथ, ऐसे कलाकारों के साथ काम करके, वो शायद मैं इतना बोलूं तो आप इमेजिन नहीं कर पाओ जो हमने जिया है।
0: फिर भी हम कुछ प्रतिशत तक तो पहुंच गए.
1: पहुंच गए. और फिर हमारे एक प्यारे से शर्मीले से डायरेक्टर साहब जो सूरज बजातिया जी है,
0: बड़ी सॉफ्टली बोलने वाले,
1: बहुत ही सॉफ्ट. और वो जब आते हैं इन सबको देखते करते हुए और वो मुझे ऐसे गले लगाते हैं, बहुत असर पे हाथ रखते हैं हर बार. बहुत अच्छा किया शबीना. तो ये कहानियां हैं जिनको हम जीते हैं, जिनके साथ हम सीखते हैं कि इस उम्र में भी उनकी जो एनर्जी थी, जो सीखने की, बच्चों की तरह वो उछलते थे रिहर्सल पे. अरे एक बार एक बार एक बार एक बार, अरे मैं गलत कर दिया, अरे मैंने, वो भूल जाते थे कि उनकी उम्र क्या है.
0: जी.
1: मैं कहती थी सर आराम से, नहीं नहीं करना है. वो जो बचपन है बहुत मजा
0: जी.
1: हमने उनसे सीखा कि कलाकार की कोई उम्र नहीं होती,
0: कलाकार कभी बूढ़ा नहीं होता,
1: बूढ़ा नहीं होता कभी. हाँ. वो हमेशा एक छोटा बच्चा ही होता है. तो आप गाना देखिए, आपको पता चले उसमें.
0: हाँ, उस गीत को देखने के बाद मजा हमको भी आया था. हम सब भी उसके साथ थोड़ा डांस किए थे कि जब ये डांस कर सकते हैं तो हम तो कर ही नहीं सकते. मैंने आपसे बात कर ली एक्ट्रेसेस के बारे में, यानी अभिनेत्रियों के बारे में. आपने हमारे पुराने जो दिग्गज हैं उन अभिनेताओं के बारे में भी बता दिया. एक अभिनेता है जिनकी हर फिल्म में शबीना का नाम लिखा ही हुआ है. साथ में शुरुआत कहाँ से हुई उनके साथ, और उसके बाद फिर शायद कोई फिल्म बीच में ऐसी थी ही नहीं जिसमें आप नहीं थी. तो आप समझ गई हैं मैं किस विषय पे बात कर रही हूँ. तो मैं चाहती हूँ वो विषय आप खुद ही शुरू करें और हमारे श्रोताओं को बताएं.
1: सबसे पहले मैं ये बताऊं, आप बात कर रही हैं मेरे, जिसे मैं जिंदगी में मैं कुछ लोगों को अपना मेंटर और गुरु मानती हूँ
0: जी,
1: और मेरी जिंदगी की हर एक सफलता का जरिया मानती हूँ. उनमें अगर सूरज बजातिया है तो उसमें एक बड़ा नाम है सलमान खान ऑल्सो
0: जी,
1: जिन्हें मैं भाई बुलाती हूँ
0: जी,
1: बहुत मोहब्बत से, और बहुत जब हाथ उठाती हूँ उनके लिए दुआ करती हूँ
0: जी.
1: क्योंकि आज भी जो आप उनका रूप बाहर देखते हैं
0: जी,
1: वो 5% भी नहीं है जो वो दुनिया के लिए करते हैं
0: जी,
1: 5% भी नहीं है. तो सलमान भाई का और मेरा काम जो शुरू हुआ, मेरी पहली फिल्म एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी खामोशी, गणेश हेगड़े के साथ.
0: खामोशी द म्यूजिकल जर्नी.
1: यस, जो मैंने पहले कहा आपसे कि स्टेज के बाद जब मैं कोरियोग्राफी में आई, जो मुझे गणेश आचार्य जी ने डांस करते हुए देखा, हमारा एक हॉल होता था मंगला हॉल, वहां पे जो डांस करते हुए देखा, वो गणेश हेगड़े साहब के ही गाने का डांस कर रही थी मैं.
0: अच्छा.
1: गणेश हेगड़े की जो पोनी है वर्मा, जो बहुत बड़ी कोरियोग्राफर है, वो उनकी असिस्टेंट होती थी उस वक्त. वो मेरी सीनियर है और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है. उनके एग्जाम्स होते थे तो गणेश हेगड़े साहब को ये फिल्म मिली थी खामोशी, जिसमें वो कोरियोग्राफी कर रहे थे. उनकी पहली फिल्म थी, मतलब स्टेज करते थे वो, और संजय लीला बंसाली थे और ये एक लड़की असिस्टेंट ढूंढ रहे थे. तो उस फिल्म में पोनी वर्मा जी ने भी एज एन असिस्टेंट किया और फिर मुझे भी मौका मिला
0: जी
1: एक स्केड्यूल करने का
0: जी.
1: और मेरे पहले हीरो थे सलमान खान.
0: ओके.
1: जबकि मुझे पता भी नहीं था कि ये सलमान खान है, क्योंकि उस वक्त घर में टीवी नहीं होता था, हम फिल्में नहीं देख रहे होते थे, हमें इतना पता नहीं था.
0: हाँ.
1: स्कूल में थे हम,
0: आप उस चीज को इतना समझते भी नहीं थे.
1: एक्टिंग इंस्टीट्यूट में थे, सीख
0: जी.
1: रहे थे
0: जी.
1: और फिर उस फिल्म को करने का मौका मिला तो मुझे लगा कि ठीक है, पर डे इतना पैसा मिलेगा, हम गोवा चले गए.
0: हम पैसे के लिए गए थे.
1: चलो, वही मास्टर है जिन्होंने स्टेज पे मेरे साथ किया है. हाँ. कंफर्टेबल है, हम मास्टर जी समझते हैं, गणेश हेगड़े साहब,
0: कोई दिक्कत नहीं है,
1: दिक्कत नहीं है. मम्मी ने कहा बेटा चलो करते हैं, देख लो क्या है. तो हमने गाने उनके साथ में किए और मेरा पहला हीरो सलमान खान, और उसमें नाना पाटेकर जी भी थे और मनीषा कोराला थी.
0: बहुत तो मेरी प्यारी फिल्म है, बहुत प्यारी फिल्म जी.
1: वो फिल्म के बाद मैं 6 महीना एग्जाम्स के लिए वापस आ गई, मेरे एग्जाम्स हुए और उसके बाद स्टेज करने लगी और फिर गणेश आचार्य जी के साथ फुल फ्लेज में फिल्म में शूट किया.
0: तो वो खामोशी में जब सलमान खान को पहली बार आपने डायरेक्ट किया, तो व्हाट यू रियलाइज कि वो बहुत अच्छे डांसर हैं या बहुत अच्छे एक्टर हैं?
1: ही वॉज अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी ऑन सेट फॉर मी.
0: हाँ, भारत की बहुत सारी लड़कियां 90 के दशक में सलमान खान का पोस्टर अपने कमरे में लगाती थी.
1: जो मुझे, मतलब छोटी है लड़की, तो मुझे बड़े प्यार से बिहेव करते थे, क्या जो बता दो क्या करना है. वो भी बड़े यंग ही थे.
0: हाँ,
1: बट वो बड़े ही सूदिंग पर्सनैलिटी थी मेरे लिए. उस वक्त कुछ भी, सब कुछ नया था.
0: हाँ,
1: कैमरा पहली बार देखा, अच्छा ऐसे शॉट होता है, अच्छा ये कभी नहीं देखा था.
0: वही सीख रहे थे, वही कर रहे थे.
1: तो वो जब देख रही थी, मेरे लिए था कि ये तो बड़ा अच्छा हीरो है, बड़े प्यार से बात करता है, मनीषा करोला बड़ी अच्छी है, इसको बताना है. संजय लीला बंसाली से डर जाती थी मैं सेट पे कई बार.
0: हाँ.
1: नाना पाटेकर जी से डर जाती थी. बट काम करने आए थे, बस इतनी समझ तो थी नहीं. सिर्फ सलमान खान इसलिए याद है कि ही बिहेव रियली वेल विथ मी.
0: हाँ वो शायद उम्र का भी ऐसा था कि वो आपसे उम्र में भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे,
1: हाँ, और
0: बहुत
1: वो
0: ज्यादा गैप
1: समझते थे कि वो
0: नहीं
1: समझ रहे थे कि अच्छे बच्ची नहीं है
0: था।
1: अभी आई है, और उस वक्त वो तो बड़े स्टार हो चुके थे,
0: जी
1: वो उनकी
0: बिल्कुल
1: बड़ी बड़ी फिल्में आ रही थी।
0: जी
1: उसके बाद मैं वापस आ गई, उसके बाद में सलमान भाई का, अब उसके बाद जब मैं कोरियोग्राफर बनी तो काफी वक्त तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि मैं जब कोरियोग्राफर बनी, एक नियम होता है कि आप जाके सबसे मिलते हो जिनके साथ आपने काम किया है, कि गोविंदा से मिली मैं, सलमान से मिली, क्योंकि मैं उनके असिस्टेंट डेज में कर चुकी,
0: तो
1: मतलब
0: बताने तो जाना
1: खामोशी के
0: पड़ेगा।
1: बाद मैं गणेश आचार्य जी के असिस्टेंट बनी, तो सारे गाने सलमान खान के किए मैंने, जुड़वा से लेके जितनी भी उनकी फिल्में थी, रानी मुखर्जी के साथ बोलो, गोविंदा के साथ काम किया, तो सलमान भाई के साथ एक असिस्टेंट डेज में फिर रेपो बन गया, कि वो जब डांस करते थे कैमरा के नीचे मुझे बोलते थे चल तू कर, तो उन्हीं को सिखा रही होती थी, क्योंकि मैं गणेश मास्टर जी मेल है
0: हाँ
1: उनके असिस्टेंट थी, उनको कॉपी करती थी, तो सबको लगता था मास्टर जी के बाद शबीना है जो अच्छा करती है उनका स्टाइल, तो
0: हाँ
1: तू सिखा, सनी
0: हाँ
1: देओल बोल रहे तू सिखा, संजू बाबा बोल रहे तू सिखा,
0: हाँ
1: गोविंदा जी बोल रहे तू सिखा,
0: हाँ
1: तो लड़कियों को भी सिखा रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, तो एक वो एक चलन आ
0: रेपो बन
1: गया,
0: गया था
1: तो वो
0: इज्जत।
1: सलमान भाई के साथ रेपो बन गया जब उन्होंने पहली बार मुझे अपनी फिल्म के लिए बुलाया, वो थी दबंग में बुलाया था सबसे पहले,
0: जी
1: पहली दबंग, मस्त मस्त दो
0: जी
1: नैन गाने किया
0: जी
1: था, वो बुलाया, उसके बाद में एक गैप आया, उसके बाद में फिर जय हो में बुलाया उन्होंने, जय हो का गाना जय जय जय हो क्या कर रही हो आजा जय हो करो, वो गाना हिट हो गया,
0: बिल्कुल
1: उसके बाद में सूरज बड़जात्या जी की फिल्म आई, शायद आगे पीछे दबंग 3, सूरज बड़जात्या की फिल्म 2014, उनके साथ काम किया, सूरज जी ने बोला मेरे गाने तो शबीना ही करेगी, फिर सलमान भाई से मुलाकात हुई, तो एक
0: जी
1: रेपो बनता था ही मेरा पहले से उनके साथ, तो आसानियां बढ़ गई, क्योंकि ही न्यू दैट ओके शबीना इज देयर चलो करेगी, वो पिक्चर मेरी जो पहली हिट हुई वो भी सलमान खान की फिल्म थी, जो प्रेम रतन धन पायो,
0: जी बिल्कुल
1: उसके पहले आशिक बनाया आपने,
0: जी
1: उसके पहले नाच आई मेरी, काफी फिल्में चली, मुझे कभी किसी के पास जाके काम मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, माधुरी दीक्षित फिल्म आने के बाद इंडस्ट्री का चलन था, मुझे
0: हाँ
1: बुलाने
0: डांस बहुत
1: लगे
0: ज्यादा था
1: बहुत ज्यादा,
0: उसमें।
1: रामगोपाल
0: जी
1: वर्मा अपनी सारी फिल्में मुझे दे रहे हैं,
0: जी
1: तो ये चलता रहा चलता रहा, फिर सलमान भाई की फिल्म आई, पहला गाना मेरा हिट हो गया आशिक बनाया, उसके बाद सलमान भाई का गाना जिसने मुझे नाम दिया, जिसे कहते हैं ना कि आप अपनी डीवीडी नहीं भेज रहे हो, पहले डीवीडी भेजते थे प्रोड्यूसर के पास के सर देखिए मैंने ये काम किया है,
0: अब इसके बाद डीवीडी नहीं भेजनी
1: अब
0: पड़ी।
1: मैं प्रेम रतन के बाद डीवीडी नहीं भेजना पड़ा, इंडस्ट्री में सबको पता चल गया शबीना खान कौन है, बिकॉज मेरा वो गाना प्रेम रतन धन पायो हिट हुआ, जबकि वो गाना सोनम कपूर की स्टेप्स थी, लेकिन सलमान खान हर जगह जा रहे थे और वो स्टेप कर रहे थे सोनम के साथ, ये पहली बार हुआ था
0: हाँ
1: कि सलमान भाई बोलते थे अरे लड़की का स्टेप मुझसे करा रहे हर जगह, एंड ही यूज्ड टू डू आल्सो बिकॉज ही वाज डूइंग इट, वो हिट, वो
0: ऑरा क्रिएट हो गया था
1: ऑरा
0: उस
1: क्रिएट
0: चीज
1: हो गया,
0: का।
1: और वो स्टेप आज भी यूट्यूब में वो गाना
0: हाँ
1: सबसे ज्यादा
0: कई
1: सीन
0: लोग
1: है,
0: रील्स भी उस पे बहुत
1: उसी पे
0: बनाते
1: रील
0: हैं।
1: बनी, दब
0: हाँ
1: स्मैशेस
0: हाँ
1: बने, मैं हिट हो गई,
0: जी
1: मेरा करियर चल पड़ा, तो वो सलमान खान थे, फिर दबंग हुड़ हुड़ दबंग जब आया,
0: हाँ
1: उन्होंने जो
0: वो
1: मेरे,
0: पैंट की जेब में उंगली डाल के
1: वो तो
0: कमर
1: गणेश
0: हिलाना
1: आचार्य जी
0: ये।
1: ने किया
0: जी
1: था,
0: जी जी
1: दो गाने उन्होंने किए, जब तीसरी दबंग का आया तो उन्होंने मुझे
0: अच्छा
1: दिया ये गाना कि
0: अच्छा
1: शबीना करेगी तुम करो ये गाना,
0: अरे वाह
1: फिर वो स्लीव्स के साथ में मोमेंट हिट हुआ,
0: अच्छा
1: तो फिर उन्होंने एक चलन हो गया कि वो, उन्होंने कभी मुझे फीमेल कोरियोग्राफर की तरह देखा ही नहीं है, उन्होंने हमेशा मुझे एक सेंसिबल कोरियोग्राफर देखा,
0: मतलब मेल फीमेल से परे
1: परे
0: एक कोरियोग्राफर।
1: एक कोरियोग्राफर है जो जज्बात समझती है, जो फैमिली बैकग्राउंड से आती है ये फैमिली समझती है, तो मुझे ट्यूबलाइट का गाना दिया उठा के, कबीर खान को बोला ये गाना तो नाच मेरी जान शबीना करेगी उसको दो, तो वो मुझे हमेशा एक ऐसा गाना अपनी फिल्मों में दे देते हैं बुला के जो उन्हें लगता है शबीना करेगी,
0: तो ये बहुत अच्छी बात है ना, साथ
1: बिल्कुल
0: लेके चल रहे हैं,
1: बिल्कुल,
0: और साथ सिर्फ इसलिए नहीं लेके चल रहे कि करना है, इसलिए चल रहे हैं क्योंकि
1: कि
0: खूबत
1: ही नोज
0: है,
1: यस
0: काबिलियत है।
1: काबिलियत को देख के उन्होंने मुझे बुलाया, राधे में उन्होंने गाना दिया,
0: जी जी
1: उसके बाद
0: राधे का कौन सा गाना था आपका?
1: जो परदेसिया सॉन्ग का रिमिक था जैकलिन का और सलमान
0: हाँ
1: खान
0: हाँ
1: का,
0: हाँ हाँ वो बहुत खूबसूरत है
1: वो
0: जी
1: गाना मुझे दिया बुला के, तो एक
0: जी
1: बेस्ट गाना वो मुझे बुला के दे देते, और उन्हीं की वजह से आई थिंक जब एक मेगा स्टार आप पे भरोसा करता है ना तो आपके लिए आसानियां हो जाती है,
0: जी
1: बाकी लोगों को लगता है और सलमान खान की कोरियोग्राफर, तो वो एक चलन चल गया, मुझे बोलने लगे सलमान खान की कोरियोग्राफर, सलमान खान की कोरियोग्राफर, सलमान खान
0: हाँ
1: की कोरियोग्राफर,
0: तो ये गीत जो आपने और सलमान खान ने साथ में किया है, यानी शबीना खान और सलमान खान का साथ का गाना है, वो कोई एक गीत जो आप कहेंगे वो हम हमारे श्रोताओं को जरूर सुनाना चाहेंगे, आपकी पसंद का, आपकी ख्वाहिश से।
1: सलमान भाई का एक हमारा साथ में किया हुआ गाना जो मुझे बहुत पसंद है, सभी गाने पसंद है मुझे, वैसे नाच मेरी जान एक गाना है, बहुत पैपी नंबर है।
0: जी

0: श्रोता हमारे साथ हैं शबीना खान, जो कि एक बहुत बहुत बहुत बेहतरीन कोरियोग्राफर हैं। और अगर मैं कहूं कि आज तक की जो लिस्ट बनी है, ऐसा कोई अभिनेता या अभिनेत्री या कोई दिग्दर्शक या कोई निर्देशक कोई नहीं बचा है जिसके साथ शबीना खान ने काम नहीं किया है, और जो भी किया है उम्दा किया है, परफेक्ट किया है और अब तक का बेस्ट किया है। हमने जब तक इनके बारे में इनके जाना या इनसे बात की है, जो अब तक उस सब में इतने सारे गाने आए हैं और हर गाना अद्भुत है, ऐसा लगता है कि वो अपने उत्कृष्टतम उत्कृष्ट पर बैठा हुआ है। तो उन्हीं में से एक और फिल्म आई थी जिसने अपना नाम पूरी दुनिया में बना लिया था, और उस फिल्म में हैंडपंप भी उखाड़ा गया, भारत के बारे में भी बात की गई। और ये फिल्म है ना, जो अपना एक एक कहा जाता ना, एक स्थान बना चुकी है, और कई सालों बाद वापस वो फिल्म आती है। और शायद जब ये फिल्म आई थी तब शबीना खान बहुत छोटी सी रही होंगी, और जब ये दोबारा ये फिल्म आई तब शबीना खान जो है वो कोरियोग्राफर बन चुकी हैं, और ये फिल्म इनके हाथ में आती है। फिल्म का नाम है गदर 2। ये फिल्म कैसे आपके हाथ में आई, और जो गाना अपने आप को पहले ही स्थापित कर चुका है, उस गाने को फिर से नए कलवर के साथ प्रेजेंट करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उस गाने को हमने देखा था एक स्कूल के बड़े से ऑडिटोरियम में मंच पे नाचते हुए। अब उस गाने को आप सड़क पे यानी एक स्थान पे, एक आंगन में नृत्य करवा रही हैं, तो थोड़ा सा अगर वहां तक हमें ले जाए तो।
1: सो पहले सवाल का जवाब ये है कि गदर,
0: हाँ,
1: जब गदर रिलीज हुई थी 2020-21 में, तब मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी गणेश मास्टर जी के साथ।
0: जी,
1: इस फिल्म को किया था जय बोराडे साहब ने। जय बोराडे हमारे बहुत फेमस कोरियोग्राफर, जो सूरज बर जाते हैं की सारी फिल्में, बहुत बड़े कोरियोग्राफर थे।
0: हम साथ साथ हैं भी उनकी,
1: हम साथ साथ हैं, मैंने प्यार किया, हाँ। उनकी लास्ट फिल्म थी विवाह,
0: हाँ।
1: उसके बाद मैंने ज्वाइन किया सूरज बर जाते,
0: सभी विवाह के पास आया था।
1: उसके बाद से मैंने राजश्री प्रोडक्शन को ज्वाइन किया। तो जब गदर 2 कैसे आई, अनिल शर्मा जी जो हमारे बहुत ही दिग्गज, बहुत ही माने हुए डायरेक्टर है, उनके बेटे की एक फिल्म आई थी जीनियस, उसमें उन्होंने मुझे दो गाने दिए थे।
0: अच्छा।
1: जब उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने कहा कि बड़ी फिल्म करेंगे साथ में।
0: अच्छा।
1: और जब गदर फिल्म आई तब उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे कहा ये फिल्म तुमने करनी है।
0: अच्छा।
1: तो उन्हें लगा था 2-3 गाने देंगे, मैंने कहा सर मैं पूरी फिल्म करूंगी, अब पूरी फिल्म एक ही फिल्म करूंगी। ऊंचाई की शूटिंग चल रही थी मेरी, ऐसा ऊंचाई पूरी फिल्म मैंने अकेले खुद की है, ये फिल्म भी पूरी करने दो मुझे, और मेरा पूरा वक्त आपका, आप जब बुलाओगे सुबह शाम 3 बजे रात को 4 बजे सुबह, जब बुलाओगे मैं आपके साथ करूंगी, पूरी फिल्म करूंगी।
0: मतलब उतने दिनों में मैं कुछ और नहीं,
1: कुछ और काम नहीं करूंगी, क्योंकि इस फिल्म की डिमांड होनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट थी, 22 साल बाद रिलीज हो रही है, यू नो। और चैलेंज ये था इस फिल्म के साथ के 22 साल के बाद आज की ऑडियंस सोशल मीडिया को लेकर बहुत अलग है। अगर 40% पुराने लोग ये फिल्म देखेंगे तो 60% आज के लोग देखेंगे, जो उस वक्त पैदा हुए होंगे और आज 22 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, या 27-28 साल के होंगे, तो ये ऑडियंस तो यही मैंने अपनी 65-70%। तो मैंने काम तो बहुत मेहनत की इस फिल्म पे, एक एक गाने को तराशा, और सवाल ये था कि आज की ऑडियंस को, पिक्चर बनी है हमारी 1970 के ऊपर,
0: बहुत पुराने समय की बात है,
1: 70s के ऊपर फिल्म बनी है, अंदाज 70s का है, कैरेक्टर 70s के, गाने 70s के अंदाज में,
0: खुशबू उसी समय की है,
1: सब कुछ उसी समय का, लेकिन दिखाना आज की ऑडियंस को है, और पुरानी ऑडियंस भी डिसअपॉइंट नहीं हो कि अरे यार ये क्या कर दिया नहीं कोरियोग्राफर ने,
0: हाँ हमारा पुराना वाला अच्छा था।
1: तो ये जो ख्याल थे ना, ये मेरी रातों की नींद उड़ गई थी, और मैंने इतनी मेहनत की इस फिल्म को लेके कि हर एक गाना मोती के दाने की तरह निकल कर आए। मैं निकला गड्डी लेके, जो आपने कहा आंगन के अंदर किया,
0: हाँ।
1: वही चैलेंज था, हाँ। सनी देओल उस वक्त, सनी देओल इस वक्त,
0: उम्र का भी अंतर,
1: उम्र का भी अंतर है, लेकिन क्योंकि सनी सर के साथ मैंने असिस्टेंट डेज में काम किया है, हमारी एक रेपो थी, और मैंने उनसे कहा कि सर ये सिग्नेचर मूवमेंट, सबने कहा सिग्नेचर मूवमेंट अलग करते हैं, अलग करते हैं, अलग करते हैं, सर नहीं सर सिग्नेचर मूवमेंट वो मत करे, कोई और कोरियोग्राफर बोलता मैं करता हूँ मेरी स्टेप,
0: हाँ।
1: यहाँ पे आपकी अना, आपका ईगो नहीं आना चाहिए,
0: हाँ।
1: सर जय मास्टर जी को एक मुझे श्रद्धांजलि देनी है,
0: हाँ।
1: उन्होंने जो बनाया था स्टेप हाथ का,
0: हाँ,
1: गड्डी लेके,
0: हाँ, हाँ,
1: वही स्टेप रखेंगे, उनके बेटे का जो रोल अभिनय निभा रहे थे उत्कर्ष शर्मा, हाँ, जो अनिल शर्मा जी के बेटे, उनको मैंने अलग स्टेप दिया,
0: हाँ,
1: मैंने कहा कि वो 70s का बच्चा है, तो उनको मैंने स्टेप दिया राजेश खन्ना वाला,
0: हाँ,
1: क्योंकि वो बच्चा होता है राजेश खन्ना का और उसका दीवाना,
0: हाँ,
1: और फिर वहां जाके ये गाना बना। और अगर आप पूरी फिल्म के गाने देखो, उसमें दो गाने नए एक्ट कलाकारों के साथ निभाए गए थे जो सबसे बड़े हिट हुए. एक गाना था चलते रे इश्क में,
0: चलते रे इश्क में बहुत पसंद किया यूथ ने.
1: उसमें ये दिखाया है कि वो लड़की पाकिस्तान की मुसलमान फैमिली से ताल्लुक रखती है, ये बच्चा हिंदुस्तान से जाता है, उनका अफेयर होता है, और लड़की पाकिस्तान की ईद के दिन डांस कर रही है. तो हमने चिलमन बनवाई क्योंकि मुझे पता है ना
0: बहुत खूबसूरत सेट था वो.
1: चिलमन बनवा के, चिलमन के अंदर वो लड़कियों के साथ नाच रही है, चिलमन के बाहर लोग ईद, और पाकिस्तान के अंदर ये गाना हो रहा है ऐसा दिखाया है, और हिंदुस्तान की ऑडियंस उसको देख रही है. तो वो गाना इतना सुपर हिट हुआ कि लोग आज गदर के बाद फौरन चलते रे इश्क में कहते हैं गाना,
0: जी बिल्कुल
1: इतना खूबसूरत. और उत्कर्ष शर्मा का एक गाना हिट हुआ था जो झूम झूम गाना था. तो हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, पूरी दुनिया के लोगों ने

0: वो जो किया है वो तो खैर बात ही अलग है, और उनसे काम कराने के बाद गदर टू में भी वही पसीना बहा रहे हो, एसी कमरे में बैठे हो लेकिन पसीना तो आ रहा है।
1: बिल्कुल
0: तो हमें मेहनत करनी चाहिए, ये
1: बिल्कुल
0: बात, ये सीख हमारे छोटे छोटे जो श्रोता हैं
1: बिल्कुल
0: उन तक बात पहुंचनी चाहिए और पहुंचती है। इतने सारे लोगों के साथ डांस किया, इतने सारे लोगों को काम कराया, राजपाल यादव एक नाम आता है।
1: मेरा पहला हीरो, मेरी पहली फिल्म का पहला हीरो,
0: अच्छा,
1: बिल्कुल मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती
0: हाँ
1: हूँ। मैं
0: हाँ
1: हीरो तो राजपाल यादव ही
0: जी
1: थे, तो
0: जी
1: मैं तो उनके जिंदगी भर अभी भी मिलती हूँ तो बोलती हूँ मेरा पहला हीरो।
0: हाँ, तो हमारा प्रश्न यहाँ पे ये आ रहा है कि वो तो कॉमिक साइड में जाते हैं, कॉमिक साइड को डांस में या कोरियोग्राफी में कैसे कन्वर्ट कर पाते हो? क्योंकि कोरियोग्राफी में भी वो जो कॉमिक टाइमिंग है या वो जो मजाक मस्ती है या वो जो हल्की सी एक छोटी सी बात ही होती है, राजपाल यादव के साथ जो उनका अभिनय है वो एक हल्का सा किरदार थोड़ा सा घूमता है, उतने में भी जनता जो है जो देख रही होती है वो हंसना शुरू कर देती है।
1: बिल्कुल,
0: तो उनके साथ कैसे आपने काम किया?
1: मैं आपको एक बात बताऊं, बीइंग एन एक्टर माय सेल्फ, मैंने एक्टिंग सीखी है,
0: जी,
1: तो सबसे मुश्किल काम होता है हंसाना लोगों को। हंसाना
0: रुलाना आसान है।
1: बहुत मुश्किल है, और वही काम मैंने कहा ना, जैसे ऊंचाई में केटी को मैं अनुपम खेर के बारे में कह रही थी, मैं वैसे ही राजपाल यादव है, जितना बंदा उछल उछल के हंसाता है वो उतना रुला भी देता है आपको 1 मिनट के अंदर। और जिसके अंदर ये एक रिदम है, जिसके अंदर कॉमिक टाइमिंग होती है उसके अंदर रिदम होता है, तो डांस करना तो बाएं हाथ का खेल है।
0: अच्छा।
1: उसके बाद मैंने उनके 2-3 गाने किए जिनमें उन्हें नचाया है, और वो बराबर टाइमिंग पे डांस करते हैं।
0: क्या बात है।
1: बिल्कुल
0: तो ऐसे बढ़िया बेहतरीन अभिनेता अभिनेत्रियां भी हमारे यहाँ पे हैं। आपने कुछ साउथ के डांसर्स के साथ भी काम किया
1: काफी काम किया
0: है
1: साउथ
0: ना,
1: में।
0: साउथ के अभिनेताओं के साथ, अभिनेत्रियों के साथ काम किया, तो क्या अंतर है बॉलीवुड और दक्षिण भारत की काम में?
1: जिस वक्त मैंने काम किया, मैं बात करी हूँ 2000 शायद 12-13 की, मैं इतना काम करती थी वहां पर कि मुझे मुंबई आने का वक्त नहीं मिलता था।
0: जी।
1: तमन्ना, कार्ति, सूर्या, पवन कल्याण, ऐसे कई नाम हैं जिनके साथ मैंने काम किया। एक चीज जो मैं उस वक्त वहां देखती थी, डिसिप्लिन। अगर वो 7 बजे की शिफ्ट रखते हैं तो 7 बजे पहला शॉट होना चाहिए, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ।
0: 7 बजे रखते हैं तो 7 बजे शॉट होता है, मतलब उसके पहले लोग
1: उसके
0: आते हैं।
1: पहले 6 बजे सब आके सेटअप करके रेडी होके, एक्टर शुड टच द सेट एट
0: मतलब
1: सेवन।
0: एक्टर 5 बजे आके मेकअप करा के तैयार होके बैठा
1: बिल्कुल,
0: होगा।
1: अगर आप वो डिसिप्लिन देखा है कि मैंने डायरेक्टर को पैकअप करते हुए देख लिया कि एक एक्टर सिर्फ 10 मिनट लेट आया तो ही कॉल्ड मी असिस्टेंट के साथ, मैंने एक्टर के साथ रिहर्सल किया, शॉट दिखाया डायरेक्टर को और डीओपी को, शॉट की रिहर्सल हो गई, बस टेक बोलने वाले है, हीरोइन ने गाउन उतारा, बोला पैकअप। बड़ी हीरोइन, मैं नाम नहीं लूं, क्यों? ही सेड, अम्मा यू एंटर्ड इन द सेट एट 7:10, सो टुमारो वी रोल दिस एट सेवन,
0: 7 मीन 7।
1: सेवन पैकअप। शी स्टार्टेड क्राइंग, ही सेड नो प्रॉब्लम। सो ये एक, इसे आप रूडनेस नहीं बोलते हो, इसको कहते हो कि आपको कभी कभी जब चीजें सीधी करनी होती है तो थोड़ा सा अलग रास्ता अपनाना होता है। वही किया, नेक्स्ट डे 6:30-7 में लड़की बैठी हुई थी वहां पे, जबकि उसकी गलती उस दिन भी नहीं थी, लेकिन ये एक तरीका है उनका काम करने का। लेकिन अब हमारे यहाँ पे भी मैंने ये देखा है कि हम वक्त पे काम शुरू कर देते हैं,
0: अच्छा,
1: और
0: तो
1: कहते हैं ना कुछ एक्टर बहुत लेट आते हैं,
0: हाँ,
1: बट लोगों को ये नहीं पता कि वो लेट आने के बाद भी 8 घंटे का काम 4 घंटे में खत्म करके दे के निकल जाते
0: निकल भी
1: हैं।
0: जाते हैं क्योंकि वो इतना क्विक है।
1: एब्सोल्युटली,
0: हाँ, तो अब जब इतनी अच्छी बात चल रही है तो एक गाना और बनता है, क्योंकि हम तो इंफोटेनमेंट वाले हैं, इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और एंटरटेनमेंट भी करते हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए कौन सा गाना हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे?
1: मेरा बहुत फेवरेट गाना गदर 2 का, चल
0: हाँ,
1: तेरे इश्क में खो
0: हाय हाय,
1: जाते
0: क्या बढ़िया,
1: हैं।
0: बहुत खूबसूरत सा गीत है। तो ये गीत हम हमारे श्रोताओं तक पहुंचाते हैं और
1: प्लीज
0: हम
1: सुनिए।
0: आपके काम के इश्क में खो जाते हैं उतनी देर के लिए। बहुत खूबसूरत काम किया शबीना जी, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं इस गीत की तरफ।

0: हालांकि शबीना जी, हमने आपसे बात की, लेकिन ऐसा लगता है कि इतनी देर में आपको समेट पाना बहुत कठिन है। फिर भी हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने आपसे बहुत सारी बातें कर लिया, ऐसा हम मान रहे हैं खुद से। हालांकि हम भी जानते हैं कि अभी बहुत सारे गानों की बहुत सारी कुछ ऐसी बातें होंगी जो आपसे सुनी जा सकती हैं, और रोचक तथ्य और रोचक बातें आपकी सुनने को मिलेंगी, और हम चाहेंगे कि सुने भी एक आध। लेकिन उसके पहले एक बात बनती है कि शमीना खान यानी छोटी सी 7वीं 8वीं की लड़की आई थी इंडस्ट्री में, उसने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करके बहुत बड़ी बन गई। अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले, फिल्म फेयर मिला, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। तो हम चाहते हैं कि वो अवार्ड्स जब आप ले रहे थे, कैसा लग रहा था? कौन था जो आंखों के सामने आया था कि यार थैंक यू, तेरे कारण मुझे ये मिला है?
1: मेरी अम्मी, मुझे पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला
0: जी।
1: तो मैं मुंबई में थी नहीं। प्रेम रतन धन पायो के लिए मुझे इनविटेशन आया, मैं मुंबई में थी नहीं। तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी चल नहीं पाती थी उस वक्त, उनका बैक का ऑपरेशन हुआ था,
0: अच्छा।
1: तो मैंने कहा अम्मी तुमको जाना पड़ेगा, ये तुम्हारा अवार्ड है। क्योंकि जिंदगी भर से मैंने सोच के रखा था कि जब भी अवार्ड मिलेगा मैं अकेले नहीं जाऊंगी स्टेज पर,
0: माँ को साथ लेके
1: अम्मी को
0: जाएंगे।
1: ले जाऊंगी, क्योंकि ये उनका अवार्ड है। हर एक
0: जी
1: कदम चली मैं थी,
0: जी
1: बट दिल और दिमाग उनका था। मुझे इतनी तरीके से सलीके से पालना, इस तरह बनाना, इतना सोच समझ के चलने वाली लड़की, बचपन में हमें क्या पता होता है? कुछ नहीं पता होता है। हमारी माएं होती है जो हमें
0: और उस जनरेशन के बच्चों को कुछ नहीं पता होता था।
1: हमारे पास टीवी नहीं, रेडियो
0: हाँ
1: नहीं, ये
0: जी
1: हम सिर्फ अपनी माँ को सुनते थे,
0: हाँ
1: उसको देख

0: चाहते थे, उस जैसे बनना चाहते थे। बाल तुम्हारे लंबे हैं, मुझे भी बाल लंबे चाहिए, तुम ऐसी थी। मेरी माँ मेरी हीरोइन है, मेरा बाप मेरा हीरो है, हम यही थे ना उस
1: कई बार
0: जनरेशन
1: ऐसा
0: के
1: होता था,
0: बच्चे।
1: पूछते थे बड़े होके क्या बनना है, तो मम्मी बनना है
0: मम्मी बनना है या टीचर बनना है।
1: जी
0: हमारी हमारी
1: जी
0: टीचरें भी हमारी बहुत बड़ी,
1: बिल्कुल
0: आजकल वक्त बदल गया है, लेकिन हमारी टीचर है, हमारी पहली बात
1: रोल
0: होती थी,
1: मॉडल
0: हम
1: होती
0: टीचर
1: थी।
0: रोल मॉडल होती थी हमारी टीचर,
1: बिल्कुल
0: हमारे सर, हमारे टीचर, हमारे ट्यूशन टीचर, यही होता था।
1: जी
0: तो मैंने हमेशा सोचा था अम्मी को ले जाऊंगी और उनके हाथ में अवार्ड दूंगी और फिर उनको बोलूंगी मुझे अवार्ड दे। तो कई बार ऐसा भी हुआ, मैं पहुंची और मुझे अवार्ड नहीं मिला, किसी और को मिल गया, मैं स्पीच रेडी करके
1: नॉमिनेशंस में
0: गई,
1: आते हैं।
0: नॉमिनेशंस में मैं थी, तो जब ये अवार्ड मिला, देखो कुदरत ने भी मेरे मैनिफेस्टेशन को कैसे हाँ किया। कहते ना, हम जो मानते हैं वो ही मिलता है कुदरत
1: मिलता
0: से।
1: है।
0: मैं मुंबई में हूँ नहीं, बैंगलोर में शूट कर रही हूँ, फोन आया आपको अवार्ड मिल रहा है, वो भी ओरिजिनल दादा साहब फाल्के अवार्ड।
1: क्या बात है।
0: या तो अम्मी को फोन, अम्मी बोले बेटा मैं जाने पड़े। मैंने अपने भाई को फोन किया, ऐसे बेटा व्हील चेयर पर ले जाना अम्मी को,
1: पर लेके
0: बट
1: जाना।
0: लेकर जाना, मैं चाहती हूँ अम्मी जाए। मेरी अम्मी गई, उन्होंने वो दादा साहब फाल्के अवार्ड लिया और वहां पे उन्होंने बोला मेरी बेटी के लिए मैं ले रही हूँ। वो अवार्ड मेरी माँ को मिला है, कम से मेरा अवार्ड नहीं है वो।
1: जी
0: तो उस अवार्ड को मैं बहुत अलग नजर से देखती हूँ।
1: जी
0: उसके बाद पटाखा फिल्म के लिए फिल्म फेयर नॉमिनेशन,
1: जी
0: उसके बाद मराठी फिल्म के लिए जी सिने अवार्ड, मैंने मराठी फिल्में भी की
1: जी
0: है। उसके बाद बस वहां से सिलसिला शुरू हुआ, कई सारे अवार्ड्स मिले,
1: अब अलमारियां भर चुकी
0: हाँ काफी कुछ काफी कुछ।
1: हैं
0: अब तो खैर बहुत सारे अवार्ड्स हो चुके हैं,
1: जी
0: बहुत सारे अवार्ड्स हैं जिनके अभी भी फोन आते हैं और हम कभी जा पाते कभी नहीं जा पाते। लेकिन जिसको मैं सराहती हूँ बहुत ज्यादा, फिल्म फेयर और दादा साहब फाल्के अवार्ड और जी सिने अवार्ड, और गदर भी, सारे गदर के
1: जी
0: गाने भी अवार्ड्स में थे। फिर
1: जी
0: एक नेशनल अवार्ड के लिए मैं 3 बार नॉमिनेशन में आई हूँ।
1: क्या बात
0: देखो आपके सारे श्रोता मेरे लिए दुआ करें और मुझे नेशनल अवार्ड इस
1: है।
0: साल
1: हम
0: मिल
1: सबकी
0: जाए,
1: प्रार्थना है कि आपके हाथ में
0: बस
1: नेशनल अवार्ड आना
0: नेशनल
1: चाहिए,
0: अवार्ड आ
1: जिसने
0: जाए।
1: इतनी मेहनत की है, अपना पूरा जीवन दिया है और किरदारों को खुद के नजरिए से हम तक पहुंचाया है,
0: बिल्कुल
1: या कहें कि किरदारों के रूप में खुद हमारे सामने आई है, तो उसको मिलना तो चाहिए। तो हम सबकी दुआएं, हम सबकी प्रार्थनाएं आपके लिए रहेंगी। तो कोई एक गाना जिसने आपको बड़ी खुशी दी हो, ऐसा मन किया हो कि हम खड़े हैं तो 3 फीट ऊपर उछल जाएं और थोड़ा नाच लें और थोड़ा नाच लें, ऐसा कोई गाना जिसको करने के बाद बड़ा मजा आया हो या करवाने के बाद?
0: ऐसा एक गाना है तो जरूर, हमारे लेजेंडरी मेगा स्टार सलमान खान का गाना है। उस गाने की हर लम्हा उसका मेरे लिए कीमती था, क्योंकि एक फीमेल कोरियोग्राफर को हुड़ हुड़ दबंग गाना देना
1: जी सही
0: पहली बात
1: बात है
0: अपने आप में बहुत।
1: जी।
0: वो गाना जब हम कोरियोग्राफी कर रहे थे तो मेरा जो मेल असिस्टेंट है, मेरा भाई शर्जिल, वो मेरा राइट हैंड है हमेशा से। जब हम
1: आपने
0: दोनों
1: बताया
0: नाचते हैं तो ऐसा लगता है कि जमाना कैरेक्टर को
1: अलग
0: देख रहा है, एक
1: जी
0: लेवल अलग है, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मर है।
1: जी
0: उसकी बैक में प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि उससे
1: अच्छा
0: एक गाने पहले वो इंजर्ड हो गया था,
1: ओ
0: अब वो डांस कर नहीं पा रहा है। इस फिल्म के डायरेक्टर है प्रभु देवा, जो मेरे गुरु रह चुके हैं,
1: जी
0: सलमान खान साहब ने इतना बड़ा गाना दिया है। तो मैं थोड़ी सी ऐसी हो गई कि मैं फीमेल हूँ, हुरूर दबंग मुझे करना है और मैं चाहती थी कि शर्जिल के ऊपर किया जाए और वो इंजर्ड है, तो मैं क्या करूं। तो मैं जब रिहर्सल हॉल पे जाऊं तो अपने 20 लड़के जिनके साथ मैं कंपोज कर रही थी, मेरे अपने डांसर, उनमें से चुनती रहूं, ढूंढती रहूं कि कोई है जो ऐसा परफॉर्म कर
1: किससे
0: सके,
1: करवा दें।
0: क्योंकि वो गाना जब मैं कंपोज कर रही थी उसमें एक दबंग वाला एक वो था ऑरा, और वो गाना जो था इस बार वाला वो उस पावर से कनेक्टेड हमें करना था जो ऊपर से आता है,
1: जी
0: वैसा पावर चाहिए था।
1: हाँ
0: मुझे मिले ही ना, मिले ही ना, और मैं गाना कंपोज करती जा रही हूँ, डांसर लड़कों को सिखाती जा रही हूँ और ढूंढ रही हूँ कोई एक लड़का मिल जाए। और फिर तीसरे दिन मुझे सारे डांसर और मेरे अपने भाई ने बैठ के बोला कि यू परफॉर्म,
1: ओ
0: यू शो इट टू प्रभु देवा, यू
1: ओके
0: शो इट टू एवरीबडी।
1: ओके
0: लड़कों ने बोला मैम देर इज नो अदर डांसर हु कैन डांस लाइक यू द वे यू आर डूइंग दैट सॉन्ग। तब प्रभु सर जब आए और मैंने सोचा यार सच में,
1: प्रभु देवा के सामने
0: अच्छा
1: डांस
0: प्रभु
1: कर
0: देवा
1: रहे
0: के साथ सामने
1: हो
0: जब वो आए, बोले यू विल डू इट, वाई वाई वाई यू सर, एक बार देख लीजिए। फिर उसके बाद जब मैंने करके दिखाया, वो भूल गए कि मैं लड़की हूँ। प्रभु सर वो बस मुझसे डिस्कस करते रहे। फिर हम सेट पे पहुंचे, सलमान भाई वैसे ही रिहर्सल नहीं करते, सेट पे पहुंचे, हम कर रहे थे ये गाना शूट, हम इंदौर में कर रहे थे गाना। तो जैसे हमेशा की तरह सलमान भाई ने सोचा नहीं कि मैं लड़की हूँ लड़का हूँ कौन हूँ, मैं कोरियोग्राफर हूँ, मुझे बोले चलो पूरा गाना करके दिखाओ। अब पूरा गांव वहां पे खड़ा है सेट पे, सलमान भाई आए तो पूरा गांव खड़ा
1: हाँ,
0: हुआ
1: वो तो
0: है,
1: आ गई
0: और मैं भी भूल गई कि मैं लड़की हूँ भाई, मैं तो कोरियोग्राफर हूँ। हमेशा की तरह दबंग अंदाज में मैंने वो

0: ना गांव के सामने किया, पूरा गांव शूट कर रहा था एंड दे ऑल क्लैप्ड। एंड जमना ने बोले करवा लेना मुझसे तुम ऐसे बस। वो जो शूट होके आया और लोगों ने पोस्ट करना शुरू किया, मैं अपने आप में हैरान थी। मेरे सारे लड़कों ने मुझे ऊपर उठा लिया कि मैम व्हाट वाइब्स यू गेव। तो उस वक्त मैं तो कोरियोग्राफर थी ना, मैं लड़की थी नहीं। अच्छा अब शूटिंग शुरू होती है और मैं हर शॉट मैं करके दिखा रही हूँ, बिकॉज माई असिस्टेंट शर्जिल वॉज ऑन सेट बट ही कुडंट डू इट। नाउ मुझे ही करना है, शॉट लगाऊं करके भी मैं दिखाऊं, भाई को भी सिखा रही हूँ कर भी रही। अब ये पूरा जो गांव के लोग है वो खड़े रह के देख रहे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन,
1: वो समझ रहे उस
0: वो
1: चीज को।
0: देख रहे मुझे, देख रहे। अब मैं रोजों में थी, उस वक्त रमजान चल रहा था, मेरे रोजे भी चल रहे थे। अब ये गाना खत्म हुआ, जैसे ही सब हो गया, लास्ट शॉट एंड एवरीबडी स्टार्टेड टू लीव, और मैं अपने होटल की तरफ ऊपर जा रही हूँ, एक मजमा सा मेरी तरफ भागता हुआ आया। और मुझे लगा ये लोग आके मुझे बोलना चाहते होंगे सलमान खान से फोटो दिलवा दो, ऐसे कुछ होगा। और मैं बोली अरे अरे अरे रुको रुको, मुझे जाने दो फिर चले जाओ मुझे जैसे नहीं मैम, वी वॉन्ट टू, दे आर ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स एंड गांव के आसपास के लोग, एंड दे सेड कि आपके साथ फोटो उतारना है।
1: क्या बात।
0: एंड देन वो फोटो उतारे, ऑटोग्राफ ले, मैं एकदम हैरान थी। उसमें से पूरे ग्रुप ने लास्ट में मुझे बोला मैम वी वॉन्ट टू गिव यू वन नेम टूडे, और लड़कियां थी उसमें 50 के करीब, आज के बाद हम जब भी आपका नाम ले आपका नाम दबंगनी होगा, असली दबंग आप हो हमारे लिए। अगर
1: शबीना
0: सर
1: बन गई दबंगनी।
0: तो उन्होंने मुझे ये खिताब दिया कि आप हमारी दबंगनी हो।
1: जी
0: तो आज भी वो सारे लोग जो खड़े थे वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे है,
1: हाँ।
0: मेरी पोस्ट देखते और मुझे पोस्ट बताते हैं कि आप दबंगनी शबीना खान दबंगनी। तो वो एक सिलसिला सोशल मीडिया पे उस वक्त शुरू हुआ था।
1: जी
0: तो ये इस तरह की अचीवमेंट्स भी होती है आपकी जिंदगी में कभी कभी,
1: जी
0: कि आप को नहीं पता जाने अनजाने में आप किसी के हीरो बन जाते हो।
1: ये अचीवमेंट शायद आपके सच्चे मन, बच्चे जैसा दिल
0: बिल्कुल
1: और अच्छा काम,
0: बिल्कुल,
1: इसके कारण आपको ये
0: बहुत
1: सब
0: जरूरी
1: मिली
0: है।
1: है। जी
0: रोटी की भूख खत्म ना हो पेट में और
1: जी
0: नींद ना आए बेचैनी से, आप अपना काम करते रहो।
1: जी बड़ी खूबसूरत सी बातें आपके साथ चल रही हैं। तो दबंगनी शबीना खान हमारे बीच में है, तो दबंगनी शबीना खान को एक गीत तो सुनवाना बनता है, वो गीत हम आपको सुनवा देते हैं। और गीत के परे हम आपसे, हमारे उन्हीं बच्चों से कुछ कहलवाना चाहेंगे।

0: शबीना बोलूं या दबंगनी
1: हाँ
0: बोलूं? तो शबीना खान जी, आपका फिर से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में
1: सुरीली
0: बहुत
1: धड़कन।
0: प्यार से स्वागत है। और अब जो है हम चल रहे हैं हमारे, हालांकि बातें तो दो महिलाएं बैठी हैं तो खत्म नहीं हो सकती हैं, और उसके बाद बात यह है कि आपके पास तो कितना सारा, कितना कुछ है आपके पास जिसे हम अगर चाहें तो शायद एक बार में खत्म नहीं होगा। तो विविध भारती आपसे चाहता है कि एक बार और आना, एक बार और कह के जाना अपने जो मन का है जितना है, लेकिन अभी जो है वो हम कहलवाना चाहते हैं आपसे कि जो जीवन जिया है, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा बड़ी, जो आप कह रही हैं इतनी देर से कि नदी बह रही है उसके साथ हम बहते जा रहे हैं, तो जब नदी के साथ बहते हैं तो बीच में चट्टाने, पत्थर, कांटे, बहुत कुछ आता है। ऐसा सबके जीवन में आता है, तो आपके जीवन में भी आया होगा। तो हम चाहते हैं आप हमारे श्रोताओं में उन बच्चों को बताएं जो कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं, जो डांसर बनना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, या जो कुछ भी बनना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ संदेश।
1: बिना तकलीफ के तो राहत कभी नहीं आती। तकलीफ है तभी हमें राहत का मजा पता चलता है। तो तकलीफें बहुत आई, अभी तो हमने सिर्फ सक्सेस की बातें की हैं।
0: जी
1: ऐसे कई लम्हात, कई दिन, कई महीने, कई साल गुजरे जब काम भी नहीं होता है आपके पास।
0: अच्छा
1: ऐसा भी होता है, क्योंकि जब आपका नाम होता है ना, वो अपने साथ एक बहुत बड़ी चीज लेकर आता है कि यार ये सलमान खान की कोरियोग्राफर है, महंगी होगी,
0: हाँ
1: तो आपके पास लोग नहीं आते। फिर आपको पता चलता है कि अच्छा मैं तो महंगी नहीं हूं, तो आओ तो सही, पता चलेगा क्या
0: पूछो
1: हो।
0: तो।
1: ये एक चीज है। दूसरी चीज, एक लड़की होना, एक लड़की होना, एक लड़की जो बचपन से आप कहें अल्हड़ उम्र के अंदर भी मैंने कदम यहीं पे रखा। मैं 15 साल की थी तो मैं 20 साल की भी यहीं हुई, 20 की हुई तो 22 की भी यहीं हुई, 25 की भी हुई है। तो ये जो एक दौर होता है जब आपको लोग अलग नजरिए से देखते हैं,
0: कैशव और पूरा जवानी सब यही निकली।
1: यहीं पे गुजरा है, तो मैंने वो भी देखा। और एक वक्त था जब कुछ लोगों के साथ मैंने जुड़ना नहीं चाहा, तो मैं घर बैठ गई। एक वक्त था जब मुझे घर बिठाया गया, ये नहीं करोगी तो ये होगा, मैं बैठ गई घर। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ लड़कियों से कि सब्र का दामन थामे रखो, हमेशा पेशेंस जिसे कहते हैं, सब्र रखो। ऊपर वाले ने जो आपको दो ताकतें मिली है, एक ये कि ऊपर वाले ने आपकी कुंडली लिख दी है, दूसरा ये कि आपकी अच्छी आदतें, आपकी अच्छी नीयत, सिर्फ वही चीज ऊपर वाले की लिखे को बदल सकती है।
0: जी
1: ये सारे चीजें यही कहती है
0: जी
1: कि आपका कर्म आपके आने वाले कदमों को अच्छा या बुरा बना सकता है। तो
0: जी
1: मैं यही कहना चाहती हूँ लड़कियों से कि हड़बड़ाहट में, पानी की लालसा में, चाहत में अगले ही कदम गलत कर दोगे तो भी आपको थपेड़े तो मिलेगी ही मिलेगी। तो क्यों ना हम सब्र कर लें, थोड़ा बैठ लें, थोड़ा इंतजार कर ले, थोड़ा दुआओं की ताकत को आजमाएं,
0: थोड़ी एहतियात
1: थोड़ी
0: बरतें।
1: एहतियात बरते, थोड़ा मंदिरों में जाके बैठ जाए, सुकून ले ले, और उसको बोले कि मैं तो मेहनत करने तैयार हूं, बट
0: तू देख ले
1: रास्ते तू
0: फिर।
1: देख ले। लेकिन वो सब आप तब कर पाओगे जब आपके अंदर सब्र होगा, संयम होगा। संयम रखो, भाग भाग के तकदीरों को खराब मत करो, संयम से काम लो, और मेहनत और चाहत ऊंचे की। यू नो आई ऑलवेज से चिन अप प्रिंसेस,
0: आय है
1: कीप योर चिन अप। तो आपकी डिग्निटी आपके सिवा कोई अपने ऊपर नहीं रख सकता। आपकी डिग्निटी आपको अपने हाथ में रखनी है, आपके माँ बाप की मर्यादा आपको अपने हाथ में रखनी है। और मर्यादा जब मैं कहती हूँ, उसका मतलब ये है कि सबर तभी रख पाओगे जब आपके अंदर संयम हो, सबर हो। वो रखो और अपनी बनने की चाहत को, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कभी खत्म मत करो। आज आप कुछ नहीं हो, लोग आपकी बात को बोलेंगे, अरे क्या बोल रही है, हट, कहीं सुन लिया होगा। लेकिन यही बातें आपको अपने अंदर का कॉन्फिडेंस ही आगे बढ़ के सहारा देगा। अपने पे भरोसा करना कभी मत छोड़ो,
0: आपने शॉर्टकट पकड़ा होता तो शायद आपको, आप आज यहाँ बैठ के बात नहीं कर
1: बिल्कुल
0: रही
1: नहीं कर
0: होती,
1: रही
0: और
1: होती।
0: आपने धीरता रखी, गंभीरता रखी, तो आज आप यहाँ बैठी हैं, और इतनी यहाँ नहीं बैठी हैं, आप कई सारे दिलों पे राज कर रही हैं, कई सारे गीतों के माध्यम से राज कर रही हैं। बहुत बड़ी
1: बिल्कुल
0: बात है शबीना
1: बिल्कुल,
0: जी। तो आपसे जब बात की तो बहुत सारी शिक्षाएं निकली, छोटी छोटी बातें शिक्षाओं के रूप में निकली, और सबसे बड़ी शिक्षा निकली मर्यादा, और आपने एक शब्द बोले अपने माता पिता के जो संस्कार हैं बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: ऊपर रखो और उनको बचा के रखो।
1: बहुत जरूरी है।
0: ये बहुत बड़ी बात आज के समय में, आज के काल में आपने बच्चों को बताई है, उसके लिए हम सभी बहुत धन्यवाद देते हैं। और विविध भारती परिवार जिसमें हमारे श्रोता

0: हम सब और इसके पीछे काम करने वाले ढेर सारे लोग सब आते हैं और सब आज आपको यहाँ आके बहुत खुश हैं। यहाँ तक आप आई, आपने इतनी सारी बातें की और ये बात हम जानते हैं कि बहुत सारी बातें हैं जो रह भी गई हैं, शायद आपको भी याद नहीं है। और यहाँ से निकलने के बाद लगेगा अरे ये बात और बता देनी
1: हाँ,
0: थी, तो वो जो बातें रह जाएंगी वो हम चाहेंगे कि कभी और किसी और रोज हम
1: बिल्कुल
0: साथ में बैठे और हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं। लेकिन शबीना जी, यहाँ तक आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विविध भारती परिवार का एक नया हिस्सा बनने के लिए बहुत धन्यवाद।
1: मैं लास्ट में सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का शुक्रिया कि विविध भारती को आपने अब तक उस शिखर पे रखा हुआ है।
0: जी
1: यहाँ पे आना, यहाँ के एहसास को जीना, यहाँ की सच्चाई जो मैंने आज फील की है, आई होप ये सच्चाई और ज्यादा से ज्यादा लोग जिए इसको। विविध भारती का शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए,
0: जी,
1: और आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बी हियर।
0: थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू
0: थैंक यू
1: सो
0: सो
1: मच फॉर
0: मच,
1: हैविंग मी।
0: आपका बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे सभी श्रोताओं को आकाशवाणी परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शाम के 5 बजे हैं, युवा साथी सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी

हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खुश और स्वस्थ होंगे। साथ ही साथ आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम से मनाया होगा, और मनाएं भी क्यों ना, आज हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये देश का इतना बड़ा त्यौहार उत्साह और जोश से मनाया ही जाता है, और इसी इंजॉयमेंट के साथ ही साथ आप सुनते रहिए अपना वन ऑफ द डेली यूथ प्रोग्राम युवाणी, जो लेकर हाजिर है आपकी रेडियो हम सफर एकता। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह आज भी करेंगे ढेर सारी बातें चर्चा से जुड़ी, साथ में सुनेंगे प्यारे प्यारे सॉन्ग्स भी। और साथियों, जैसा कि आपको पता है, आज दिन है शनिवार, और शनिवार को होता है हमारा खास क्रम खेल इस सप्ताह विश्व घटना चक्र, जिसमें मैं आपको दूंगी इस हफ्ते विश्व में घटित घटनाओं की जानकारी, जिसके लिए आप जुड़े रहिए अपनी रेडियो हम सफर के साथ।

0: फ्रेंड्स, जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती है गंगा, जहाँ अनेकता में है एकता, जहाँ का नारा सत्यमेव जयते है, वो भारत देश हमारा है। और आज स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर मैं अपने सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। दोस्तों, आज का दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, आज का दिन है गर्व का, गौरव का, बलिदान का, उस आजादी का, जिसे पाने के लिए हमारे वीरों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। आज 15 अगस्त 1947 भारत का स्वतंत्रता दिवस, ये ऐतिहासिक दिन जब वर्ष 1947 में हमारा देश लगभग 200 वर्षों की गुलामी की वीडियो को तोड़कर स्वतंत्र हुआ था। फ्रेंड्स, जरा सोचिए, जिस मिट्टी पर हम आज बेखौफ चलते हैं, जिस आसमान के नीचे हम अपने सपनों को उड़ान देते हैं, जिस तिरंगे को आज हम पूरे सम्मान के साथ लहराते हैं, इस आजादी के पीछे कितने वीरों का संघर्ष, कितने परिवारों का त्याग और कितनी माताओं की आंखों के आंसू छिपे हैं। महात्मा गांधी जी की सत्याग्रह, चंद्रशेखर जी का साहस हो, भगत सिंह जी का साहस हो, सुभाष चंद्र बोस जी का जोश हो, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान जी का बलिदान हो, इन सभी वीरों ने हमें सिर्फ आजादी नहीं दी है, बल्कि हमें अपने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है। और साथियों, आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तो एक सवाल हम सभी से, क्या आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति पाना था? नहीं, आजादी का अर्थ है अज्ञानता से आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी, भेदभाव से आजादी, नशे से आजादी, अंधविश्वास से आजादी। और उन सभी बुराइयों से आजादी जो हमारे देश की प्रगति में बाधा बनती हैं। फ्रेंड्स, आज का युवा भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। हमारे हाथों में सिर्फ मोबाइल नहीं, भारत का भविष्य है। हमारे सपनों में सिर्फ अपना भविष्य नहीं, देश का भविष्य भी होना चाहिए। आइए दोस्तों, इस स्वतंत्रता दिवस पर हम एक छोटा सा संकल्प लें। हम अपने देश की स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, प्रकृति की रक्षा करेंगे, मानव का सम्मान करेंगे, शिक्षा को महत्व देंगे, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे और सबसे बढ़कर भारत की एकता और अखंडता को हमेशा मजबूत बनाए रखेंगे। क्योंकि देश सिर्फ सरकार से नहीं बनता, देश हमसे बनता है, आपसे बनता है, हर नागरिक से बनता है। तो आइए आज अपने दिल में देशभक्ति की लौ जलाएं, अपने भीतर नई ऊर्जा और नया उत्साह जगाएं। इन्हीं बातों के साथ अब चलते हैं म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते हैं प्यारा सा गीत।
1: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
2: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
1: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
2: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
1: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
2: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
1: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
2: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
1: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।

0: सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का, या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का, या पूरे देश का, हर सपने में है भारत की नई तस्वीर। इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे

0: HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HDFC HD वेलकम बैक दोस्तों। साथियों, जिस देश का युवा जागरूक होता है उस देश का लोकतंत्र मजबूत होता है। दोस्तों, युवा वो शक्ति है जो किसी भी राष्ट्र के वर्तमान को बदलने और भविष्य को नई दिशा देने का सामर्थ्य रखती है। और वो शक्ति हमारा युवा वर्ग जो आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है जनता की भागीदारी। इस भागीदारी में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र केवल मतदान तक करने तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ है अपने अधिकारों को समझना, अपने कर्तव्य को निभाना, सही और गलत के बीच अंतर करना और समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाना। युवा जब अपने मत अधिकार का जिम्मेदारी से प्रयोग करते हैं, जाति धर्म क्षेत्र या किसी प्रलोभन से ऊपर उठकर योग्य प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं तो लोकतंत्र और मजबूत होता है। आज के युवा सोशल मीडिया और डिजिटल तकनीक से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आइए इसी विषय पर हम एक वार्ता सुनते हैं। वार्ता का विषय है लोकतंत्र के सशक्तिकरण में युवाओं का योगदान। वार्ताकार है नैना शर्मा।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नैना शर्मा है। दोस्तों, आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं लोकतंत्र के सशक्तिकरण में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है और क्या दायित्व जरूरी है। दोस्तों, लोकतंत्र किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का आधार होता है, जहां नागरिकों को न केवल सरकार चुनने का अधिकार होता है बल्कि नीति निर्धारण में भागीदारी का भी अवसर प्राप्त होता है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में लोकतंत्र केवल एक प्रणाली नहीं बल्कि एक जीवन शैली है, जिसे मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी हर नागरिक की होती है। इस संदर्भ में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, युवा वर्ग देश की सबसे बड़ी जनसंख्या का हिस्सा है और उनकी ऊर्जा, सोच और दृष्टिकोण लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में निर्णायक साबित हो सकते हैं। आज का युवा केवल शिक्षा और रोजगार तक सीमित नहीं है बल्कि वह समाज में हो रहे परिवर्तन को लेकर जागरूक है। युवा विभिन्न माध्यमों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं, विचार करते हैं, प्रश्न उठाते हैं और अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जा रहे हैं। जब कोई युवा अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी करता है तो वह न केवल स्वयं को सशक्त बनाता है बल्कि पूरे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वोट देना लोकतंत्र की नींव है और जब युवा वोट देने के महत्व को समझते हुए चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं तो वे व्यवस्था को जवाबदेह बनाने में मदद करते हैं। अक्सर देखा गया है कि युवा नई सोच और बदलाव की चाहत लेकर मतदान करते हैं, जिससे राजनीति में नवीनता और पारदर्शिता की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त जब युवा किसी मुद्दे को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करते हैं, जनमत बनाते हैं या सामाजिक माध्यमों के जरिए अपनी आवाज उठाते हैं तो लोकतंत्र की आत्मा को जीवंत रखते हैं। दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में युवाओं को अपनी बात रखने, जन जागरूकता फैलाने और अपनी आवाज उठाने तथा सामाजिक अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का सशक्त माध्यम दिया है। अब एक सामान्य छात्र भी देश के किसी कोने से अपनी बात लाखों लोगों तक पहुँचा सकता है। यह नई डिजिटल शक्ति लोकतंत्र को नई दिशा देती है, लेकिन इसके साथ यह जिम्मेदारी भी बढ़ती है कि जानकारी का उपयोग सतर्कता और जिम्मेदारी से किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं की सहभागिता भी लोकतंत्र के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण है। जब छात्र अपने विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघों के माध्यम से नेतृत्व करते हैं तो वे राजनीति की बारीकियों को समझते हैं और भविष्य के लिए तैयार होते हैं। यही नेतृत्व बाद में राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाता है। यदि ये छात्र नेता ईमानदारी, निष्ठा और जनसेवा की भावना से प्रेरित होंगे तो निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र और मजबूत होगा। युवाओं की यह भूमिका केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, ग्रामीण भारत में भी युवा वर्ग को शिक्षा, तकनीक और सूचना से जोड़ना आवश्यक है, जिससे वे भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी कर सकें। पंचायतों, नगरपालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों में युवाओं की भागीदारी से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। जब युवा न केवल अपने लिए बल्कि समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए भी संघर्ष करते हैं तो वे सच्चे लोकतांत्रिक नागरिक बन जाते हैं। लोकतंत्र के सशक्तिकरण में युवाओं की सबसे बड़ी पूंजी है उनकी नैतिकता और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता। यदि युवा ईमानदारी, पारदर्शिता, सहिष्णुता जैसे मूल्यों को आत्मसात करते हैं तो वे एक ऐसे समाज की रचना करेंगे जो न केवल लोकतांत्रिक होगा बल्कि न्यायपूर्ण और समावेशी भी होगा। इसके लिए आवश्यक है कि युवाओं को प्रारंभ से ही नागरिक शास्त्र, संविधान और सामाजिक विज्ञान की भी जानकारी दी जाए, जिससे वे लोकतंत्र की जड़ों को समझ सके और अपनी भूमिका को सही ढंग से निभा सके। हालांकि यह भी सच है कि आज के समय में कई युवा सामाजिक मुद्दों के उचित निस्तारण कभी कभी समय पर न हो पाने के कारण उदासीनता का शिकार हो रहे हैं, लेकिन ये सोच लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकती है। यदि ईमानदार और जागरूक युवा इन मुद्दों से दूर रहेंगे तो सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसलिए दोस्तों, एक जिम्मेवार नागरिक के तौर पर हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा प्रयास करें और आगे बढ़ते रहें। इसलिए यह आवश्यक है कि आज के समय में युवाओं को न केवल राजनीति में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाए बल्कि उन्हें नेतृत्व की नैतिकता, जवाबदेही और सेवा भाव का प्रशिक्षण भी दिया जाए। इसके अलावा युवाओं को स्वैच्छिक संगठनों, एनजीओ और सामाजिक अभियानों से जोड़ना भी लोकतंत्र की ताकत को बढ़ाता है। जब युवा पर्यावरण, शिक्षा, लैंगिक समानता या गरीबी जैसे मुद्दों पर कार्य करते हैं तो वे लोकतंत्र की उस भावना को जीवंत रखते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की आवाज मायने रखती है। यह भागीदारी लोकतंत्र को केवल चुनावों तक सीमित नहीं रखती बल्कि उसे एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बनाती है। सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता युवाओं में स्वाभाविक रूप से होती है। वे तेजी से सीखते हैं, नए विचारों

0: युवा ईमानदारी, पारदर्शिता, सहिष्णुता जैसे मूल्यों को आत्मसात करते हैं तो वे एक ऐसे समाज की रचना करेंगे जो न केवल लोकतांत्रिक होगा बल्कि न्यायपूर्ण और समावेशी भी होगा। इसके लिए आवश्यक है कि युवाओं को प्रारंभ से ही नागरिक शास्त्र, संविधान और सामाजिक विज्ञान की भी जानकारी दी जाए, जिससे वे लोकतंत्र की जड़ों को समझ सके और अपनी भूमिका को सही ढंग से निभा सके। हालांकि यह भी सच है कि आज के समय में कई युवा सामाजिक मुद्दों के उचित निस्तारण कभी कभी समय पर न हो पाने के कारण उदासीनता का शिकार हो रहे हैं, लेकिन ये सोच लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकती है। यदि ईमानदार और जागरूक युवा इन मुद्दों से दूर रहेंगे तो सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसलिए दोस्तों, एक जिम्मेवार नागरिक के तौर पर हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा प्रयास करें और आगे बढ़ते रहें। इसलिए यह आवश्यक है कि आज के समय में युवाओं को न केवल राजनीति में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाए बल्कि उन्हें नेतृत्व की नैतिकता, जवाबदेही और सेवा भाव का प्रशिक्षण भी दिया जाए। इसके अलावा युवाओं को स्वैच्छिक संगठनों, एनजीओ और सामाजिक अभियानों से जोड़ना भी लोकतंत्र की ताकत को बढ़ाता है। जब युवा पर्यावरण, शिक्षा, लैंगिक समानता या गरीबी जैसे मुद्दों पर कार्य करते हैं तो वे लोकतंत्र की उस भावना को जीवंत रखते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की आवाज मायने रखती है। यह भागीदारी लोकतंत्र को केवल चुनाव तक सीमित नहीं रखती बल्कि उसे एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बनाती है। सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता युवाओं में स्वाभाविक रूप से होती है। वे तेजी से सीखते हैं, नए विचारों को अपनाते हैं और जोखिम लेने से नहीं डरते। यदि यह ऊर्जा सही दिशा में लगे तो यह न केवल लोकतंत्र को मजबूत बनाएगी बल्कि एक आदर्श समाज की भी रचना करेगी। इसके लिए जरूरी है कि सरकार, समाज और शैक्षणिक संस्थान मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करें जहां युवा अपनी बात कह सके, नेतृत्व कर सके और निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बन सके। अंततः यह कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि हम युवाओं की भागीदारी के बिना लोकतंत्र अधूरा है। युवा न केवल आज के नागरिक हैं बल्कि कल के नेता भी हैं। यदि हम एक सशक्त, न्यायपूर्ण और जवाबदेह लोकतंत्र बनाना चाहते हैं तो हमें अपने युवाओं को सशक्त बनाना होगा, शिक्षा से, अवसरों से और प्रेरणा से। तभी हमारा लोकतंत्र सच्चे अर्थों में जीवंत, सबल और समावेशी बन सकेगा। धन्यवाद।
1: Work from home? High salary? कैसे क्लिप में? अरे वाह!
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
5: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
4: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
5: आइए हम सब मिलकर साथ भारत को और आगे ले जाएं।
4: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।

दोस्तों, हमने जाना युवाओं की भागीदारी लोकतंत्र में। वार्ता का विषय था लोकतंत्र के सशक्तिकरण में युवाओं का योगदान। वार्ताकार थी नैना शर्मा। फ्रेंड्स, इसी के साथ इस पर बातें यहीं तक। अब चलिए चलते म्यूजिकल वर्ल्ड में और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का, हर सपने में है भारत की नई तस्वीर। इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब

0: साथ भारत को और आगे ले जाएं। SBI डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
1: वेलकम बैक दोस्तों, आज हम स्मरण कर रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व को जिन्होंने अपने जीवन में ये संदेश दिया कि राष्ट्र की सच्ची उन्नति केवल बाहरी विकास से नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर के विकास से है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं श्री अरविंद घोष जी की। महान राष्ट्रवादी, दार्शनिक, योगी, कवि और आध्यात्मिक चिंतक की। आज 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में जन्म श्री अरविंद का जीवन असाधारण प्रतिभा और गहरे चिंतन से भरा हुआ था। श्री अरविंद जी का जीवन हमें बताता है कि देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्म, विचार और चरित्र में दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया और युवाओं में राष्ट्र प्रेम तथा आत्मविश्वास की भावना जगाने का प्रयास किया।

दोस्तों, लेकिन समय के साथ उनके जीवन में एक नया आध्यात्मिक मोड़ लिया। उन्होंने योग और आध्यात्मिक साधना के माध्यम से मनुष्य को आंतरिक विकास और चेतना के उत्थान पर विशेष बल दिया। उनका मानना था कि मनुष्य केवल परिस्थितियों का गुलाम बनकर नहीं रह सकता, उसके भीतर स्वयं को बदलने और अपने जीवन को ऊंचा उठाने की शक्ति मौजूद हो, और यही संदेश आज के युवाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का युवा सपने देखता है, आगे बढ़ना चाहता है, सफलता पाना चाहता है, लेकिन सफलता केवल बड़ी नौकरी या पद हासिल करना नहीं। सच्ची सफलता तब है जब हमारी प्रतिभा के साथ हमारा चरित्र भी मजबूत हो। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे इन पर बातें बस यहीं तक। अब चलिए चलते हैं अपने आज के खास क्रम की ओर, जो है विश्व घटना चक्र, जिससे जुड़ी हमारी आज की जानकारी है। फ्रेंड्स, देश ने मनाया 80वां स्वतंत्रता दिवस। देश भर में आज स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित किया। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये क्रम भी यहीं तक। अब हम दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं तक। अब अपनी रेडियो फ्रेंड एकता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी बहनों को प्रीति का प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बताइए बहनों, आप लोग कैसी हैं? अरे भाई, हमारी बहनें तो आज बहुत खुश दिख रही हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, हमें उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल अच्छी हैं। बहनों, इसी तरह अपने घर परिवार में खुश रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बहनों, जानती हैं ना कि स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा राज क्या है?

0: विविधता, संस्कृति, परंपराओं और वीरता के लिए दुनिया में जाना जाता है। हमारे देश का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। मानो हमारे देश को आज़ादी आसानी से नहीं मिली थी, इसके लिए हमारे देश के अनेक वीरों ने अपना जीवन तक बलिदान कर दिया। उन्हीं वीरों के संघर्ष और बलिदान की याद में हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। बनो आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही खास है। इसी दिन वर्ष 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। बनो इसलिए हर किसी के दिल में इस दिन के लिए विशेष सम्मान और गर्व की भावना होनी चाहिए। बनो यह दिन हमें उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बनो इसी बातचीत के साथ आइए अब सुनते हैं भेंटवार्ता। विषय है आज़ादी का जश्न और महिलाएं। भेंटवार्ताकार हैं श्रीमती अंजलि मिश्रा, प्रवक्ता राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा, और उनसे बातचीत कर रही हैं साजिदा बेगम। लेकिन बहनों, उससे पहले सुनते हैं संदेश को।
1: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
2: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
1: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
2: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
1: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
2: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
1: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
2: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
1: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
3: महनो, स्वतंत्रता दिवस हम सभी के लिए बहुत खास दिन है। यह बंधनों और गुलामी से आज़ादी के सफर की याद दिलाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का भी योगदान बहुत है। उन्होंने न सिर्फ पुरुषों के साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, बल्कि सामाजिक रूढ़ियों को भी तोड़ा और देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। बहनों, स्वतंत्रता दिवस का अवसर है और आज हमारे साथ हैं श्रीमती अंजलि मिश्रा जी, जो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवक्ता हैं। तो अंजलि मिश्रा जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है।
4: धन्यवाद आपका।
3: अंजलि मिश्रा जी, मेरा पहला सवाल है कि स्वतंत्रता दिवस हम सभी के लिए क्या मायने रखता है?
4: स्वतंत्रता दिवस देश के हर नागरिक के लिए अलग अलग मायने रखता है। मेरे लिए ये सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, ना सिर्फ मैं इसको एक उत्सव की तरह देखती हूँ, बल्कि यह एक हमारे स्वाभिमान, संवैधानिक स्वतंत्रता और उन अनगिनत बलिदानों को याद कराने वाला दिन है जिनके बल पर हम इस स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। अगर मैं एक प्रोफेसर और एक माँ के रूप में कहूँ तो मेरे लिए स्वतंत्रता दिवस का मतलब है सीखने, सोचने और आगे बढ़ने की असीमित स्वतंत्रता।
3: जी,
4: यह दिन हमें एक संकल्प लेने का अवसर प्रदान करता है कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ हर एक नागरिक, चाहे वो महिला हो या पुरुष, अपने सपनों को भय मुक्त, बिना किसी भेदभाव के हासिल कर सके। यह स्वतंत्रता जो है हमें एक थाल में सजा कर नहीं मिली है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ पे हर व्यक्ति आगे बढ़कर अपने सपनों को हासिल कर सके।
3: जी जी, बिल्कुल। और हम लोगों की ये जिम्मेदारी भी है कि हम लोग अपनी आज़ादी को बनाए रखें।
4: बिल्कुल
3: जी। तो अंजलि मिश्रा जी, आज़ादी के इतने सालों बाद महिलाएं खुद को आज कितना महसूस करती हैं?
4: अगर हम अतीत से तुलना करें तो महिलाओं ने एक बहुत ही लंबा और सकारात्मक रास्ता तय किया है।
3: जी।
4: पहले के जमाने में महिलाएं सिर्फ घर तक ही सीमित थी।
3: जी।
4: आज वे घर के बाहर निकल रही हैं, नौकरी कर रही हैं, वे शिक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, प्रशासनिक कार्यों में, और आप कहिए कि देश के निर्माण के हर एक स्तर पे वो आगे बढ़कर अपना भागीदारी दे रही हैं।
3: जी जी।
4: और अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत में महिलाओं के बदलते हुए रूप में, तो मैं ये कहूंगी कि हमें, हमारे लिए सच्ची स्वतंत्रता वो होगी जब हम अपने जिंदगी के सारे फैसले खुद ले सके, उस पे कोई रोक टोक ना हो, हमारे भी घर में होने वाले हर कार्य में हमारे योगदान को बराबरी का दर्जा मिले।
3: जी।
4: घर के अंदर, घर के बाहर, एक हमें सुरक्षा से भरा हुआ

0: भय मुक्त समाज मिले
1: जी जी,
0: उसको मैं कहूंगी कि सच्ची स्वतंत्रता है औरतों के लिए।
1: और पहले के हिसाब से अब महिलाओं को बहुत आजादी मिली भी है,
0: मिली है।
1: आज लड़कियां भी बहुत पढ़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं, मतलब हर चीज में आजादी उनको मिली हुई है। तो स्वतंत्रता मिलने के बाद महिलाओं की स्थिति में कितना बदलाव आया है?
0: हम आजाद भारत की बात करें तो महिलाओं की स्थिति में बहुत ही सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे आपको। जैसे कि अगर हम तीन स्तरों पे बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें उनकी शिक्षा का, तो पहले बच्चियां स्कूल तक नहीं जाती थी, कहा जाता था कि नहीं बेटों को ज्यादा पढ़ाइए क्योंकि वो हमारे वंश में आगे जाके हमारे वंश का नाम करेंगे, पर बच्चियों को उतना अधिकार नहीं मिलता था,
1: जाने ही नहीं देते थे।
0: अब बच्चियां स्कूल जा रही हैं, स्कूल की पढ़ाई पूरी कर रही हैं, अपना उच्च शिक्षा में जा रही हैं, अनुसंधानों में जा रही हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रही हैं। मैं तो ये कहूंगी उनसे अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं।
1: जी जी।
0: अगर आप ग्रामीण परिवेश में भी देखिए तो वहां पे भी जो बच्चियां हैं अब स्कूलों में अपना जा रही हैं। बहुत सारी ऐसी सरकार की योजनाएं हैं जो कि उसमें उनका साथ दे रही, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है जो कि बच्चियों को और प्रोत्साहित कर रही हैं कि वो अपनी शिक्षा को पूरा करें। दूसरा बदलाव देखने को मिल रहा है कि महिलाएं अब ज्यादा से ज्यादा आर्थिक आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं।
1: जी जी।
0: वे किसी और पे उतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती हैं।
1: उनको खुद भी है कि हम अपना भी कुछ काम
0: हम अपना भी कुछ काम करें, अपना नाम हो, लोग मुझे मेरी पहचान से जाने।
1: जी जी।
0: वे नौकरियां कर रही हैं और तो और एंटरप्रेन्योर के रूप में दूसरों को भी नौकरियां दे रही हैं।
1: जी जी।
0: वो एक बिजनेस वुमेन की तरह काफी कारीगरों को मैनेज करती हैं। और अगर हम कानूनी स्तर पे बात करें तो महिलाओं को समान अधिकार दिया गया है पुरुषों के तरह ही। हमें संपत्ति में अधिकार दिया गया है कि अब बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं है, संपत्ति पे सबका बराबर का अधिकार है। ऐसे कई सारे नियम कानून लाए गए हैं जो महिलाओं को घर के अंदर और घर के बाहर भी एक सुरक्षित वातावरण दे सके।
1: जी, तो ये देखा जाता है कि आज़ादी के बाद से तो महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, सब जगह में परिवर्तन तो सब जगह आया है।
0: हाँ, परिवर्तन बिल्कुल आया है, पर इस परिवर्तन की वजह से हमें एक चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है जो कि है दोहरी जिम्मेदारी और जो सिर्फ महिलाओं पे लादी गई है। जैसे कि हमें घर का बाहर भी अगर हम काम कर रहे हैं तो बाहर का काम करने के आने के बाद घर का भी काम हमें ही देखना है।
1: जी जी।
0: तो मैं ये चाहती भी हूँ कि समाज महिलाओं की तरफ थोड़ा सा अपनी सोच, थोड़ी सी अपनी भागीदारी को बदले।
1: जी, उनका नजरिया थोड़ा सा
0: बदले।
1: जी,
0: और ये जो है भेदभाव, आपको जो मैंने दोहरी जिम्मेदारी का बताया, सिर्फ ग्रामीण स्तरों पे नहीं, आपको ये शहर में ज्यादा देखने को मिलेगा। औरतें बाहर काम करने गई हैं, काम करके आएंगी, घर पे भी उनको सारा काम करना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जब काम कर लेती हैं तभी लोगों का मूड भी सही रहता है।
0: हाँ, कि आप दोनों जगह एकदम परफेक्ट हैं।
1: हाँ। तो आजाद भारत की महिला होने के नाते आपको किस बात पर सबसे ज्यादा गर्व महसूस होता है?
0: मुझे आजाद भारत की महिला होने पर सबसे बड़ा गर्व इसी बात पर महसूस होता है कि मैं उस लोकतंत्र का हिस्सा हूँ जहाँ पे मेरे संविधान ने मुझे बराबर का अधिकार दिया है पुरुषों के समान। मुझे उसके लिए कोई आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। कई ऐसे देश हैं जहाँ पे महिलाओं ने बहुत आंदोलन किए, बहुत लड़ाइयां लड़ी, तब उन्हें पुरुषों के समान जाके अधिकार मिला है। पर हमें यह अधिकार हमारे जन्म से ही हमें मिला हुआ है। और मैं एक प्रोफेसर के रूप में कहूँ तो जब मैं अपने छात्राओं में क्लास में देखती हूँ कि वो आत्मविश्वास से भरी हुई, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, उनके पास आगे बढ़ने का जज्बा है, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम लोग इस देश में हैं जहाँ हमें आगे बढ़ने के एकदम समान स्तर मिल रहे हैं।
1: जी जी।
0: मैं खुद दो बेटियों की माँ हूँ।
1: जी।
0: तो मैं इस बात पे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मेरी लड़कियाँ उस समाज में पैदा हुई हैं जहाँ पे उन्हें लड़कों से कम नहीं आंका जा रहा है।
1: जी।
0: उनके पास पूरा आसमान है, जो बनना चाहे बने, जो हासिल करना चाहे वो हासिल करें।
1: जी जी। बस सिर्फ उनको आपके सपोर्ट की जरूरत
0: जी जी।
1: तो स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं तो अंजलि जी ये बताइए कि स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का योगदान कैसा रहा?
0: हमारा स्वतंत्रता आंदोलन सिर्फ पुरुषों की गाथा नहीं है, इसमें हमारी नारियों का नेतृत्व, साहस और त्याग का स्वर्णिम इतिहास है।
1: जी।
0: अगर हम बात करें 1857 की क्रांति में तो उसमें रानी लक्ष्मीबाई, बेगम, हजरत महल जैसी वीरांगनाओं ने भाग लिया। और गांधीवादी युग में अगर हम बात करें तो कस्तूरबा गांधी हैं, सरोजनी नायडू जी, सुचिता कृपलानी जी और अरुणा असफ अली जैसी महिलाओं ने बहुत आगे बढ़ चढ़कर योगदान दिया।

0: जी जी
1: और इस आंदोलन में मैं उन माताओं बहनों का भी योगदान मानूंगी जिन्होंने अपने बेटों पतियों भाइयों को इस आंदोलन में हंस हंस कर विदा किया।
0: जी
1: वो आंदोलन पे बैठी, विदेशी कपड़ों की होली जलाई, जेल की यात्राएं तक की, तब भी वे पीछे नहीं हटी। उन्होंने गुप्त रूप से क्रांतिकारियों को संदेश पहुंचाए, उनको भोजन दिया उनको। तो इनका योगदान हमें ये दिखाता है कि जब भी हमारे देश को जरूरत पड़ी, भारतीय महिला ने अपनी चौखट लांगी और देश की रक्षा के लिए आगे खड़ी हुई।
2: तो अंजलि जी, स्वतंत्रता दिवस का अवसर है, तो आप बहनों से क्या कहना चाहेंगी जिससे वो मजबूत, सशक्त और आत्मनिर्भर हो सके?
1: इस दिवस के अवसर पे मैं इस मंच से अपनी माताओं बहनों को ये करके ही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो वह अपनी शिक्षा पे ध्यान दें
0: जी,
1: और शिक्षा को सिर्फ एक डिग्री हासिल करने तक मत रखें
0: जी जी,
1: उसको एज अ एक हथियार की तरह ले जिससे आप समाज की सोच बदल सकती हैं, खुद को आत्मनिर्भर बना सकती हैं और समाज से पहले आप खुद की भी सोच बदल सकती हैं।
0: जी जी
1: आप अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए, किसी पे भी आपको डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है।
0: जी
1: एक महिला को दूसरी महिला का मदद करनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए।
0: जी
1: एक दूसरे को नीचा दिखाने से अच्छा जब एक महिला दूसरे महिला की मदद करेगी तो ये समाज उतनी ही आगे से डेवलप करेगा।
2: जी जी और जब शिक्षित होंगे तभी आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं।
1: बिल्कुल
2: और कोई भी रोजगार कर सकते हैं। तो अंजलि जी ये बताइए कि आजाद भारत में हम रह रहे हैं तो महिलाओं को कितनी आजादी मिलनी चाहिए?
1: आजादी कितनी और कैसी होनी चाहिए यह उस व्यक्ति पे निर्भर करता है। अगर हम बात करें महिलाओं को कितनी आजादी मिलनी चाहिए तो आप उनको कहिए तो बेसिक इंडिपेंडेंटशिप मतलब दीजिए, जैसे कि उनको उनके हर फैसले लेने दीजिए
0: जी,
1: आप उनके फैसले पे उन्हें सपोर्ट करिए, उनको थोड़ा बहुत गाइड करिए
0: जी,
1: महिलाओं के ऊपर आप अपने फैसले थोपिए मत
0: जी,
1: उनके वो जो कोई भी फैसला लेती है उसके पीछे के पहले रीजन को समझने की कोशिश करिए, फिर आप उनसे जो भी आपको बातें रखनी है अपनी बातें रखिए, उनकी भी बातें समझिए।
2: तो बहनों आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने देश पर गर्व करें और उन शहीदों को नमन करें जिनकी वजह से आज हम आजाद भारत में रह रहे हैं। बहनों आजादी का मतलब यह हरगिज नहीं है कि हम जो चाहें वही करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ये भी नहीं है कि जो हमारा दिल करेगा हम वही करेंगे। नहीं, आजादी हमें पढ़ने की है, आगे बढ़ने की है, अपनी रुचि के अनुसार नौकरी पाने का अधिकार है या फिर रोजगार करने की स्वतंत्रता। तो हम ऐसा काम करें जिससे हमारे माता पिता का नाम रोशन हो, समाज में तरक्की हो, लोगों में जागरूकता आए, समाज में बदलाव हो सके। तो आज अंजलि मिश्रा जी आप स्टूडियो में आई और हमसे बातचीत की और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
4: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
3: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
4: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
3: SBI डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
4: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
3: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
4: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
3: SBI डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
4: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
3: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
4: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
3: SBI डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
5: बहने अभी इस संदेश से पहले सुन रही थी भेंट वार्ता, विषय था आजादी का जश्न और महिलाएं। भेंट वार्ताकार थी श्रीमती अंजलि मिश्रा, प्रवक्ता राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा, और उनसे बातचीत कर रही थी साजिदा बेगम। बहनों अब हमारी चर्चा का विषय है आत्मनिर्भर महिलाएं। हम बहनों से ज़्यादा कौन समझेगा कि एक घर को संभालने में सबसे ज़्यादा महिलाओं की ही ज़रूरत होती है ना बहनों। बहनें ही पूरे घर की देख रेख पूरी जिम्मेदारी निभाती हैं। और ऐसे भी आज के समय में हमारी बहनें किसी भी काम में पीछे नहीं हैं। घर संभालने के साथ साथ पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, खेती, मेडिकल, राजनीति, हर काम में अपना योगदान दे रही हैं। हम बहनों को केवल परिवार पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और जरूरत भी है बहनों, समय ऐसा है कि घर का हर सदस्य काम करे तो भी देखिए कम लगता है ना बहनों। बहनों, आत्मनिर्भर होने का अर्थ केवल पैसा कमाना ही नहीं, बहुत कुछ ऐसा काम भी है होते हैं जो वह खुद कर सकती हैं, स्वयं का निर्णय लेने में सक्षम रहती हैं। सबसे जरूरी बात है काम है कि वो स्वयं कुछ कर सकती हैं, स्वयं का फैसला अपने आप कर लेती हैं। बहनों, पहले के समय में महिलाओं के लिए घर से बाहर जाकर काम करना आसान नहीं था। पहले का जीवन बहुत ही कठिन था। घर की जिम्मेदारियां, परिवार की सोच, सबसे बड़ी बात की आने जाने की समस्या और समाज की सोच उनके रास्ते में रुकावट बनते थे। लेकिन बहनों, आज पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। आज परिस्थितियां बदली, लोगों की सोच बदली, समय बदला। बहनों, कहते हैं ना कि अब पहले का समय नहीं है, कहते हैं ना, अब सभी लोग बोलते हैं अरे अब पहले का समय नहीं है। अब नए नए सोच, नए लोग, तरह तरह की तकनीकी व्यवस्था, इंटरनेट, मोबाइल फोन और नई तकनीकी ने महिलाओं के लिए घर बैठे काम करने के लिए अनेक साधन बिल्कुल आसानी से मिल रहे हैं। अब हमारी बहनें घर की पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए भी अपनी योग्यता और अपनी हुनर के अनुसार काम कर सकती हैं। बहनों, अब घर बैठे भी आसानी से काम मिल जा रहा है ना। बस काम करने की चाह होनी चाहिए। काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, बस मेहनत और लगन होना चाहिए। बहनों, एक दिन जानती मेरे पार्लर में एक दीदी आई और बोली हमें भी काम करना है। तो हम बोले अरे भाई, आप तो घर का काम करती हैं, फिर पार्लर में काम कैसे करेंगी। लेकिन उसने तुरंत बोला कि दीदी, हम घर के साथ साथ बाहर का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पार्लर का काम आता है, सिलाई आता है और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम कर सकते हैं। हम तो बोले बिल्कुल अच्छी बात है, तो भाई आप घर बैठे भी काम कर सकती हैं तो करिए। सबसे अच्छी बात बोली कि दीदी, हम खाना बनाना आता है तो टिफ़िन सेवा शुरू कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम है। आज बहुत सारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, सब कुछ तो मिल जाता है लेकिन अच्छा खाना घर जैसा बिल्कुल नहीं मिलता, तो ये काम तो बहुत ही आसानी से हो सकता है। बच्चों के घर जैसा खाना तो मिल जाए, बच्चे स्वस्थ भी रहे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी करें। बहनों, हमारी बातचीत अभी आगे और भी होगी, आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

बनो, अभी आपने सुना इस प्यारे से गीत को, और हम गीत से पहले बात कर रहे थे आत्मनिर्भर महिला। तो बहनों, हम सबको अब काम की कमी नहीं है, बस काम करने की जरूरत है और चाह होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। बहनों जानती, अभी हम आपसे बता रहे थे कि एक लड़की काम करना चाहती थी तो वो घर से सारा काम करती थी। उससे हम बोले कि बहुत अच्छी बात है, इससे तो घर भी संभल जाएगा और काम भी कर लोगी। उसने कहा, दीदी सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हम बहनों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। जी हाँ बहनों, आप खुद पर निर्भर रहिए, किसी से कोई भी ज़रूरत पड़े आप उसकी ज़रूरत पूरा करिए, मांगिए नहीं। बहनों, इसी बातचीत के साथ अब हम थोड़ी बात करेंगे अरविंद जी जयंती पर। बहनों आज इनका बहनों आज इनका पूरा नाम है अरविंद घोष। उनका जन्म था 15 अगस्त यानी आज के दिन 1872 को कलकत्ता में हुआ था। वे हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, कवि और आत्म गुरु थे। हर साल आज के दिन ही उनकी जयंती मनाई जाती है। श्री अरविंद जी बचपन से ही बहुत होनहार थे। बहनों विदेश में रहकर पढ़ाई की, लेकिन अपने देश लौटने के बाद उन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम करना शुरू कर दिया। बहनों चाहते थे कि हमारा देश आज़ाद हो और हमारे देश के लोग आत्मनिर्भर बने। मैंने बाद में श्री अरविंद जी का मन आध्यात्मिक की ओर हो गया। उन्होंने योग ध्यान के माध्यम से लोगों को सच्चाई, शांति और अच्छे जीवन का रास्ता बताया। बहन उन्होंने पांडिचेरी में आश्रम की स्थापना की और अपना जीवन आध्यात्मिक कार्यों में लगा दिया। हमेशा से उनका मानना था कि व्यक्ति को अपने जीवन में लगातार अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ना चाहिए। उनके विचार आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं।

बहनों देखिए, कहते हैं ना, बातचीत तो ख़त्म होने को ही नहीं मानता, लेकिन समय तो ख़त्म होता है ना। बहनों आप लोग हमेशा अपने घर अपने परिवार में खुश रहिए, मस्त रहिए और सबका ख्याल रखिए, खासकर बच्चों का। बहनों अपने अब तो गृहलक्ष्मी कार्यक्रम समाप्त करने का समय भी हो रहा है, अपने प्रीति दीदी को दीजिए इजाज़त। बहनों जय हिंद जय भारत। बहनों नमस्कार।

अभी महिलाएं सुन रही थी कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप भोजपुरी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए समाचारों की।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हैं हम प्रमोद कुमार सिंह। देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति के साथ धूमधाम से मना रहा है। प्रधानमंत्री आज भी नहीं ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर से झंडा फहरा के देश के संबोधित कहने स्वाधीनता दिवस का शुभकामना देत वहां के कहने कि आज हर दिल का धड़कन वंदे मातरम के गान से गूंज रहा है।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: प्रधानमंत्री कहले कि एआई शिखर सम्मेलन से भारत दुनिया के आपन ताकत दिखावलस। वहां के कहने कि देश के युवा शक्ति एआई के क्षेत्रों में कोशिश कर रहा हो।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: श्री मोदी कहले कि सरकार मध्यम वर्ग के लेकिन खातिर फ्री ऑनलाइन कोचिंग के इंतजाम कई रहा हो, जिसमें तमाम परीक्षा बदे फ्री में ऑनलाइन कोचिंग करावल जाये। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह विधान भवन के सामने भइल, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झंडा फहरौलें। ए मौका पर मुख्यमंत्री प्रदेश के नौजवानन बदे नया यूथ पॉलिसी का घोषणा कइले। वहां के कहने कि प्रदेश के नौजवान प्रतिभावान और देश आ समाज बदे कुछ कैले के इच्छा शक्ति से भरल हवें।
2: हमारा संकल्प है हर युवा के हाथ में स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट हो। इसी संकल्प को और अधिक गति प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी बहुत शीघ्र लेकर के आ रही है कि यूथ पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश के युवा को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उनके स्किल, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट को और अधिक मजबूती प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी।
0: मुख्यमंत्री कहले कि पिछला 9 वर्ष में शिक्षकन, शिक्षा मित्रन, अनुदेशकन आ रसोईयन के बढ़िया मानदेय के फायदा दिहल गई हो। जब मास्टर लोगी आर्थिक चिंता से फ्री रही हैं, ता औरियो उछाह के साथे नौजवानन के भविष्य के उज्ज्वल बनौले में योगदान दिए हैं। श्री योगी आजादी के लड़ाई में प्रदेश के योगदान का जिक्र करत आजादी के नायकन के याद कई हैं। वहां के कहने की आजादी का लड़ाई उत्तर प्रदेश के बिना अधूरा मानल जायी। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह आ तात्या टोपे जैसे महान क्रांतिकारी लोग आजादी के लड़ाई के प्रदेश के हर हिस्सा ले पहुंचौले। ए मौका पर मुख्यमंत्री देश के हिफाजती आ सम्मान बदे अदम्य साहस दिखावे वाले वीर सैनिकन आ शहीदन के परिजनन के सम्मानित कैले। श्री योगी विधान भवन के बहरे सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रस्तुति देवे वाले कई राज्य के कलाकारन के अपने आवास पर सम्मानित कैले और उनसे बातोचीत कैले। मुख्यमंत्री अपने आवास पर झंडो फहरौलें। ए मौका पर वहां के राष्ट्र नायकन आ शहीदन के श्रद्धांजलि दहलें। प्रदेश के औरियो जिला में प्रमुख सरकारी दफ्तरन, स्कूल, कॉलेज आ औरियो कई जगहिन पर आज झंडा फहरावल गई। ए मौका पर कई गो कार्यक्रमों आयोजित कैल गई। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के लाभार्थियन ले योजना के पहुंचावे बदे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू कैले हो। केंद्रीय खाद्य आ सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी बतौले कि केंद्र सरकार जरूरतमंदन के फ्री में राशन बटौले पर 2,10,000 करोड़ रूपया से बेसी खर्चा कर रहा हो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बतौले कि देश में अनाज का पुरहर भंडार बा। अयोध्या में सावन महीना का मशहूर मणिपर्वत मेला करेड़ सुरक्षा के बीचे शुरू हो गई हो। आज ढेरी संख्या में श्रद्धालु लोग मणि भगवान का दर्शन पूजन कैले। एकरे अलावा श्री राम मंदिर के सतही अयोध्या के सज्जो मंदिरन में भगवान का झूला उत्सव शुरू हो गई हो। ई मेला पखवाड़ा भर चली। राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज थाना एरिया में आज एगो बेकाबू ट्रैक्टर ट्राली पलटले से 4 गो मजूरन का मौत हो गई। सज्जो मृतक बाराबंकी जिला के रहवैया हमें। सूचना पर पहुंचल पुलिस जो शव के कब्जा में लेके पोस्टमार्टम बदे भेज देलस। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है।
4: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
5: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
4: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
5: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
4: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
3: श्रोताओं, आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण बता दें। स्वतंत्रता दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रदेश की जनता के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा आज रात 8 बजे। श्रोताओं, इसे फिर से सुन लें। स्वतंत्रता दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रदेश की जनता के नाम संदेश प्रसारित होगा आज रात 8 बजे। राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न समारोहों की रेडियो रिपोर्ट हम आपको सुनवाएंगे आज रात 10 बजे।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद सोनभद्र में आयोजित विभिन्न समारोहों की रेडियो रिपोर्ट प्रसारित की जाएगी शाम 7:31 पर। इस सप्ताह संसद में हुई कार्यवाही की समीक्षा आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे रात 9:15 पर।

रात 10:45 पर सुनिएगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। किसानवाणी कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से आप सुन सकेंगे शाम 6:50 पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:10 पर ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम होगा ग्राम जगत। इसमें आप सुनेंगे लोक भाषा काव्य पाठ, साथ ही बीज उत्पादन की बारीकियां विषय पर शिव प्रकाश सिंह से भेंटवार्ता होगी सुनील कुमार तिवारी की। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें कि आज रात 8 आप सुनेंगे स्वतंत्रता दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रदेश की जनता के नाम संदेश।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए हमारा कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम।
1: नंदू
0: आपो
1: भैया
0: के राम
1: पुकरा,
0: राम लेना बहन।
1: नंदू भैया बहू के राम राम। और बतावा।
0: और देखा सब ठीक बा? और आज सब पंचन भैया के जोन बा 80वें जोन स्वतंत्रता दिवस मनावल जा रहल बा,
1: हाँ
0: ओकर ढेर सारा
1: सही।
0: बधाई हो। और नैना बहन देखा, ये हरेक साल मनावल जाला,
1: हाँ
0: और कहीं ना कहीं जोन बा ये मनावे के पीछे का यह उद्देश्य बा कि जोन इतना कठिनता के साथ इतना कुर्बानी देहला के बाद इतना जोन बा मतलब ये कहला कि एकरे पीछे कितना अपन वीर शहीद हुआ, जोन हंसते हंसते कोई फांसी के फंदा पे झूल गई लें, कोई अपने सीने पर गोली खा ले लें, तब जाकर के कहीं ये आज़ादी मिलल बा। तो एकर इहे मनसा बा नैना बहिन कि आवे वाला जोन समय होखे वो अपन भारत देश इतना समृद्धशाली होखे, इतना मजबूत होखे कि कौनो भी देश अपने भारत देश की तरफ नजर उठा के देख न सके।
1: हाँ सही बात है भैया। देखा है कि कितना जश्न के साथ है सभी लोग मनैले हैं। आ देखा है कि साथ साथ अपन जब बचवा लोगन हवा देखो कुछ ज्यादा ही खुश रहलेन हैं। तो हम तो यह कहब कि एकर जोन आज का दिन बा वो देखा सभी बदे बहुत महत्वपूर्ण बा।
0: बिल्कुल सब बदे महत्वपूर्ण बा। और एकर पीछे एक यह संदेश बा कि भैया हो जहां भी जैसे भी होके आवे वाला जोन बचवा लोगन के आप बात करत हैं वो देखें, वो बचवा लोग भी जोन बा वो देश के आगे आवे वाला करधार हुई है, भारत के जोन बा उनके ऊपर एक जोन बा जिम्मेदारी हुई कि भारत देश के कैसे सुरक्षित और संपन्न बनावे के बा और कैसे एकता अखंडता के भी अपना छोड़ रखे के बा।

0: जिम्मेदारी देखें, हर बुजुर्ग आज वो बुजुर्ग के देखें जो 60 साल 70 साल 80 साल के हवा भैया, जब वो आज के दिन अपन उनके याद आवला तो वो भी अपन मोछा जोन बा करियर कर ले वाला है।
1: बिल्कुल
0: तो कहीं न कहीं जब अपन बुजुर्गन में इतना जोन बा देश के प्रति जज्बा बाने ना बहिन, तो हर हिंदुस्तानी के दिल में यह होए के चाहिए कि आपन देश सर्वोपरि रहे, सबसे प्रथम रहे और देश के सुरक्षा सबसे पहले होए।
1: पहले हुए।
0: तो देखें अपन बात बत कही तो होते रही, लेकिन आज अपन कार्यक्रम में भी का शामिल बाए पर भी चर्चा होए के चाहिए।
1: तो देखा है आज अपने कार्यक्रम में लोक भाषा यानी काव्य पाठ प्रद्युमन कुमार त्रिपाठी जन कवि है वहाँ इनके सुनल जाये और देखा है अपन कुछ जानकारी भी सुनल जाये कि बीज उत्पादन की बारीकियां क्या है। एपी शिव प्रकाश सिंह जो प्रगतिशील कृषक है इनसे अपन देखा सुनील कुमार तिवारी भैया बातचीत करी है यो सुनल जाये। देखा आज का बाजार भाव भी है, मधुपुर के पुनर्वासी चौहान भैया भी भेजल है यो जानल जाये। और देखा अपने मौसम की भी जानकारी सुनल जाये। और देखे अगर मन महसान के भी बात कर जाए तो मन्ना लाल यादव उनका संघाती के गाँव देशभक्ति भी सुनल जाये।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तक हम न कि आवे जानल जाए कि प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी भैया आज जो उन कवि हों, आज वो का अपन देशभक्ति कौन से जज्बा सुनावत हों, हम तक कहब कि आवा सुनल जाए, लेकिन उससे पहले कुछ संदेश सुन लिया जाए।
1: चलो सुन लेवल जाए।

0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
2: वीर शहीदन के चरणन में कोट कोट प्रणाम करत बाटी। उन्हीं के दम पर ये हमार देश चलता। प्रत्येक भारतवासिन के, प्रत्येक नागरिकन के ही चाही कि उनके नमन बंदन अभिनंदन करी। वही चरण में हम एक कजरी ओए वीर जवान के समर्पित करत बानी। आप लोगन आशीष दी हैं जरूर।
3: स्वागत
2: चला।

सब कर है हउए माई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब कर है हउए माई, सब कर है हउए माई, सब कर

जवान धन धन सेना के जवान हो ले एकरे पर कुर्बान। धन धन सेना के जवान हो ले एकरे पर कुर्बान।

नाम। और आगे देखें भैया, कि राणा शिवा शेखर लाल सुभाष बिस्मिल तिलक पाल, राणा शिवा शेखर लाल सुभाष

0: और अंतिम मंद भैया कि केवनो मुदई ना चढ़ी आवे जागल रही हा पद्म चेतावे, केवनो मुदई ना चढ़ी आवे जागल रही हा पद्म चेतावे, अनेकता के अनेकता के बल हम आपन दिखाई आई, एकता निभाई आई ना आवा मिलजुली के दियना जराई आई, आरती उतारी आई ना चला भारती के आरती उतारी आई, तिरंगा लहराई आईना।
1: वीर शहीदन के माला पहनाए आईना, तिरंगा लहरा आईना। कितना बढ़िया रचना रहल हा और देशभक्ति से ओत प्रोत आज के कार्यक्रम में ई रचना हम लोग सुनल गए। तो प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी जी आज अपने बीच हुआ और हम लोग और भी कुछ रचना आपसे सुनल जाये, तो त्रिपाठी जी आज आगे अपने श्रोता लोगन के और का सुनाओ चाहिए।
0: जी एक कजरी और बा भैया दूसरे ढंग का
1: जी स्वागत,
0: कजरी के कई कोच होले भैया, वही में एक रचना समर्पित बा आप लोगन के।
1: बिल्कुल स्वागत।

जूली के बगिया लहरावा, हे बाबू आग जनी लगावा। आगे देखें भैया कि लोकतंत्र धर्म निरपेक्ष संविधान हो, सगरो जहान में ई है पहचान हो, देशवा के अपने चमकावा, हे बाबू आग जनी लगा।

झुलके दिए ना जरावा हे भैया आग जनी लगावा। और अंतिम बंद देखें भैया के गांधी विनोबा राजेंद्र के माटी लोहू से सिंचले भगत पर।

0: मिली जुली के बगिया लहरावा, हे बाबू आग जनी लगावा।
1: जी तो देखे कितना बढ़िया रचना रहल है। और पंचों देखे अनेकता में एकता तो अपने देश के ई पहचान बा। लोग गुण गावेलन अपने देश के बारे में, और यहाँ पर सभी लोग मिलजुल के रहें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे के साथ अच्छे ढंग से व्यवहार करें, इके साकार करे के खातिर कवि लोग भी अपनी रचना के माध्यम से प्रयास करेलन, कई तरह के रचना सुनावेलन। तो त्रिपाठी जी अब का सुनाई है आप आगे अपने श्रोता लोगन के?
0: माई के करदास के लिए भाई भैया
1: जी बिल्कुल स्वागत बा।
0: जवन हमन के रास्ता दिखावल है वही माई के समर्पित एक रचना
1: स्वागत
0: बा। जगमग

मातु शारदा पूत पुकारा तारा सबके राख दिखावा सब कर लाज बचावाना जगमग जगमग ज्योत जरावा सब कर लाज बचावाना तोहरे कृपा

सब कर लाज बचावाना। जगमग जगमग जोत जरावा, सब कर लाज।

सब कर लाज बचावाना। जगमग जगमग जोत जरावा, सब कर लाज बचावाना। और अंतिम बंद भैया, कि माया के फसरी

0: सब कर लाज बचावा ना।
1: तो पंचों देखें अरदास रहल है और ये उम्मीद के साथ कि हम सभी लोगन के ऊपर आपकी कृपा बनल रही, हम लोग सही रास्ते पे चलल जाई, कोई भी हम लोगन से गलत काम नहीं हुई और सभी लोगन के कल्याण हुई। तो पंचो देखे आज अपने बीच रहना अपने अंचल के लोक भाषा के कवि प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी जी और आपसे हम लोग कई रचना सुन ली जा। उम्मीद बा कि आप सब लोगन के अच्छा लगल हुई। तो प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी जी आज आप अपने स्टूडियो में अयले और अपने पंच भाई लोगन के इतना बढ़िया रचना सुनोले, एक एक खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मेहमान आएंगे हो सकता है, इंडिया मैच जीतेगा ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।
4: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
5: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
4: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
5: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
4: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
6: UP 112 है उत्तर प्रदेश का सुरक्षा चक्र, क्योंकि ये बेफिक्र होकर खुली हवा में आजादी के साथ सांस लेने का हौसला देता है।
7: तो किसी भी आपात स्थिति में पुलिस, फायर ब्रिगेड, प्राकृतिक आपदा, एम्बुलेंस, साइबर अपराध, महिला या बाल अपराध संबंधित प्रथम प्रतिक्रिया और तत्काल सहायता के लिए 112 मिलाएं।
6: UP 112 की ओर से प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।
7: शहर या देहात, दिन हो या रात, UP 112 है आपके साथ।
6: UP 112 नंबर एक, सेवाएं अनेक।
8: नैना बहन,
9: हाँ भैया,
8: देखा कुछ संदेश भी सुनल गई और प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी भैया के जोन बा काव्य पाठ भी सुनल गई, जोन अपन देश भक्ति से पूरा उत्प्रोत रहे वो सुनौले। लेकिन हम तक हम न कि देखें हर पंच भैया लोगन के मौसम के बारे में जोन बा बड़ा चिंता रहा ला कि भैया कब कैसन मौसम रही। तो हम तक कहब कि हमें मौसम के बारे में अपन जानकारी दे तो सुमंगल सिंह भैया जोन BHU के अपन वैज्ञानिक हुआ, हम तो कहती आवा सुन लिया जाए।
9: चलो सुन लिया जाए, लेकिन उससे पहले कुछ संदेश वो भी सुन लिया जाए।
4: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
5: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
4: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
5: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
4: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
10: नमस्कार किसान भाइयों, आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले 3-4 दिनों से तेज धूप और उमस भरी गर्मी बनी हुई थी। आने वाले 3-4 दिनों का मौसम, अधिकतम तापमान की बात कर लें तो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने की संभावना है और वहीं न्यूनतम तापमान की बात कर लें तो 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की भी संभावना है। और अगले 3-4 दिनों में सोनभद्र जनपद की बात करें तो कहीं कहीं हल्की से मध्यम और कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की अनुमान है। ऐसे मौसम में अब केवल बारिश या धूप को देखकर कृषि कार्य नहीं किसान भाई, अगर धान की बात करें तो धान की फसल इस समय बढ़वार की अवस्था में है किसान भाइयों, और खेत में जाकर केवल पौधे का रंग न देखें, निचली पत्तियों और पौधों के अंदरूनी हिस्सों की भी निगरानी करें। कभी कभी क्या होता है कि उमस और नमी के कारण जो है रोग और कीटों का शुरुआती प्रकोप दिखाई दे सकता है। कुछ ऐसे पौधे बाकी फसल में अलग दिखाई दे तो उस स्थान को चिन्हित करके कारण की पहचान पहले कर लें, फिर उसका उचित उपाय करें। और अगर हम मक्का, अरहर, उड़द और मूंग जैसे फसलों की बात करें तो बारिश के बाद जो होता है कि तेज धूप हुई है, नमी और तापमान का बदलाव पड़ता है, इसलिए फसल की जो बढ़वार है, पत्तियों की स्थिति है और तने की मजबूती प्रभावित होती है। तो ऐसे में क्या करें कि जो कमजोर पौधे हो उनको तेज हवा और बारिश से बचाने के जो उचित उपाय हो सकते हैं वो करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और वहीं सब्जी वाली फसल की बात करें किसान भाइयों, तो इस समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। होता क्या है कि बरसात के मौसम में घनी फसलें, पत्तियां अधिक हो जाती हैं तो लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा फसल है, लेकिन होता क्या है कि उन्हीं पत्तियों में विभिन्न प्रकार के रोग पैदा होते हैं और खेत खेत में अगर अनावश्यक घनी वनस्पतियां खरपतवार रहेगा तो वो जो है आपकी उपज को प्रभावित करता है। और अंत में हम किसान भाइयों को बताएंगे पशुपालन के लिए भी थोड़ा सा, होता क्या है कि इस समय केवल तापमान ही नहीं बल्कि उमस भी पशुओं के लिए तनाव का कारण बन रहा है। तो पशुशाला में जो है कि हवा का आवागमन बना रहे और पशुओं को जो है जो चारा खिलाएं उसकी गुणवत्ता का विशेष ध्यान दें, और खास तौर से जो दुधारू पशुएं हैं अचानक वो खाना कम कर दें, अत्यधिक हाँफना शुरू कर दें, केवल मौसम का असर मत समझें और इसको नजरअंदाज बिल्कुल न करें, चिकित्सक की सलाह लें। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।
8: नैना बहन
9: हाँ
8: देखा रहा है, इस मंगल सिंह जी रहले और बीएचयू से

0: के चाही, वहाँ जमाव कम
1: कम
0: होई,
1: होई।
0: तो कहीं न कहीं किसान भैया लोगन के बीज और जोन बा अनाज में जरूर अंतर समझे के होई। और एक बात हम और कहब कि अगर आपके कुछ चीज जैसे चना हो गई, अरहर हो गई,
1: हाँ
0: या मसूर हो गई, मटर हो गई, छोट छोट ऐसा जोन कम मात्रा में बीज लगला, तो
1: हाँ
0: किसान भैया लोग सोचल है कि भैया अपने खेत से ही जोन बा ओके रख दिहल जाए, और आवे वाला समय में जब बुवाई होई तो ओकर बुवाई कर दिहल जाए। लेकिन ओकरे बीच में उनके बहुत ज़्यादा दिक्कत सब तब समझ में आवला जब उनकर फसल सही मानक रूप में ना उत्पन्न हो पावला उत्पादन। तो उनके एक बात जाने के हुई कि भैया अगर खेत से आप अगर बीज लेवत हो, तो जब अपन बीज जब बिहन जब फली जब पके लगे, तो वो खेत में ही आप वहाँ से ही चयन कर लेवें जोन स्वस्थ पौधा होके, जेकर दाना पोड़ होके, जोन बढ़िया होके, ओके आप खेत से ही उखाड़ करके ओके
1: अलगाई निकाल लें।
0: अलगे कर लेवें। जब आप अलगे कर ली हैं तो उस जोन बा पौधा जब स्वस्थ रही, अपन बीज दाना सही रही, तो आप अगले बार भी होकर इस्तेमाल कर सकल हैं, तो उनमें बड़ा कम मात्रा में रोग योग के अपन
1: लगे की
0: स्थिति
1: संभावना रहे।
0: बिल्कुल संभावना रहल है। और जब आप ओकर इस्तेमाल करे लगे, जब बुआई करे लगे, तब बिया हो जोन शोधित करे के बात होला, तो वो आप जरूर शोधित कर लेवें। शोधित शोधन के भी अपन देखें चर्चा अपन होत रहला कि बिया कैसे कैसे करे के बाद सारा कुछ चर्चा उनमें शामिल रहला, तो उस चर्चा के भी ले करके अपन ओके शोधित करके तब जा करके जोन बा आप खेत में बीज डालें। और न तो हम तो यही कहब कि भैया हो जहाँ तक बन सके अपन स्वस्थ और प्रमाणित बीज जोन बा प्रमाणित दुकान से
1: से ही
0: खरीदें
1: खरीदे।
0: खरीदें और खरीद के ही आप जोन बा खेत में इस्तेमाल करें। काहे से कि नैना बहन बीज तो बड़ा कम लगेला, लेकिन जोन खेत जोते में ओके तैयार करे में और फसल के अंतिम तक जोन मेहनत होला
1: देखभाल करे में।
0: वो बहुत ज़्यादा रहला, लागत भी लगला। तो अगर बीज बढ़िया ना होई तो आपके फसल उत्पादन बढ़िया से ना मिल
1: ना
0: पाई।
1: मिली। सही बात कह लेने भैया। तो देखा जब बीज के बात होते बात ओके देखा अपने कार्यक्रम में भी हमने लोगों शामिल कर लिया है कि बीज उत्पादन की बारीकियां काका बा एपी सी प्रकाश सिंह जब प्रगत सिल कृषक हवा इनसे अपन देखा सुनील कुमार तिवारी भैया बातचीत कर लिया। कहा तो सुनल जाए और जानल जाए।
0: अब सुनल जाए, लेकिन उससे पहले जोन बा कुछ संदेश भी सुन लिया जाए।
2: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का, हर सपने में है भारत की नई तस्वीर। इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं। SBI डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
3: खेती बाड़ी से जुड़ल है और विशेषज्ञ भैया लोग अगर अपने कार्यक्रम में जानकारी देना तो उसे फायदा उठाई ला जा। और जो प्रगतिशील किसान भाई लोगन बा वो जब अपन अनुभव साझा करन तो उनसे कोनो न कोनो सीख ले ही ला हम लोगन। आज हम लोगन के कार्यक्रम में चतरा ब्लॉक के बंजरिया गांव से शिव प्रकाश सिंह भैया आल हुआ। आपका अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। शिव प्रकाश सिंह भैया बीज उत्पादन करना रवि और खरीफ में। प्रकाश सिंह भैया हम आपसे ई जानल चाह कि आप बीज उत्पादन से कैसे जुड़ना।
4: भैया हम प्रत्येक दिन प्रयास करीला कि आकाशवाणी ओबरा के जो कार्यक्रम बा कि हम प्रत्येक दिन सुने के प्रयास करीला। यहाँ के प्रसारण से हमके जानकारी भल कि उत्तर प्रदेश बीज विकास के माध्यम से जनपद सोनभद्र में भी बीज उत्पादन का कार्यक्रम हो रहा है। ओकरे माध्यम से हम जानकारी मिलने के बाद बीज उत्पादन अधिकारी सोनभद्र से मिली और कार्यक्रम के बारे में जानकारी करी। उसके बाद बीज उत्पादन कार्यक्रम से जुड़ल है, आज भी जुड़ल है, जबकि यहाँ से कर ऑफिस खत्म हो गया, वाराणसी से संचालन होता, लेकिन बीज उत्पादन का कार्य में वही माध्यम से जुड़ल है।
3: अच्छा, बीज उत्पादन करे बदे का का करे के पड़ाला सीधा?
4: बीज उत्पादन का जो प्रक्रिया है, बीज के श्रेणी है, जोन एक प्रजनक बीज होला, ओकरे बाद आधारी बीज होला, ओकरे बाद प्रमाणित होला, ओकरे बाद सत्यापित बीज होला। तो बीज प्रक्रिया में जब हमके प्रजनक बीज मिली तो वो से आधारी एक और आधारी एक से आधारी दू से प्रमाणित और प्रमाणित से सत्यापित बीज तैयार कर जला। एक बीज प्रमाणीकरण संस्था है, पहले तो जो संस्था से हम बीज ले एक इस क्षेत्र में आज प्राइवेट लोग भी बीज उत्पादन में लगल हुआ लेकिन हर बीज के प्रमाणीकरण संस्था प्रमाणित कर प्रमाणीकरण का शुल्क होला 450 रूपया और प्रति हेक्टेयर वो शुल्क और साथ में बीज जो हम खरीद ओकर मूल्य देवे को हुई और

0: एक ओकर उसका रसीद और टैग हमको बीज प्रमाणीकरण संस्था के दे के वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना बा
1: जी।
0: और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो बीज उत्पादन हुई वो बीज के एक पुष्पा अवस्था में एक परिपक्व पकले पर बीज प्रमाणीकरण संस्था का इंस्पेक्टर आयो के देखी हाँ और उत्पादन आकलन दी हाँ ओकरे बाद तो वो बीज उस संस्था उत्तर प्रदेश बीज बीज निगम खरीदी या जोन व्यक्तिगत बीज उत्पादक बाऊ खरीदी हाँ खरीदले के बाद ओके ग्रेडिंग के बाद फिर ओकर जोन ओकर सैंपल जांच में अगर हमारे बीज सफल रहल तो हमके ओकरे अनुसार भुगतान प्राप्त हुई।
1: अच्छा शिव प्रकाश सिंह भैया ये हम जानल चाहब कि जैसे और किसान भाई लोग जो खेती करता धान का या गेहूं का तो वो जैसे अपने धान का नर्सरी डालना आप बीज उत्पादन करना तो धान का नर्सरी डालना तो दोनों में का अंतर आप लोग
0: दोनों में भैया ये अंतर है कि बीज का गुण जो हो चाहे वो खर पतवार या दूसरी प्रजात का धान उमा न हो ऐसे जो नर्सरी डालल जला ओके विशेष सावधानी करे पड़ा भैया नर्सरी के पहले सूखी जुताई करके और मां पानी भर का और पहले जो खरपतवार और दूसर पिछले साल के जो धान का मां प्रजाति के अंकुरण करके जमा कर फिर से ओके जुताई करके सुखा कर फिर मां पानी भर का ओके जो बा एकदम स्वच्छ कर दल जाये ओकरे बाद मां नर्सरी डाल।
1: अच्छा तो जैसे बीज उत्पादन करण है आप तो समय समय पर अपन वैज्ञानिक भैया लोग आय कर और नर्सरी का देखभाल करण
0: वो बीज उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम का जो अधिकारी होना वो भी तीन बार आय कर ओके देख रेख कर यहाँ और बीज प्रमाणीकरण वाले भी देखी हाँ कि हमार सही चलता नहीं मां दूसर प्रजात का कोनो खर पतवार या दूसर प्रजात का फसल तो नहीं बा।
1: अच्छा।
0: तब वो प्रमाण पत्र हमें हर बार यहाँ और हमसे सिग्नेचर कर यहाँ और उसके बाद वो हमें एक प्रति दी हाँ।
1: अच्छा धान का जब रोपाई आप लोगन करन तो जब बीज उत्पादन करत हुआ तो वो धान के रोपाई में सावधानी आपका
0: सावधानी हो चाहे की पृथककरण की दूरी होला पृथककरण जो बा पृथककरण दूरी जो बा प्रमाणित बीज करे बदे 3 मीटर दूसरे वही फसल जो भी फसल हुई वो फसल का गैप बीच में होए चाहिए।
1: अच्छा।
0: जैसे परागीकरण क्रिया न हो के ओकर गुणे माने आ जाए एक बचावे पड़ा भैया।
1: अच्छा जैसे तो समय समय पर एमे का करे पड़ा
0: जैसे हम प्रजनक से जब हम फाउंडेशन करब तो ओकरे बदे हमें जोन बा 50 मीटर की दूरी देखे अच्छा। पड़ी लेकिन हम प्रजनक के बाद फाउंडेशन से प्रमाणित करब तो 3 मीटर के पृथककरण दूरी होए चाहिए और वो पृथककरण दूरी होने के बाद ही वो बीज शुद्ध बीज मानल जाये।
1: अच्छा ये बताओ कि जैसे और किसान भाई लोग बीज उत्पादन से अगर जुड़ल चाहता है तो कितना रकबा में बीज उत्पादन का खेती करे पड़ी अपने
0: एक गांव में कम से कम 5 हेक्टेयर बीज उत्पादन कार्यक्रम सम्मिलित कर जला और कई किसान मिल करके एक एक हेक्टेयर 5 लोग 2 लोग 1 लोग के माध्यम से भी बीज प्रमाणीकरण में शुल्क जब लगी 5 हेक्टेयर के ही लगी ऐसे एक समूह के रूप में लेकर खेती कर जा सकला व्यक्तिगत भी 5 हेक्टेयर न्यूनतम हो चाहिए।
1: एक शुल्क कहाँ जमा करे पड़ा और एक पंजीकरण कैसे करा
0: एक पंजीकरण बदे आपको आधार कार्ड और खतौनी और पासबुक ये लेके पहले तो रजिस्ट्रेशन करावे को होला कृषि विभाग के पोर्टल पर वो रजिस्ट्रेशन के साथ उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के ये पूरी कागजात देने के बाद वो शुल्क जो अनबा 450 रूपया प्रति हेक्टेयर और ये जो अनबा निरीक्षण शुल्क है और रजिस्ट्रेशन का हर किसान का 27 रूपया अलग से शुल्क लगी ये बीज आपके देही ओकरे यहाँ जमा करे को हुई वो ले जाके जो अनबा प्रमाणीकरण में वो जाके रजिस्ट्रेशन करे।
1: अच्छा कौन में परेशानी नहीं ना आवे आप कभी परेशानी का अनुभव नहीं कर लेने
0: परेशानी हमके तो कोनो नहीं आवे लेकिन विशेष रूप से किसान यहाँ जो स्थानीय है वो जो रोगिंग कराना कहना के जो अदर कास्ट का दूसरी वरायटी का एक दो फसल आए जानी ओके निकाले में यहाँ लोग आलस कराना।
1: अच्छा
0: ओके 2 बार धान फूटे के समय गेहूँ फूटे के समय और जब फूल आवे लगे तब ओके देख के दूसरे प्रजात के फसल को मां निकालल जाला।
1: अच्छा
0: यह परेशानी वहाँ सबसे ज्यादा है और दूसर परेशानी यह है कि अगर ये हम न करब और हम हमारी फसल वहाँ पहुँचले के बाद फेल हो जाये तो फसल वापस हुई तो बहुत बड़ी परेशानी हुई।
1: अच्छा तो एक बदले सावधानी का बरत
0: सावधानी यह जाए कि दूसर प्रजाति का फसल वहाँ न उगे पावे उगल हो तो के निकालल जाए रोगिंग कहल जाए।
1: अच्छा अच्छा ये बताओ कि जैसे आप बीज उत्पादन से जुड़ल हुआ और जोन किसान भाई लोग हम बीज उत्पादन से नहीं जुड़ल वह खेती करत हुआ धान का आपो करत हुआ तो दोनों में जैसे बीज उत्पादन में अधिक फायदा आप लोगों के होला
0: बीज उत्पादन में अधिक फायदा ऐसे होला भैया कि जो समर्थन मूल्य होला वो समर्थन मूल्य के आधार पर हमके 10 पैसा ज्यादा तुरंत भुगतान हो जाला पहुंचले के बाद ओकरे बाद ओकर ग्रेडिंग होला ग्रेडिंग करने के बाद में छोटा दाना और धूल गर्दा जब वहाँ निकल जायी और जब बैग में भर जायी तो फिर ओकर मूल्य निर्धारण हुई वहाँ 1-2 रूपया ज्यादा मिली।
1: अच्छा।
0: और सोनभद्र का सौभाग्य तो बा कि ये साल यहाँ बीज योजना में जुड़ने पर जोन बा हरित क्रांति के

0: माध्यम से 1200 रुपया क्विंटल भारत सरकार प्रोत्साहन राशि दे।
1: अच्छा,
0: जो बीज उत्पादन हो जाये वो बीज जितना हम उनके भेजब और शुद्ध बीज जो तैयार हुई उसमें हमें 1200 रुपया अतिरिक्त समर्थन मूल्य से ज्यादा हमके भुगतान मिली।
1: अच्छा, जैसे अगर आप धान उत्पादन करत हुआ तो उनमें का आपके फायदा होला, इनमें दोनों में अंतर का?
0: धान जो खाद्यान्न हम उत्पादन करब ओके तो सबसे पहले सरकारी खरीद केंद्र पर जाके हमके लाइन लगाना और जो ग्रेडिंग हुई ओकरे बाद ओकर नमी कटी सब कुल के बाद भी जो समर्थन मूल्य बा उतना हमें कबो प्राप्त नहीं हो और काफी मानसिक और शारीरिक यातना हो वहाँ बेचे में खरीद केंद्र पर नंबर जो लगा ला और हम बीज उत्पादन में हम ऐसे बच जाएला हमके ज्यादा लाभ मिलला ओकरे साथ भी बीज की श्रेणी का अंतर जो होला ओकर भी कीमत ज्यादा मिलला।
1: अच्छा।
0: जैसे ब्रीडर सीट बा प्रजनक सीट से हम फाउंडेशन सीट करब तो हमके तत्काल तो सब भुगतान मिल जाये लेकिन जब उस संस्था वो बीज के बेची तो 25% अतिरिक्त जौन मूल्य होला बीज का मूल्य जौन बिक्री मूल्य होला उसे 25% पुनः फिर हमें साल बाद भुगतान मिला।
1: तो और जौन किसान भाई लोग खाद्यान्न का खेती करत हुआ अगर वो बीज उत्पादन से जुड़े चाहता तो उनसे आप अपने अनुभव के आधार पर का कहल चाहिए?
0: हम ही कहल चाहब कि बीज प्रमाणीकरण संस्था या बीज निगम जौन रहल तत्काल इसमें सोनभद्र में बीज कार्यक्रम कम होने की वजह से अपन ऑफिस बनारस में स्थानांतरित कर लेलस वो कलेक्ट्री फार्म वाराणसी में उत्तर प्रदेश बीज बीज काम का ऑफिस बा वहाँ से संपर्क करें उनसे बीज ले ओकरे बाद पूर्वांचल हमारे बाद जो बीज हब हब हो चुका है और यहाँ चंदौली वाराणसी और मिर्जापुर में बहुत से बीज प्लांट लग चुका हुआ और प्राइवेट वाले भी बीज उत्पादन करावत हुआ अच्छा मूल्य देते हुआ जौन बा वो मूल्य के जौन बा अच्छी प्राप्त होता बीज उत्पादन से जुड़े बीज का आवश्यकता अभी ये देश में 25% ही पूरी हो पावत है किसान।
1: बिल्कुल सही बात कहत हुआ शिव प्रकाश सिंह भैया, आप बीज उत्पादन से जुड़ल हुआ आज अपने कार्यक्रम में आईना और जौन अपन अनुभव रहल है अपने किसान भैया लोगन से साझा कैले ऐसे अपन किसान भाई लोग जरूर सीख ली है एकरे बदे आपके बहुत धन्यवाद।
2: नैना बहन,
3: हाँ भैया,
2: देख ये बीज उत्पादन के बारीकियां बतावत रहले शिव प्रकाश सिंह भैया जौन अपन प्रगतिशील कृषक हुआ और सुनील कुमार तिवारी भैया अपन जमले बदले तो इतना बढ़िया जानकारी भइल तो हम तक कहते ना कि तोरे हाथ में पाती बा मधुपुर के बाजार मंडी के हम तक आपकी जल्दी से आइयो पांच दा
3: ते देखा ये पुनर्वासी चौहान भैया भेजले हम कुंतल में आलू लाल 1200 रुपया कुंतल, आलू सफेद 1000 रुपया कुंतल, प्याज 2600 रुपया कुंतल, टमाटर 3500 रुपया कुंतल, नेनुआ 2200 रुपया कुंतल, कोहड़ा 2000 रुपया कुंतल, कुनरू 1800 रुपया कुंतल, लंबा बैगन 1200 रुपया, गोल बैगन 2200 रुपया कुंतल, परवल 7000 रुपया कुंतल, लौकी 1200 रुपया कुंतल, करेला 3500 रुपया कुंतल, भिंडी 1500 रुपया कुंतल, बोड़ा 2500 रुपया कुंतल, लहसुन 10000 रुपया कुंतल, हरी मिर्च 3500 रुपया कुंतल, धनिया 9000 रुपया कुंतल, अदरक 10000 रुपया कुंतल, पालक 1500 रुपया कुंतल, गाजर 3000 रुपया कुंतल, खीरा 2500 रुपया कुंतल, खेक्सा देसी जौन हो 17000 रुपया कुंतल, जौन हाइब्रिड का हो 5000 रुपया कुंतल हो, मकई 1000 रुपया कुंतल, अरवी 3000 रुपया कुंतल, फूल गोभी 3000 रुपया सैकड़ा और पत्ता गोभी 2500 रुपया सैकड़ा, नींबू जौन हो 200 रुपया प्रति सैकड़ा रहल
2: है। रहल कुछ कुंतल में और कुछ रहल अपन सैकड़ा में बाजार भाव तो पुनर्वासी चौहान भैया के भी दिया जाए धन्यवाद और इतना जब जानकारी सुनल गई तो देखे आवे मन्ना लाल यादव उनके संघाती लोगन से एगो देशभक्ति गीत भी सुनल जाए लेकिन उससे पहले संदेश सुन लिया।
3: चलो सुन ले मिल जाए।
4: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का, हर सपने में है भारत की नई तस्वीर। इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं। SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।

0: धेना भी है
1: हाँ भैया
0: देखा है उड़ी उड़ी तिरंगा भी वो अपन मुन्ना लाल यादव उनके संगाती लोग भी है यो अपन है जो उनका बढ़िया से देशभक्ति से हो लें और सब चला चलाओ तीहे कहब हम कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम जोन भाई लगल रहे अब देखा समेटा जाए तो चल जाए सब
1: सर पंचन
0: पंचन
1: के
0: के राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: अभी हमारे ग्रामीण भाई ग्राम जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में किसानवाणी कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: पंचो जय हिंद।
1: पुनीता बहनी।
0: हाँ कृष्णा भैया।
1: देखो अपनी खेती पाती में खर्च हरदम लगा रहा करा था, कबों कबों तो ऐसा खर्च लगा था कि हम पंचन के देखा ही पड़ा था कि वो खर्च की व्यवस्था हम पंच कहाँ से करी।
0: बिल्कुल भैया, जब हमारे सबके सामने इतनी की परेशानी आवत है ना कि भैया जो बीज कहाँ से लाई, खाद कहाँ से लाई, पानी अपने खेतवन में कितना लगाई, यह खातिर देखो समय समय पर साल में यहाँ 3 बाजी अपन सरकार जो है हमका सबका 2-2 हजार रुपया दे थे, जिसे हम अपनी खेती पाती के यहाँ सारे काम जो है वो कर सके थे अच्छे से।
1: बिल्कुल, किसान सम्मान निधि के रूप में हम पंचन के मिला करत हो पैसा, और वह समय मिला था जब अपन जुताई होत रहा था, कटाई होत रहा था, मड़ाई होत रहा था।
0: जब खेती पाती में सबसे ज्यादा जरूरत होते हैं।
1: बिल्कुल बहनी, ये तो सही बात है।
0: और इसके अलावा भैया देखो, हम सब पंच भाई के यहाँ ये जानकारी जो नहीं होती है अपने आसपास अपने खेती पाती से संबंधित, उन्होंने के बहुत जरूरी होते हैं। तो भैया यह क्रम सुन लीन जाए आज की खबरें।
2: गन्ना किसानों के लिए अहम खबर। लखनऊ स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यानी ICAR, IISR और इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ISMA के बीच गुणवत्तापूर्ण गन्ने के बीज के उत्पादन और उपलब्धता को लेकर महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। समझौते के तहत क्वालिटी शुगर केन के सीड प्रोडक्शन के लिए एडवांस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य किसानों को रोग मुक्त, शुद्ध और बेहतर गुणवत्ता वाले गन्ने का बीज उपलब्ध कराना है। इस पहल से किसानों को उन्नत गन्ना किस्मों का गुणवत्तापूर्ण बीज आसानी से उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी, साथ ही लाल सड़न जैसी गन्ने की प्रमुख बीमारियों से फसल को बचाने की दिशा में भी यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बेहतर और रोग मुक्त बीज मिलने से गन्ने की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। इससे चीनी की रिकवरी बेहतर होने और किसानों को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। यह समझौता गन्ना किसानों तक अच्छे बीज की पहुंच बढ़ाने, फसल की उत्पादकता सुधारने और गन्ने की खेती को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
1: अपुनीता बहनी।
0: हाँ
1: देखो, अपने बीच में अपने घरे दुआरे जोन बा जोन हराहा गोरु है ना, गैया है, भैंसी है, दूध दे वाले हैं, गाभिन है, तो उनकी हरा चारा

0: साल भर कैसे मिले, हम पंच कौन प्रबंध करी, ऐसी कुछ पत कही आज अपने बीच में है।
1: बिल्कुल भैया, तो सुन लीन जाए आज की बातें। वर्ष भर हरा चारा उत्पादन, और भैया वार्ताकार हैं डॉक्टर राकेश कुमार सिंह।
0: आवाज सुना जाए।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ जहां पशुपालन आप कर रहे हैं, वहां वर्ष भर हरा चारा उत्पादन कैसे प्राप्त करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सेकंड मझरा लखीमपुर खीरी से डॉक्टर आर के सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में, जहां पशुपालन से जुड़े हैं किसान भाई बहन, पूरे साल हरा चारा उत्पादन कैसे प्राप्त करें।
3: नमस्कार, ये समसामयिक विषय है और मैं उनको अवगत कराना चाहता हूँ कि पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन की सफलता मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर है। पहला, उत्तम नस्ल के दुधारू पशु एवं पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक हरे चारे की उपलब्धता पर निर्भर करती है। अधिकांश किसान हमारे देसी नस्ल के पशुओं का पालन करते हैं। इन पशुओं का जीवन निर्वाह सूखे चारे पर निर्भर रहता है। इन सूखे चारे से कार्बोहाइड्रेट तो हमारे पशुओं को प्रचुर मात्रा में मिल जाता है, आवश्यक पोषक तत्व खनिज मिश्रण वगैरह नहीं मिल पाता, इसलिए पशु का दुग्ध उत्पादन प्रभावित होता है। प्रचुर मात्रा में हरा चारा एवं पौष्टिक चारे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और पशुओं में उत्पादन क्षमता बनाए रखने के लिए एवं विकारों को नियंत्रित रखने के लिए हरा चारा प्रतिदिन आहार में देना अति आवश्यक है। और हरे चारे से कैरोटीन की पूर्ति होती है। दुधारू पशुओं में विटामिन ए हरे चारे से ही पहुंचता है और हरे चारे में पहुंचने के साथ साथ वो पशुओं के माध्यम से फिर मनुष्य के शरीर में भी विटामिन ए जो मिलता है वो दूध से, वो इसी तरीके से आता है। मुख्य रूप से दलहनी चारों पशुओं की आवश्यकता प्रोटीन की करते हैं और दलहनी और अदहलिनी चारों से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। इसलिए जब भी किसान भाइयों को प्राथमिक बात इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हरे चारे का जब भी समावेश करें आहार में तो दलहनी और तिलहनी दोनों प्रकार के हरे चारे का समावेश पशु के आहार में करना चाहिए।
2: जहां हरे चारे की बुआई नहीं कर पाए हैं किसान भाई बहन, तो क्या अभी भी गुंजाइश है?
3: अभी 15 दिन तक किसान भाई हमारे खरीफ चारे की बुआई कर सकते हैं और खरीफ में उगाई जाने वाली जो चारा फसलें हैं उसमें मुख्य फसल है मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मकचरी है और दलहनी फसलों में लोबिया, ग्वार, ये मुख्य फसलें हैं।
2: तो इनकी कुछ खास प्रजातियां होंगी?
3: हाँ, खरीफ की मुख्य चारा की फसलें, उनकी बहुत सारी प्रजातियां आती हैं, लेकिन मुख्य प्रजातियों की हम बात करें तो जैसे एक कटाई वाली किस्में होती हैं उसमें पूसा चरी 6 है, पूसा चरी 9 है, हरियाणा चरी है, हरियाणा चरी 117 नंबर, हरियाणा चरी 260 नंबर, यूपी चरी, पंत चरी 23 नंबर, ये चरी हैं जो कि एक कटाई वाली है और इनकी अगर हम बुआई करें तो इसमें 35 से 45 टन प्रति हेक्टेयर की दर से हमको को हरा चारा मिलेगा,
2: यानी 2.5 एकड़ में।
3: जी,
2: और एकड़ की बात करें तो लगभग 16 से 20 कुंटल
3: प्रति एकड़ में।
2: और बहु कटाई वाली किस्म,
3: किसान भाइयों अगर हम बहु कटाई वाली किस्मों की बात करें उसमें SSG 988, SSG 989, SSG 855, PC 23, PC 29 ये मुख्य रूप से हैं। और जो बहु कटाई वाली किस्में इनमें भी लगभग इसको हम 3 बार खरीफ के सीजन में कटाई कर लेते हैं, इससे हमको लगभग 110 से 130 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उपज प्राप्त हो जाती है।
2: डॉक्टर साहब, जहां हरे चारे के लिए मक्का लगाना चाहते हैं या बाजरा लगाना चाहते हैं या लोबिया लगाना चाहते हैं तो इनकी प्रजातियां?
3: मक्का की अफ्रीकन टाल प्रजाति, विजय कंपोजिट प्रजाति, मोती कंपोजिट मुख्य रूप से बोई जाने वाली फसलें हैं और मक्का तो लगभग साल में 2 से 3 बार की बुआई हो जाती है और उपज जो है इससे 35 से 60 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। अगर हम बाजरा की बात करें तो बाजरा में जो मुख्य प्रजातियां हैं उसमें जॉइंट बाजरा UUJ4M, TNSC1, FMH3 और इनकी उपज लगभग 30 से 35 कुंटल प्रति टन प्राप्त हो जाती है प्रति हेक्टेयर। और अगर लोबिया की बात करें तो लोबिया में दो तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, एक लोबिया होती है कि सब्जी वाली लोबिया होती है और एक दूसरी लोबिया होती है जो कि चारे वाली। तो हमारे पशुपालक बंधुओं को चारे वाली की प्रजाति ही बोना चाहिए,
2: जैसे
3: जैसे एशियन जायंट है, EC4216 है, बुंदेला लोबिया बहुत फेमस है, दो बुंदेला लोबिया एक और EC4216 और UPC 287 ये मुख्य प्रजातियां हैं। और लोबिया की उपज में दो चीजें होती हैं, इसमें तो फली भी कुछ किसान भाई हमारे चारे के साथ खिला देते हैं और उपज इसमें 30 से 45 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है।
2: डॉक्टर साहब, ये तो रहा खरीफ के चारे की बात। जहाँ रबी में चारा उत्पादन करना चाहते हैं किसान भाई बहन, वहाँ कौन कौन सी फसलें हैं और उनकी कौन सी प्रजातियां?
3: किसान भाई, सीजन के हिसाब से और जगह के क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग फसलें हैं, लेकिन मुख्य रूप से रबी की चारा फसलें जो मुख्य हैं उसमें जई है। जई की जो प्रजाति है कैंट है, OS 6, OS 7, UPO 94, 212, बुंदेला जई 822, 851, ये मुख्य रूप से जई की प्रजातियां हैं।
2: और बरसीम की?
3: और बरसीम की मुख्य रूप से मेस्कावी हो गई, बरदान हो गई, BL 1 हो गई, BL 10 हो गई, बुंदेला बरसीम 2 हो गई और बुंदेला BL 22, JB 1, JB 2, JB 3, ये बरसीम की उन्नत नस्ल की अधिक उपज देने वाली हमारी चारा की फसलें हैं।
2: रवि हरे चारे में लूसर्न भी है?
3: रवि हरे चारे में लूसर्न बहुत क्षेत्रों में बोया जाता है, खासतौर से बुंदेलखंड रीजन में, और लूसर्न बहुत ही अच्छा होता है, इसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसको कुछ क्षेत्रों में लूसन या रिजका या कहीं कहीं अल्फा अल्फा भी कहते हैं। अगर लूसन की बात करें तो लूसन की जो मुख्य प्रजाति है लूसन RL 88, चेतक 244, सिरसा टाइप 98, NDRI सेलकान 1, आनंद 3, NDRI सेलेक्शन 1 और आनंद 3, RL 88, ये मुख्य रूप से है।
2: जहाँ जायद में सिंचाई के सुनिश्चित साधन है वहाँ किसान भाई बहन हरा चारा उत्पादन करना चाहेंगे?
3: हाँ, किसान भाई जहाँ पे, क्योंकि रवि खरीफ के साथ साथ जायद भी बहुत महत्वपूर्ण समय होता है और इस समय अक्सर चारे की कमी हो जाती है, जिन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था है, सिंचित क्षेत्र है, वहाँ पे जापानी ज्वार, मक्का या लोबिया हम पर्याप्त मात्रा में लेके अपने पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं।
2: कुछ ऐसे बहुवर्षीय चारे जो पूरे साल किसान भाइयों बहनों के पशुओं के लिए आहार बने?
3: हाँ, पशुपालक भाइयों, देखिए सफल पशुधन व्यवसाय के लिए वर्ष भर हरा चारा अत्यंत आवश्यक है। वर्ष भर हरा चारा प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से कुछ विधियां होती हैं, जैसे कि ओवरलैपिंग क्रॉपिंग सिस्टम। ओवरलैपिंग का मतलब किसान भाइयों, एक फसल के ऊपर दूसरी फसल की बुआई कर देना, और अधिक चारे के लिए मिश्रित खेती करना, और तीसरा है खाद्यान्न फसलों के बीच स्थित जो रिक्त स्थान है, जो एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो रिक्त स्थान है उसमें अतिरिक्त चारा प्राप्त कर सकते हैं, और खाद्यान्न फसलों के बीच के खाली समय में, जैसे कि रवि की कटाई के बाद मई जून के महीने में हमारा, और खरीफ की बुआई से पूर्व 60-70 दिन का समय मिलता है, इसमें भी अगर हम मक्का प्लस लोबिया या चरी प्लस लोबिया या बाजरा प्लस लोबिया की मिलवा खेती कर लेते हैं तो लगभग 250 से 300 कुंतल हरा चारा प्राप्त हो सकता है।
2: अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे वर्ष भर हरा चारा उत्पादन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें अपना मोबाइल नंबर बता दें।
3: हमारा मोबाइल नंबर है 94155 77915, 9415577915, 94155 77915।
2: डॉक्टर राकेश कुमार सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और वर्ष भर हरा चारा उत्पादन कैसे प्राप्त करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
4: प्रधानमंत्री किसान मानधन।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: पुनीता बहनी।
4: हाँ कृष्णा भैया।
3: देखो बतकही तो अपन बहुत होगी, जानकारी भी होगी अपन, लेकिन आज है 15 अगस्त।
4: हाँ? वैसे जो हम देश प्रेम होते ना, हर आदमी के अंदर पूरा कूट कूट के भरा रहा थे, लेकिन जो आज के दिन आवत है ये दिन कुछ विशेष होते और ई अवसर पर अपने देश के प्रेम के रंग जो होते वो कुछ अलग होते।
3: तो बहनी यह अवसर पे सुना जाए एक देशभक्ति गीत विवेकानंद व्यास के स्वर में।

0: कृष्णा भैया
1: हाँ पुनीता बहनी,
0: भैया देखो, जैसे हम सब जने अनाज उत्पादन करे थे, कुछ पंच भाई हमारे फूल उत्पादन करते हैं, बागवानी करते हैं, ये इतना कुछ पंच भैया लोग जो हैं वो सब्जी उत्पादन करते हैं और
1: बिल्कुल।
0: सब्जी उत्पादन कर करके अपन जो है जीवन यापन करते हैं।
1: तो बहनी, आज के किसान हैं रुद्रपाल सिंह भैया, जो उन सब्जी उत्पादन से जुड़े हैं।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों।

0: आज हमारे साथ हैं सीतापुर जनपद के रामपुर मथुरा ब्लॉक के पाल्हापुर गांव के रुद्रपाल सिंह भैया, स्वागत है कार्यक्रम में। भैया, आप सब्जी उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास?
1: किसान भाइयों बहनों नमस्कार। हमारे पास 12 एकड़ जमीन है।
0: सब्जियों का रकबा कितना है इस समय?
1: सब्जियों का रकबा 4 एकड़।
0: तो 4 एकड़ में आप मचान पर सब्जी की खेती के लिए भी जाने जाते हैं।
1: जी हाँ, हमने 2 एकड़ पे मचान की खेती की है।
0: इसकी बुआई कब की आपने?
1: हमने इसकी बुआई दिसंबर के मध्य में कर दी थी और उसको प्लास्टिक से ढक के
0: यानी लो
1: लो
0: टनल
1: टनल
0: पॉली
1: बना
0: हाउस।
1: के किया है।
0: तो कौन कौन सी सब्जियां आपने उगाया?
1: इसमें करेला और तोरई दोनों मचान पे।
0: जमाव कब तक हुआ?
1: जमाव इसका 15 दिन में हो गया था।
0: हाँ, और लो टनल कब तक लगाते हैं?
1: लो टनल हम जनवरी 15 जनवरी तक लगाए। जैसे मौसम में थोड़ा सा चेंज आया है फिर उसको हम हटा देते हैं। जब तापमान अच्छा हो जाता है तो हमारे पौधे ग्रोथ करते हैं और फिर फ्लावरिंग शुरू हो जाती है।
0: तो कोई खास वैरायटी की तरोई और करेला लगाए?
1: हाँ, हमने करेला दो वैरायटी थी, एक अमनश्री और दूसरा रुसान।
0: मचान पर तरोई और करेला उत्पादन में आप ध्यान में रखते हैं।
1: देखिए, इसको हर हाल में दिसंबर के दूसरे सप्ताह में लगा देना चाहिए। बीज लगाने से पहले उसको भिगो के और जर्मिनेट करने की कोशिश करना चाहिए जिसमें अंकुरण हो जाए।
0: जी,
1: दूसरा ये कि उसको तुरंत लो टनल बना के उसको ढक देना चाहिए
0: बनी
1: जिससे
0: रहे।
1: गर्मी रहे और पौधा तैयार हो जाए।
0: तो पहली फलत कब से चालू हुई?
1: पहली फलत मार्च में स्टार्ट हो गई थी। 4 मार्च को हमने तरोई निकाल दी थी।
0: और करेला?
1: करेला हमारा 14-15 मार्च को निकला है। तब से लगातार उत्पादन मिल रहा है।
0: इस समय क्या स्थिति है गर्मी में उत्पादन लेने के बाद करेला और तरोई में?
1: नहीं, इस समय उत्पादन तो हो रहा है लेकिन रेट्स बहुत अच्छे नहीं है। विगत वर्ष में हमने इसको समाप्त कर दिया था
0: अच्छा।
1: लेकिन इस बार हमने ट्रायल किया है कि इसको रखा जाए।
0: अच्छा, पहले आप गर्मी खत्म होने के साथ ही बरसात के पहले ही इसको खत्म कर दें, लेकिन इस बार बरसात भी चलाएंगे?
1: इसको हम बरसात भर चलाएंगे और हमें उम्मीद है कि ये सितंबर तक चलेगा।
0: लगातार आपको उत्पादन मिल रहा है, तुड़ाई हो रही है,
1: तुड़ाई हो रही है।
0: तो गर्मी में कैसा अनुभव रहा आपका तरोई और करेला का?
1: देखिए, इधर मई से इसके रेट्स काफी डाउन हुए। शुरू में अगर आप देखें तो रेट्स हमारे 8,000 रुपये कुंटल तक के रेट शुरुआत हुए थे। फिर में ये 600 रुपये कुंटल पे आ गया। जब इसका अभी तक का हमने एवरेजिंग किया है तो हमारे तरोई का एवरेज 20 रुपये कुछ पैसे है
0: किलो
1: किलो।
0: तो ठीक ही है।
1: जी,
0: और करेला में?
1: करेला का उत्पादन तरोई से कुछ कम है और इसका रेट 27 रुपये प्रति किलो। टोटल हमने निकाला कि कितना हमारा उत्पादन अब तक हुआ है और उसमें कितने रुपए आए, उसको हमने डिवाइड करके निकाला है तो उससे रेट निकला है।
0: मचान पर जब करेला और तरोई का उत्पादन आप कर रहे हैं तो उसका अंतरण क्या रखते हैं? क्या रिज पर बुआई करते हैं?
1: जी हाँ, इसकी बेड बनाते हैं, ड्रिप पे करते हैं
0: अच्छा,
1: और उसके बाद मल्चिंग करते हैं, बनाते हैं, उसमें बीज की बुआई करते
0: तो
1: हैं।
0: लाइन से लाइन की दूरी और पौध से पौध की दूरी?
1: पौध से पौध दूरी 1.5 फीट और लाइन से लाइन दूरी 6 फीट।
0: और फसल की भूख मिटाने के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करते हैं?
1: ये सब बड़ा आसान है। हमारे पास ड्रिप सिस्टम है
0: हाँ,
1: और हम सारे सॉल्युबल फर्टिलाइजर देते हैं।
0: यानी जल विलेय उर्वरक
1: जी
0: फर्टिगेशन के माध्यम से
1: जी फर्टिगेशन माध्यम
0: पानी
1: से
0: और खुराक साथ साथ,
1: साथ साथ देते हैं।
0: तो इसका अंतरण क्या होता रहता है?
1: ये हम लगातार हर तीसरे दिन में एनपीके, फिर एनपीके के बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसका एक शेड्यूल बना रखे हैं। तो हमारा 2 दिन के गैप में हम लगातार इसको देते हैं।
0: और उसका असर फलत पर दिखता है?
1: बहुत अच्छा आता है।
0: कुछ रोग दोख और कीड़े मकोड़ों की भी समस्या आती होगी?
1: हाँ, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उस समय ब्लाइट आती है,
0: जी,
1: तो उस समय हमको अच्छे फंगिसाइड की जरूरत होती है और अच्छा फंगिसाइड हमको स्प्रे करना पड़ता है। फल मक्खियां लगती हैं, इसमें फल मक्खियों का प्रबंधन करना पड़ता है।
0: तो क्या कुछ आईपीएम के उपाय भी अपना रहे हैं?
1: जी हाँ,
0: फल मक्खी ट्रैप लगाते हैं?
1: ट्रेप लगाते हैं, ट्रेप से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है लेकिन हमको स्प्रे भी करना पड़ता है।
0: अगर नुकसान का स्तर अधिक होता होगा तब
1: जी
0: ऐसी उम्मीद है। इस समय भी निकासी चालू है?
1: जी हाँ, इस समय निकासी चालू है। देखिए, जितना उत्पादन हो चुका है अब उतना उत्पादन तो नहीं होगा।
0: लेकिन अगर अभी तक के
1: जी
0: उत्पादन का आंकड़ा निकालें तो अब तक कितनी लागत गिरी, कितना तक उत्पादन लिए और आपका मुनाफा अब तक कितना हुआ?
1: देखिए, अब तक का हमारा

0: जो तरोई का है वो 150 कुंटल क्रॉस किया है 1 एकड़ में,
1: जी
0: और उसका रेट 20 रुपये के
1: जी
0: करीब में है,
1: हाँ,
0: और वहीं 125 कुंटल करेला किया है जिसका रेट 27 रुपये है,
1: तो लगभग करीब है,
0: करीब करीब है दोनों का,
1: तो लगभग 3 लाख तक पहुंचे।
0: 3-3 लाख पर एकड़ इसमें आया, और लागत हमारी
1: हाँ,
0: तरोई में थोड़ी कम है, करेले में ज्यादा है।
1: लेकिन कुल लागत की बात करें तो कितनी लागत गिरती है साल में?
0: लागत 2 लाख रुपए दोनों में मिला के,
1: तो आपकी बचत हुई कितनी?
0: बचत हमारी दोनों फसल में 4 लाख रुपए की।
1: तो जो अब तक का आपका तजुर्बा है उसके आधार पर और किसान भाइयों बहनों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: हमारी यही सलाह है कि यदि सब्जी की खेती करनी है तो हमको बहुत ही अर्ली तैयारी करनी चाहिए,
1: या विलंब से?
0: विलंब से भी की जा सकती है लेकिन अर्ली के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, या तो फिर लेट किया जाए, क्योंकि अब जो आएगी सब्जियां उनका रेट ठीक रहेगा।
1: और कौन कौन सी बारीकी रखें?
0: बीज का चयन ठीक करें, बीज का शोधन करें, कीड़े लग जाते हैं कभी कभी जड़ों में, उसका प्रबंधन करें, देखते रहें कि उसमें क्या बीमारी है और उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।
1: और रकबे में क्या कर रहे हैं आप 10 एकड़ में?
0: और हम धान, 2 एकड़ में गन्ना और सरसों गेहूं ये सब हमने किया है, और हमारा 2.5 एकड़ का एक मछली का तालाब भी है।
1: अच्छा, और
0: तो
1: कुछ औषधि खेती भी कर रहे हैं?
0: हाँ, 2 एकड़ में हमने औषधि की खेती की है, जल ब्रह्मी
1: तो कुल मिला जुला करके आप खुशहाल हैं?
0: जी, ठीक है।
1: साल में कितनी बचत हो जाती है?
0: साल में 10 लाख रुपए के ऊपर ही बचत हो जाती है।
1: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 77-55-85-76-99।
1: और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी कहानी के बारे में?
0: जब मैं खेती में आया तो उद्यान विभाग के संपर्क में आया और उनसे काफी जानकारी की, सरकारी योजनाओं का हमने लाभ लिया, खास तौर पर जो ड्रिप सिंचाई पद्धति है वो बहुत ही खेती को आसान बनाती है, जिसमें सिंचाई हम जितनी चाहते उतनी दे सकते हैं, फर्टिगेशन जितना हम चाहते उतना कर सकते हैं, और अगर किसान भाई इसका लाभ लें तो उन्हें भी काफी अच्छा फायदा हो सकता है।
1: रुद्रपाल सिंह भैया, आज कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। हाँ,
3: पुतला बोल रहे,
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: पुनीता बहनी।
6: हाँ कृष्णा भैया।
5: देखो, अपन किसान बाणी कार्यक्रम कैसा लगा अपन भाइयन के, इकरे बारे में अगर वो अपन पाती लिखा चाहे और अपन सुझाव देवा चाहे तो पता बता दें जाए।
6: भैया हमारा पता है कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226-001।
5: अब कुछ पंच भैया ईमेल के माध्यम से अगर सुझाव दे चाहते हैं या सुझाव कुछ मांगा चाहते हैं तो वो पता है farmandhome@gmail.com।
6: यही के साथ भैया अपने कार्यक्रम का समय ही समाप्त हो रहा है, तो सब पंचन से लीन जाए आज्ञा। जय हिंद।

0: भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें पीएम सूर्य घर .gov.in पर।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: प्रादेशिक समाचार एकांश लखनऊ की तरफ से आप सभी को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्र आज मना रहा है 80वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किला के प्राचीर पर किया ध्वजारोहण। कार्यक्रम में पहली बार हुआ वंदे मातरम का गायन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में फहराया राष्ट्रीय ध्वज, कहा आजादी का मतलब है पिछड़ापन और असमानता से मुक्ति। उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदेश के 81 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा राष्ट्रपति का सेवा पदक। यूपी एसटीएफ में तैनात रहे निरीक्षक सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र। और प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है हरियाली तीज का पर्व। अयोध्या में प्रसिद्ध सावन झूला मेला की आज से हुई शुरुआत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण किया। श्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज हर दिल की धड़कन वंदे मातरम के गायन से गुंजायमान हो रही है।
0: आजादी के बाद 15 अगस्त लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई शिखर सम्मेलन के आयोजन से भारत ने विश्व को अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
0: हमने पिछले दिनों एआई इम्पैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
0: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में करोड़ों देशवासियों के संकल्प, समर्पण और हर संभव प्रयास की

0: दौलत देश ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने कहा कि पहले भारत 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन अपतटीय क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के काम की अनुमति नहीं थी, सरकार ने उनमें से 99% को खोल दिया, जहां अब समुद्र के भीतर नए संसाधनों और भंडारों की खोज की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि अगले 7-8 वर्षों में लगभग 8 सेमीकंडक्टर संयंत्र काम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 3 संयंत्रों में सेमीकंडक्टर निर्माण हो रहा है और इस क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीकी आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह राजधानी लखनऊ में विधान भवन के समक्ष आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा और सम्मान के लिए अदम्य साहस दिखाने वाले वीर सैनिकों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, इसका अर्थ अराजकता, पिछड़ेपन, गरीबी, निरक्षरता और असमानता से पूर्ण मुक्ति भी है, जिसके कारण देश लगातार कमजोर हुआ है।
1: आजादी का मतलब केवल राजनीतिक आजादी नहीं है, आजादी का मतलब उस अराजकता से, उस पिछड़ेपन से, उस गरीबी से, उस अशिक्षा से, उस असमानता से भी सर्वथा मुक्ति है, जिसके कारण यह देश लगातार कमजोर होता गया। आज हम सब अपनी आजादी के 79 वर्ष पूरे कर चुके हैं। 80वें स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम के साथ आज हम सब जुड़े हैं। यह दिवस केवल हमें एक समारोह तक सीमित रखने का अवसर नहीं दे रहा है, यह हमें संपूर्ण आजादी के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले उन प्रयासों में एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है।
0: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर युवाओं को यूथ पॉलिसी का तोहफा दिया। उन्होंने यूथ पॉलिसी की घोषणा करते हुए कहा कि इससे भविष्य में युवाओं के कौशल, नवाचार और रोजगार को मजबूती मिलेगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के SCF अधिकारी सुनील कुमार को भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाएगा।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली बार उत्तर प्रदेश के एक जवान इंस्पेक्टर श्री सुनील कुमार को भारत का कीर्ति चक्र प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का आज स्थापित करने, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए बलिदान हुए इंस्पेक्टर सुनील कुमार की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
0: इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने प्रदेश की जनता को स्वतंत्रता दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आजादी को बनाए रखने के लिए किसी एक समूह, जाति, संप्रदाय का नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से देश के प्रत्येक नागरिक को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ स्थित जनभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी ली। कार्यक्रम में जनभवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा आदर्श माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जबकि अन्य मंत्रियों ने भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोहों में भाग लिया। हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की उप निरीक्षक अश्मिता डे को लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में राज्य के DGP द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रभात फेरी और स्वच्छता अभियान आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधान भवन के समक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विभिन्न सांस्कृतिक दलों के कलाकारों को आज अपने सरकारी आवास पर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न राज्यों एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए कलाकारों से संवाद भी किया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के 6 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक और 75 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को राष्ट्रपति के सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है। वहीं यूपी एसटीएफ में तैनात रहे निरीक्षक सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। वे मेरठ

0: में कुख्यात अनिल दुजाना से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए थे। हरियाली तीज का त्यौहार आज श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए सुहागिन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा है। हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं अयोध्या में सावन झूला मेला की शुरुआत आज से हो गई है। ये मेला 28 अगस्त तक चलेगा। एक रिपोर्ट।
1: श्रावण शुक्ल तृतीया पर ऐतिहासिक मणि पर्वत स्थल से पखवारे पर चलने वाला सावन झूला मेला शुरू हुआ तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में रामलला के विग्रह को परिसर का भ्रमण कराया गया। इसी के साथ प्रमुख मंदिरों में सिया राम के चल विग्रह और स्वरूप रथों पर सुशोभित होकर मणि पर्वत स्थल पहुँचे। वैदिक रीति से पूजन के बाद विग्रहों को विशालकाय वृक्षों पर पड़े झूलों पर सुशोभित किया गया और फिर श्रद्धालुओं ने भगवान के विग्रहों को झूला झुलाकर और मधुर उपासना के गीत से भक्तिमय वातावरण सृजित कर दिया। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: अयोध्या में श्री राम मंदिर में आज से ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। अब रामलला की सेवा में लगे सभी अर्चक एक समान ड्रेस में नजर आएंगे। धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास ने बताया कि नए ड्रेस कोड के तहत सभी अर्चक पीत वस्त्र धारण करेंगे। ये वस्त्र बिना सिला हुआ रेशमी सिल्क का होगा। वहीं शरद ऋतु में मौसम के अनुसार गर्म कपड़ों की व्यवस्था की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज मना रहा है 80वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लाल किला के प्राचीर पर किया ध्वजारोहण। कार्यक्रम में पहली बार हुआ वंदे मातरम का गायन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। कहा, आजादी का मतलब है पिछड़ापन और असमानता से मुक्ति। उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदेश के 81 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा राष्ट्रपति का सेवा पदक। यूपीएसटीएफ में तैनात रहे निरीक्षक सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र। और प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है हरियाली तीज का पर्व। अयोध्या में प्रसिद्ध सावन झूला मेला की आज से हुई शुरुआत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है।
2: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
3: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
2: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
3: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
2: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
1: अब प्रस्तुत है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद सोनभद्र में आयोजित विभिन्न समारोहों की रेडियो रिपोर्ट। वाचन और संपादन आशीष वर्मा का है।

0: आजादी के 80 साल संघर्षों का एक लंबा सफर, अनगिनत कुर्बानियां और उन सपनों का भारत जिन्हें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आंखों में देखा था, उन्हीं स्मृतियों नए संकल्पों के साथ देश का ये राष्ट्रीय पर्व पूरे देश के भांति जनपद सोनभद्र में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हर घर तिरंगा का संदेश यहाँ जन जन के गौरव और अखंडता के पहचान बनकर उभरा, विशेषकर युवाओं के मध्य। वंदे मातरम के गौरव गान और देशभक्ति के नारों के मध्य जनपद का मुख्य समारोह विशिष्ट तेरा स्टेडियम सोनभद्र में आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि माननीय राज्य मंत्री समाज कल्याण उत्तर प्रदेश श्री संजीव कुमार गौड़ ने ध्वजारोहण के पश्चात उपस्थित गणमान्य को शुभकामना संदेश देते हुए कहा,
1: स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब जानते हैं आज देश के आजाद

0: जैसे तमाम इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना जीवन को न्यौछावर करके, अपने जीवन को बलिदान दे करके इस देश को आज आज़ादी दिलाने का काम किए। आज जब हम तिरंगे को शान से लहराते देखते हैं तो हमें उन वीरों के बलिदान को याद करना चाहिए जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का काम किया। लेकिन आज साथियों, हमें ऐसा भारत बनाना है जहां हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके, हर युवा को रोजगार का अवसर मिल सके, किसान को सम्मान के साथ जीने के, हर नागरिक को सम्मान अधिकार प्राप्त हो सके। हमारा देश तभी मजबूत बनेगा जब हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी निर्वहन करने का काम करेंगे। हमें स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, महिला सम्मान, कानून का पालन और आपसी भाईचारे जैसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। आज हम संकल्प लें कि हम जाति, धर्म और भाषा से ऊपर उठकर एक भारत, श्रेष्ठ भारत के निर्माण का अपना योगदान करने का काम करेंगे। आइए हम सब स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार बनाने के लिए हम सब मिलकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। निश्चित रूप से आज हम सब यहाँ स्वतंत्रता दिवस के रूप में आज सब मनाने के लिए आए हुए हैं। इसी शब्दों के साथ उपस्थित सभी मंचासीन अतिथियों का और अपने सम्मानित अधिकारी कर्मचारियों का, उपस्थित सभी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, बधाई देता हूँ। वंदे वंदे, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी ओबरा स्थित गांधी मैदान में विद्युत परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक श्री दूधनाथ ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों के आकर्षक परेड की सलामी ली। एकत्रित जन समूह को संबोधित करते हुए आपने कहा,
2: जब वर्ष 2017 में ओबरा सी के निर्माण का कार्य शुरू हुआ तब परियोजना के निर्माण के कारण अनेक परिवारों और लोगों को अपने घर, अपने परिचित स्थान, अपने वर्षों पुराने जुड़ाव को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा था। यह केवल स्थान परिवर्तन नहीं था बल्कि कई लोगों के लिए भावनात्मक रूप से कठिन और पीड़ादायक समय था। वर्ष 2024 से ओबरा सी की इकाइयों के संचालन में आने के बाद न केवल प्रदेश की विद्युत में भी उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, आज इन इकाइयों से प्रदेश को मिल रहा विद्युत योगदान हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन सभी लोगों के त्याग को सार्थक करने वाला वरदान भी है। ओबरा सी की यह यात्रा केवल 2,660 मेगावाट की दो इकाइयों की कहानी नहीं है बल्कि यह त्याग, संघर्ष, परिवर्तन और विकास की कहानी है। आज जब हम ओबरा सी की सफलता और उससे प्रदेश को मिल रहे विद्युत उत्पादन पर गर्व कर रहे हैं तब हम उन सभी लोगों का भी सम्मान और हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने उस कठिन दौर को सहा और अपने त्याग और सहयोग से इस परियोजना की राह आसान की। उनकी पीड़ा और त्याग को भुलाया नहीं जा सकता। आज जब उत्तर प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, शहरों का विस्तार हो रहा है, कृषि और सिंचाई की जरूरत बढ़ रही है तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है तब विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस बढ़ती आवश्यकता के बीच ओबरा की भूमिका भी लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। आज हम केवल वर्तमान की उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए यहाँ नहीं है, हम भविष्य की तैयारी भी कर रहे हैं। ओबरा डी में 2,800 मेगावाट की नई इकाइयों की स्थापना के दिशा में विचार एवं आवश्यक प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं। यह केवल दो नई इकाइयों की बात नहीं है, यह आने वाले वर्षों की ऊर्जा आवश्यकता, उत्तर प्रदेश की आत्मनिर्भरता और प्रदेश के औद्योगिक विकास की तैयारी है। यदि ओबरा भी हमारी विरासत है, ओबरा सी हमारी वर्तमान क्षमता है तो ओबरा भी हमारे भविष्य की ऊर्जा आकांक्षाओं का प्रतीक बन सकता है। पावर प्लांट की सफलता किसी एक विभाग की सफलता नहीं है, यह ऑपरेशन की सतर्कता, मेंटेनेंस की मेहनत, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल टीम की विशेषज्ञता, सिविल की भूमिका

0: एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था, मेडिकल की सेवाओं, सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता और प्रत्येक कर्मचारी के समर्पण का परिणाम है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं CISF के कमांडेंट का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा। उनकी पहचान एक कुशल अधिकारी के साथ साथ उनके सहज, सहयोगात्मक एवं सकारात्मक व्यवहार के कारण हुए। इस दिशा में उनका सहयोगी रवैया परियोजना और CISF के बीच समन्वय को और मजबूत करता है। आशा करता हूँ कि ओबरा परियोजना एवं CISF के बीच यह मजबूत और विश्वासपूर्ण संबंध भविष्य में भी इसी प्रकार बना रहेगा। इसी क्रम में कॉलोनी परिसर एवं परियोजना के कुछ संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था में पूर्व सैनिक कल्याण निगम की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। पूर्व सैनिकों द्वारा अपने अनुभव, अनुशासन एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ इन सुरक्षा दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। सेना से सेवानिवृत्ति के बाद भी राष्ट्र एवं संस्था के प्रति जिम्मेदारी की भावना, उसी मजबूती से बनी रहना अपने आप में अनुकरणीय है। मैं पूर्व सैनिक कल्याण निगम से जुड़े सभी सुरक्षा कर्मियों की सेवा की सराहना करते हुए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
1: स्वाधीनता दिवस के इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी महोदय सोनभद्र श्री चर्चित गौड़ ने शुभकामना संदेश देते हुए कहा,
2: आज का ये कार्यक्रम जो हम इस स्टेडियम के प्रांगण में बना रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता दिवस जो हर साल हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ एक दिन के कार्यक्रम में सिर्फ या दो घंटे, एक घंटे इकट्ठे होकर एक कार्यक्रम मनाने तक ही सीमित नहीं है। अगर आज के बच्चे जो आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, अगर आप बच्चों को स्वतंत्रता की परिभाषा को समझना है तो आपको ये एक उदाहरण के माध्यम से मैं सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि आप कल्पना करके देखिए कि आज आप अपनी इच्छा से, अपने मन से जो कार्य या जो जगह आपको जाना होता है वो आप कर पाते हैं। पर अगर आप अपने देश को, अगर हम 80 साल पीछे जाएं और ये देखें कि जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे तो हमें किसी भी बात की आज़ादी नहीं थी। ना आप अपने मन के विद्यालय में पढ़ सकते थे, ना आप अपने मन की जगह जा सकते थे। अगर आपको कहीं पे भी जाना होता था तो आपको ये महसूस कराया जाता था कि आप दूसरे दर्जे के नागरिक हैं, आप किसी के सेवक हैं, आप खुद के मालिक नहीं हैं, आपको स्वतंत्र होकर कहीं भी जाने की स्वतंत्रता नहीं है। आप सोच के देखिए, अगर आपको आज किसी भी जगह जाना होता है, किसी भी स्कूल में, किसी भी मॉल में, किसी भी थिएटर, मूवी थिएटर में, जहाँ भी आपको जाना होता है आप बेझिझक जा सकते हैं। बट जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब हमें अंग्रेजों से पूछकर रेलगाड़ी में, उनसे पूछकर बस में, उनसे पूछकर किसी बिल्डिंग में जाना पड़ता था। ये एक बहुत ही दुख की बात थी और इसी पीड़ा को हमारे देश के नेताओं ने, राजनेताओं ने समझा और आज से 80 वर्ष पूर्व जब हम लोग देश आज़ाद हुआ तो उन्होंने उसी सपने से अपने आने वाली पीढ़ियों को एक स्वतंत्र वातावरण देने के लिए, एक स्वतंत्र चॉइस देने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। और उस विचार के साथ कि हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारे आने वाले बच्चे एक स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र सोच के साथ अपने जीवन में उनको जो भी हासिल करना है, जो भी पाना है, वो कार्य वो कर पाएंगे, इसी सोच के साथ हमारे राष्ट्रनेताओं ने अपना बलिदान दिया और हमें स्वतंत्रता दिलाई। हमारे स्वतंत्र भारत के सामने समय समय पर बहुत चुनौतियां आईं और ये साबित करने का प्रयास किया गया, सिर्फ विदेशी ताकतों ने ही नहीं, कुछ अराजक लोग जो हमारे देश के अंदर भी मौजूद हैं उन्होंने भी ये प्रयास किया कि हम लोग एक स्वतंत्र भारत की तरह नहीं रह सकते। बट समय समय पर हमारे ही लोगों ने, हमारे ही राष्ट्र के लोग, नेताओं ने ये बात गलत प्रूफ करी और हम लोग एक अखंड भारत जो 1947 में था वही अखंड भारत लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं, और हमारी स्वतंत्रता को पिछले 80 वर्षों में कोई भी चुनौती नहीं दे पाया। मैं आज इस समारोह के माध्यम से सभी बच्चों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग अपने दिनचर्या में इस दिन, जिस दिन का आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस दिन को कैसे अपनी दिनचर्या में डाल सकते हैं, उस पर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप बच्चे हैं, जो स्वतंत्रता हमें हमारे पूर्वजों के स्ट्रगल से, उनके बलिदान से मिली है, उसको हम लोग व्यर्थ ना जाने दें। जो भी देश हित के कार्य हैं उस पर हम लोग हमेशा लगे रहें। आप बच्चे हैं तो बच्चों का दायित्व अच्छी शिक्षा पाना, अच्छा चरित्र रखना और ईमानदारी से अपने सभी कार्यों को सीखना और करना, ये आपके स्वतंत्रता की प्रणाली में आता है। मैं पुनः सभी लोगों को आज इस इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी बच्चे आज यहां पे आए हैं ये अपने हित में, समाज के हित में, प्रदेश के हित में, देश के हित में कुछ अच्छा करेंगे, और जो हमारे स्वतंत्रता के लिए हमारे जो पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है उसके सोच को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र निर्माण का कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।
1: स्वाधीनता दिवस के इस मौके पर जनपद के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। खेलकूद और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें बच्चों की प्रस्तुति ने मन मोह लिया।

0: न भरे।
1: आजादी का दिन उन सपनों को याद करने का भी दिन है जिन्हें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए देखा था, और जब इन्हीं सपनों की आवाज बच्चों के सुरों में सुनाई देती है तो आजादी का जश्न और भी खूबसूरत हो जाता है। आइए सुनते हैं अगली बाल प्रस्तुति।

0: बच्चों की आवाज में देशभक्ति मिठास कुछ अलग ही होती है। उनके गीतों में सिर्फ सुर नहीं बल्कि अपने देश के लिए प्यार और गर्व की भावना सुनाई देती है। इसी खूबसूरत भावना को आगे बढ़ाते हुए अब आइए सुनते हैं ये प्यारी सी प्रस्तुति।
1: मैं स्वाति, मैं कविता, मैं निशा मौर्य कठौंधी दुधी सोनभद्र से हैं। आज हम स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आओ।

0: साहस, शांति और समृद्धि का संदेश देते हैं और हमारे ये नन्हे कलाकार अपने गीतों और प्रस्तुतियों के माध्यम से उसी भारत की तस्वीर हमारे सामने रख रहे हैं जिस पर हमें गर्व है।
1: जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा। जा सत्य अहिंसा धर्म का लगता है पग पग डेरा, ओ भारत देश है मेरा। यह धरती वे जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु की माला, जहाँ हर बाला एक मोहन है और राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा।
0: इन नन्हे कलाकारों की प्रस्तुतियों ने आजादी के इस उत्सव में सचमुच रंग भर दिया। इनके सुरों में हमें भारत का वर्तमान भी सुनाई देता है और आने वाले कल की उम्मीद भी। यही बच्चे आगे चलकर देश की नई कहानी लिखेंगे। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर इन्हें हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर हर घर तिरंगा अभियान के साथ लोगों ने राष्ट्रीय पर्व में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। इस तरह ऊर्जांचल नगरी सोनभद्र में आजादी का जश्न भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष के साथ संपन्न हुआ। वाचन और संपादन आशीष वर्मा का, तकनीकी सहयोग संजय कुमार वर्मा का, प्रस्तुति सहयोग संजू सिंह, सुरसरी द्विवेदी, सुनील तिवारी, जगत नारायण और सौरभ तिवारी का था। प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार वर्मा।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद सोनभद्र में आयोजित विभिन्न समारोहों की रेडियो रिपोर्ट।

0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।

0: ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है, सुनते हैं सबरस कार्यक्रम।
1: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
2: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
1: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
2: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
1: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
0: श्रोताओं, 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, भारत माँ की बेड़ियां टूटी, देश का विभाजन भी हुआ, अनेक करुण दृश्य सामने आए, अश्रुपूरित नैनों से हमें नए प्रभात के दर्शन हुए, हमारे सपने साकार हुए, सदियों की तपस्या पूर्ण हुई, कोटि कोटि जनता की आशाएं भी पूरी हुई। आज फिर वही तारीख, वही संकल्प का दिन है, अपनी स्वतंत्रता और अस्मिता को सुरक्षित रखने का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुंबकम् और सत्यम शिवम सुंदरम हमारे देश की राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषता है। दुनिया की शायद ही किसी सभ्यता में संस्कृति का इतना सटीक उदाहरण देखने को मिलता हो। एक सूत्र में ही समूचा जीवन सिमट जाता है, जिसके सार में व्यक्ति और समाज दोनों का ही विकास निहित है।

0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
2: सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
3: हमारा हिंदुस्तान जहान में सबसे अच्छा है, क्योंकि यहां है अच्छे लोग, अच्छा सिस्टम और देशवासियों की सेवा व सुरक्षा के लिए UP 112 की अच्छी सेवाएं।
2: पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, प्राकृतिक आपदा, साइबर क्राइम, महिला व बाल अपराध जैसी किसी भी आपातकालीन स्थिति में 112 पर कॉल करें।
4: UP 112 की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम प्रतिक्रिया के लिए कॉल UP 112, नंबर 1 से सेवाएं अनेक।
5: श्रोताओं, राष्ट्र हम में से हर एक के सम्मिलित अस्तित्व का नाम है। इसमें जो कुछ आज है, हम हैं और आने वाले कल में होंगे, सभी कुछ शामिल है। हम और हम में से हर एक के हमारे पन की सीमाएं चाहे जितनी भी विस्तृत क्यों ना हो, राष्ट्र की व्यापकता में स्वयं ही समा जाती हैं। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सबरस कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश की जनता के नाम संदेश।
1: नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरे सम्मानित बहनों और भाइयों, देश के 80वें स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आज का यह दिन उन लाखों वीरों के संकल्प को स्मरण कराने का दिन है जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस अवसर पर देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए बलिदान हुए सभी अमर वीर सपूतों को भी श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज जब भारत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के सामने नई शक्ति, नई ऊर्जा और नई आत्मविश्वास के साथ खड़ा है, तब उत्तर प्रदेश भी डबल इंजन सरकार के माध्यम से विरासत और विकास के साथ ही उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर रहा है। एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट तक, डिजिटल इंडिया से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, कृषि से उद्योग तक, युवा शक्ति से स्टार्टअप तक, डिफेंस से डीप टेक तक प्रदेश विकास के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उत्तर प्रदेश आज केवल बदला नहीं बल्कि भारत के बदलाव की गति भी तय कर रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में डबल इंजन सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ प्रदेश को नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कानून व्यवस्था में व्यापक बदलाव के साथ आज उत्तर प्रदेश उपद्रव से उत्सव प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश बीमारों से देश के ग्रोथ इंजन बना है। उत्तर प्रदेश ने बीते 9 वर्ष में अपने बजट को 3 गुना, जीएसडीपी 3 गुना और प्रति व्यक्ति आय को भी 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। वीमेन वर्कफोर्स की सहभागिता 3 गुना से अधिक हुआ है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन, वन डिवीजन वन स्टेट यूनिवर्सिटी, वन डिवीजन वन अटल आवासीय विद्यालय, वन डिवीजन वन फॉरेंसिक लैब की दिशा में प्रदेश ने मजबूती के साथ कदम बढ़ाया है। पॉलिसी पैरालिसिस को समाप्त करते हुए प्रदेश इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हुआ है। आज के दिन प्रदेश के पास 36 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं। पिछले 9 वर्षों में प्रदेश को 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। निवेश प्रस्ताव के माध्यम से 65 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। पिछले 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। 4 करोड़ से अधिक रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित

हुए हैं। प्रदेश में फैक्ट्रियों की संख्या में 2.5 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। 96 लाख एमएसएमई इकाइयां, 32 हजार से अधिक बड़े उद्योग और 22 हजार से अधिक स्टार्टअप प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, हेल्थ टेक जैसे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए निवेश, नवाचार और रोजगार के नए द्वार खोल रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एसटीपीआई जैसे संस्थानों के माध्यम से युवाओं को एक नए प्लेटफॉर्म उपलब्ध हुए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प से प्राथमिक विद्यालयों में 19 बुनियादी सुविधाओं का संतृप्तिकरण करने के लक्ष्य की ओर यूपी बढ़ा है। सीएम अभ्युदय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय, सीएम कंपोजिट विद्यालय एक मॉडल बने हैं। उत्तर प्रदेश में इसका परिणाम है कि स्कूल ड्रॉप आउट रेट पिछले 9 वर्ष में 19% से घटकर 3% रह गई है। जापानी इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हुई है। अन्य संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है। प्रदेश में आयुष्मान योजना से 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी आच्छादित हैं। विगत 9 वर्षों में 65 लाख से अधिक गरीबों को एक पक्का आवास उपलब्ध कराया गया। 3 करोड़ से अधिक गरीबों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध हुई। 2 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन, 10 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य का लाभ और 16 करोड़ जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य निरंतर चल रहा है। बनटांगिया हो या मुसर, थारू, चेरू, बुक्सा, सहरिया, कोल, इन सभी वंचित समुदायों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त हुई है। महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति के 5 चरणों को सफलतापूर्वक अब तक संपन्न किया है। हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र है। वीसी सखी, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां, एफपीओस आदि के माध्यम से प्रदेश की नारी शक्ति प्रदेश के विकास में भागीदार बन रही है। पीएम मातृवंदना योजना, सुकन्या समृद्धि एवं उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार की कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को गति मिली है। स्टार्टअप में 50% सहभागिता महिला शक्ति की है। पंचायत में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है। पुलिस की भर्ती में अनिवार्य रूप से 20% महिला शक्ति का प्रवेश हुआ है। हमारा लक्ष्य आधी आबादी को समाज के हर प्रारूप में प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने का है। पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में कृषि विकास दर 8% से बढ़कर के 18% से अधिक हुई है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3 करोड़ से अधिक अन्नदाता किसानों को 1,04,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हुआ है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत प्रभावित अन्नदाता किसानों को, उनके परिवार के सदस्यों और बटाईदारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। 16 लाख किसानों को उनके निजी ट्यूबवेल को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश में 24 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता का सृजन किया गया है। हम ऐसा उत्तर प्रदेश बना रहे हैं जहां विरासत का संरक्षण भी है और भविष्य की तकनीक भी, जहां संस्कृतियों का गौरव भी होगा और आधुनिकता को गति भी, जहां परंपरा की जड़ें मजबूत होंगी और विकास के पंख आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारा संकल्प है हर युवा के हाथ में स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट हो। इसी संकल्प को और अधिक गति प्रदान कराने के लिए युवाओं को नई यूथ पॉलिसी के साथ जोड़ने के लिए
कार्य प्रारंभ

0: हुआ है। हर अन्नदाता किसान के खेत में समृद्धि हो, हर बेटी के सपनों को उड़ान हो, हर गांव में विकास की रोशनी और हर नागरिक के जीवन में सम्मान हो। डबल इंजन सरकार की ये संकल्प दृष्टि है। हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने हमें आजादी दी, अब हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है। हम भारत को समृद्धि, सामर्थ्य और स्वाभिमान की नई ऊंचाई दें। स्वाधीनता हमें विरासत में मिली है, लेकिन विकसित भारत का निर्माण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। यही स्वाधीनता सेनानियों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि और राष्ट्र के प्रति हमारा संकल्प है। जय हिंद।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश की जनता के नाम संदेश।
2: ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान।

0: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।
1: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
2: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

आज़ादी आ तुझसे आज दो बातें कर लें, जो मिटे तेरी डगर में आज उनको याद कर लें। जी हाँ श्रोताओं, याद करें अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, उनकी कुर्बानियों को और साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारियों को। हम अपने कर्तव्य को जानें, अपनी सच्चाई को जानें, अपनी आज़ादी की कीमत को पहचानें और इसे महफूज रखने की हिम्मत सदा बनाए रखें।

0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।

श्रोताओं, आजादी का ये जश्न मनाते हुए कई बार ये सवाल उठता है मन में कि आखिर इतने बरसों गुलामी को हम बार बार क्यों याद करते हैं। उसी सवाल का जवाब है हमारी आजादी के लिए एक आजाद रहगुजर के लिए जंग आजादी के जाबाज सिपाहियों ने जो कुर्बानी दी, क्या हम उसे भुला सकते हैं? उसको भूलकर हमें भारत की इस धरती पर जीने का क्या कोई हक है? भारत माँ की सीखचों से मुक्त कराने के लिए आजादी के दीवानों ने अपना खून बहाया, अपना सर कटाया।

सब तीर्थों का एक तीर्थ है, हृदय पवित्र बना लें हम। आओ यहाँ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना लें हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना लें हम। सौ सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम। श्रोताओं, इसी के साथ वंदना को अनुमति दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।
1: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
2: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
1: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
2: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
1: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।

श्रोताओं, आज 15 अगस्त यानी हमारा स्वतंत्रता दिवस, देश की आजादी का दिवस। तो आइए नमन करें उन अमर शहीदों को जिनकी कुर्बानियों से हमें आजादी मिली, और सलाम करें सरहद के उन वीर जवानों को जिनकी सरहद पर सतत निगहबानी महफूज है, और महफूज है हमारा ये मुल्क।

श्रोताओं, जय हिंद सिर्फ नारा ही नहीं बल्कि देश प्रेम का वो भाव है जिसके लिए हर वीर जवान हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लेता है, गले लगा लेता है। जय हिंद का भाव इतना प्रचंड है कि दुनिया के ताकतवर देश को भी भारत छोड़कर भागना पड़ा, जिसे आज हम अपनी आजादी कहते हैं।

0: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
1: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
0: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
0: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।

एफएम 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही देर बाद आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। उसके बाद 9 होंगे अंग्रेजी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया में फ्लोरेस तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 47 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने ग्रुप डी के मैच में वेल्स को 3-1 से हराया और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
2: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
1: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया।
2: आज भारत ने भी एक बहुत बड़ा सपना देखा और वो सपना है जब आजादी के 100 साल होंगे 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ थे, इस लक्ष्य को हमें हासिल करना।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि इन संकटों के दौरान टीके, ईंधन, गैस, डीजल और उर्वरक की कमी को लेकर काफी अफवाहें फैलाई गई थी। श्री मोदी ने कहा कि सुनियोजित नीतियों, तैयारियों और समय रहते उठाए गए कदमों के कारण देश ने इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है।
2: एनर्जी सिक्योरिटी ये हमारे समय की मांग है और इसलिए हमने पहले से ही उस दिशा में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का एक बड़ा माध्यम है परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य तक जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
2: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया।
2: मैं आज उस युग को भी याद करना चाहूंगा जब देश

0: भारत का सामर्थ्य सप्त सिंधु के रूप में हम जानते थे, हम समझते थे, हम सुनते थे। अब विकसित भारत बनाने के लिए हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आह्वान करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
1: स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हमारे संवाददाता की विस्तृत रिपोर्ट।
2: आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्षों से चली आ रही गौरवशाली विरासत का स्मरण किया गया। इस वर्ष पहली बार लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया गया। प्रधानमंत्री को तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। वहीं भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों ने समारोह स्थल पर पुष्प वर्षा की। सेना के बैंड ने वंदे मातरम की मधुर धुन प्रस्तुत की और लाल किले पर मौजूद सभी लोगों ने एक साथ राष्ट्रीय गीत का गायन किया। इसके बाद राष्ट्रगान का भी गायन किया गया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 5000 विशेष अतिथियों को लाल किले पर आमंत्रित किया गया था। सुपर्णा और सौम्य के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए किसानों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मेघालय के राज्यपाल सीएच विजय शंकर ने शिलांग स्थित लोकभवन में स्वतंत्रता दिवस पर पारंपरिक एट होम समारोह का आयोजन किया। बिहार में स्वतंत्रता दिवस पारंपरिक उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लद्दाख में स्वतंत्रता दिवस समारोह करगिल के ख्री सुल्तान चो स्पोर्ट्स स्टेडियम में देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। आकाशवाणी करगिल ने बारू परिसर में उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। मणिपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह इम्फाल पश्चिम स्थित प्रथम मणिपुर राइफल्स परेड ग्राउंड में आयोजित हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज स्वतंत्रता दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने कौशल विकास, डिजिटल तकनीक, सतत विकास और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। लातविया के विदेश मंत्रालय ने भारत की निरंतर प्रगति, एकता और समृद्धि की कामना की। इसराइल के राजदूत रुवे नजार, अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो कोसिनो, श्रीलंका के उच्चायुक्त महेशिनी कोलोन ने, ऑस्ट्रेलिया उच्चायुक्त और कनाडा के उच्चायोग ने भी भारत को शुभकामनाएं दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा कि आजादी के 8 दशक भारत की आकांक्षाओं, दृढ़ता और अटूट भावना को दर्शाते हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडोनेशिया में फ्लोरेस द्वीप तट के पास आज आई 7.7 तीव्रता

0: के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। भूकंप के बाद देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। मुख्य शहर माउमेर में बचाव दल ने 20 शव बरामद किए और 6 घायलों को बाहर निकाला। दक्षिणी लेबनान में आज इसराइल के हवाई हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बताया कि अंसार गांव में एक मकान पर हुए इस हवाई हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। इसराइल की सेना ने कहा है कि इसराइली सैनिकों के खिलाफ की गई एक कार्रवाई के जवाब में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। यह रखरखाव के कारण प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा।
1: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह कल राजस्थान के अलवर में अलवर सरस डेयरी परिसर में नए डेयरी प्लांट की आधारशिला रखेंगे। वे वर्चुअल माध्यम से विभिन्न डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों और पशु आहार संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा रोजगार उत्सव के तहत नवनियुक्त 10,500 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। दूरसंचार विभाग पुणे में 17 से 21 अगस्त तक ब्रिक्स सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT ट्रैक का आयोजन करेगा। इस वर्ष का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और बदलाव। कार्यक्रम की शुरुआत 7वें ब्रिक्स ICT कार्य समूह की बैठक से होगी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मूसलाधार वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 21 अगस्त तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। और खेलों में नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। वहीं श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व किया। नागरिकों से मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भरता और युवाओं तथा महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल दिया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में युवा शक्ति का उपयोग करने के लिए सप्तधारा रूपरेखा का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य घोषित किया। विश्व नेताओं ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। देश की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास आए भूकंप में 47 लोगों की मौत और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने गोल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक दो विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in celebrating 80th Independence Day, urges citizens to dream big for a strong and self-reliant India. Prime Minister emphasizes on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, unveils Saptadhara framework with aim of harnessing youth power to propel India to new heights. Prime Minister Modi announces target of 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047. World leaders extend Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and expanding role in regional and global cooperation. In Indonesia, death toll in powerful earthquake rises to 47. Heavy rain alert issued in Arunachal Pradesh, Gangetic, West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh and Uttarakhand till tomorrow. In hockey, India defeat Wales 3-1 in Group D match of FIH World Cup in the Netherlands. And in cricket, India post 288 for 2 at stumps on day 1 of first test against hosts Sri Lanka. The nation is celebrating its 80th Independence Day today. Prime Minister Narendra Modi led the Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Addressing the nation from the ramparts of Red Fort, the Prime Minister said over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. He said, "A nation achieves greatness when it moves forward on the strength of its own dreams and resolve." The Prime Minister stressed that higher dreams and stronger resolutions raise the overall scale and capability of the nation's efforts.
3: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं। हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
2: Prime Minister Modi said energy security is one of the major requirements of the present times and the government has taken several significant steps in this direction. He said nuclear energy is an important means of ensuring a country's energy security.
3: Energy security ye hamare samay ki mang hai aur isliye humne pehle se hi us disha mein ek ke baad ek majboot kadam uthaye hain. Energy security ka ek bada madhyam hai परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। हमने पार्लियामेंट में शांति एक्ट पास कर करके एक नए लक्ष्य पर जाने का रास्ता तय कर लिया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं।
2: Prime Minister Modi said the government has opened up 99% of offshore areas that were once designated as no-go zones and converted them into go-ahead areas. He said the government is now actively pursuing exploration beneath the sea and making efforts to discover new reserves.
3: हमने 99% को जो कभी नो गो एरिया हुआ करते थे, हमने उसको गो अहेड एरिया के रूप में खुला कर दिया और अब हम समुद्र के भीतर भी एक्सप्लोरेशन करने की और नए नए भंडार खोजने की दिशा में हम प्रवृत्त हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखते हुए समुद्र मंथन की घोषणा करके काम को गति देने का निर्णय कर लिया।
2: Stressing on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle-class families for various public examinations. He also announced that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector.
3: हमने पिछले दिनों एआई इम्पैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
2: The Prime Minister urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. He said women should be given the opportunity to contribute to shaping India's policies. On nationalism, the Prime Minister said the people of the country gave the opportunity to serve the nation in 2014 and he resolves to make the country free from nationalism. In his address, the Prime Minister called upon the nation to harness the 7 streams of strength called Saptadhara. He said in the next 5 to 7 years, the country will achieve all that could not be achieved in the past 5 to 7 decades.
3: आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। और इसके साथ साथ देश की युवा शक्ति का सामर्थ्य का भरपूर राष्ट्र निर्माण में उपयोग होगा।
2: Prime Minister Modi said in the next 7 to 8 years, another 5 to 8 semiconductor plants are set to commence operations. He said India has started production at 3 semiconductor manufacturing plants.
3: कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होगा, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट होंगे, हमारे ट्रांसपोर्ट के रास्ते होंगे, हर किसी में चिप अनिवार्य है और इसे चिप के बिना दुनिया थम जाए ऐसी स्थिति पैदा होगी। और इसलिए भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके।
2: The Prime Minister highlighted the government's focus on critical minerals, saying that modern technology depends entirely on critical minerals and India is actively working to secure its position in this sector. Our correspondent takes a glimpse at independence celebrations at the Red Fort today.
4: Independence Day celebrations today commemorated 150 years of the enduring legacy of the national song Vande Mataram. For the first time, Vande Mataram was rendered during the celebrations at Red Fort. Upon his arrival at the Red Fort, Prime Minister Narendra Modi was received by Defence Minister Rajnath Singh, Minister of State for Defence Sanjay Seth and Defence Secretary Rajesh Singh. The Guard of Honour contingent for the Prime Minister consisted of 1 officer and 24 personnel, each from the Army, Navy, Air Force and Delhi Police. The Prime Minister hoisted the national flag, which was synchronized with 21 gun salute. Flower petals were showered at the venue by 2 Mi-17 helicopters of the Indian Air Force. The Army band played the tune of Vande Mataram and the national song was sung by everyone present at Red Fort. It was followed by the national anthem. Around 5,000 special guests from different walks of life were invited to witness the celebrations at Red Fort this year. With Suparna Saikia, Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
2: Reports of Independence Day celebrations have also come in from all states and union territories. Chief ministers, governors, lieutenant governors led the celebrations in the state capitals. Special programs were also held. World leaders and foreign missions have extended Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and growing role in regional and global cooperation. U.S. Secretary of State Marco Rubio highlighted the strengthening India-U.S. strategic partnership, while Singaporean President Tharman Shanmugaratnam stressed growing cooperation in skills development, digitalization, sustainability, and advanced manufacturing. French President Emmanuel Macron conveyed his warm wishes on India's 80th Independence Day, while Israeli President Isaac Herzog congratulated President Draupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi and the people of India in a message shared in Hindi. Prime Minister Narendra Modi has thanked world leaders for their greetings, including President Macron and Maldives President Dr. Mohamed Muizu, Nepal's Prime Minister Balendra Shah, his Bhutanese counterpart Chering Tobgay, and Slovakian President Peter Pellegrini. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, Follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. In a unique global celebration of India's Independence Day, the Surya Path Tiranga Global Relay is underway, in which the Indian tricolour is travelling across the world following the path of the rising sun. The Surya Path Tiranga journey began at 1:30 a.m. at Suva, the capital of Fiji, as the Tiranga was hoisted at the first point of the relay. From there, it moved westward. The Culture Ministry said in a statement that at every mission and post the national flag was hoisted, creating a continuous visual relay of the Tiranga across time zones and continents. In Indonesia, the death toll has risen to 47 after a powerful 7.7 magnitude earthquake struck off the coast of Flores today. The earthquake was followed by dozens of aftershocks as rescue teams continued efforts to reach the worst affected areas. Hundreds of buildings in the region have been damaged by the quake and the dozens of aftershocks that followed. A 6.4 magnitude earthquake was also felt in North Sumatra later in the day at a depth of 163 kilometers. Tsunami waves of less than 1 meter were reported in several parts of the country. The tsunami alert was withdrawn around 3 hours after the initial earthquake. Officials said people are still believed to be trapped inside buildings in several affected areas. Landslides have also been reported, with debris blocking roads and hampering rescue and relief operations. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Gangetic, West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh and Uttarakhand till tomorrow. Heavy rainfall conditions are also likely to prevail over Chhattisgarh, Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra and Madhya Pradesh over the next 2 to 3 days. Similar weather conditions are likely to prevail over the northeastern region until the 21st of this month. In hockey, India defeated Wales 3-1 today in a Group D match of the FIH Hockey World Cup in Amstelveen, the Netherlands. For India, Captain Harmanpreet Singh scored 2 goals, while Sanjay Rana scored 1. Sam Welch scored the lone goal for Wales. In men's cricket, India were 288/2 in their first innings at stumps on day one of the first test against hosts Sri Lanka at Galle International Cricket Stadium. Earlier, India won the toss and opted to bat first. Devdutt Padikkal remained unbeaten on 131, while Rishabh Pant was on 27 when stumps were drawn this evening. KL Rahul retired hurt at 77. Today's game was cut short to 73 overs due to 2 rain breaks. Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia today interacted with My Bharat NSS volunteers during the Independence Day celebrations in New Delhi. Addressing the volunteers, Dr. Mandavia appreciated their contribution towards social service and encouraged them to actively participate in initiatives aimed at building a Vikasit Bharat. He emphasized that the energy, commitment and innovative ideas of young people are essential for achieving the vision of a developed and self-reliant India. Amrit Udyan will be open to the general public from tomorrow till the 15th of next month. Our correspondent reports that the garden will remain open from 10 a.m. to 6 p.m. with the last entry at 5 p.m. It will remain closed on Mondays for maintenance. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi leads the nation in celebrating 80th Independence Day, urges citizens to dream big for a strong and self-reliant India. Prime Minister emphasizes on empowerment of youth and women for a Vikasit Bharat, unveils Saptadhara framework with aim of harnessing youth power to propel India to new heights. Prime Minister Modi announces target of 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047. World leaders extend Independence Day greetings to India, praising its democratic journey, civilizational heritage, and expanding role in regional and global cooperation. In Indonesia, death toll in powerful earthquake rises to 47. Heavy rain alert issued in Arunachal Pradesh, Gangetic, West Bengal, Odisha, Uttar Pradesh, and Uttarakhand till tomorrow. In hockey, India defeat Wales 3-1 in Group D match of FIH World Cup in the Netherlands, and in cricket, India post 288 for 2 at stumps on day 1 of first test against host Sri Lanka. That is all in the news at 9. Good night.

0: ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। लीजिए अब सुनिए साप्ताहिक संसद समीक्षा।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप वैष्णवी से संसद में हुई इस सप्ताह के कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये चौथा और अंतिम सप्ताह था। इस सप्ताह भी दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई तथा अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर भारी हंगामा किया। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने इन मुद्दों पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के कारण बैठक एक मिनट के अंदर ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही फिर आरंभ होने पर भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही। हंगामे के बीच ही विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 और कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृहमंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने को भी तैयार है। इस बीच विधि एवं न्याय मंत्री मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र बदलने का विधेयक नहीं है। विधेयक का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। सदन ने विपक्ष के हंगामे के बीच ही विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने करीब 11:20 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के उद्देश्य से पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग दोहराते हुए हंगामा जारी रखा। सदन में व्यवस्था न बनते देख हरिवंश ने बैठक को 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दिया। 15 मिनट बाद बैठक फिर शुरू होने पर सदन में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक और कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को लिया गया। बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 का उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा स्पष्ट बनाना है। राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों ने कुछ देर नारेबाजी करने के बाद विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक के माध्यम से बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही अदालती मामलों में बैंक के पक्ष को मजबूती से रखा जा सकेगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने बैंक ग्राहकों के साथ बढ़ते साइबर अपराध को लेकर चिंता व्यक्त की। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन में कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू करने से रोकता है। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विधेयक में भारत को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने और वैश्विक कंपनियों को उपकरण, पुर्जे तथा सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य निहित है। मंत्री के जवाब के बाद कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से लौटा दिया गया। तत्पश्चात विशेष उल्लेख के जरिए सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामा देखते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कुछ देर बाद ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। इस दौरान शोरगुल जारी रहा और हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा शुरू हो गया और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जब 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सदन में वही नजारा दिखा और सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वहीं कुछ देर बाद विपक्ष के कई दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। सदन ने चर्चा के बाद इस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी और विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक में विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए आयोग गठित करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जवाब दिए जाने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कानून मंत्री मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। इसके बाद उच्च सदन में विशेष उल्लेख लिया गया जिसमें कई सदस्यों ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। शाम 4:30 पर उच्च सदन की बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कुछ मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही और प्रश्नकाल चलाने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा, नीतियों और विचारों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन देश सदन चलते हुए देखना चाहता है। 2 बजे बैठक पुनः शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन FCRA विधेयक 2026 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और द्रमुक ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तथा यह सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने खुद मांग की थी कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए और अब जब इसे भेजा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों है। इसके बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दी। नियम के अनुसार इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य होंगे जिनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति वर्ष 2026 के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने अपराह्न 2:27 पर सदन की बैठक 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे बैठक पुनः शुरू हुई तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। हंगामे के बीच सदन ने बिना चर्चा के विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही 3:15 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश

की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की दो खंडों वाली रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। उधर राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही माकपा सदस्य जॉन ब्रिटास ने कहा कि भाजपा की एक सदस्य ने उन्हें कथित तौर पर लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया। विपक्षी सदस्यों ने ब्रिटास का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभापति से अनुरोध किया कि वे संबद्ध सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनकी बात सुनकर समाधान निकालें। सभापति राधाकृष्णन ने सदस्यों को टिप्पणियां करते समय ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत न हो। सभापति ने कहा कि वे संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर इस मामले पर चर्चा करेंगे। सदन में हंगामा देखते हुए सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होने पर भाजपा सदस्य सुष्मिता देव ने अपना पक्ष रखा। सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने किसी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी नहीं की और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। इसके बाद कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए। उसके बाद सदन ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी, जिसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा का सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन ने विधेयक पर विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया। इस विधेयक के पारित होने के बाद उच्च सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। बृहस्पतिवार को दोनों सदनों की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे आरंभ होने पर अध्यक्ष ने आसन पर बैठते ही सदस्यों से राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े होने के लिए कहा। हालांकि सामान्यतः सत्र समाप्ति के मौके पर वंदे मातरम से पहले वे अपने पारंपरिक संबोधन में उस सत्र की कार्य उत्पादकता, उसमें पारित विधेयकों, पूछे गए प्रश्नों आदि का उल्लेख करते हैं। वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों के गायन के रिकॉर्डिंग के बाद उन्होंने सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता तथा सदस्य सदन में मौजूद थे। उधर राज्यसभा भी बृहस्पतिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। ये राज्यसभा का 271वां सत्र था। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी से संबद्ध लोगों ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामलीला मैदान के उस मंच का शुद्धिकरण किया जहां उन्होंने भाषण दिया था। श्री खड़गे ने मांग की कि मंच का शुद्धिकरण करने वाले के खिलाफ अस्पृश्यता अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए। सभापति राधाकृष्णन तथा सदन के नेता जेपी नड्डा ने इस घटना की निंदा की। सदन के नेता ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। इसके बाद सदन में खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई और इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। तत्पश्चात बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को सदन में चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए खान मंत्री रेड्डी ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में हस्तक्षेप करना नहीं बल्कि पूरे देश में खनिजों की दरों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। रेड्डी ने कहा कि केंद्र सरकार कोयला, चूना पत्थर, लोह अयस्क, तांबा और मैंगनीज जैसे प्रमुख खनिजों को विनियमित करना चाहती है जबकि 49 गौण खनिजों के मामलों में राज्यों के अधिकार बरकरार रखेंगे। चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि सरकार राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। सदन ने विधेयक को राज्यसभा के प्रवर समिति के पास भेजने के लिए द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश संशोधन को विध्वनिमत से खारिज कर दिया। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले सभापति ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि 20 जुलाई से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा की उत्पादकता महज 39.1
1.7% रही।

0: हालांकि विधानों के बीच सदन ने 12 विधेयकों पर विचार किया और उन्हें पारित या वापस किया। अभी आप संसद में हुई सप्ताह की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक संसद समीक्षा। ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कवि गोष्ठी।
2: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
3: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
2: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
3: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
2: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
3: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
2: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
3: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
2: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
3: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
2: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
3: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
2: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
1: श्रोताओं, कवि गोष्ठी में प्रतिभागी कवि हैं रमाशंकर पांडेय विकल, डॉक्टर लखन राम जंगली और डॉक्टर वीर अभिमन्यु सिंह। कवि गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं सुनील कुमार तिवारी।
4: श्रोताओं नमस्कार। श्रोता बंधुओं, प्रकृति के सुरम्य गोद और सोन नदी के पावन तट पर बसे हमारे इस आंचल में हवाओं में आज भी माटी की सौंधी खुशबू रची बसी है, किंतु आधुनिकता की दौड़ ने हमारे पर्यावरण और जल स्रोतों को एक गहरी वेदना में डाल दिया है। इसी वेदना को स्वर देने और प्रकृति के प्रति हमारा सोया हुआ दायित्व जगाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं इस क्षेत्र के 3 प्रतिष्ठित कवि, वरिष्ठ गीतकार पंडित रमाशंकर पांडे विकल, लोक संस्कृति और माटी के सच्चे चितेरे डॉक्टर लखन राम जंगली, ओजस्वी स्वर के धनी डॉक्टर वीर अभिमन्यु सिंह। आप तीनों का इस गोष्ठी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। श्रोताओं, इस गोष्ठी के प्रथम चरण की शुरुआत हम उस जीवनदायिनी बोध से कर रहे हैं जिनके बिना जीवन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। कहा गया है, बूंद बूंद से बधे प्राण हैं, जल ही तो भगवान है, इसे सहेजो मत बहाओ, यह जग की पहचान है। इसी जल संरक्षण के आह्वान को कविताओं में पिरोने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं पंडित रमाशंकर पांडे विकल्प।
5: सवैया त्रय प्रस्तुत कर रहा हूं।
6: स्वागत है।

0: संहारी
1: नित
0: पर्वत पर्वत पर्व पले सरी तांग कटे न रहे रस धारे नित नूतन निसर्ग निवर्तन ले स्वक राष्ट्र सगौरव स्वर्ग उतारे सुचि वायु दिशा भव सुष्ट

बढ़ाए, यह नव्यसति वरदान बने, सद्भाव समुन्नय सिंधु सजाए कल।

0: लखन राम जंगली को वे आए और जल पर आधारित एक अपनी रचना पढ़ें। डॉक्टर लखन राम जंगली।
1: पानी से हरियाई है
0: जी,
1: शीर्षक से रचना है। महुआरी अमराई है, महुआरी
0: अमराई है,
1: अमराई है पानी से हरियाई है।
0: वाह,
1: महुआरी अमराई है और पानी से हरियाई है, पानी हो ही तो कुइयां है।
0: वाह,
1: पानी हो ही
0: तो कुइयां है,
1: तो कुइयां है बिन पानी कर खाई है।
0: क्या बात बा,
1: पानी हो ही तो कुइयां है बिन पानी कर खाई है, और अमृत हवय किसानन बर।
0: क्या बात,
1: अमृत हवय किसानन बर रोगिन बरे दवाई है।
0: क्या बात,
1: अमृत हवय किसानन बर रोगिन बरे दवाई है, और कौनो बरे प्यास हवय, कौनो बरे प्यास हवय और कौनो बरे कमाई है।
0: क्या बात है,
1: कौनो बरे
0: कमाई
1: प्यास हवय, कौनो बरे कमाई है, और पानी के जे अड़ुआ ही जो नष्ट करेगा
0: जी,
1: पानी के जे अड़ुआ ही आदमी नहीं कसाई है।
0: क्या बात,
1: पानी
0: है?
1: के जे अड़ुआ ही आदमी नहीं कसाई है, और काल अकाल है पानी बिन
0: जी,
1: काल
0: अकाल है,
1: अकाल है पानी बिन, काल अकाल है पानी बिन, धरती कर गरुआई है, और आज बचाले संजा से।
0: क्या बात,
1: आज बचाले संजा से काली से बरियाई है। एक खड़ी हिंदी की रचना बाबूजी
0: जी,
1: बाबूजी शीर्षक से
0: स्वागत।
1: अब करते हैं बात बहुत कम बाबूजी, अब करते हैं बात बहुत कम बाबूजी, खुद में खोए रहते हरदम बाबूजी।
0: क्या बात है,
1: अब करते हैं बात बहुत कम बाबूजी, खुद में खोए रहते हरदम बाबूजी, और सुख की गठरी स्वर्ग ले गई अम्मा जी, सुख की गठरी
0: स्वर्ग
1: ले गई अम्मा जी, आंखें जब तब कर लेते नम बाबूजी, सुख की गठरी स्वर्ग ले गई अम्मा जी, आंखें जब तब कर लेते नम बाबूजी, और परस दिया जो एक बार में खा लेते, परस दिया
0: जो एक बार,
1: जो एक बार में खा लेते, बतलाते पत्नी का परसन बाबूजी, बतलाते पत्नी का परसन बाबूजी, और चोखा चटनी दाल भात पर फरमाइश, चोखा चटनी
0: दाल भात पर,
1: दाल भात पर फरमाइश, मार दिया है चाहत कामन बाबूजी, चोखा चटनी दाल भात पर फरमाइश, मार दिया है चाहत कामन बाबूजी, और सुनी आंखों से चश्मे में पढ़ते हैं, सुनी आंखों से चश्मे में पढ़ते हैं, और हर चेहरे का सातिरपन बाबूजी, सुनी आंखों से चश्मा में पढ़ते हैं, हर चेहरे का सातिरपन बाबूजी, और अंतिम पंक्ति की धन परिजन के लिए जुटाया जीवन भर, धन परिजन के लिए जुटाया
0: जीवन
1: भर, और चौथेपन अब जोड़ रहे धन बाबूजी, चौथेपन अब जोड़ रहे धन बाबूजी।
0: बहुत खूब, लोक जीवन के अटूट रिश्ते को अपने अनूठे अंदाज में प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर लखन राम जंगली जी। श्रीकांत वर्मा ने लिखा कि एक दिन पाने की विकलता और न पाने का दुख दोनों अर्थहीन हो जाते हैं, दोनों अर्थहीन हो जाते हैं। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जल संरक्षण की अलख को और अधिक जगाने के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर वीर अभिमन्यु सिंह जी को, वे आए और अपना कविता पाठ करें।
1: स्वागत है आपका।
2: एक मुक्तक से, और जो जल के बिना संभव ही नहीं है
0: जी।
2: बीज से अंकुरित पेड़ मैं बन गया, बीज से अंकुरित पेड़ मैं बन गया,
0: क्या बात है?
2: डाली पत्ते लगे मैं घना हो गया, डाली पत्ते लगे मैं घना हो गया, जड़ धरा में जमा कर हुआ मैं खड़ा, जड़ धरा में जमा कर हुआ मैं खड़ा,

चाहता हूँ, वृद्धि की इच्छा है। हो सकल संसार सुख में स्वप्न आँखों में सजो कर, हो सकल संसार सुख में स्वप्न आँखों में सजो कर, इस धरा

हो फलित। अंतिम पंक्ति वेद के मंत्र महामृत्युंजय मंत्र को तार्थ समर्थित है। त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम् वंदनम मृत्योर्मुक्षेम अमृतात्। पक करके जब फल सुगंधि फैलता है तो स्वतः छूटना चाहता है डाली से और छूट जाता है। ऐसे वेद के मंत्र से अपरप्रेत होकर के पंक्तियां हैं कि बीज का हो अंकुरण श्रम साधना व्रत हो फलित। मैं भोग कर सब कर्म फल खुद मुक्त होना चाहता हूँ। समय से समय का तक मृत्यु होना है तो भी

0: फल खुद मुक्त होना चाहता हूँ।
1: आप सुन रहे थे डॉक्टर वीर अभिमन्यु सिंह जी को। राहत इंदौरी साहब ने कहा कि रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। अब मैं श्रोताओं, अभी हम प्रथम चरण में थे, अब इस विशेष कव गोष्ठी को हम द्वितीय चरण में लेकर चलते हैं। और एक बार पुनः मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पंडित रमाशंकर पांडे विकल जी को, वे आए और एक गीत प्रस्तुत करें। पंडित रमाशंकर पांडे विकल।
2: लक्ष्य संधान शीर्षक से गीत है।

0: रहे तुम निरंतर।
1: अभी सुन रहे थे पंडित रमाशंकर पांडे बिकल जी को। अब मैं इस दूसरे चरण को आगे बढ़ा रहा हूं और पर्यावरण की व्यथा और हरियाली के महत्व को जीवंत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर लखनराम जंगली जी को। वे आए और अपनी रचना पढ़ें। डॉक्टर लखनराम जंगली,
2: पहले एक दोहा
1: स्वागत,
2: उसके बाद लोक भाषा में एक रचना
1: स्वागत।
2: धुइयां धुइयां हो गई इस धरती और आसमान, धुइयां धुइयां हो गई इस धरती और आसमान, जंगली खोखा बून के खोखा एल्युमिनियम, धुइयां धुइयां हो गई इस धरती और आसमान, और जंगली खोखा बून के कहाँ खोज थो धान।
1: क्या बात है।
2: और जहर हवा में भारी है शीर्षक से एक रचना दिल्ली के आसपास, दिल्ली की पर्यावरण की चर्चा बहुत है, उसी बहाने अपने आसपास के पर्यावरण की भी चर्चा
1: जी।
2: कि अटकल है दिल्ली कर ससरी, अटकल है दिल्ली कर ससरी, जहर हवा में भारी है, अटकल है दिल्ली कर ससरी, जहर हवा में भारी है, और टिटही टांग उठा के रोके बदरी देख लाचारी है।
1: क्या बात है।
2: टिटही टांग उठा के रोके बदरी देख लचारी है। दिनों रात धुआं कर धंधा, दिनों रात
1: धुआं
2: कर धंधा, काटत सोना चानी है, दिनों रात धुआं कर धंधा, काटत सोना चानी है, और पानी कर पारापी पी के यहाँ करेजा पानी है।
1: क्या बात है।
2: और जहर पिया के दवा पिया ही काम यह सरकारी है, टिटही टांग उठा के रोके बदरी देख लचारी है। आम अतर सल्ला आप फरथे, एक साल बीज करके आम फलता है, कि आम अतर सल्ला आप फरथे, रोज संखिया मारत है, आम अतर सल्ला आप फरथे, रोज संखिया मारत है, घर घर लंगड़ा कुबरा कुबरी, घर घर लंगड़ा कुबरा कुबरी, बैठ हंस के ढारत है, गजरा मुरई संभर के खाबे, गजरा मुरई संभर के खाबे, जहर बुझल तरकारी तरकारी है, गजरा मुरई समर के खाबे, जहर बुझल तरकारी है, और टिटही टांग उठा के रोके बदरी देख लचारी है। बीन बजाले चाहे जितना, बीन बजाले चाहे जितना, भई सभे जाने पगुरा थे, बीन बजाले चाहे जितना, भई सभे जाने पगुरा थे, गाजी मारे माल मौज में, गाजी मारे माल मौज में, और डफाली कोड़ा खाते, गाजी मारे माल मौज में और डफाली कोला खाते, गड़बड़ रास्ता छोड़ दे साहेब, आदमी कर फुफकारी है, और टिटही टांग उठा के बदरी रोके देख लचारी है। और गांधी के घर जन्म ले लो तब वो दोनों गाल ना दे हूं, गांधी के घर जन्म ले लो तब वो दोनों गाल ना दे हूं, जिंदगी के कीमत पर तोके देख उड़ावेक माल ना दे हूं, उठरे भैया जिंदगी ऊपर चलत मौत कर आ रही है, और टिटही टांग उठा के रोके बदरी देख लचारी है। और अंतिम पंक्तियां
1: जी,
2: कि चेते खो ही चेत नहीं तो, चेते खो ही
1: चेत नहीं,
2: चेत नहीं तो छटपटा तब चोला है, चेते खो ही चेत नहीं तो छटपटा तब चोला है, भुखना सुखना रोस में जंगली, गांव मोहल्ला टोला है, भुखना सुखना रोस में जंगली, गांव मोहल्ला टोला है, और गुंबावत है भितरी भितरी डबल राख चिनकारी है, गुंबावत है भितरी भितरी डबल राख चिनकारी है, टिटही टांग उठा के रोके बदरी देख लचारी है, टिटही टांग उठा के रोके बदरी देख लचारी है।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर लखनराम जंगली को। अब मैं इस कव गोष्ठी के दूसरे और अंतिम चरण, उसके चरमों उत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर वीर अभिमन्यु सिंह जी को। वे आए और कविता पाठ करें। डॉक्टर साहब,
3: पर्यावरण चाहे जितना भी दूषित कर ले इंसान, किंतु बीज जहां मौका मिलता है वो उग ही आता है, उसको कोई उगाए

पेड़ लगाए, पानी दे करके नाम कमाए वो अलग बात है, किंतु वृक्ष जहाँ से बीज को जहाँ से उगना होता है वो उग ही जाता है। तो उससे पर्यावरण के प्रदूषण को धत करती हुई ये कविता है। रेतीली तपती धरती में श्रम स्नेह का अंकुर फूटा, धरती बंजर बंजर धरती ये कथन हो गया झूठा। मिट्टी उर्वर की बीज सबल या सिंचन नीर नयन का, मिट्टी उर्वर की बीज सबल

0: निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाय कलेशा। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर वीर अभिमन्यु सिंह जी को। श्रोताओं, आइए हम सब मिलकर यह दृढ़ संकल्प लें कि हम जल की एक एक बूंद बचाएंगे और अधिक से अधिक पेड़ लगाकर इस पर्यावरण को संवारेंगे। आज इस कवि गोष्ठी में हमारे साथ थे पंडित रमाशंकर पांडे विकल, डॉक्टर लखन राम जंगली और डॉक्टर वीर अभिमन्यु सिंह। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कवि गोष्ठी, संचालन कर रहे थे सुनील कुमार तिवारी। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी लखनऊ है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। प्रस्तुत है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न अंचलों में आयोजित समारोहों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट।

0: 15 अगस्त 2026 सुबह की पहली किरण ने जब धरती की देहरी पर दस्तक दी तो आकाश की ओर उठता हुआ तिरंगा जैसे मुस्कुरा पड़ा। तिरंगा जो स्वयं में समेटे है सदियों का इतिहास, उसके केसरीय पट्टी पर बलिदानों की अग्नि जल रही है, सफेद पट्टी में शांति का सपना सांस लेता है और हरी पट्टी में भविष्य की उम्मीदें अंकुरित होती हैं। मध्य घूमता अशोक चक्र समय का वो पहिया है जो रुकना नहीं जानता। राष्ट्र आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हर भारतीय आन बान और शान का प्रतीक तिरंगे को प्रणाम कर रहा है, उन अमर बलिदानियों को नमन कर रहा है जिनकी कुर्बानी से देश आजाद हुआ। आजादी का ये जश्न पूरी भारतवर्ष में बड़ी ही श्रद्धा भाव और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह श्रद्धापूर्वक मनाया गया। विवरण के साथ हैं हमारी सहयोगी डॉक्टर शिवा राकेश।
1: लखनऊ के विभिन्न शिक्षण संस्थानों पर 80वें स्वतंत्रता दिवस को कैसे मनाया गया, इस बारे में विवरण उपलब्ध कराया हमारे सहयोगियों राघवेंद्र सिंह और ज्योति चंद्रा ने।
2: हर वर्ष की तरह इस बार भी RDSO मानक नगर में बड़ी भव्यता, गरिमा और राष्ट्रीय भावना के साथ स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व को मनाया गया, जिसमें स्थानीय विद्यालयों द्वारा देश प्रेम से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी गईं। इसी क्रम में मानक नगर विद्यालय की छात्राओं ने देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी। इसी तरह विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ इन बच्चों ने देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया।
1: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर भी 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं। केंद्र पर इस पुनीत दिवस को कैसे मनाया गया, इसका ब्यौरा देने वाले हमारे सहयोगियों डॉक्टर सुशील कुमार राय और मनीष कुमार की रिपोर्ट को स्वर दे रही हैं वैशाली जौहरी।
3: आकाशवाणी लखनऊ के परिसर में स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाया गया। 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर केंद्राध्यक्ष श्री RB सिंह द्वारा झंडारोहण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बिरजू महाराज कथक संस्थान के कलाकारों द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम से की गई। तत्पश्चात राष्ट्रगान का गायन हुआ। इस अवसर पर केंद्राध्यक्ष श्री RB सिंह द्वारा कहा गया,
4: इस तिरंगे राष्ट्र ध्वज को नमन करते हुए मेरी ओर से आप सभी को 80वें स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और ये राष्ट्रीय पर्व ही तो है जो हमारे जीवन में उल्लास लेकर आते हैं, जोश लेकर आते हैं और हमें अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का स्मरण कराते हैं। आज हम उन सभी वीरों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, शहीदों को नमन करते हैं, याद करते हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। हमारे आज़ादी के मतवालों ने जो सपने देखे थे उनके सपनों को हम साकार करें।
3: तत्पश्चात कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती सुमोना एस पांडे द्वारा स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई।
5: राष्ट्र ध्वज को नमन के साथ मैं सभी हमारे अधिकारियों, हमारे सभी साथियों का स्वागत करती हूं इस पावन अवसर पर और आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस जो हमारे देश का आज है, हम मना रहे हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। जो देश के शहीदों, वीर सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, वो सिर्फ एक दिन का याद करने का दिन नहीं है, लेकिन फिर भी हम आज के दिन को इसी रूप में मनाते हैं, हम उनको नमन करते हैं। हमें सिर्फ उनकी बलिदानी को याद नहीं करना है, हमें इस आज़ादी को बनाए रखने में भी अपना योगदान देना है।
3: इसी क्रम में देशभक्ति से ओतप्रोत गीत स्नेहिल श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: कार्यक्रम में अपने देशभक्ति लोक गीतों द्वारा अवधेश बालेश्वर और उनके साथियों द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई। लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व को पूरी प्रतिष्ठा और अनुशासन के साथ मनाया गया। आइए सुनते हैं हमारे सहयोगियों प्रवीण कुमार और कुंवर बहादुर सिंह द्वारा दिया गया ये विवरण।
1: हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा,
2: मेरे प्रिय साथियों, 80वें स्वतंत्रता दिवस

0: कि इस पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार के प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी वीर शहीदों के परिजनों और भारत माता की सेवा में समर्पित प्रत्येक नागरिक को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब संपूर्ण राष्ट्र तिरंगे के सम्मान में नतमस्तक है, तब हम केवल स्वतंत्रता का उत्सव नहीं मना रहे हैं, हम उन असंख्य ज्ञात अज्ञात बलिदानियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं जिन्होंने हमें केवल स्वतंत्र भारत नहीं बल्कि स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया। मैं आज के इस पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के उन सभी वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने राष्ट्र और समाज की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः हार्दिक बधाई।
1: जन भवन में स्वतंत्रता दिवस पूर्ण हर्षोल्लास एवं गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजन के बारे में बता रही हैं हमारी सहयोगी ममता उपाध्याय।
2: 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जन भवन का ऐतिहासिक प्रांगण भी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत था। प्रातः ठीक 9 बजे उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल का समारोह स्थल पर आगमन हुआ। स्वतंत्रता दिवस समारोह का शुभारंभ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के समूह गान से हुआ और पूरा प्रांगण वंदे मातरम गान से गुंजायमान हो उठा। तत्पश्चात माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के कर कमलों द्वारा ध्वजारोहण किया गया और देश के स्वाभिमान का प्रतीक तिरंगा लहरा उठा। इस अवसर पर पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रगान की धुन बजाई गई। तत्पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी की नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विकसित भारत 2047 हेतु भारत को नशा मुक्त करने का संकल्प लिया गया। समारोह के समापन चरण में माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने सुसज्जित परेड का निरीक्षण कर अभिवादन स्वीकार किया और समारोह का समापन हुआ पुलिस बैंड द्वारा बजाई गई धुन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के साथ।
1: विधानसभा में मनाए गए 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए गए आयोजन के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी देवाशीष और आसिफ इकबाल।
3: 15 अगस्त के इस पावन और प्रमुख दिवस पर स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार विधानसभा में भी मनाया गया। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री श्री बृजेश पाठक, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी एवं आम जनता ने इस आयोजन में अपनी भागीदारी दी। कार्यक्रम के शुभारंभ पर भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने वंदे मातरम के गायन के साथ इसके 150 वर्ष पूर्ण होने को और भी गरिमामयी बना दिया। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा ध्वजारोहण किया गया तथा इसके पश्चात राष्ट्रगान गाया गया। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा,
4: पूरे प्रदेश वासियों को स्वाधीनता दिवस की मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आज का ये पावन अवसर सत्य और अहिंसा के साधक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत माता के उन महान स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों और उन वीर सैनिकों के स्मरण करने, उनकी स्मृतियों को नमन करने का एक अवसर हम सबके लिए आज का यह दिन है जिन्होंने अपना देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया और स्वाधीन भारत को एक सुरक्षित माहौल देकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में निरंतर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। इस अवसर पर देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा का एहसास कराने के लिए अपने आप को बलिदान देने वाले वीर सपूतों को भी मैं विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए नमन करता हूँ। देश के 80वें स्वाधीनता दिवस की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
5: भारत तेरे चरणों में इतिहास बड़ा मुस्काता है, तेरे गौरव का हर पन्ना वीरों की गाथा गाता है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भी वीर बलिदानियों को नमन किया गया। राष्ट्रध्वज तिरंगे के सम्मान में समारोह आयोजित किए गए। स्वतंत्रता दिवस समारोह के विवरण के साथ ये है आकाशवाणी आगरा का डिस्पैच।
6: 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मोहब्बत के शहर आगरा नगर में भी
5: सुबह से ही

0: देशभक्ति के तराने फिजाओं में गूंज रही थी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंडलायुक्त कार्यालय आगरा में ध्वजारोहण किया। मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप ने झंडारोहण के पश्चात उन्होंने अपने संबोधन में कहा,
1: स्वतंत्रता दिवस पर मेरा इतना ही अनुरोध और इतनी ही प्रार्थना कि हम जहाँ पर हैं वहाँ पर उन भावों को जो कि हमें प्राप्त हुए, विरासत में प्राप्त हुए हैं, उनको जरूर जिए और अपने कार्यस्थल पर, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में हमेशा देश के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने कार्य के प्रति ये भाव रखें कि हमको अपनी संकीर्णता से ऊपर उठकर समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना है।
0: पुलिस लाइन में झंडारोहण किया आगरा नगर के पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने। तत्पश्चात उन्होंने वहां उपस्थित पुलिस बल को संबोधित करते हुए कहा,
2: हम सबके लिए गौरव का विषय है कि आज भारत गणराज्य अपनी स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ पूरे देश में धूमधाम से मना रहा है। विगत एक सप्ताह से देश की गली गली, प्रत्येक नुक्कड़, प्रत्येक चौराहे पर तिरंगा यात्रा की झूम मची हुई है। यह अवसर हम सभी को उत्साहित करने वाला है ही, साथ ही साथ गौरवान्वित करने वाला है।
0: जिलाधिकारी कार्यालय में झंडारोहण किया आगरा के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने। इसके पश्चात उन्होंने वहां उपस्थित जनमानस को संबोधित करते हुए कहा,
3: आज हमारा देश एक बहुत ही सशक्त देश के रूप में विश्व में अपनी पहचान बना रहा है। इस पूरी सफर में, इस जर्नी में बहुत सारे हमारे देश के वीर सपूतों ने, चाहे वो हमारे सेना के जवान हों, चाहे वो हमारे सुरक्षा बलों के जवान हों और अन्य हमारे कई ऐसे वीरों ने इस देश के प्रिंसिपल्स को, इस देश के मूल्यों को बचाने के लिए, इस देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान को भी न्यौछावर किया है। मैं आज के इस अवसर पर उन सभी वीर सपूतों को भी बहुत बहुत नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ।
0: मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय आगरा छावनी में ध्वजारोहण किया मंडलीय रेल प्रबंधक गगन गोयल ने। इसके पश्चात उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा,
4: अपने गौरवशाली राष्ट्र के 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर हम स्वाधीनता संग्राम के उन महान सेनानियों, शहीदों एवं महापुरुषों को कृतज्ञता पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनके अनुपम त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप देश को सदियों की गुलामी से आज़ादी मिली एवं एक स्वतंत्र एवं संप्रभु भारत की आधारशिला रखी गई।
5: आकाशवाणी आगरा के डिस्पैच के बाद अब सुनिए आकाशवाणी ओबरा का डिस्पैच।
6: आजादी के 80 साल, संघर्षों का एक लंबा सफर, अनगिनत कुर्बानियां और उन सपनों का भारत जिन्हें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी आंखों में देखा था, उन्हीं स्मृतियों और नए संकल्पों के साथ देश का ये राष्ट्रीय पर्व पूरे देश के भांति जनपद सोनभद्र में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हर घर तिरंगा का संदेश यहाँ जन जन के गौरव और अखंडता के पहचान बनकर उभरा, विशेषकर युवाओं के मध्य। वंदे मातरम के गौरव गान और देशभक्ति के नारों के मध्य जनपद का मुख्य समारोह विशिष्ट तेरा स्टेडियम सोनभद्र में आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि माननीय राज्य मंत्री समाज कल्याण उत्तर प्रदेश श्री संजीव कुमार गौड़ ने ध्वजारोहण के पश्चात उपस्थित गणमान्य को शुभकामना संदेश देते हुए कहा,
7: स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सबको मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, हमें ऐसा भारत बनाना है जहाँ हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके, हर युवा को रोजगार का अवसर मिल सके, किसान को सम्मान के साथ जीने के, हर नागरिक को सम्मान अधिकार प्राप्त हो सके। हमारा देश तभी मजबूत बनेगा जब हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी निर्वहन करने का काम करेंगे।
6: स्वाधीनता दिवस के इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी महोदय सोनभद्र श्री चर्चित गौड़ ने शुभकामना संदेश देते हुए कहा,
8: मैं सभी जनपद वासियों को, प्रदेश वासियों को और यहाँ पे जितने भी हमारे नागरिक हैं, सोनभद्र के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, जितने भी लोग हैं, सबको जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि हम सब जनपद सोनभद्र के वासी एकजुट होकर इस स्वतंत्रता दिवस पे राष्ट्रीय हित में, लोक हित में, प्रदेश हित में और जनपद के हित में सब लोग हम लोग एकजुट होकर कार्य करेंगे।
6: हर घर तिरंगा अभियान के साथ लोगों ने राष्ट्रीय पर्व में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। इस तरह ऊर्जांचल नगरी सोनभद्र में आजादी का जश्न भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष के साथ संपन्न हुआ। ये था आकाशवाणी ओबरा का डिस्पैच। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी मथुरा का डिस्पैच।
9: संपूर्ण देश के साथ जनपद मथुरा में भी 80वां स्वाधीनता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रातः काल से ही विद्यालय के बच्चों के साथ उनके शिक्षक और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हाथों में तिरंगा लिए उत्साहपूर्वक भारत माता की जय वंदे मातरम के उद्घोष के साथ प्रभात फेरियां निकाली। कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी श्री चंद्र प्रकाश सिंह ने राष्ट्रध्वज फहराकर उपस्थित जनसमूह को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलवाई।
10: हर कार्य में तन मन से सहयोग करूंगा।
9: अपने उद्बोधन में जिलाधिकारी श्री चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा,
10: जब भगवान श्री कृष्ण ने मानवता को सूत्र वाक्य दिया था कि कर्मण्येवा अधिकारस्ते मामलेषु कदाचन, उस मिट्टी पर सेवा करना जहाँ के मिट्टी में जन्म लिए हुए ऐसे हम लोगों के आराध्य ने जब ये संदेश दिया था, तो हम कोई कारण नहीं है कि हम अपने जो पूर्वज हैं, हम लोगों के जो मार्गदर्शक रहे हैं, हम लोग जो संवाहक रहे हैं, उनकी बात हम भूले। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मेरी पदेन जिम्मेदारी है कि अपने साथियों से मोटिवेट करते हुए और उनसे उनका सर्वश्रेष्ठ निकालू। इस दिशा में कई बार सुनाना भी पड़ता है और कई बार सुनना भी पड़ता है। मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परिवार के सभी की बिना बताए अगर कोई पीड़ा है तो वो समझ ले।
9: जनपद मथुरा के प्रतिष्ठित संस्थान मथुरा रिफाइनरी में भी 80वां स्वाधीनता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। सहस्त्राब्दी स्टेडियम में आयोजित समारोह में मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक श्री मुकुल अग्रवाल ने कहा,
11: आज का दिन केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है, यह दिन है कृतज्ञता का, स्मरण का, आत्ममंथन का। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस आजादी की कीमत बहुत बड़ी थी, यह हमें सहज रूप से नहीं मिली थी। इसके पीछे लाखों देशवासियों का संघर्ष, त्याग, तपस्या और बलिदान था। आजादी का मूल्य हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने चुकाया, जिन्हें यह पता भी नहीं था कि वे स्वतंत्र भारत के लिए, जिसके लिए वो अपना जीवन दे रहे हैं, वे उसे देख पाएंगे भी या नहीं। उन्होंने अपने आज का बलिदान हमारे कल के लिए किया, इसलिए आज हमारा सबसे बड़ा दायित्व यह है कि हम उनकी उस कुर्बानी को न केवल याद करें बल्कि उसका सम्मान भी करें।
6: ये था आकाशवाणी मथुरा का डिस्पैच। लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी अयोध्या का डिस्पैच।
12: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज रामनगरी अयोध्या देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई। नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक समस्त सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, वंदे मातरम और देशभक्ति से ओतप्रोत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंडलायुक्त कार्यालय प्रांगण में ध्वजारोहण के पश्चात मंडलायुक्त श्री राजेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा,
13: मेरे हिसाब से हमारे पूरे इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन है, जिसमें कि सारी बेड़ियों को तोड़ के हमारा देश आज़ाद हुआ था और बहुत लोगों ने उसमें बलिदान दिया था और एक कल्पना की थी कि हम अपने देश को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे और एक विकसित देश के लिए डेवलप करेंगे। और हम देखेंगे कि सभी लोगों ने किसी ना किसी क्षमता में, देश के नागरिकों ने कहीं ना कहीं योगदान दिया और हम आज इस स्थान पे खड़े हैं कि आर्थिक स्थिति में हमारा देश 6वीं अर्थव्यवस्था बन गया है।
12: रिजर्व पुलिस लाइंस अयोध्या में तिरंगे को सलामी देने के पश्चात एसएसपी अयोध्या डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस बल के जवानों को कर्तव्य और निष्ठा की शपथ दिलाई और बहादुर जवानों को सम्मानित किया। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों को सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा,
14: स्मृति का स्मरण करते हैं जिन्होंने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज का भारत सामाजिक क्षेत्र में नए प्रयासों से समग्र आर्थिक विकास के बल पर वर्ष 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर अग्रसर है। मैं समझता हूं कि अमृतकाल के इस दौर में आगे बढ़ते जाने की राष्ट्रीय यात्रा में सभी देशवासी यथाशक्ति अपना सर्वाधिक योगदान देंगे।
12: स्थानीय जीआईसी प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस

0: कार्यक्रम में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्रीमती रजनी तिवारी ने युवाओं को नशे से बचने की शपथ दिलाई और अपने संबोधन में कहा,
1: यहाँ पे न जाने कितनी व्यवस्थाएं हो गई हैं, यहाँ पे आज हमारे पूरे प्रदेश हमारे देश में मजबूती के साथ बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए हर चीज पे ध्यान देते हुए तकनीकी के कारण हम लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया। हम सब लोग निश्चित तौर पे अगर संकल्प ले लें कि देश को विकसित बनाना है तो हम अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा सकते हैं।
2: ये था आकाशवाणी अयोध्या का डिस्पैच। अब सुनते हैं आकाशवाणी बरेली का डिस्पैच।
3: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से बरेली का आसमान गूंज उठा। शहर के मुख्य चौकी चौराहे पर महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने ध्वजारोहण किया, महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया और साथ ही नगरवासियों का आह्वान किया।
4: सर्वप्रथम आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भारतवर्ष जिन संस्कारों के लिए जाना गया, जिन संस्कृति के लिए जाना गया, आज अभेद भारत जिसको मुगल भी नहीं झुका पाए, जिसको अंग्रेज भी नहीं झुका पाए, हमारे संस्कारों संस्कृति को वो चाहकर भी खत्म नहीं कर पाए, आज उस भरे हुए संस्कारों से ओतप्रोत ये भारतवर्ष है। दोस्तों आपको याद रखना है कि पूरी दुनिया की निगाहें भारतवर्ष के युवाओं पर टिकी कि भारतवर्ष का युवा किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम लगातार पूरे विश्व को चुनौती दे रहे हैं, हम लगातार आर्थिक अर्थव्यवस्था में चौथे और पांचवें नंबर पर टिके रहते हैं, अब कोशिश हमारी हो रही है कि हम तीसरे नंबर पर आए।
3: आजादी का ये जश्न कलेक्ट्रेट परिसर में भी धूमधाम से मनाया गया। ध्वज फहराने के बाद जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा,
5: आज का यह दिन हमारे लिए बहुत ही गौरव और उल्लास का दिन है। हम उन तमाम संत संग्राम सेनानियों क्रांतिकारियों और शहीदों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम सभी लोग मिलकर उनकी यादों को सलाम करते हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आज उन्हीं लोगों की वजह से हम सभी लोग खुली हवा में सांसें ले रहे हैं। हमें आज के दिन इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि हम पूरी ईमानदारी निष्ठा और अनुशासन के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।
2: ये था आकाशवाणी बरेली का डिस्पैच। लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी रामपुर का डिस्पैच।
6: बादलों की ओट में मुस्कुराता सूरज, सुबह की पहली किरण के साथ सड़कों पर गूंजते बच्चों के जोशीले नारे,
7: भारत माता की जय।
6: मानो प्रकृति भी आज तिरंगे के रंग में रंगकर स्वतंत्रता के इस पावन पर्व का स्वागत कर रही हो। रामपुर कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया रामपुर के जिलाधिकारी श्री अजय कुमार द्विवेदी ने।
8: सर्वप्रथम आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं और बधाई। 79 साल हमारी आजादी को हो गए हैं और उसके बाद आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जैसा प्रदेश सरकार के और सरकार के निर्देश हैं, जो हमारा हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, उसके अंतर्गत आप सभी से अपेक्षित है कि आप न सिर्फ आप स्वयं बल्कि अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, उन सभी को प्रेरित करें कि आज अपने घर पर तिरंगा झंडा जरूर लगाएं। इस झंडे का महत्व यह है कि हम इसके माध्यम से अपने देश प्रेम की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना को व्यक्त करते हैं।
6: आज की सुबह सिर्फ एक नई सुबह नहीं थी, ये उन अनगिनत बलिदानों की याद दिलाने वाली सुबह थी जिसकी बदौलत हम स्वतंत्र भारत की हवा में सांस ले रहे हैं। गांधी समाधि रामपुर में आयोजित कार्यक्रम में अपने उत्प्रेरक उद्बोधन में उत्तर प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलक,
9: 15 अगस्त का दिन हर भारतीय लिए गौरव की बात है। राजधर्म सभी धर्मों में सर्वप्रिय है क्योंकि इसमें जन कल्याण की भावना नियत है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पूर्वजों की भांति राष्ट्रहित को प्रमुखता दें एवं राष्ट्र की गरिमा, सम्मान, गौरव और संयोग रखने के हेतु सदा तत्पर रहें। राज्य सरकार प्रदेश की जनता की खुशहाली के लिए साफ नियत सही विकास के संकल्प को साकार कर रही है।
6: आज का दिन गर्व का दिन है, संकल्प का दिन है और मातृभूमि के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है। भारत के विकास की नव ऊर्जा का संकल्प अपने मन में समेटे आइए मनाएं स्वतंत्रता का ये महापर्व।
2: ये था आकाशवाणी रामपुर का डिस्पैच। आइए अब सुनते

0: सुनते हैं आकाशवाणी वाराणसी का डिस्पैच।
1: स्वतंत्रता की अलख जगाने के साथ साथ आजाद भारत के संपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महापुरुषों की जन्म और कर्मस्थली रही वाराणसी ने स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ देशभक्ति, श्रद्धा और उल्लास के वातावरण में मनाई। भगवान भोलेनाथ को प्रिय पवित्र श्रावण मास में आजादी के पावन पर्व के अवसर पर आज हर ओर संस्कृति के चटक और भाव भरे रंगों का अप्रतिम समावेश देखते ही बनता था। मुख्य समारोह ऐतिहासिक वाराणसी कलेक्ट्रेट में आयोजित किया गया, जहां वाराणसी के जिलाधिकारी श्री सत्येंद्र कुमार ने राष्ट्रध्वज फहराया। इस अवसर पर अपने संबोधन में जिलाधिकारी ने कहा
2: कि आज हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। सबसे पहले सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, बनारस के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सभी युवा पीढ़ी के जो हमारे युवा साथी हैं उन सबको यही कहना चाहूंगा कि इस आज़ादी के लिए जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन लोगों ने बहुत बलिदानियां दी हैं। इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में हम सब लोगों को अपना अपना योगदान देना है।
1: वाराणसी पुलिस लाइन में पुलिस आयुक्त श्री मोहित अग्रवाल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया। उन्होंने विशेष उपलब्धियों के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया और देश की एकता और संविधान रक्षा की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए पुलिस आयुक्त श्री मोहित अग्रवाल ने कहा,
3: इस 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूँ। आज का दिन हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। आज का दिन हमें उन लोगों की याद दिलाता है जिन्होंने बिना किसी बात की चिंता करे अपने जीवन को हमारे देश को आजाद कराने के लिए निछावर कर दिया। जिस तरह का सपना उन्होंने एक स्वतंत्र भारत का देखा था, हमको उन सपनों को साकार करना है।
1: सर्व विद्या की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विशाल एम्फी थिएटर मैदान में आयोजित भव्य स्वाधीनता दिवस समारोह में कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और आकर्षक परेड और मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह को संबोधित करते हुए प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने कहा,
4: स्वाधीनता संग्राम केवल एक संग्राम नहीं था। स्वाधीनता संग्राम ने हमको बहुत सारी अक्षुण चीजें प्रदान की हैं। सबसे पहली चीज जो हमको मिली है, एक भारतीय के रूप में हमारी पहचान। आज के दिन हमको ये याद रखना चाहिए, कई बार हम अपनी भारतीयता को भूल जाते हैं और अपने व्यक्तिगत हितों के लिए इस भारतीयता को पीछे छोड़ देते हैं। आज का दिन है जब हम इसको पुनः स्मरण करते हैं कि नहीं, हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद कुछ भी हो सकते हैं।
1: राष्ट्रीय उत्सव के उल्लास की अलौकिक छवि बाबा विश्वनाथ धाम में भी दिखी। इस अवसर पर बाबा का विशेष तिरंगा श्रृंगार किया गया। केसरिया, सफेद और हरे रंग के फूल और पत्तियों से की गई भगवान श्री विश्वनाथ और पवित्र धाम की साज सज्जा लोग अपलक निहारते रहे। शैक्षणिक संस्थानों में इस मौके पर खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं।
0: आप सुन रहे थे आकाशवाणी वाराणसी का डिस्पैच। अब प्रस्तुत है आकाशवाणी प्रयागराज का डिस्पैच।
5: जनपद प्रयागराज में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। नगर का मुख्य आयोजन रिजर्व पुलिस लाइन में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज पीयूष मोडिया ने परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के पश्चात उन्होंने अपने संबोधन में कहा,
6: जब 1947 में आज के दिन भारत स्वतंत्र हुआ तो उसकी स्वतंत्रता के पीछे अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियां थी। स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों की वजह से जो स्वतंत्रता हमने पाई, उस स्वतंत्रता के पाने के पश्चात हमारा कार्य समाप्त नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्र निर्माण का कार्य उसी दिन से प्रारंभ हुआ।
5: इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने ध्वजारोहण के बाद अपने संबोधन में कहा,
7: इस देश का तिरंगा आज अपनी आन बान और शान से नीले आसमान पर लहरा रहा है और हम ये चाहते हैं कि ये सदैव लहराता रहे। इसी तरह हमारी ऐसी मनोकामना है। इस झंडे का लहराना महज लहराना नहीं है, अपितु इस बात का संकेत है कि हम एक स्वाभिमानी देश हैं और स्वतंत्र देश हैं। और हमारी स्वतंत्रता वो है कि हमने कभी किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया।
5: उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने सुबेदारगंज स्थित मुख्यालय में ध्वजारोहण के बाद परेड का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा।

0: अपने गौरवशाली राष्ट्र के 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं समस्त रेल कर्मियों एवं उनके परिवारजनों को हार्दिक बधाई देता हूं। इस अवसर पर हम स्वाधीनता संग्राम के उन महान सेनानियों, शहीदों और महापुरुषों को कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनके अनुपम त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप देश को सदियों की गुलामी से आज़ादी मिली और एक स्वतंत्र एवं संप्रभु भारत की आधारशिला रखी गई।
1: इफ्को फूलपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। परिसर में आयोजित समारोह में इफ्को के चेयरमैन दिलीप सिंघानी ने परेड की सलामी ली और ध्वजारोहण के बाद अपने संबोधन में कहा,
2: इस दिन को मेरी ओर से और पूरे इफ्को यूनिट के सभी कर्मचारी, बंधु, बहने और अधिकारी की ओर से पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आज सिर्फ स्वतंत्र दिन पे इफ्को फूलपुर यूनिट और देश के अन्य भाग में आए हुए इफ्को के यूनिट के द्वारा देश की समृद्धि, सलामती, स्वास्थ्यता, सुरक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध।
3: ये था आकाशवाणी प्रयागराज का डिस्पैच। अब सुनते हैं आकाशवाणी झांसी का डिस्पैच।
4: आज 15 अगस्त है, आजादी का पावन पर्व, गौरव का प्रतीक और हमारे सपनों का दिन। आज झांसी कलेक्ट्रेट सभागार से लेकर विभिन्न स्थानों पर तिरंगे की छाओं में खड़ा पूरा झांसी शहर और गांव एवं झांसी के ऐतिहासिक किले की प्राचीर से गूंजते आजादी के तराने, आज पूरा देश उत्सव में डूबा है। आइए महसूस करें इस ऐतिहासिक सुबह की जीवंत ऊर्जा को। सर्वप्रथम आपको ले चलते हैं झांसी महानगर के कलेक्ट्रेट परिसर में, जहां पर जिलाधिकारी महोदय श्री गौरांग राठी जी ने अपने सभी प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ ध्वजारोहण किया। तत्पश्चात सूरज प्रसाद वालका इंटर कॉलेज झांसी की छात्राओं ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया एवं सभागार में देशभक्ति से ओतप्रोत देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया। अब जिला कलेक्ट्रेट सभागार से जिलाधिकारी महोदय अपने उद्बोधन के साथ।
5: आज हम पूरे देश में धूमधाम से 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हर साल की भांति इस साल भी स्वतंत्रता दिवस की थीम है। इनफैक्ट इस बार इस थीम के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला है वंदे मातरम के 150वां वर्ष, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, और दूसरा है विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति की महत्ता।
4: श्रोताओं, अब हम आपको ले चलते हैं झांसी के उस ऐतिहासिक किले पर, जहाँ से 1857 में उद्घोष हुआ था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा ध्वजारोहण किया और साथ ही शांति के प्रतीक सफेद कबूतर खुले आसमान में छोड़े गए। झांसी दुर्ग की प्राचीर से जिलाधिकारी महोदय अपने विचारों के साथ।
5: सर्वप्रथम 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की इस शौर्य भूमि, कर्म भूमि से, झांसी के इस ऐतिहासिक दुर्ग से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह किला केवल पत्थरों और प्राचीरों से बना स्मारक नहीं है, बल्कि भारत के साहस, स्वाभिमान और स्वतंत्रता संकल्प का प्रतीक है।
3: ये था आकाशवाणी झांसी का डिस्पैच। लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी कानपुर का डिस्पैच।
6: दिवस पर्यंत आज अनेक आयोजन हुए। मुख्य समारोह प्रातः 8 बजे ऐतिहासिक कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ, जहां कानपुर नगर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण किया। आज के महत्वपूर्ण अवसर की शुभकामनाएं देते हुए कहा,
7: विगत 79 वर्षों में देश ने अपना एक तंत्र तैयार किया है, जो डेमोक्रेसी है, अकाउंटेबिलिटी है, और इसी के लिए हमारे बहुत सारे वीर सपूतों ने 1857 में भी और 1947 तक अपनी जान दी, तकलीफें झेली, जेल में रहे। इसका भारत में भारतीयों का शासन हो, जो अकाउंटेबिलिटी हो, जो जवाबदेही हो, हम अपने प्रतिनिधि चुन सकें, अपने देश को ऐसा संचालित कर सकें कि पूर्व से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, जो भारत के मूल्य हैं, भारत की संस्कृति है, भारत का इतिहास है, उस सबको हम उस तरह से पोषित कर सके, संचालित कर सके, जैसा कि भारतीय चाहते हैं।
6: अगले पड़ाव में हम पहुंचे कानपुर पुलिस लाइन। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने अपने उद्बोधन में कहा,
8: आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की अवसर पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये स्वतंत्रता दिवस हमें हमारे अनगिनत जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, अपने तप के माध्यम से, बलिदान के माध्यम से ये आजादी हमें दी है, ये आज हमारा जिम्मेदारी बन

0: श्रीमती जसजीत कौर ने आजादी के अमर शहीदों के बलिदान को याद किया।
1: और इतने लंबे समय से 79 इयर्स हो गए हमारी आजादी को, जिसमें हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं, अपने डिसीजन खुद लेते हैं, हमारे बच्चे हम लोग हर बात पे कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे हम ऐसा नहीं करेंगे, मतलब ओपनली अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और उस हिसाब से चलते हैं। तो ये बहुत आसानी से ये जो हमें च्वाइस का अधिकार मिला है तो बहुत खुशी से मिला है। बहुत लंबे समय तक आजादी की लड़ाई स्वतंत्रता संग्राम जो है वो चला है, बहुत लोग इसमें जुड़े, बहुत हर वर्ग के लोग जुड़े।
0: इस पावन अवसर पर बिजनौर जिले की तहसील नजीबाबाद मुख्यालय में भी सभी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी और नगर के सैकड़ों आम व खास व्यक्ति मौजूद रहे। सवेरे 8 बजे ही माननीय उप जिलाधिकारी श्री शैलेंद्र कुमार सिंह के द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर आप हैं उप जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह।
2: मैं नगर वासियों को, तहसील वासियों को और संपूर्ण राज्य के, संपूर्ण देश के और संपूर्ण विश्व में भारतवंशी जहां भी फैले हैं सबको मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे।
3: ये था आकाशवाणी नजीबाबाद का डिस्पैच। आकाशवाणी नजीबाबाद के डिस्पैच के बाद आइए सुनते हैं आकाशवाणी गोरखपुर का डिस्पैच।
4: आज 15 अगस्त 2026 को देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर गोरखपुर भी पूरी तरह देशभक्ति, उल्लास और राष्ट्रीय गौरव के रंग में रंगा नजर आया। गोरखपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया। जिलाधिकारी श्री दीपक मीणा ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ और श्री मीणा ने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों तथा नागरिकों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। ध्वजारोहण और शपथ के बाद जिलाधिकारी श्री दीपक मीणा ने जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी।
5: सबसे पहले तो आप सभी को और आपके माध्यम से सभी जनपद वासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और ये एक दिन है जिस दिन हम जितने भी हमारे जो लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए या जो हम खुली हवा में सांस ले पाए उसके लिए अपनी जो आहुति दी है, अपना जो परिश्रम दिया है, उन सबको एक याद करने का दिन है।
4: अब रुख करते हैं सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम का। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री उदय बोरवड़कर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अपने संबोधन में महाप्रबंधक ने पूर्वोत्तर रेलवे की उपलब्धियों, रेल परिचालन और यात्री सुविधाओं के विस्तार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी।
6: स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं पूर्वोत्तर रेलवे की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों को इंगित करूंगा। बहराइच नेपालगंज रोड खंड के आमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण होने के साथ ही पूर्वोत्तर रेलवे पूर्ण रूप से बड़ी लाइन में परिवर्तित हो गई है।
4: अब चलते हैं उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर। कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। विश्वविद्यालय के शिक्षक, शोधार्थी, विद्यार्थी और कर्मचारी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
7: आज हम इस प्रांगण में एकत्र होकर अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराते हैं। यह केवल एक स्थापित परंपरा का निर्वहन या औपचारिक उत्सव मात्र नहीं है। ये सूर्योदय उन अनाम, अमर, निष्काम क्रांतिवीरों के प्रति हमारी आत्मा की असीम कृतज्ञता प्रकट करने का क्षण है, जिन्होंने अपने स्वाभिमान, अपने यौवन और अपनी अंतिम श्वासों की आहुति देकर हमें इस आजाद फिजा में सांस लेने का अवसर दिया।
3: स्वतंत्रता दिवस समारोह पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ये है आकाशवाणी अल्मोड़ा का डिस्पैच।
8: सावन के बरसते बादल और पर्वतों को ओढ़े कोहरे के बीच सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा ने 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया। मुख्य कार्यक्रम जिला मुख्यालय में आयोजित हुआ, जहाँ जिलाधिकारी अल्मोड़ा श्री अंशु सिंह ने ध्वजारोहण किया। जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आप हैं जिलाधिकारी अल्मोड़ा श्री अंशु सिंह।
9: भारत माता की
10: जय।
9: भारत माता की
10: जय।
9: आज हमारा ये 80th इंडिपेंडेंस डे है। 79 इयर्स हमारी इंडिपेंडेंस को कंप्लीट हो गए हैं। ये दिन इसलिए जरूरी होता है कि हमें रियलाइज हो कि जो हम देश आजाद हुआ था इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष चला था और उसमें कई लोगों ने अपना बलिदान दिया था। मैं आज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्मोड़ा जनपद में हम स्वच्छता के लिए एक काम करेंगे, जो अधिकारीगण है वो अपने स्तर से काम करेंगे और जो सिटीजन है वो अपने स्तर से काम करेंगे, जो मीडिया है वो अपने स्तर से काम करेगी, जो हमारे

0: लॉयर्स हैं वो अपने स्तर से काम करेंगे और हर क्षण हम ये कोशिश करेंगे हम अपने शहर को कैसे स्वच्छ रख सकें। यदि कोई कूड़ा फेंक रहा है तो उसको जाके प्यार से समझाए कि बंधु ये सही तरीका नहीं है, इसको या तो अभी अपनी जेब में रख लो और आगे अगर बगल में डस्टबिन है तो उसमें डाल दो। समय लगेगा लेकिन मैं आशा करता हूँ कि अगर हम सब लोग पहल करेंगे तो एक एक करके हम लोग इस चीज को सुधार में ले आएंगे।
1: आकाशवाणी अल्मोड़ा के डिस्पैच के बाद आइए सुनते हैं आकाशवाणी देहरादून का डिस्पैच।
2: राष्ट्र ने आज अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मनाया। देवभूमि उत्तराखंड में स्वाधीनता का ये उत्सव परंपरागत तरीके से उत्साह पूर्वक मनाया गया। लोक भवन उत्तराखंड में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कहा,
3: अमर शहीदों और जो वीरों ने राष्ट्र की इंडिपेंडेंस के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया, तपस्या और त्याग से हमको आजादी दिलाई, उन सबको आज हम इस क्षण याद करते हैं। उनके उदाहरण हमारे लिए एक मार्ग है और उन सबको हमारा आत्मिक धन्यवाद है, उन पर हमको गर्व है।
2: स्वाधीनता दिवस का मुख्य समारोह ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा,
4: मैं हाल ही में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आई प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित हुए सभी परिवारों के प्रति भी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। मैं सभी आपदा प्रभावित परिवारों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि इस कठिन घड़ी में सरकार किसी भी प्रभावित परिवार को अकेला नहीं छोड़ेगी। हमारी प्राथमिकता है कि हर प्रभावित परिवार तक शीघ्र राहत पहुंचे, घायलों को बेहतर उपचार मिले और जिन लोगों ने अपना घर या आजीविका खोई है उन्हें जल्द से जल्द आवश्यक सहायता मिले। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में समय पर राहत एवं बचाव सामग्री पहुंचाने के साथ साथ हम क्षतिग्रस्त हुई सड़कें, पुल, पेयजल, विद्युत लाइनों को जल्दी ठीक करने का प्रयास भी कर रहे हैं।
2: पुलिस महिला बैंड की प्रस्तुति मुख्य आकर्षण का केंद्र रही।
1: ये था आकाशवाणी देहरादून का डिस्पैच। अब सुनते हैं आकाशवाणी पौड़ी का डिस्पैच।
5: श्रोताओं, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रातः 7 बजे विरहित तौर पर प्रभात फेरियां स्कूली बच्चों द्वारा निकाली गई और इसके पश्चात प्रातः के 9 बजे विकास भवन परिसर पौड़ी में मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। श्रोताओं, 15 अगस्त 2026 के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक द्वारा जिला कलेक्ट्रेट परिसर पौड़ी में प्रातः 9:30 पर ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। इसके बाद मुख्य कार्यक्रम प्रेक्षागृह संस्कृति भवन पौड़ी में आयोजित किए गए, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनकी विधवा जीवित पत्नी तथा शहीद राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को माननीय कैबिनेट मंत्री द्वारा सम्मान प्रदान किया गया। श्रोताओं, कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक ने अपने उद्बोधन में कहा,
6: स्वतंत्रता का 79वां वर्ष 80वां स्वतंत्रता दिवस का यह स्वतंत्रता हमने बड़े संघर्षों से ली है। ये स्वतंत्रता हमारे लाखों लाख नौजवानों ने, माताओं ने, बहनों ने अपने प्राणों को नछावर करके संघर्ष करके अपना घर बार व्यापार सब कुछ छोड़कर हम ये स्वतंत्रता में नहीं।
5: श्रोताओं, इस अवसर पर जनपद की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने अपने उद्बोधन में कहा,
7: सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज हम उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और साथ में यहाँ क्योंकि हम सभी लोग उपस्थित हैं जो कि जनरली जनता की सेवा से हमारे चाहे राजनीति में या फिर हमारे प्रशासनिक सेवा में या सरकारी विभाग के काफी अधिकारी उपस्थित हैं, तो मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि व्यक्ति अगर हमारे पास आता है तो हमें बस बहुत संवेदनशीलता से उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना है।
1: ये था आकाशवाणी पौड़ी का डिस्पैच। श्रोताओं, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आइए हम सब मिलकर ये शपथ लें, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण बनाए रखेंगे, संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करेंगे, स्वच्छ, सुरक्षित और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और वीर शहीदों के बलिदान से परिचित कराएंगे। चलो उठो, संकल्प करें हम, भारत का सम्मान रहे, जब तक नभ में सूर्य चमकता तिरंगा ऊंचा शान रहे। अतीत हमारा दीप बने, भविष्य हमारा पथ बने, भारत फिर ऐसा भारत हो जिस पर हर युग को गर्व रहे। एक बार पुनः आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न अंचलों में आयोजित समारोहों पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। वाचन और संपादन सहयोग था सुरेंद्र राजेश्वरी का। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम।
2: चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
3: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
2: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
3: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
2: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज। चाहे सपना एक परिवार का हो, एक बिजनेस का या पूरे देश का,
3: हर सपने में है भारत की नई तस्वीर।
2: इस स्वतंत्रता दिवस पर SBI की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
3: आइए हम सब मिलके साथ भारत को और आगे ले जाएं।
2: SBI, डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट, नेशन ऑलवेज।
1: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए आज आपको सुनवाते हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां की शहनाई पर बजाई हुई कजरी धुन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्ला खां की शहनाई पर बजाई कजरी धुन। ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही देर बाद आप समाचार सुनेंगे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें समाचारों की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। राष्ट्र आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस अवसर पर पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन हुआ।
1: आजादी के बाद 15 अगस्त को लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। आज जब हम देश के लोग वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं, इससे बड़ा उत्तम अवसर क्या हो सकता है।
0: श्री मोदी ने इस वर्ष के आयोजन में 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कई अभूतपूर्व संकटों से बाहर निकलने में सफल रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से सप्तधारा की शक्ति के उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। विश्व नेताओं और विभिन्न देशों के राजनयिक मिशनों ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक यात्रा, समृद्ध सभ्यतागत विरासत और क्षेत्रीय तथा वैश्विक सहयोग में बढ़ती भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह की शुभकामनाओं के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच बहुआयामी तथा सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमृत उद्यान कल से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। ये रखरखाव के चलते प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। इंडोनेशिया में आज फ्लोरेस के तट के पास आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई। भूकंप के बाद दर्जनों झटके महसूस किए गए। राहत और बचाव दल सबसे अधिक प्रभावित इलाकों तक पहुंचने के प्रयास में जुटे हैं। देश के कई हिस्सों में 1 मीटर से कम ऊंचाई की सुनामी लहरें भी दर्ज की गई। अधिकारियों के अनुसार कई प्रभावित इलाकों में अब भी लोगों के इमारतों के भीतर फंसे होने की आशंका है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलविन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के ग्रुप डी के मैच में आज भारत ने वेल्स को 3-1 से हरा दिया। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। हरमनप्रीत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत अपना अगला मैच 17 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगा। श्रीलंका के साथ गोल में खेले जा रहे भारत के ऐतिहासिक 600वें टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 2 विकेट पर 288 रन बनाए। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका के लिए एकमात्र विकेट प्रभात जयसूर्या ने लिया। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र और उत्तराखंड में कल तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.7 पर आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह 5:50 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। जय हिंद।